मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी पटना है। आज दिन है बुधवार, तिथि 6, ज्येष्ठ माह, शक संवत 1948, तदनुसार अंग्रेजी माह का 27 मई 2026। इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:48 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की पहली सभा। इस सभा में आपके साथ मैं हूं जया। आप सभी का बहुत स्वागत, आप सभी को प्रणाम।

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, आइए सुनिए आज का चिंतन।
1: अभ्यास का वास्तविक स्वरूप निरंतर कर्म है। कर्म की निरंतरता व्यक्ति के कौशल में वृद्धि करता है, अंततः वह व्यक्ति विजयश्री को प्राप्त होता है। अभ्यास का एक स्वरूप भय का पीछा करके उसे जीत लेना भी है। व्यक्ति को जिस काम को करने में ज्यादा घबराहट महसूस हो, उसे बार बार करने से उसकी योग्यता में वृद्धि होती है, तथा जिस काम को करने में वह असमर्थ होता है उसे भी कर डालता है। यह प्रक्रिया अभ्यास कहलाती है। जीवन में श्रेष्ठ और उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए अच्छे अंक एवं तीव्र बुद्धि ही कारण नहीं है, बल्कि इसके साथ बहुत अधिक ऐसे उदाहरण हैं जो लगातार जीवन में असफल होते हैं, लेकिन वे चलना नहीं छोड़ते। वे असफलता के साथ आनंद लेते हुए निरंतर कर्म में लगे रहते हैं, ठोकर से घबराते नहीं और न ही ठहरते हैं, वे चलते रहते हैं। यही तप और सफलता की भूख उन्हें एक दिन अचानक आकाश की बुलंदियों तक पहुंचा देता है। जबकि मेधा एवं योग्यता के धनी सुविधाओं से समझौते कर संघर्ष के थपेड़े नहीं सह पाते और जीवन यात्रा में आराम करने लगते हैं, इसलिए उनकी दुनिया सीमित हो जाती है। अतः असफल लोगों को कम आंकना हमारे लिए बड़ी भूल साबित हो सकती है। रामायण की अवधि रचना से पूर्व गोस्वामी जी ने संस्कृत में रामचरित की रचना प्रारंभ की, लेकिन पारलौकिक अस्वीकृति उनके बूढ़े शरीर के मजबूत इरादों को नहीं डिगा सका। वे निराश नहीं हुए और आगे चलकर वे अवधी भाषा में रामायण की रचना किए, जो आज तक विश्वविख्यात एवं पूजनीय धरोहर बनी हुई है। व्यक्ति का जीवन यदि पूर्ण रूप से अभ्यासमय हो जाए तो उसे अपनी कमी या भूतकाल के बारे में चिंतन का बीजा बहुमूल्य समय बच जाएगा। अधिकतर लोग इस संसार में योग्य हैं, लेकिन वे अभ्यासी नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी अधिकतर ऊर्जा एवं अत्यधिक समय अपने भूलों के बारे में सोचने और कोसने में बर्बाद चला जाता है। यदि यहाँ पर हम संयम एवं नियंत्रण सीख लें, तो हम अभ्यास के बल पर पूरी दुनिया को जीतने का मादा रखते हैं। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरियावत जाते सिल पर पड़त निशान। इस पंक्ति से

0: स्पष्ट है कि जब निर्जीव एक कोमल रस्सी अपने से कठोर पत्थर को बार बार घिसकर पतला कर सकती है, तो क्या हम परेशानी को घिसकर पीछा करके उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते? क्या मानव के अच्छे इरादों से बड़ी परेशानियां ज्यादा ताकतवर होती हैं? नहीं, जरूरत है बस कर्म करने का संकल्प। कर्म ही जीवन है का उद्घोष, यही निरंतरता प्रत्येक सफलता की कुंजी है। याद रखें, आप कितने विद्वान हैं, समाज इसका प्रमाण नहीं चाहता। आपके पास क्या क्या दिखाने लायक वस्तु है, समाज उसे देखता है। इसलिए सफलता प्राप्त करके स्वयं को सिद्ध करें।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। इस कार्यक्रम में आज का विषय था करत करत अभ्यास, वाचनकर्ता मनोज कुमार सिन्हा। आइए अब सुनिए कृषि चर्चा। इस कार्यक्रम में जानकारी दे रहे हैं संरक्षित खेती के बारे में।
2: किसान भाइयों नमस्कार। हमारे देश में जितनी भी कृषि नीतियां बनी हैं, वे मुख्यतः ग्रामीण परिस्थितियों के ही अनुकूल बनी है और शहरों में खाद्य आपूर्ति पूर्णतः ग्रामीण उत्पादन पर ही निर्भर है। इसमें अब काफी सुधार की आवश्यकता है। शहरी क्षेत्रों की खाद्य आपूर्ति के लिए ग्रामीण इलाकों से उन फसलों की आयात तो बिल्कुल ठीक व उचित है जो ज्यादा समय तक खराब न हो, परंतु वैसे खाद्य पदार्थ जो जल्दी खराब हो सकते हैं, उनके लिए यदि शहरी क्षेत्रों को ही उनके उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जाए तो जल्दी खराब होने वाले कृषि आधारित खाद्य पदार्थ जैसे ताजे फल, सब्जियां, फूल इत्यादि बहुत कम समय में ही उपभोक्ताओं के पास पहुंच जाएंगे। इससे उपभोक्ताओं को ताजी खाद्य सामग्री मिलेगी और उत्पादों के दाम भी अच्छे मिलेंगे। संरक्षित खेती का मतलब होता है खेती करने का एक आधुनिक और वैज्ञानिक तरीका जिसके अंतर्गत पौधों को विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों या प्रतिकूल वातावरण जैसे तेज गर्मी, तेज सर्दी, तेज हवा, तेज प्रकाश की तीव्रता, अतिवृष्टि, अनावृष्टि इत्यादि से पौधों का बचाव, पौधों को संरक्षण और उन्हें अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती है जो कि उनकी बढ़वार में सहायक होती हैं और इस तरह से उनसे अच्छी गुणवत्ता की और अधिक पैदावार प्राप्त की जाती है। इस प्रकार से जो खेती की जाती है उसे हम संरक्षित खेती कहते हैं। संरक्षित खेती के अंतर्गत कई कृत्रिम संरचनाएं बनानी पड़ती हैं जैसे पॉली हाउस, शेड नेट हाउस, ग्लास हाउस, वॉकिंग टनल, लो टनल इत्यादि। इन संरचनाओं के अंदर तापमान, आर्द्रता, वायु का बहाव, प्रकाश की तीव्रता और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर काफी हद तक नियंत्रित किया जाता है और पौधे की बढ़वार में सहायक सभी अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। संरक्षित खेती आज हमारे किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है और इसे अपनाकर न केवल अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं बल्कि स्वरोजगार भी कर रहे हैं। संरक्षित खेती के अनेक फायदे हैं जैसे फसलों में रोग और कीटों का प्रकोप कम हो जाता है क्योंकि जब पॉली हाउस, ग्रीन हाउस, टनल हाउस में जब खेती की जाती है तो जाहिर है कि बाहर से कीट पतंगे नहीं आ पाते हैं। जंगली जानवर एवं अन्य पशुओं से फसलों की रक्षा होती है। वातावरण को नियंत्रित करके सभी मौसम में सब्जियों की खेती की जा सकती है। फूलों एवं सब्जियों की नर्सरी तैयार करके पौधों की बिक्री भी कर सकते हैं। अधिक रोजगार सृजन की संभावनाएं खुले खेतों में 5 से 6 गुना अधिक की जाती है। बाजार मांग एवं अपनी पसंद के अनुसार सब्जियों एवं फसलों का चयन कर सकते हैं। परिनगरीय क्षेत्रों के लिए अत्यधिक उपयोगी प्रौद्योगिकी का भी विकास किया जाता है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल और भूमि आदि का सदुपयोग पूर्णतः संभव है। पर्यावरण नियंत्रित संसाधनों के अंतर्गत की जाने वाली संरक्षित खेती से फसल की गुणवत्ता और उत्पादकता में लगभग 5 से 12% की वृद्धि होती है। संरक्षित संसाधनों के अंतर्गत पैदा की गई फसल के उत्पादों के मध्य विश्वसनीयता बढ़ जाती है। इन तकनीकों के तहत फसलों की खेती वर्ष भर की जा सकती है। यह तकनीकी फल, फूल और सब्जियों की फसलों को पैदा करने के लिए आदर्श रूप से अनुकूल है। फल, फूल और सब्जियों का इस तकनीकी के माध्यम से ऑफ सीजन उत्पादन करने वाले अतिरिक्त आय उत्पादन करके अतिरिक्त आय अर्जित की जा सकती है। रोग प्रतिरोधिता और अनुवांशिक रूप से उत्कृष्ट प्रत्यारोपण से उत्पादन निरंतर लिया जा सकता है। यह तकनीकी बेरोजगार

0: ग्रामीण नवयुवकों के लिए रोजगार के अच्छे अवसर प्रदान करती है। संरक्षित संसाधनों के तहत फसलों के लिए पानी की आवश्यकता को सीमित और नियंत्रित किया जा सकता है। इस तकनीकी से बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है, जिनकी बाजार में मांग एवं कीमत दोनों ही अधिक होती है। संरक्षित प्रौद्योगिकी विभिन्न प्रकार की जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए उपयोगी और कारगर है। आर्द्रता, तापमान, सूर्य और प्रकाश और वायु के प्रवाह को फसलों की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करके फसलों का उत्पादकता के साथ साथ गुणवत्ता भी बढ़ाई जा सकती है। इस तरह से संरक्षित खेती काफी लाभप्रद है।
1: आकाशवाणी पटना से अभी आप सुन रहे थे कृषि चर्चा। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार। प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक के लिए अगले 6 महीने में ड्रोन रोधी प्रणाली स्थापित करेगी। राजस्थान में बीकानेर की सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृहमंत्री ने कल ये घोषणा की।
6: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
5: सरकार ने प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये वृद्धि राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें कल से लागू हो गई। अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स हॉपिंग

0: ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमेरिका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को मंजूरी दे दी है। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी। इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव होंगे। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, आइए सुनिए वंदना। इस कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ये देशगान।

भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर की आवाज में अब सुनिए ये भजन, राम का गुणगान करिए।

आकाशवाणी पटना से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदना। इस कार्यक्रम का अगला भजन सुनिए, तेरे नौ नौ रूप है माँ, आवाज दी है नीतीश कुमार ने।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी पटना से वंदना कार्यक्रम। अब सुनिए रामचरितमानस।
1: एपिसोड 116 116।

श्री राम विवाह मंडप में विराजमान हैं। शुभ मुहूर्त विचार कर वशिष्ठ जी ने राजपुरोहित शतानंद से राजकुमारी को मंडप में लिवा लाने का अनुरोध किया। सुंदर मंगल साज सजी रनिवास की स्त्रियां और सखी सहेलियां आदर सहित सीता को मंगल गीत गाती लिवा चली। कुलाचार के पश्चात कुलगुरु ने गौरी, गणेश तथा ब्राह्मणों की पूजा कराई।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब सुनिए स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में जानकारी देंगे ब्रेन स्ट्रोक और उससे बचाव डॉक्टर विजय कुमार ठाकुर से। आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त करें।
1: श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है ब्रेन स्ट्रोक और बचाव, और आज हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर वी के ठाकुर, जो कि पटना के जाने माने अस्पताल के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है
2: जी, धन्यवाद।
1: जी। ये ब्रेन स्ट्रोक क्या है और इसके लक्षण क्या हैं और इसका क्या किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है, कृपया इस पर प्रकाश डालें।
2: जरूर। ब्रेन स्ट्रोक का सीधा मतलब हुआ कि ब्रेन के किसी पार्ट में धक्का लगना, झटका लगना, इसको हम बोल सकते हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं। एक तो हुआ कि हमारे ब्रेन के सर्टेन एरिया में ब्लड सप्लाई कम हो गई या बंद हो गई, तो वो ब्रेन का जो टिश्यू है, जो ऊतक है, वो डेड हो गया। एक ये टाइप हुआ। दूसरा ब्रेन हेमरेज हुआ। ब्रेन हेमरेज में ब्रेन के अंदर के नस जो बोलते हैं वो फट गई ब्लड प्रेशर के कारण या और भी कई कारण, अभी हम लोग बात करेंगे। तो अगर वो नस फट गई तो वहाँ रक्त का प्रवाह होने से ब्रेन उसकी वजह से डेड हो। और एक और स्थिति होती है ब्रेन स्ट्रोक की, जब कहीं हार्ट से या कभी कभी दूसरे ऑर्गन से एक खून का थक्का जाकर अगर ब्रेन में जमा हो जाए तो इसको एम्बोलिज्म बोलते हैं। इसमें बड़ा सडन लकवा और जो भी उसके लक्षण हैं वो हो जाता है। तो ये तीन तरह के, उनको अंग्रेजी के टर्मिनोलॉजी में इन्फार्क्ट, हेमरेज और एम्बोलिज्म बोलते हैं। ये तीन प्रकार ब्रेन स्ट्रोक के।
1: तो इनका बचाव कैसे किया जा सकता है?
2: अब ये तो है कि हमेशा ये जो पुरानी बात है कि बचाव इलाज से बेहतर है। एक बार हो जाने के बाद स्ट्रोक, वो काफ़ी हमारी सफरिंग हो जाती है, तो बचाव हम करें। अब बचाव के लिए जो पुरानी बातें चली आ रही हैं, खान

0: पान, रहन सहन और केयर, मेडिकल केयर। खान पान में जो हमारी आजकल की टेंडेंसी होती जा रही है, जो जंक फूड और फ्राइड फूड, ये सबसे हमें बचना है। घर का सात्विक खाना, फ्रेश, तुरंत का बना हुआ, बासी ना हो, ये बहुत जरूरी है। और खाने में हमें फल फूल सब्जियाँ, हरी साग सब्जी और अनाज, ये सब एक प्रोपोर्शन जो बोलते हैं हम लोग, बैलेंस डाइट,
1: अच्छा
0: ये बहुत जरूरी।
1: कुछ लोग चिकन ज़्यादा खा लेते हैं या मदिरा पान करते हैं, तो उनका क्या रहता है?
0: मदिरा

0: होगा, ब्रेन हेमरेज का, इन्फार्क्ट का चांस बढ़ जाएगा। मधुमेह अगर है तो इसे हम कह सकते हैं कि करेला नीम चढ़ा, ब्लड प्रेशर और मधुमेह दोनों रहने से स्ट्रोक का चांस बढ़ जाता है। और इस तरह का जो कम्बिनेशन है, जैसा आपने पहले भी किया, खान पान और ये सब में कोलेस्ट्रॉल एक इशू होती है, जब हमारे अंदर फैट ज़्यादा अगर ब्लड के अंदर बढ़ गया तो ये भी धमनियों को ऑब्स्ट्रक्ट करता है और स्ट्रोक होने का चांस बढ़ जाता है।
1: अच्छा, आपने एक मुद्दा उठाया था कि ब्रेन स्ट्रोक, मस्तिष्क आघात से पैरालिसिस भी होने की संभावना होती है।
0: ब्रेन के किस एरिया में स्ट्रोक हो रहा है इस पे पैरालिसिस होता है। अगर ब्रेन के एक सर्टेन एरिया में हुआ जहाँ से हमारा हाथ पैर कंट्रोल होता है तो पैरालिसिस हो जाएगा हाथ पैर का। अगर फेस का कंट्रोलिंग एरिया में हेमरेज हुआ तो फेस का हो जाएगा। आँख से संबंधित हुआ तो आँख में हो जाएगा। और कुछ ऐसे ब्रेन के पार्ट हैं जो डायरेक्ट नहीं कंट्रोल करते हैं तो उनके अंदर में स्ट्रोक होने से पैरालिसिस नहीं होगी, अन्य लक्षण होंगे।
1: तो रोगियों को कितनी संभावना रहती है कि वो इससे ठीक हो जाएं, ब्रेन स्ट्रोक से जो पैरालिसिस हुआ?
0: जैसा मैंने बताया कि गोल्डन आवर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा जो ये हो रहा है, जैसे किन्हीं को जैसे शुरुआत हो, लगे कि हमारी आवाज़ लड़खड़ा रही है, हमारे हाथ पैरों में कमजोरी आ रही है, हमें एकाएक चक्कर आना शुरू हुआ, घबराहट आना शुरू हुआ, तो जहाँ भी अगर संभव हो तुरंत अस्पताल में चले जाएँ, ताकि अगर स्ट्रोक नहीं होगा तो अच्छी बात है, हम खुश रहेंगे, और स्ट्रोक है तो तुरंत डॉक्टर वो सुई देते हैं नस में, जिसकी वजह से वो क्लॉट जो है, जो ब्लड जम गया, तुरंत क्लियर हो जाता है और विद इन मिनट्स ये आदमी का एकदम 100% वर्किंग आ सकती है। ये उन अवस्थाओं में लागू होता है जबकि ये इन्फार्क्ट की वजह से है। अब हेमरेज और अन्य कोई कारण हो तो फिर उसमें ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए आपकी स्थिति क्या है, पेशेंट की स्थिति क्या है, उनके शरीर में कितनी इम्यूनिटी है, उनको और मधुमेह, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल स्थिति क्या है, उनका एज कितना है, इन बातों पे रिकवरी डिपेंडेंट होती है।
1: जी, डॉक्टर वीके ठाकुर, आप हमारे स्टूडियो में आए और मस्तिष्क आघात और उससे किस प्रकार से बचाव किया जाए और संबंधित अन्य मुद्दों पर आपने चर्चा की और हमारे श्रोताओं को बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा, ब्रेन स्ट्रोक और उससे बचाव। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर विजय कुमार ठाकुर। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब आपको जानकारी दे देते हैं आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की।

आपसे कुछ ही देर के बाद आप सुन पाएंगे कार्यक्रम हालचाल 7:15 पर। वक्त होगा सुगम संगीत का, शास्त्रीय संगीत आप सुन सकते हैं 7:25 पर। उर्दू कार्यक्रम अंजुमन आप सुन सकते हैं 9:10 से, और 10 से फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी। परिवार कल्याण का कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर, और 10:45 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम आओ साथ चलें।

0: संध्या 4:30 खेल परिक्रमा 5:30 से सुनेंगे और आज भोजपुरी बुलेटिन भी आप सुनेंगे संध्या 6:05 पर। चौपाल का वक्त होगा 6:30, खेती गृहस्थी का वक्त होगा 7:00। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप रात्रि 10:00 से लेकर 11:00 तक सुन सकते हैं। श्रोताओं, ये संक्षिप्त जानकारी थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। ये आकाशवाणी पटना है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: पूर्व आईपीएस अधिकारी ईएम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। केन्द्रेण अनुप्रवेशेण अन्यैः कारणैः च जनसांख्यिकीय परिवर्तनस्य समाह्वानान् निवारणाय उच्चस्तरीय समित्याः निर्माणं विहितम्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः ह्यः अवदत् यत् सर्वोच्च न्यायालयस्य पूर्व न्यायाधीशः प्रकाश प्रभाकर नावलेकरः समित्याः अध्यक्षः भविष्यति। जनगणना आयुक्तेन सह पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तवः, अर्थशास्त्री डॉक्टर समीका रवि इत्येषा च समित्याः सदस्य रूपेण नियुक्तः अस्ति। गृहमंत्रालयस्य संयुक्त सचिवः एकः वैदेशीयः समित्यां सदस्य सचिव रूपेण कार्यं करिष्यति। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् ड्रोन यन्त्रैः मादकद्रव्याणां शस्त्राणां च तस्करणं निवारयितुं अग्रिमेषु षण्मासेषु एव सर्वकारः ड्रोन अवरोधप्रणाल्याः नियोजनं प्रचालयिष्यति। राजस्थानस्य बीकानेर जनपदस्य सांचू सीमा पोस्ट इत्यत्र बीएसएफ सैनिकान् सम्बोधयन् सः अवदत् यत् यद्यपि सीमापारात् उद्भूताः विभीषिकाः महत्वपूर्णानि एव सन्ति, तथापि देशस्य अन्तः एतादृशानां विभीषिकाणां साहाय्यं कुर्वताम् आन्तरिकतत्त्वानां विषयेपि समानं ध्यानं दातव्यम्।
2: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
1: ऑस्ट्रेलिया देशस्य विदेश मंत्रिणा पेनी वोंगह इत्येषा ह्यः नवदिल्ल्यां प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह मिलितवती। श्री मोदी रक्षा व्यापार प्रौद्योगिकी इत्यादिषु क्षेत्रेषु वर्धमानस्य भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक सामरिक सहभागित्वस्य विषयेपि आपूर्ति श्रृंखलायाः स्थितिस्थापकतायाः विषये च चर्चितवान्। प्रधानमंत्री अवदत् यत् भारत ऑस्ट्रेलिया देशौ स्वतंत्रं मुक्तं सुरक्षितं समृद्धं च हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य कृते निरन्तरं कार्यं करिष्यतः। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः सुश्री वोंग इत्यनया सह 17वें विदेश मंत्रिणां फ्रेमवर्क संवादेत्यस्य सह अध्यक्षतां कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् ते हिंद प्रशांत प्रदेशे पश्चिम एशियायाः स्थितिम् अन्येषु क्षेत्रीय वैश्विक बहुपक्षीय विषयेषु च मतानां आदान प्रदानं कृतवन्तः। भाजपेति दलाध्यक्षः नितिन नवीनः ह्यः नवदिल्ल्याः दलस्य मुख्यालये नो बीजेपी इति उपक्रमस्य अन्तर्गतं 12 देशानाम् अभियानप्रमुखैः सह वार्तालापम् अकरोत्। श्रीनवीनः ब्राजील, जर्मनी, इण्डोनेशिया, मलेशिया, मॉरिसस, न्यूजीलैंड, सेशेल्स, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, थाईलैंड, वियतनाम इत्यादीनां देशानां प्रतिनिधीनां स्वागतम् अकरोत्, तथा च भाजपेति दलस्य यात्रायाः विचारधारायाः संघटनात्मक

ऑन एयर फरमाइश आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे से। बिहार का लोक संगीत यह कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 12:30 पर। ग्रामीण महिला कार्यक्रम घरनी का प्रसारण किया जाएगा। फिल्म संगीत का कार्यक्रम दोपहर 1:30 पर सुन सकते हैं।

0: भक्ते लोकसेवाया प्रतिबद्धताया च विषये अवधानं प्रदत्तवान्। केन्द्रीय वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयल दृढ़ विश्वास प्रकटितवान् यत् भारत कनाडा आर्थिक सहभागित्वस्य अग्रिम अध्याय विश्वासेन प्रेरित भविष्यति, येन द्वयोः राष्ट्रयोः संयुक्त समृद्धि भविष्यति। गतरात्रौ कनाडा देशस्य टोरेंटो नगरे राजनैतिक पुनरुत्थापना वाणिज्यिक वितरण पर्यन्तम् इति मंत्रिस्तरीय पूर्ण सम्मेलनस्य उद्घाटन सत्रं संबोधितवान्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ विदेश मंत्रियों की 17वें द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। भारत और रोमानिया ने कल नई दिल्ली में रक्षा सहयोग पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक की। इसमें दोनों देशों के बीच जारी रक्षा सहयोग की समीक्षा की गई और प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के बारे में बातचीत की गई। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा सहयोग, संयुक्त प्रशिक्षण, क्षमता विकास और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर आपसी रक्षा सहयोग योजना को अंतिम रूप दिया। भारत ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में चीन और पाकिस्तान के अवांछित संदर्भों को सिरे से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। बोर्ड ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। अमरीका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। अमरीका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन आधारित 10 कोच वाली DEMU रेलगाड़ी के संचालन को अपनी मंजूरी दे दी है।

रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। रेल डीजल या बिजली की जगह हाइड्रोजन फ्यूल सेल के जरिए ऊर्जा उत्पन्न करेगी और इसकी कुल क्षमता 1200 किलोवाट होगी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में शुरू होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। वक्त हो गया है कार्यक्रम हालचाल का। हालचाल के साथ हम हाजिर हैं आपके रूबरू। तो सबसे पहले ये बता दीजिए कि आप कैसे हैं। पर आप सोचेंगे आप बताएंगे कैसे, तो हम ही बता देते हैं कि इस वक्त हम महसूस कर पा रहे हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। इस कार्यक्रम में जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको जानकारी देते हैं विभिन्न विषयों पर। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। आज ही के दिन यानी 27 मई 1964 को भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही एक युग का भी अंत हुआ। सबसे लंबे समय तक देश की सेवा करने वाले पंडित जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है। उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। इस देश की खूबसूरती देखिए श्रोताओं की, देश के प्रधानमंत्री को चाचा नेहरू भी कहा जाता है। नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था। नेहरू जी का जन्म कश्मीरी पंडित के एक ऐसे परिवार में हुआ था जो अपनी प्रशासनिक क्षमता और विद्वता के लिए प्रसिद्ध थे। नेहरू जी के पिता मोतीलाल नेहरू जी एक प्रसिद्ध वकील थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता भी थे। पंडित जी की पढ़ाई ज्यादातर विदेशों में हुई। उन्होंने लंदन के इनर टेम्पल से बैरिस्टर की डिग्री ली थी। 1916 में कमला नेहरू से उनका विवाह हुआ, जिनसे उनकी इकलौती संतान इंदिरा प्रियदर्शी का जन्म हुआ, जो बाद में इंदिरा गांधी के रूप में भारत की प्रधानमंत्री बनी। देश उनको आयरन लेडी के रूप में भी जानता है। नेहरू जी भले विदेश में पढ़े हों, पर उनकी आत्मकथा जब आप पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि भारतीय राजनीति में उनकी शुरू से बहुत रुचि थी। हम और भी बात करेंगे नेहरू जी के बारे में, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए ये एक गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से लता मंगेशकर की आवाज़ थी। श्रोताओं, हम बात कर रहे थे हमारे आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में। 1929 के लाहौर अधिवेशन के बाद नेहरू जी देश के बुद्धिजीवियों और युवाओं के नेता के रूप में उभरे। पंडित जी को गांधी जी के सहयोग से कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। नेहरू जी महात्मा गांधी के साथ देश की आजादी के आंदोलन में शामिल हुए। इस दौरान उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। देश की स्वतंत्रता के बाद वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तब से अपनी मृत्यु तक उन्होंने लगातार देश की सेवा की। कुल मिलाकर 16 वर्ष 286 दिनों तक उन्होंने देश की सेवा की है।

अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एकता, धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक खोज, तकनीक, गरीबों का कल्याण, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान, समाज के बहिष्कृत लोगों के प्रति सम्मान पर विशेष जोर दिया। उनकी गौरवान्वित उपलब्धियों में से एक प्राचीन हिंदू नागरिक संहिता में सुधार था, जिसने अंततः हिंदुओं को सशक्त बनाया। विधवाओं को उत्तराधिकार और संपत्ति के मामलों में पुरुषों के समान अधिकार की बात भी उन्होंने की। नेहरू जी की विदेश नीति को भी बहुत सराहना मिली है। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो विश्व के सामने उसकी छवि वास्तव में नेहरू की ही थी। भारतीय राष्ट्रवाद के प्रारंभिक वर्षों में विश्व ने भारत को पंडित नेहरू से जोड़ा। तो श्रोताओं, ऐसी शख्सियत थी हमारे पहले प्रधानमंत्री की। बातें तो और भी है, पर वक्त आज इतने की ही इजाजत दे रहा है, तो आज कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। फिर हमारी मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें होंगी। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सीताराम सिंह से ये गीत।

इसी के साथ संपन्न हुआ सुगम संगीत का यह कार्यक्रम। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से, आइए अब सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां से सुनिए राग तोड़ी बे

Ni

0: अभी आप सुन रहे थे उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से ये गायन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर के बाद आप सुनेंगे समाचार। प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन अफवाहों को खारिज किया जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई थी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया। नासा ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नवलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र, पूर्व IPS अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉक्टर शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जनसांख्यिकी परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।
4: आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
3: इस समिति के कार्यों के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
5: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ 17वें विदेश मंत्रियों के द्विपक्षीय संवाद बैठक की सह अध्यक्षता की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र, पश्चिम एशिया की स्थिति, वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा भी की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत कनाडा आर्थिक साझेदारी का अगला अध्याय विश्वास पर आधारित होगा जिससे दोनों देशों की साझा समृद्धि सुनिश्चित होगी। कनाडा में आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास से व्यापक आर्थिक साझेदारी के अंतर्गत नए व्यापार और निवेश के अवसरों पर कार्य हो रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता पर श्री गोयल ने कहा कि भारत अगले 3 दशकों तक विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज निर्णय सुनाएगा। ये याचिकाएं बिहार में पिछले साल जून में एसआईआर प्रक्रिया शुरू करने के निर्वाचन

0: निर्वाचन आयोग के फैसले के बाद दायर की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था। एक रिपोर्ट।
1: याचिकाओं में एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को चुनौती दी गई थी। इसमें कहा गया था कि एसआईआर प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 326, जन प्रतिनिधित्व कानून 1950 और इनके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्वाचन आयोग को दी गई शक्तियों के दायरे से बाहर थी। याचिकाकर्ताओं की ये भी दलील थी कि एसआईआर प्रक्रिया ने बड़ी संख्या में गरीब और विस्थापित लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिया। सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर प्रक्रिया से प्रभावित मतदाताओं के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देने और कठिनाई को कम करने के लिए अंतरिम निर्देश जारी किए थे। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने 1983 में बिहार में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए कहा है कि इस घटना की क्रूरता न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कल कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा है कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं है। न्यायालय ने कहा कि घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोग घायल हो गए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने सोशल मीडिया पर किए गए इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। बोर्ड ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के वास्तविक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पोर्टल पूरी तरह से एक अलग URL पर काम करता है। एक रिपोर्ट।
2: CBSE बोर्ड ने कहा है कि cbse.onmarks.co.in केवल एक टेस्टिंग साइट है जिसमें सैंपल डाटा होता है, जिसका इस्तेमाल पूरी तरह से आंतरिक टेस्टिंग और समीक्षा के उद्देश्यों के लिए किया जाता है और इसमें परीक्षा से संबंधित कोई भी वास्तविक जानकारी नहीं होती है। बोर्ड ने कहा है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली शिकायतों के निवारण के साथ साथ मूल्यांकन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लागू की गई है। बोर्ड ने संबंधित पक्षों को आश्वस्त किया कि मूल्यांकन प्लेटफॉर्म की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस उपाय किए गए हैं। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन NASA ने चंद्रमा पर अपना केंद्र बनाने के लिए भेजे जाने वाले रोबोटिक लैंडर्स, हॉपिंग ड्रोन और अन्य वाहनों का विवरण जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: अमरीका की वर्ष 2028 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अमरीकियों को चंद्रमा पर उतारने की योजना है। चीन की भी वर्ष 2030 तक चंद्रमा पर मानव उतारने की योजना है। मार्च में NASA ने वर्ष 2032 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर परमाणु और सौर ऊर्जा से संचालित एक स्थायी अड्डा बनाने के लिए $20 अरब के कार्यक्रम की घोषणा की थी। जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन को इन मशीनों का निर्माण करने के लिए चुना गया है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले के मामले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की हिरासत में भेज दिया है। इन आरोपियों को केंद्रीय एजेंसी द्वारा सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। भारतीय वायुसेना ने अधिकारी काडर के तकनीकी शाखा में भर्ती के लिए अभियांत्रिकी स्नातक अभिक्षमता परीक्षा GATE के अंकों के आधार पर चयन करने की योजना बनाई है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि GATE के अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को वायुसेना चयन बोर्ड में परीक्षा के लिए सीधे चयनित किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली 10 डब्बों वाली DEMU रेलगाड़ी को चलाने की स्वीकृति दे दी है। ये निर्णय रेलवे क्षेत्र में हरित और टिकाऊ परिवहन को प्रोत्साहन देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाइड्रोजन रेलगाड़ी के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कृष्णकांत शर्मा।
3: यह रेलगाड़ी जींद

0: और सोनीपत के बीच अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी। इसमें 2 ड्राइवर पावर कार और 8 पैसेंजर कोच शामिल हैं, जिनकी कुल क्षमता 2500 यात्रियों की है। इसकी कुल विद्युत क्षमता 1200 किलोवाट है। यह ट्रेन शून्य कार्बन उत्सर्जन करती है। इसकी परिचालन गति 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। इसमें यात्रियों के लिए आधुनिक डिजिटल डिस्प्ले, ऑटोमेटिक दरवाजे और एयर कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सिक्किम की यात्रा के दूसरे दिन आज नाथुला दर्रे का दौरा करेंगी। राष्ट्रपति नाथुला में तैनात सैनिकों से बातचीत करेंगी। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी उन्हें क्षेत्र में जारी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी देंगे। राष्ट्रपति बाबा हरभजन मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगी। अमरीकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका और ईरान के बीच मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान की भूमिका की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के कारण उसे तटस्थ नहीं माना जा सकता। श्री ग्राम ने दावा किया कि ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तानी हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल के बारे में पाकिस्तानी नेताओं की टिप्पणियां चिंताजनक हैं। ये टिप्पणियां पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में अब्राहम समझौते में पाकिस्तान के शामिल होने से इनकार के बाद आई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया है और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है और अगले 2 से 3 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका व्यक्त की है। वहीं केरलम में मॉनसून 1 या 2 दिन की देरी से आ सकता है। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 162 रन पर सिमट गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल राजस्थान के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। और लीजिए अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों ने क्वाड समूह की एकजुटता और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए सख्ती को सुर्खियों में जगह दी है। साथ ही कई स्थानीय मुद्दे भी मुख्य पृष्ठ पर प्रमुखता से प्रकाशित किए गए हैं। वीर अर्जुन की सुर्खी है, क्वाड हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ाएगा निगरानी। पत्र ने भारत, अमरीका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्रियों की तस्वीरों को भी समाचार के साथ प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने घुसपैठ से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन संबंधी अमित शाह के ऐलान को सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने अपने संपादकीय को शीर्षक दिया है, धर्मशाला नहीं है भारत। पत्र लिखता है, जनसांख्यिकी संरचना बदल जाने से स्थानीय समुदायों में ये भावना बढ़ रही है कि घुसपैठिए सरकारी योजनाओं और राजनीतिक संरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिससे भाषा और भूमि को लेकर तनाव बढ़ रहा है। जनसत्ता ने दिल्ली में सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलोग्राम और बढ़ाए जाने को पहली खबर बनाया है। अमर उजाला ने भी इस खबर को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर जगह दी है, जबकि दैनिक ट्रिब्यून ने दिल्ली रेस क्लब को राहत न मिलने और जिमखाना पर सरकार के कुछ नर्म रुख को पहली खबर बनाया है।
1: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या आंकड़ों में परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज फैसला सुनाएगा। CBSE ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन अफवाहों को खारिज किया है जिनमें उसके ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के उल्लंघन की बात कही गई है। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के अनेक राज्यों में तेज गर्मी का अनुमान व्यक्त किया। महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बनाई। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट्स

0: आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी सरकार ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजर सानी को चैलेंज किया गया है। CBSE ने अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम की खिलाफ वर्जी के बारे में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि ये सिर्फ टेस्टिंग साइट है, कोई हकीकी प्लेटफॉर्म नहीं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में इंतहाई शदीद गर्मी के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाजों की तफसीलात जारी की हैं जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत चांद पर भेजने का इरादा रखता है। और IPL क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर 1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटंस को 92 रन से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। मरकज ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली के चैलेंज से निमटने के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर मस्कूरा कमेटी की सदारत करेंगे। मर्दमशुमारी के कमिश्नर के साथ साबिक IAS अफसर दुर्गा शंकर मिश्रा, साबिक IPS अफसर बालाजी श्रीवास्तव और माहिर मुआशियात डॉक्टर शामिका रवि को कमेटी के मेंबरान के तौर पर मुकर्रर किया गया है। वजारत दाखिला में फॉरेनर्स 1 डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। जनाब शाह ने कहा कि दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में गैर फितरी तब्दीली हो रही है और इससे किसी भी मुल्क के हाल और मुस्तकबिल को बड़ा खतरा लाहिक होता है। उन्होंने मजीद कहा कि आबादी के तनासुब में तब्दीली एक संगीन मामला है जो सिर्फ मुल्क की खुद मुख्तारी से ही नहीं बल्कि कौमी सलामती, अमनो कानून, समाजी ढांचे में बड़ी तब्दीली और कबायली मुआशरे के तहफ्फुज़ से भी वाबस्ता है। पेश है हमारे नामा निगार की ये रिपोर्ट।
1: आला सतह की ये कमेटी गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीलियों का जामे जायजा लेगी। ये कमेटी मजहबी और समाजी तबकों की सतह पर आबादी में होने वाली गैर मामूली तब्दीलियों के रुझान का तजज़िया भी करेगी और इसके लिए एक मनसूबा बंद और मुकर्रर वक्त के अंदर पूरा होने वाला हल पेश करेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पिछले साल लाल किले से यौम आज़ादी के अपने खिताब में आबादी के तनासुब के एतबार से होने वाली तब्दीली के बारे में आला सतह की कमेटी का ऐलान किया था।
2: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठी मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहा है। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया।
1: ये कमेटी एक साल के अंदर अंदर अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। अगर ज़रूरी हुआ तो कमेटी की मुद्दत में 6 माह की तौसी की जा सकती है। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असगर अली।
0: सुप्रीम कोर्ट आज उन दरखास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजर सानी SIR के कानूनी जवाब को चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस चोयमालिया बागची पर मुश्तमिल एक बेंच आज अपने फैसले का ऐलान करेगी। मस्कूरा बेंच ने तफसीली समाअत के बाद इस साल के अवाइल में इस मामले में अपना फैसला महफूज रखा था। इन दरखास्तों में इंतखाबी कमीशन की जानिब से SIR के अमल के कानूनी जवाज को ये दलील पेश करते हुए चैलेंज किया गया है कि वोटर फहरिस्तों पर नजरसानी का ये अमल आइन की दफा 326, अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1950 और बाद में मुरतब किए गए जाब्तों के तहत चुनाव कमीशन को हासिल इख्तियारात से तजावुज करता है। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों में SIR अमल से मुतासिर होने वाले राय दहिंदगान की मुश्किलात दूर करने और शफाफियत को फरोग देने की खातिर उबूरी हिदायत जारी की थीं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने ये वजाहत की है कि इम्तिहान के पर्चों की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए उसके हकीकी ऑन स्क्रीन मार्किंग निज़ाम में किसी तरह की कोई सिक्योरिटी कोताही नहीं हुई है। बोर्ड ने कहा है कि दाखिली जांच और नजरें

0: बनाने के मकासद के लिए सैंपल डेटा के साथ URL cbse.onmarks.co.in सिर्फ एक टेस्टिंग साइट है। मजीद तफसील हमारे नामा निकाय से।
1: CBSE ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो URL सर्कुलेट किया जा रहा है वो इम्तिहान के पर्चों की जांच के लिए इस्तेमाल किए गए पोर्टल से मुख्तलिफ है। बोर्ड ने कहा है कि शिकायत के इजाले के लिए मजबूत निजाम के साथ असेसमेंट में शफाफियत बढ़ाने की खातिर ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम नाफिज किया गया है। CBSE ने अपने हकीकी ऑन स्क्रीन मार्किंग निजाम में किसी तरह की सिक्योरिटी खिलाफवर्जी के दावों को खारिज करते हुए सभी मुतालिका अफराद को फिर यकीन दिलाया है कि जांच के प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए सभी तहफ़ुज़ात नाफिज किए गए हैं। दिल्ली से प्रिया मोंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू सिक्किम के अपने दौरे के दूसरे दिन आज सुबह नाथुला पास जाएंगी। सदर जमहूरिया नाथुला में तैनात फौजियों से बातचीत करेंगी और इस दौरान फौज के आला एहलकार उन्हें इलाके की मुख्तलिफ सरगर्मियों से वाकिफ कराएंगे। सदर जमहूरिया बाबा हरभजन की दरगाह भी जाएंगी। बाद में दिन में सदर जमहूरिया मुर्मू गंगटोक में मनन केंद्र में सिक्किम यूनिवर्सिटी की तकरीबे तकसीम असनाद के दौरान तलबा को डिग्री और तमगों से सरफराज करेंगी। 33 डिपार्टमेंट से वाबस्ता तकरीबन 14,000 डिग्रियां दी जाएंगी, जिनमें 199 खवातीन समेत 285 तलबा को गोल्ड और सिल्वर मेडल दिए जाएंगे। कल सदर जमहूरिया ने ऑर्किडेरियम और नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिबेटोलॉजी का दौरा किया था। गवर्नर ओम प्रकाश माथुर, वजीर आला प्रेम सिंह तमांग और दीगर एहलकारों ने ऑर्किडेरियम में सदर जमहूरिया का इस्तकबाल किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोलकाता की एक खसूसी अदालत ने मालदा के मोथाबारी इलाके में जुडिशल अफसरान पर हमले के मामले में मजीद 15 अफराद को 5 जून तक कौमी जांच एजेंसी की तहवील में भेज दिया है। पीर की रात को मोथाबारी और आसपास के इलाकों में मरकजी एजेंसी की छापे मारने की कार्रवाई के दौरान इन मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था। अदालत की कार्रवाई के दौरान NIA ने इस मामले के सिलसिले में 2 केस डायरियां पेश की। NIA के जराए के मुताबिक इस वाकये के दिन की CCTV फुटेज और सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स का तज्जिया करने के बाद मुश्तबा अफराद की शिनाख्त की गई। एजेंसी ने मजीद छानबीन के लिए गिरफ्तार किए गए अफराद के कब्जे से 15 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल शाम नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया की अपनी हम मनसब पैनी वोंग के साथ 17वें वज़राए खारजा फ्रेमवर्क मुज़ाकरात की मुश्तरका सदारत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत बहरुल काहिल मगरबी एशिया की सूरत हाल और दीगर इलाकाई आलमी और कसीर जहती मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकत दारी की मुसलसल पेशरफ्त का जायजा भी लिया। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि जौहरी तवानाई पैदा करते हुए यूरेनियम की फराहमी समेत तवानाई के शोबे में बाहमी तआवुन बढ़ रहा है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि दोनों मुल्क अहम मादनियात के शोबे में मिलकर काम कर रहे हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में शदीद से लेकर बहुत शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी अगले 2 दिन तक गर्मी का जोर जारी रहने की पेशगोई की है। जनूब मगरबी मानसून के केरलम पहुंचने में 1-2 दिन की ताखीर हो सकती है। इससे पहले मानसून के कल वहां पहुंचने की पेशगोई की गई थी। तफसील हमारे नामा निकाय से।
2: केरलम के जनूबी हिस्से में कुछ इलाकों में आज सुबह तक 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि दीगर मकामात और लक्षद्वीप में कोई बारिश नहीं हुई। केरलम में फिलहाल अगले 4 दिन तक तेज बारिश होने की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई है। इससे पहले वहां मॉनसून के 26 मई को पहुंचने की पेशगोई की गई थी। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: माहौलियात, जंगलात और आबो हवा की तब्दीली के महकमे के वजीर भूपेंद्र यादव ने दिल्ली में फजाई आलूदगी कम करने की खातिर मुख्तलिफ एजेंसियों के माबैन बेहतर तालमेल, तेजी के साथ अमल दरामद और सख्ती के साथ

0: अल्फाज की ज़रूरत पर जोर दिया है। वजीर मौसूफ ने कौमी राजधानी में हवा की क्वालिटी को बेहतर बनाने की खातिर किए जाने वाले इकदाम की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता के साथ जायजा मीटिंग की। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने रोबोटिक लैंडर्स, ड्रोन्स और खलाई जहाज़ों की तफसीलात जारी की हैं जो वो चांद पर बेस कायम करने के अपने मंसूबे के तहत चांद पर भेजने का इरादा रखता है। अमेजोन के बानी जेफ बेजोस की खलाई कंपनी ब्लू ओरिजिन उन कंपनियों में से एक है जिनका इंतखाब मशीनें तैयार करने के लिए किया गया है। अमरीका का ये मंसूबा है कि साल 2028 में सदर डोनाल्ड ट्रंप के अपने ओहदे से सुबुकदोश होने से कबल अमरीकी खलाबाजों को फिर से चांद पर भेजा जाए। रेलवे की वजारत ने हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली DEMU ट्रेन के लॉन्च की मंजूरी दे दी है। इसमें 10 रेल डिब्बे होंगे। ये इकदाम रेलवे के शोबे में माहौलियात के लिए साजगार और पायदार ट्रांसपोर्टेशन को फरोग देने की सम्त एक अहम कदम है। ये रेलगाड़ी बिजली पैदा करने के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल्स का इस्तेमाल करते हुए जींद और सोनीपत के दरमियान चलेगी, जिसकी ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 75 किलोमीटर फी घंटा होगी। मस्कुरा रेलगाड़ी में 1200 किलोवाट की मजमुई पावर सलाहियत होगी। इस ट्रेन में पावर निज़ाम सिर्फ एक रेल इंजन तक महदूद नहीं होगा, बल्कि ये ट्रेन के सभी रेल डिब्बों तक फैला होगा। कल पंजाब में हुए आम बल्दियाती इंतखाबात में तकरीबन 64% वोटिंग दर्ज की गई। 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, 75 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और 19 नगर पंचायत समेत 102 बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए इंतखाब कराए गए थे। मुखालिफ पार्टियों के हामियों के दरमियान कुछ झड़पें भी हुईं, लेकिन रियासती इंतखाबी कमीशन ने इस बात की तस्दीक की है कि इंतखाबी अमल ज़्यादातर पुरमन रहे। वोटों की गिनती 29 मई को होगी। इस बीच गुरदासपुर के दीनानगर, कादियान और शाम 84 के म्यूनिसिपल काउंसिल हलकों में 13 जून को इंतखाबात कराए जाने का ऐलान किया गया है। कल रात धर्मशाला में खेले गए क्वालिफायर वन मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंच गई है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जानिब से दिए गए 255 रन के बड़े निशाने का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस की टीम 3 गेंद रहते 162 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई। आज न्यू चंडीगढ़ में एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम राजस्थान रॉयल्स के मध्य मुकाबले होगी। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें, अब अखबार के आईने के साथ हैं असगर अली।
1: शुक्रिया नितिका। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबार ने नई दिल्ली में होने वाली क्वाड वज़राए खारजा की मीटिंग को अहमियत के साथ शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की सुर्खी है कि क्वाड वज़राए खारजा के इजलास में अहम समझौते। रोजनामा प्रताप ने इसे अपनी पहली खबर बनाते हुए लिखा है कि हिंद बहरुल काहिल खत्ते में बहरी सलामती में क्वाड रोल निभाएगा। हज के सबसे अहम रुकन वकूफ अरफात की अदायगी के मौके पर दुनिया भर से लाखों हुजाज इकराम के मैदान अरफात में जमा होने की खबर को भी बेशतर उर्दू अखबार ने पहले सफ़े पर जगह दी है। नरेंद्र मोदी हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने पर उनको मुबारकबाद दिए जाने और नेक ख्वाहिशात के इजहार को भी अखबार ने अहमियत के साथ शाया करते हुए इन 12 सालों को कौमी खिदमत, अच्छी हुक्मरानी, खुद इन्हेजारी, गरीबों की फलाह बहबूद और हिंदुस्तान की आलमी साख को नई बुलंदियों तक पहुंचाने का दौर करार दिया है। रोजनामा प्रताप ने वजीर दाखिला अमित शाह के बैन अलावामी सरहदों को नाकाबिले तस्खीर बनाने के बयान को दूसरी सबसे अहम खबर बनाई है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी सरकार ने दरअंदाजी और दीगर वजूहात से आबादी के तनासुब में होने वाली तब्दीली का जायजा लेने के लिए आला सतह की कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट आज उन दरख्वास्तों पर अपना फैसला सुनाएगी जिनमें वोटर फहरिस्तों पर खसूसी जामे नजरसानी को चैलेंज किया गया है। CBSE ने अपने ऑन स्क्रीन मार्किंग निज़ाम की खिलाफ वर्जी के बारे में सोशल मीडिया पर किए जाने वाले दावों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया है कि ये सिर्फ टेस्टिंग साइट है, कोई हकीकी प्लेटफॉर्म नहीं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में इंतहाई शदीद गर्मी के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। और IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

AIR at 90. आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिला मुख्यालयों को फोर लेन से जोड़ने का दिया निर्देश। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर अब नगर निकायों में भी आयोजित होंगे सहयोग शिविर। केंद्र सरकार ने किउल झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी। और पूर्णिया, मधेपुरा, मधुबनी, बेगूसराय और खगड़िया समेत राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिला मुख्यालयों को फोरलेन सड़क से जोड़ने का निर्देश दिया है। पथ निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने कहा कि राज्य के सुदूर इलाकों से 5 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी आवश्यक है। उन्होंने राज्य के पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक विरासत केंद्रों, औद्योगिक कॉरिडोर, विशेष कृषि उत्पाद क्षेत्र और महत्वपूर्ण बाजारों तक भी बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कच्ची दरगाह विदुपुर 6 लेन पुल का काम जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राज्य में लोक निजी भागीदारी PPP मोड के तहत मेडिकल कॉलेजों का विकास किया जाएगा। इसके तहत नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे, साथ ही चिन्हित मेडिकल कॉलेज विकसित भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कही। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को

स्थानीय स्तर पर ही मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा सुनिश्चित कराने और मरीजों के अनावश्यक रेफर किए जाने पर यथासंभव रोक लगाने के निर्देश दिए। राज्य के महाविद्यालयों का देश के शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों से करार होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च शिक्षा विभाग को इस संबंध में निर्देश दिया है। उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने कहा कि इस पहल से दूसरे राज्यों से भी छात्र बिहार आकर

की समीक्षा बैठक के दौरान श्री चौधरी ने कहा कि इस पहल से दूसरे राज्यों से भी छात्र बिहार आकर शिक्षा हासिल करने के लिए उत्सुक होंगे। उन्होंने 1 जुलाई से उन 211 प्रखंडों में स्नातक की पढ़ाई शुरू कराने का निर्देश दिया जहां पहले से डिग्री कॉलेज नहीं है। मुख्यमंत्री ने नए महाविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों की नियुक्ति के लिए कमेटी का शीघ्र गठन कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर अब राज्य के नगर निकायों में भी सहयोग शिविर की शुरुआत होगी। इसमें लोगों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर शिविर की तैयारी का निर्देश दिया है। पंचायतों की तरह नगर निकाय क्षेत्रों में भी प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लगेंगे। केंद्र सरकार ने किउल झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना 961 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से पूरी होगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह परियोजना बिहार में रेल अवसंरचना को नई मजबूती प्रदान करेगी। उन्होंने इस रेल लाइन को स्वीकृति देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया है। पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट के रनवे का विस्तार होगा। नई दिल्ली में परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी अस्थायी संसदीय समिति और केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू के साथ बैठक में इस पर सहमति बनी। समिति के अध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि बैठक में बिहार के विभिन्न हवाई अड्डों से जुड़े मुद्दों की विस्तृत समीक्षा की गई। श्री झा ने बताया कि राजगीर में हवाई अड्डे के निर्माण को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। सोनपुर रेल मंडल की मंडल संसदीय समिति की बैठक हाजीपुर में संपन्न हुई। सारण के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी, वैशाली सांसद मीना देवी, कटिहार के सांसद तारिक अनवर और खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा शामिल हुए। बैठक में रेलवे से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्य सरकार ने फिजूल खर्ची रोकने और ऊर्जा संरक्षण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के अधिकारी अगले 6 महीने तक सरकारी खर्चे पर विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत द्वारा जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि अब राज्य और जिला स्तरीय बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी, साथ ही जिला स्तरीय समीक्षात्मक और समन्वय बैठकों का आयोजन भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ही करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि विभागीय स्तर पर अधिकारियों के लिए कार पुलिंग व्यवस्था को लागू किया जाए। यह व्यवस्था राज्य स्तर के साथ साथ जिलों में भी लागू की जाएगी। राज्य सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इबोला वायरस के बढ़ रहे प्रसार को देखते हुए मानक संचालन प्रक्रिया SOP जारी किया है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी SOP में विदेश यात्रा से आने वाले लोगों की निगरानी बढ़ाने, एयरपोर्ट के पास क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इबोला वायरस से पीड़ित मरीजों का तुरंत इलाज शुरू करने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों, सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाने को कहा गया है। केंद्र सरकार की पहल ज्ञान भारतम मिशन के तहत चल रहे राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वे में बिहार देश भर में पहले स्थान पर पहुंच गया है। देश भर में अब तक हुए 5,500 सर्वे में से बिहार में 1,000 सर्वे कार्य पूरा हुआ है। वहीं राज्य में अब तक 8 लाख से अधिक पांडुलिपियों की पहचान की गई है। पांडुलिपियों की पहचान में बिहार देश में 5वें स्थान पर है। राज्य के कला संस्कृति मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सर्वे का काम 15 जून तक चलेगा। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1983 में मुजफ्फरपुर में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय दोनों ने सही कहा कि इस मामले में किसी भी तरह की सहानुभूति या नरमी की गुंजाइश नहीं।

यह घटना मार्च 1983 में मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में हुई थी, जहां कम से कम 58 लोगों की भीड़ ने चंद्रशेखर चौधरी के घर में आग लगा दी थी, जिसके बाद 5 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और कई लोग घायल हुए थे। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @news_patna को फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पटना में जनजातीय करिमा उत्सव के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के लाभुकों के साथ संवाद करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन भी मौजूद रहेंगे। पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय और खगड़िया समेत राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे आवागमन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई है। ओलावृष्टि के कारण खेतों में लगी फसल के साथ साथ आम और लीची की फसल को व्यापक नुकसान हुआ है। इधर मौसम विभाग ने आज भी राज्य के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर बारिश का अलर्ट जारी किया है।
2: राज्य के उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के जिलों अरिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा एवं सुपौल जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 40 से 50 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के मधेपुरा एवं पूर्णिया जिलों में मेज गर्जन वज्रपात तथा भारी वर्षा के साथ तेज हवा 50 से 60 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
1: इधर राज्य के दक्षिणी हिस्सों के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 43.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। डेहरी का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पटना का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गया एयरपोर्ट पर कल सेना के एक हेलीकॉप्टर की आपात लैंडिंग कराई गई। तकनीकी खराबी का संकेत मिलने के बाद पायलटों ने आपात लैंडिंग करवाई। हेलीकॉप्टर में सवार सभी 6 सैन्यकर्मी सुरक्षित हैं। सेना का हेलीकॉप्टर रांची से बीटा एयरबेस आ रहा था। मरम्मत के बाद हेलीकॉप्टर रांची के लिए रवाना हो गया। पटना के IGIMS में आयुष्मान घोटाले की जांच के लिए पुलिस और संस्थान की ओर से 2 अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है। IGIMS ने 6 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो घोटाले के हर बिंदु पर जांच करेगी। इधर पुलिस ने इस मामले के आरोपी 4 संविदा कर्मियों की गिरफ्तारी के लिए SIT गठित की है। औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड अंतर्गत पटाने पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण पुल पर भारी वाहनों का परिचालन तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है। राष्ट्रीय उच्च पथ के औरंगाबाद प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता तुलसी प्रसाद ने बताया कि भारी वाहनों के परिचालन के लिए वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की गई है।
3: इसका वैकल्पिक मार्ग है, जो झारखंड से गाड़ी आएगी वो तितरिया होते हुए नबीनगर से होते हुए बारून चल जाएगी, और दूसरा रूट है जो हल्की गाड़ी और आएगी तो अम्बा होते हुए नबीनगर से बारून चली जाएगी। अभी चूंकि सब प्राकरण तैयार किया जा रहा है, प्राकरण प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लगता है। प्राकरण होते ही इसे टेंडर हो जाएगा, उसका 2 महीना का दिया गया, 2 महीना में कम्प्लीट हो जाना चाहिए।
1: पटना के ज्ञान भवन में युवा

0: रोजगार एवं कौशल विकास विभाग की ओर से आयोजित 3 दिवसीय रोजगार मेले के दूसरे दिन कल 3,659 युवाओं का चयन हुआ। इधर अररिया में आयोजित रोजगार मेले में 42 अभ्यर्थियों को विभिन्न कंपनियों ने नियुक्ति पत्र सौंपा। पटना के मुसल्लापुर थाना क्षेत्र के सैदपुर नहर रोड स्थित नंदनगर कॉलोनी के पास से पुलिस ने 3 छात्रों को मादक पदार्थ स्मैक और हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। रोहतास जिले के सासाराम थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक सीआरपीएफ जवान से 5 लाख रुपए लूट लिए। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल पहले क्वालिफायर मैच में गुजरात टाइटंस को 92 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 255 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात टाइटंस 165 रन पर ही सिमट गई। प्रतियोगिता में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राज्य के नगर निकायों में भी लगेंगे सहयोग शिविर। दैनिक जागरण लिखता है, विधान परिषद की 10 रिक्त सीटों के लिए 18 जून को मतदान। प्रभात खबर की सुर्खी है, केंद्र सरकार ने जनसांख्यिकी परिवर्तन पर गठित की उच्च स्तरीय समिति। दैनिक भास्कर ने लिखा है, फिजूल खर्ची रोकने और ईंधन बिजली की बचत के लिए बिहार सरकार ने 6 फरमान जारी किए। राष्ट्रीय सागर के शब्द हैं, दिल्ली से बिहार आ रही बस पलटी, बिहार के दारोगा और कैदी समेत 6 की मौत। आज अखबार लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दिया निर्देश, पीपीपी मॉडल पर विकसित होंगे मेडिकल कॉलेज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी जिला मुख्यालयों को फोरलेन से जोड़ने का दिया निर्देश। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर अब नगर निकायों में भी आयोजित होंगे सहयोग शिविर। केंद्र सरकार ने किहुल झाझा के बीच तीसरी रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दी। और पूर्णिया, मधेपुरा, मधुबनी, बेगूसराय और खगड़िया समेत राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बिहार सरकार लेकर आई है आपकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए एक नई पहल, सहयोग शिविर। इसके तहत प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को पंचायत सरकार भवन अथवा निकटवर्ती सार्वजनिक स्थल पर सहयोग शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
2: सहयोग पोर्टल sahyog.bihar.gov.in पर कभी भी ऑनलाइन परिवाद दर्ज कर सकते हैं। परिवाद दर्ज करने की तिथि से 30 दिनों के अंदर समाधान सुनिश्चित कर सहयोग पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
1: साथ ही सहयोग शिविर में संबंधित जानकारी हेतु निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1100 पर सुबह 8 से शाम 8 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। सहयोग से सबका सम्मान, जीवन आसान।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
6: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
7: और इस गीत के बाद
8: छाया गीत।

completed. There was 7 years. It has undergone 9 revisions.

0: हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: सामिन जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में इस गज़ल को आपने अभी समाप्त किया। और आज 27 मई की तारीख है। हम तमाम लोग जानते हैं कि आज के दिन हमारे मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की योम वफ़ात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म और तहरीक आज़ादी के एक अजीम रहनुमा थे। वो 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में पैदा हुए थे और बच्चों से उनकी जो बेपनाह मोहब्बत थी उसकी वजह से हम तमाम लोग उन्हें चाचा नेहरू के लक़ब से भी नवाजते हैं। और उनके योम विलादत को इसीलिए चिल्ड्रेंस डे यानी योम अतफाल के तौर पे भी मनाया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक मुअज्ज़ज़ कश्मीरी पंडित ख़ानदान में पैदा हुए थे और उनके वालिद का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था, जो अपने वक्त के मशहूर बैरिस्टर थे। पंडित नेहरू आला तालीम के लिए बरतानिया चले गए थे, जहाँ से वो 1912 में वापस हिंदुस्तान आए आला तालीम की डिग्री हासिल करने के बाद। और फिर गांधी जी से मुलाकात के बाद बराह रास्त सियासत में भी शामिल हो गए। कांग्रेस की सदारत भी उन्हें मिली और 1929 में लाहौर के जो सेशन थे उसमें सबसे पहले उन्होंने पूर्ण स्वराज यानी मुकम्मल आज़ादी का जो नारा था उसे बुलंद किया था। आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान उन्हें मुतअद्दिद बार जेल की भी सोबत बर्दाश्त करनी पड़ी थी और ऐसे हालत में उन्होंने तकरीबन अपने ज़िंदगी के 9 साल जेल में गुजारे थे। हम तमाम लोग उन्हें इसके अलावा उनकी जो अपनी बेटी को लिखे हुए खत थे, ए लेटर टू हिज डॉटर, इसके ज़रिए से हम उनके ज़िंदगी के हालात के साथ साथ हिंदुस्तान की मुकम्मल तस्वीर भी देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो किताबें लिखी अदबी तौर पर उसमें उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री और लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर काफ़ी अहम है। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनका दिल्ली में इंतकाल हुआ था और उनकी आखिरी आरामगाह शांतिवन में वो सुपुर्द खाक किए गए। आइए सामीन, इस गुफ्तगू के बाद हम अपने अगले पेशकश की जानिब मुतवज्जे होते हैं। लीजिए, आपके समातों के हवाले है ये मकाला, जिसका उनवान है उर्दू गज़ल गोई में जदीदियत के असरात। मकाला निगार डॉक्टर जरनिगार यास्मीन।
1: उर्दू गज़ल गोई में जदीदियत के असरात। जदीदियत के अहम रुझानात क्या हैं, इस तहरीक का आगाज़ कब हुआ और क्यों हुआ? इस तरह की तमहीदी गुफ्तगु के बग़ैर अपनी इस बात का आगाज़ करना बेहतर है, ताकि उर्दू गज़ल पर इस तहरीक के असरात का एक अजमाली जाय

आमीन। चित्रा सिंह को अभी आप समाप्त कर रहे थे, कलाम था मिर्ज़ा गालिब का। और अब लीजिए अगली गज़ल जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, वो शिशिर पारखी की आवाज़ में है, आपकी समातों के हवाले।

0: अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। अगला कार्यक्रम फिल्म संगीत का रसमंजरी, इस विराम के बाद।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज।

0: नमक।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: फिल्म संगीत के कार्यक्रम रसमंजरी में आप सभी का बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं जया। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए कार्यक्रम शुरू करते हैं इस गीत के साथ।

अपनापन इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे सुलक्षणा पंडित और किशोर कुमार की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बादल से।

बादल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत के लिए आवाज़ें दी थी सपना अवस्थी, जसपिंदर नरुला, अनु मलिक और साथियों ने। बोल समीर के थे, संगीत अनु मलिक का था। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना से।

आशा भोसले की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे फिल्म गौतम गोविंदा से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने धुन बनाई थी और बोल आनंद बख्शी के थे।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म लावारिस से। आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ है, कल्याण जी आनंद जी की धुन, बोल अनजान की।

0: सावन को आने दो, इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आनंद कुमार की आवाज में। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसमंजरी संपन्न हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब सुनिए परिवार कल्याण का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार, इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर आकांक्षा तृप्ति।
1: नमस्कार श्रोताओं, परिवार कल्याण में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं डॉक्टर आकांक्षा तृप्ति, जो कि MBBS MD हैं और शिशु एवं नवजात रोग विशेषज्ञ हैं। आज का हमारा विषय है माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार। तो सबसे पहले डॉक्टर साहिबा, हम जानना चाहेंगे कि जब स्तनपान कराया जाता है तो वो कब कराना चाहिए? शिशु के जन्म होने के तुरंत बाद होना चाहिए या कुछ घंटों पश्चात होना चाहिए? कब तक ये जारी रहना चाहिए, तो इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए।
2: जी सर, एक्चुअली जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माँ का स्तनपान शुरू करा देना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन सेक्शन से हुआ बच्चा हो। हम एडवाइस करते हैं कि आप जितनी जल्दी कोशिश करें बच्चे को स्तनपान शुरू कराएं, क्योंकि जो माँ का पहला दूध निकलता है, जिसको कि हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो हल्का पीला पदार्थ होता है, लिक्विडी होता है, थोड़ा गीला गीला, उसको पिलाने से बच्चे का जो इनिशियल हम देखा गया है आगे की साइंटिफिक स्टडीज़ जो की गई, उससे पता चला है कि प्रतिरोधक क्षमता बहुत गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्तनपान ज़रूरी है। आधे घंटे से एक घंटे के अंदर हम सजेस्ट करते हैं कि ये शुरू कर दिया जाए।
1: कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चे का जब जन्म होता है तो तुरंत दूध का स्राव नहीं होता है,
2: जी
1: कुछ घंटे लगते हैं, या होता भी है तो बहुत धीमी गति से होता है। तो इसमें क्या होता है कि वो पैकेट का जो दूध होता है अथवा बाहर का दूध होता है वो बच्चों को पिलाते हैं, तो क्या इससे बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?
2: देखिए, माँ का दूध तो जैसे बनता है हम उस तरह से बच्चे को उसी हिसाब से पिलाया जाता है। फॉर्मूला फीड हम कोशिश करते हैं, अवॉइड करते हैं कि बच्चे को ना दिया जाए, लेकिन अगर बच्चे का ग्लूकोज लेवल नापने के बाद कम होता है या ऐसी कुछ उनमें समस्याएं देखते हैं तो हम फॉर्मूला फीड पे शिफ्ट होते हैं, लेकिन वो अवॉइड करना चाहिए। अगर माँ का दूध नहीं बन रहा है तो बच्चे को छाती से लगाने से या बच्चे के रोने से, प्रकृति ने इस तरीके का बनाया है, संरचना ऐसी की है कि माँ का खुद ब खुद दूध का स्त्राव होने लगता है। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि हमें फॉर्मूला फीड पे शिफ्ट होना पड़े।
1: जी, तो कब तक ये जारी रखा जा सकता है? सामान्यतः बोला जाता है कि 6 महीने तक तो केवल माँ का ही दूध चलना चाहिए,
2: जी
1: मगर शहरों में ये समस्याएं देखने को मिलती हैं कि माएँ उतना देर तक दूध नहीं पिलाती हैं और सामान्य भोजन की तरफ तुरंत आ जाती हैं।
2: जी मैं ये कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि इनिशियल 6 महीने जो बच्चों के जन्म का होता है उस दौरान ब्रेन डेवलपमेंट बहुत सबसे तेज़ी से होता है, विकास जो दिमागी विकास है वो काफ़ी जल्दी होता है, और माँ का दूध अपने हिसाब से बढ़ते उम्र के साथ अपनी जो कंपोजिशन है वो चेंज करता रहता है। जैसे प्री मच्योर बेबीज हुए तो माँ का दूध उस हिसाब से चेंज होगा, उसमें ज़्यादा फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिंस, मिनरल्स ये सब होते हैं, आयरन। इसलिए इनफैक्ट यहाँ तक जो बच्चे पूरी तरह से स्तनपान पर निर्भर हैं उनको तो मल्टीविटामिंस हम एडवाइस भी नहीं करते हैं, इतना संपूर्ण है, पूर्ण आहार है। तो इनिशियल 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध बच्चे के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट फूड है, और आप जब 1 साल तक 1.5 साल तक आप बच्चे को धीरे धीरे करके वीनिंग करके आप अपने घर में जो भी आपका खाना बनता है उसको गीला आहार बना के माँ के दूध के साथ उसको धीरे धीरे करके आप शिफ्ट कर सकते हैं, बट ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के बाद, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध।
1: जी, जैसा कि आपने बताया कि माँ का दूध संपूर्ण आहार है बच्चों के लिए, तो बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास

0: के लिए माँ का दूध किस प्रकार से काम करता है और किस तरीके से विकास होता है बच्चों का?
1: जी, इसमें काफ़ी सारी बातें हैं। जैसे कुछ स्टडीज़ में देखा गया है कि जिन बच्चों को ज़्यादा दिन तक दूध पिलाया गया या सिर्फ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तक रखा गया, वो बच्चे आगे चल के काफ़ी होशियार और बुद्धिमान निकले हैं। उनकी आईक्यू भी बाकी बच्चों की तुलना में ज़्यादा पाई गई है। उनमें एलर्जिक जो बीमारियां होती हैं, जैसे कि एक्जिमा हो गए, एस्थमा हो गए, या फिर डायरल डिजीजेज हो गए, या जो पेट संबंधी बीमारियां हैं, वो कम पाई जाती हैं। इनफैक्ट काफ़ी सारे जो दांतों की समस्या है, डेंटल केरीज वगैरह, या स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, चमड़े की बीमारियां, वो भी कम पाई जाती हैं। तो इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक कम से कम दूध पिलाएं और सिर्फ माँ का दूध पिलाएं।
0: तो मैडम, अभी जैसा कि हम अभी अभी कोविड काल से गुजरे हैं,
1: जी
0: तो कोविड काल में बहुत सारी गर्भवती महिलाओं को तो खैर मना था, मगर महिलाओं को दिया गया था कोविड वैक्सीन। तो जब वो बाद में गर्भवती हुए हैं, तो बच्चों पर क्या असर पड़ा होगा उस कोविड वैक्सीन का? बहुत सारे स्टडीज ऐसे आए होंगे, इस पर
1: जी
0: थोड़ा बताइएगा।
1: जी कोविड वैक्सीन जिन भी महिलाओं को दिया गया था, गर्भवती नहीं, महिलाओं को दिया गया था, वो आगे चल के जब उन्होंने गर्भ धारण किया, उनके जो बच्चे हुए, चूंकि माताओं का वैक्सीनेशन पहले हो चुका था, तो जो बॉडी में एंटीबॉडीज बनी वो स्तनपान के साथ साथ बच्चों में जब आई, तो उससे बच्चों का कोविड के प्रति इम्यूनिटी ऑलरेडी डेवलप हो चुका था। इस वजह से उन बच्चों में देखा गया कि कोविड की जो इन्फेक्शन थी वो दर काफ़ी कम पाई गई थी, कंपेयर टू जो अगर आप उनकी तुलना करें उन बच्चों से जो कि दूध ना माँ का दूध नहीं पिए गए थे। इसलिए कोविड इन्फेक्शन रेट उनमें काफ़ी कम थी।
0: क्या ये बच्चों को माएं जो सामान्यतः दूध नहीं पिलाती हैं, तो क्या बच्चों में पेट के संबंधी समस्याएं अथवा मानसिक विकार कुछ वैसे भी उत्पन्न हो सकते हैं क्या?
1: देखिए, स्टडीज़ जो की गई हैं वो ये बताती हैं कि इनका बचाव कितने हद तक है, मतलब कि जो आप इन्फेक्शन रेट कह सकते हैं कि बीमारियों की जो इन्फेक्शन रेट होती है, कि एस्थमा, एलर्जी, कुछ कुछ बचपन के कैंसर जैसे कि लुकीमियाज, ये सारे के सारे कम होते हैं उन बच्चों में जिन्होंने स्तनपान किया हो और थोड़े लंबे समय तक किया हो, 6 महीने के बाद भी आप कह सकते हैं। ये सारी जो समस्याएं, एक्जिमा और डायरिया वगैरह जैसा कि आपने कहा, ये सारे उन बच्चों में थोड़ा ज्यादा है जिन्होंने स्तनपान नहीं किया है माँ का।
0: शहरों में आजकल जो जीवन शैली बनी है, उसमें माएं अपने फिगर पे ज़्यादा ध्यान देती हैं और चाहती हैं कि बच्चों को कुछ ही दिन तक दूध चलाते हैं और फिर नॉर्मल भोजन के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: जी, ये बिल्कुल गलत धारणा है कि स्तनपान कराने से अगर आप अपने बच्चे को दूध पिला रहे हो तो आपके फिगर पे कोई असर पड़ेगा। इनफैक्ट, अगर आप अपने बच्चों को दूध पिला रहे हो तो आपका हार्मोन जो है वो कंट्रोल में रहता है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होने का चांसेस कम रहता है माताओं में, प्लस उनका अपने बच्चों से रैपोर्ट बनेगा, जिसको हम कहते हैं कि बच्चे और माँ के दो आत्माओं के बीच में एक मिलन होता
0: भावनात्मक
1: है,
0: लगाव जो
1: भावनात्मक
0: होता
1: लगाव होता है। जी बिल्कुल। तो उस तरीके से ये महिलाओं, जो नई नई माताओं के लिए सिर्फ और सिर्फ फायदेमंद है, इसका नुकसान कोई नहीं है। इसलिए स्तनपान मेरे हिसाब से नई माताओं को बिल्कुल कराना चाहिए और पूरे ड्यूरेशन 6 महीने का जो हम सजेस्ट करते हैं उसमें कराना चाहिए। माँ और बच्चे दोनों के लिए लाभकारी है लंबे समय के लिए।
0: है। स्तनपान के साथ साथ कितना बार यह भी देखा जाता है कि गाय का दूध भी बच्चों को दिया जाता है, तो वो कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए? दोनों का क्या होना चाहिए अंतर?
1: 6 महीने तक तो माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आपके डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, जैसे कि विटामिन D3 वगैरह देते हैं, तो वो आप पिला सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं देना है। 6 महीने के बाद घर में जो भी भोजन बनता है, जैसे कि केले हो गए, दाल हो गई, अंडे हो गए, ये सब आप मैश करके यानी बिल्कुल महीन करके उसको धीरे धीरे बच्चे के खाने में शामिल करें। माँ का दूध कंटिन्यू करें, उसकी फ्रिक्वेंसी यानी जो आप बार बार उसको जितनी बार पिलाती हैं वो कम करें, और बच्चे को घर के आहार पे रखें। कुछ भी फैंसी खाना देने की जरूरत नहीं है कि आप बाहर से बहुत महंगी चीजें लेके आ रहे हैं, जो घर में बनती हैं सुपाच्य चीजें वो आप उनको दें और महीन स्थिति में पीस के दें, और धीरे धीरे करके उनको घर के आहार पे, घर में बने हुए आहार पे शिफ्ट करें, और धीरे धीरे करके माँ का जो दूध है वो कम करते जाएं।
0: जी, डॉक्टर आकांक्षा तृप्ति, आप हमारे स्टूडियो आए और बच्चों को माँ का दूध किस तरीके से लाभकारी होता है, इस पर आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: अभी आप सुन रहे थे परिवार कल्याण का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में माँ का दूध शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर आकांक्षा तृप्ति। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। आइए अब सुनिए, आओ साथ चलें।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है।

श्रोता, जब हम ज्ञान, दर्शन, चिंतन और बौद्धिक चेतना की बात करते हैं तो भारत के नक्शे पर एक ऐसा प्रदेश उभर कर आता है जिसे न केवल देश को बल्कि पूरी दुनिया को सोचना,

बिहार, यह सिर्फ दो अक्षरों का नाम नहीं या फिर एक राज्य की भौगोलिक सीमा नहीं है। यह नाम इतिहास के पन्नों पर ज्ञान की स्याही से लिखा गया एक अमर दस्तावेज है। बिहार शब्द की उत्पत्ति ही विहार से हुई है, जिसका अर्थ होता है भ्रमण करना, रुकना और ध्यान लगाना। यह बौद्ध भिक्षुओं की वह तपोभूमि रही है जहां विचारों को पंख मिले और इंसान की बुद्धि ने बुद्धत्व का मार्ग खोजा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे बिहार की उसी महान बौद्धिक विरासत की, जिसने सदियों तक दुनिया का मार्गदर्शन किया और आज भी हमारी चेतना का हिस्सा बनी हुई है।

श्रोता, बिहार की बौद्धिक समृद्धि का सबसे पहला और मजबूत स्तंभ है यहाँ का आध्यात्मिक दर्शन। ये वो भूमि है जहाँ विचारों की स्वतंत्रता को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। आज से लगभग 2500 साल पहले जब दुनिया रूढ़ियों में उलझी जकड़ी हुई थी, तब इसी बिहार की धरती पर दो महापुरुषों का अवतरण हुआ जिन्होंने दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दिया। महात्मा बुद्ध, जो ज्ञान की खोज में कपिलवस्तु से निकले और उन्हें परम ज्ञान यानी बोधत्व की प्राप्ति कहाँ हुई? आप जानते हैं, बिहार के ही गया जी में, यानी बोध गया में। निरंजना नदी के तट पर पीपल के पेड़ के नीचे जब सिद्धार्थ को ज्ञान मिला तो वो बुद्ध कहलाए। यह मानो बुद्धि और विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति थी। बुद्ध ने कहा, आप दीपो भव, यानी अपना दीपक स्वयं बनो। यह बौद्धिक आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा संदेश था।

ठीक इसी दौर में इसी भूमि पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का संदेश भी गूंजा। वैशाली की पावन धरती पर जन्मे महावीर ने स्यादवाद और अनिकांतवाद का दर्शन दिया। अनिकांतवाद का सीधा संबंध हमारी बौद्धिक सहिष्णुता से है। यह दर्शन सिखाता है किसी भी सत्य के कई पहलू हो सकते हैं, इसलिए हमें दूसरों के विचारों का भी सम्मान करना चाहिए। सोचिए, आज की आधुनिक दुनिया जिसे टॉलरेंस या सहिष्णुता कहती हैं, उसकी नींव सदियों पहले इसी बिहार की बौद्धिक चेतना ने रख दी थी।

और केवल यही नहीं, जनकपुर और मिथिला का क्षेत्र याद कीजिए, राजा जनक की सभा जहां शास्त्रार्थ की परंपरा थी, जहां याज्ञवल्क्य और गार्गी जैसे मनीषी उठते थे। गार्गी जो नारी चेतना और अगाध विद्वता का प्रतीक बनी, जिन्होंने भरे दरबार में उस समय के सबसे बड़े विद्वान को चुनौती दी थी। यह प्रमाण है कि बिहार की बौद्धिक समृद्धि में महिलाओं की भागीदारी उतनी ही प्राचीन है जितना कि हमारा इतिहास।

श्रोता, बिहार की बौद्धिक समृद्धि का जिक्र तब तक अधूरा रहेगा जब तक हम दुनिया के सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की बात ना कर लें। एक दौर था जब दुनिया के कोने कोने से, चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और मध्य एशिया से लोग यहाँ पढ़ने आते थे, और भारत में ज्ञान का वह महाकेंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय। 5वीं शताब्दी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय केवल एक इमारत भर नहीं था, वह ज्ञान का एक जीवंत समंदर था। 9 मंजिला पुस्तकालय जिसका नाम धर्मगंज था और जिसमें रत्नोदधि, रत्न सागर और रत्न रंजक जैसे खंड थे। कहते हैं कि जब इस पुस्तकालय में आग लगी तो किताबें महीनों तक जलती रहीं। सोचिए कितना अगाध ज्ञान संचित रहा होगा वहां। नालंदा की विशेषता क्या थी? वहां की प्रवेश परीक्षा इतनी कठिन थी कि द्वारपाल, यानी जिसे आज हम गेटकीपर कहते हैं, वे ही छात्रों की परीक्षा ले लेता था, और केवल तीक्ष्ण बुद्धि वाले छात्र ही अंदर प्रवेश पा सकते थे। ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्रियों ने अपनी डायरी में नालंदा के इस बौद्धिक स्तर की जो तारीफ की है, उसे पढ़कर आज भी हर बिहारी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। और केवल नालंदा ही क्यों, भागलपुर के पास स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना धर्मपाल ने की थी, वज्रयान, बौद्ध धर्म और दर्शन का यह बहुत बड़ा केंद्र था। इसके अलावा उदंतपुरी और जगदल जैसे शिक्षा केंद्र भी इसी बिहार की मिट्टी पर फले फूले। ये विश्वविद्यालय इन बातों के सबूत हैं कि बिहार केवल खेती किसानी का प्रदेश नहीं रहा है, यह दुनिया का बौद्धिक पावर हाउस था।

और आइए अब बात करते हैं विज्ञान और गणित की। जब हम शून्य यानी जीरो की बात करते हैं तो पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है, और भारत में इसी शून्य को देने वाले गणित और खगोल विज्ञान के महानायक आर्यभट्ट की कर भूमि भी रही है। पटना के पास तारीगना में उनकी वेधशाला थी, जहां बैठकर उन्होंने तारों और नक्षत्रों की गणना की थी। उन्होंने बिना किसी आधुनिक टेलीस्कोप के यह बता दिया था कि पृथ्वी गोल है और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यह बिहार की वैज्ञानिक सोच की पराकाष्ठा थी। और अब चलते हैं राजनीति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो पाटलिपुत्र की धरती ने चाणक्य यानी कौटिल्य जैसा मस्तिष्क पैदा किया। चाणक्य का अर्थशास्त्र आज भी बड़े बड़े बिजनेस स्कूलों और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए एक मार्गदर्शिका है। एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त को उठाकर सम्राट बना देना, एक अखंड भारत की परिकल्पना को साकार करना, ये चाणक्य की बौद्धिक कूटनीति का ही परिणाम था।

0: और थोड़ी बात कर लेते हैं साहित्य के। साहित्य के क्षेत्र में भी बिहार का योगदान अद्वितीय रहा है। आधुनिक काल में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की लेखनी को कौन भूल सकता है भला। कथा शिल्पी फणीश्वरनाथ रेणु, जिन्होंने मैला आंचल लिखकर हिंदी साहित्य की आंचलिकता को एक नई दिशा दी। राम वृक्ष बेनीपुरे, बाबा नागार्जुन और उर्दू अदब में बिस्मिल अजीमाबादी, जिनका सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, आज भी रगों में देशभक्ति का लहू दौड़ा देता है। यह सब बिहार की उसी बौद्धिक उर्वरता की ही देन है। श्रोता, इतिहास गवाह है कि बिहार ने जब जब अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन किया है, दुनिया में एक बड़ा परिवर्तन आया है। चाहे वह प्राचीन काल का ज्ञान हो, मध्यकाल की सूफी संत परंपरा हो, या आधुनिक काल में महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह, जहां बिहार की जनता ने गांधी जी को महात्मा बनाने की वैचारिक और नैतिक जमीन तैयार करके दी। आज बदलते हुए दौर में जब हम 21वीं सदी के तकनीक युग में जी रहे हैं, तब भी बिहार के युवाओं का बौद्धिक कौशल देश विदेश में अपनी चमक बिखेर रहा है। देश के सबसे कठिन प्रशासनिक परीक्षाओं यूपीएससी से लेकर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंधन के क्षेत्रों तक बिहार के मेधावी छात्र अपनी बौद्धिक विरासत का परचम लहरा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अपने इस गौरवशाली अतीत को सिर्फ याद ना करें, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर एक बार फिर से बिहार को ज्ञान, शिक्षा और अनुसंधान का वैश्विक केंद्र बनाने का संकल्प लें। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा कि बिहार की मिट्टी में एक अजीब सी कशिश और बौद्धिक खुशबू है। यह वो भूमि है जो विपरीत परिस्थितियों में भी निखरना जानती है। आज के आओ साथ चले कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था मोहम्मद शाहिद सबा ने। अब मुझे यानी संजय किशोर को और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता मोहम्मद शाहिद सबा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे आओ साथ चलें। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी पटना से। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे ऑन एयर फरमाइश का। यह कार्यक्रम आपकी पसंद के गीतों पर आधारित होता है। कार्यक्रम लेकर अभी हाजिर होते हैं।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: एक जमाने से कहा

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
3: और इस गीत के बाद
4: छाया गीत
5: मिले।

This is All India Radio. The news read by Anuja Kumar.

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।

0: ऑन एयर फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका रेडियो दोस्त संजय किशोर आपके कॉल्स लेने के लिए हाजिर हूँ। आपके कॉल्स तो आ रहे हैं, लेते हैं आपका कॉल। ऑन एयर फरमाइश।
1: हेलो,
0: नमस्कार।
1: हाँ नमस्ते सर
0: जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं बताइए।
1: हम नीलू बात कर रहे हैं, मधुबनी प्रखंड खुटौना से। बहुत अरसे के बाद कॉल किए हैं हम, बहुत पहले कॉल किया था।
0: बहुत पहले? बहुत पहले यानी सालों पहले?
1: सालों पहले बीच में, तो मुझे इतना अरसा बीच में निकला, शादी हुई, बच्चे हुए, घर द्वार सब उलझ के रह गए
0: और हमें भूल गए।
1: नहीं सर, भूले नहीं, दोबारा कॉल किए ना।
0: बहुत अच्छा लगा इतने लंबे अंतराल के बाद आपने याद रखा और कॉल किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए बताइए कितने दिनों में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ आपके लाइफ में।
1: डेवलपमेंट क्या होगा सर, प्राइवेट जॉब करते थे वो छोड़ दिए, शादी हो गई, अपना नया फैमिली, नई दुनिया लेकर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए।
0: शहर बदल गया या उसी शहर में है?
1: शहर बदल गया, सीतामढ़ी शादी हुई है मेरी।
0: अच्छा चलिए, मधुबनी से सीतामढ़ी चले गए।
1: मधुबनी से सीतामढ़ी चले गए।
0: ठीक है ठीक है, चलिए उत्तरी बिहार में रहे। तो ये बच्चे कितने हैं अभी आपके?
1: जी एक ही बेटी हुई अभी।
0: कितनी बड़ी है?
1: सिर्फ 4 महीने की।
0: ओह अच्छा, तो बहुत छोटी है अभी, अभी आप माँ बनी है। चलिए आपको बहुत सारी बधाई, छोटी सी प्यारी सी बच्ची आपकी गोद में आई, बहुत अच्छा। पूरे परिवार में किलकारी गूंजी होगी, बच्ची की खुशियां होंगी अभी। तो फिर अब क्या क्या हो रहा है?
1: अब

0: अभी तो कुछ दिन घूमने फिरने मायके आए हुए हैं, और हम अपने जनरेशन में सबसे बड़े औलाद होने की वजह से ही पहली बच्ची है।
1: अच्छा, तो इसको भी वही प्यार मिल रहा होगा, ये बल्कि ज्यादा मिल रहा होगा जो आपको मिला।
0: हाँ, क्योंकि इस जनरेशन की पहली औलाद है ये।
1: जी, तो सबके हाथों हाथ इधर उधर बच्चे की खुशियाँ बांट रहे होंगे पूरा परिवार मिलकर। बहुत अच्छा, समझ सकते हैं। तो चलिए, इसमें आप मजबूत होंगे, और मेरी शुभकामनाएं हैं कि बहुत सारी जिम्मेदारियां आप निभा रही होंगी और आगे भी निभाइएगा। ये बहुत अच्छा काम किया आपने, रेडियो सुन रही हैं और कॉल किया आपने। आपको क्या सुनने का मन है आज?
0: क्या सुनने का मन है? वो एक गाना था, बहुत मतलब कन्हैया कोई मुरली की तान सुना दे, मेरे तन मन में आग लगा दे, था ना?

0: प्रिय, किसी का मन ना तोड़ो, देखो सुनो जाने दो छोड़ो।
1: नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों रूठी है सुंदर नारी।
0: अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ।
1: जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले।
2: नारद जी।
1: नारायण।

0: नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई? मेरे योग्य है सेवा कोई?
1: भरे नहीं अभी खाओ पुराने।

0: फिर आए हो आग लगाने?
1: मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे परख लो जो ना मानो।
0: कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए।
1: अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी?
0: वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा। निस दिन देखूं जिनके सपने हो बैठूं वो प्रीतम अपने।
1: तुम नहीं समझे कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना, मोल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना।
0: बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी।
1: परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना?
0: वाह नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण मैं तोलूं।
1: नारायण नारायण।

0: कुछ धोखा है राम दुहाई, इतने भारी नहीं कन्हाई।
1: ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है।
0: मेरे पास जो था ले आई, दे दू मुझको कृष्ण कन्हाई।
1: दे दू लेके जरा सा सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल तुझको संसार में बेचू, दासों के बाजार में बेचू। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया।
2: भामा
0: स्वामी।
1: कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी की होगी नीलामी।
0: नीलामी

0: अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए।
1: भूल हुई मुझसे ये भारी, जाऊं कहां विरह की मारी।
0: रुक्मिणी से तुम बात ये पूछो, कैसे मिलेंगे नाथ ये पूछो।
1: रुक्मिणी मेरी भूल भुला दे, कोई जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामा मैं तुझ पे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। कौन कहाँ से बोल रहे हैं बताएं?
1: गुरुआ से बोल रहे हैं सर, गया जिला से।
0: क्या नाम हुआ आपका?
1: ललन चौधरी।
0: ललन चौधरी जी, स्वागत है आपका। क्या हालचाल है बताइए, क्या हो रहा है उधर?
1: हालचाल तो ठीक है सर। अभी तो सर 4 महीने ड्यूटी मिलता है नहर में, बाकी दिन बैठ जाते हैं सर।
0: तो 8 महीना फिर क्या करते हैं, फिर ऐसे कैसे चलता होगा?
1: 8 महीना सर रोजगार अपना करते हैं।
0: हाँ, यही कह रहे हैं कि 8 महीना अपना कुछ ना रोजगार तो होता होगा।
1: हाँ, नीरा वाला रोजगार है सर, नीरा के रोजगार।
0: अच्छा अच्छा, नीरा नीरा। अच्छा, उसमें कुछ सरकारी छूट और पैसे वगैरह कुछ मिलते हैं क्या आपको, या कहाँ उसको बेचते हैं?
1: हाँ सर, मिलता है।
0: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। तो आपका ये पुश्तैनी व्यवसाय है मेरा ख्याल है, और आप कर रहे हैं तो अच्छा है। उसमें आप लोग पारंगत होते हैं, पेड़ पर उतनी ऊंचाई पर आपके अलावा और कोई नहीं चढ़ पाएगा। तो ठीक है, इस रोजगार से आप जो कमाई कर रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा कुछ बदलाव लाना चाहिए। दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, कुछ कुछ और भी सोचिए कीजिए ताकि आपके परिवार को और बेहतर अवसर मिल सके। आज आपने फोन किया है, बताइए क्या सुनवाएं आपको?
1: हमारा सर, मेरा नाम है चमेली वाला, सुनवाइएगा सर।

0: नमस्कार, स्वागत करते हैं कार्यक्रम में।
1: जी नमस्कार सर, मैं करण कुमार बात कर रहा हूँ बेतिया से। ठीक
0: जी करण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या हाल चाल है बताएं।
1: है सर, अपना बताइए।
0: हम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो क्या कर रहे हैं इस वक्त।
1: हम बैठे हैं, गर्मी का मौसम बहुत है, बहुत ज्यादा से ज्यादा अब गर्मी पड़ रहा है।
0: हाँ तो ये तो अच्छी बात है, हमारी फसलें, हमारी जमीन, हमारे पेड़ और इस मौसम के जो फल मिलते हैं वो कैसे मिलेंगे गर्मी की वजह से ही, तो इसका तो मजा लेना चाहिए मेरा ख्याल है। जी
1: एक गाना सुनना है, मुन्ना भाई फिल्म का गाना है।
2: ए भाई, भाई बहुत खुश लग रहा है भाई, बात क्या है। ए भाई हुआ क्या, ए भाई हुआ क्या, ए भाई बोलना यार हुआ क्या।
3: काट चप वाले,
2: ए

0: भाई रिवर्स में क्या कुछ चोरी सुना है, स्टार्टिंग से सुना। अभी वो घुमाने के लिए किधर ले गया?
1: अरे किधर मत पूछ, ये पूछ किस में ले गया, किस में?
0: किस में भाई?
1: अरे किसिंग कार में यार।
0: ए भाई साइड कार सुना, कलाकार सुना, बेकार सुना, डकार भी सुना, किसिंग कार क्या होता है?
1: अरे जिसमें किस करते हैं यार।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
1: नमस्कार सर।
0: अपना नाम पता बताएं, कहां से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: सर बिहार के नादाव गांव से सर बोल रहे हैं। एक बार और कॉल किए थे सर, अनिल कुमार यादव
0: जी। यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपने बारे में कुछ हमें बताएं।
1: जी सर, हम यहाँ सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं सर। स्कूल पर एक स्कूल है, एक बक्सर स्टेशन से थोड़ा दूर पर 1.5 किलोमीटर। यहाँ पे सर ड्राइवर लोग जो है ना सर, जो दोस्त है, थोड़ा कॉल करिएगा, हमारा नाम भी लीजिएगा।
0: कहाँ पर
1: सर? यही पे है सर, स्कूल में है सर। तो स्कूल में ड्राइवर लोग रहते हैं, स्कूल वाली गाड़ी जो चलाते हैं।
0: हाँ हाँ,
1: वो लोग भी सुनते हैं, तो वो लोग बोले कि मेरा नाम भी थोड़ा हेलो फरमा, इसमें नाम लीजिएगा हम लोगों का भी।
0: अच्छा,
1: तो थोड़ा हम नाम ले लेते हैं उन लोगों का।
0: हाँ तो ठीक है, लेकिन उनको भी कहिएगा कि वो भी आपके मोबाइल से ही सही या अपने मोबाइल से कॉल करेंगे। और अभी उनका नाम ले सकते हैं, ले लीजिए और बताइए फिर।
1: कमलेश यादव, बर्केश यादव, मंटू, अजीत यादव, तूफानी, बहादुर और सुनील यादव, जो कि बनारस में रहते हैं, मेरे प्रिय दोस्त हैं सर। और मेरी पत्नी का नाम रूबी कुमारी, बच्चा अंकुश और सत्यम।
0: ये सब मिलकर क्या सुनना चाहते हैं?
1: मुझे तो भी मोहब्बत का सारा मिल गया होता है, यही गाना सुनवा दीजिएगा।

0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: हेलो, नमस्कार
0: जी।
1: नवादा जिला से बोल रहे हैं।
0: कौन बोल रहे हैं?
1: हम मोहम्मद अजीज बोल रहे हैं। हम बहुत दिनों से लगा रहे थे, फोन नहीं लग रहा था, आज कैसे कैसे हमारा कॉल लग गया।
0: आपके लगाने से ही लगा है कॉल? आपने प्रयास किया, लग गया, और अब हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए।
1: नहीं, सही का अच्छा लग रहा है हमको, बात करने में अच्छा लग रहा है। हम सर, हम विकलांग है।
0: अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं।
1: हम कुछ नहीं करते, हम घर पर बैठते रहते, दिन भर कार्यक्रम सुनते हैं, रात में भी सफाल सुनते हैं, और बहुत प्रोग्राम सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, 7:30 बजे समाचार सुनते थे, 7:45 बजे वाला समाचार सुनते हैं,

0: नमस्कार संजय जी।
1: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं, नाम पता बताएं।
0: जितना बहुत दिन पर फोन लगा है, आज बहुत दिन पर फोन लगा है, पहली बार का फोन लगा है सर।
1: जी जी, स्वागत है आपका, अपना परिचय दीजिए।
0: मेरा नाम रितेश कुमार का है, गंज विद्यापति मऊ बाजार विद्यापति नगर जिला समस्तीपुर से बोल रहे हैं। खुश रखने के लिए रेडियो सुनते हैं, गाना सुनते हैं, फिल्म उल्म सब सुनते रहते हैं।
1: जी जी जी, बहुत अच्छा।
0: हम गाना सुनना चाहते हैं, फिल्म भक्ति भक्ति वाला ही गीत हम सुनते हैं। भक्ति भगवान पर ही विश्वास रखते हैं, भगवान वाला ही गाना सुनना चाहते हैं। ये भक्ति गाना है, ये है जो सच पूछो जहाँ वहाँ था वहाँ संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ।

0: ऑन एयर फरमाइश।
1: सत्यनारायण मंडल लाखोटे से बोल रहे हैं
0: जी। मंडल जी स्वागत है आपका, क्या हाल चाल है?
1: ठीक है, समाचार बढ़िया है।
0: और क्या हो रहा है?
1: काम हो रहा है अभी, ऐसे बगीचा में बैठे हुए हैं यार। चार
0: काम कुछ नहीं हो रहा है अभी?
1: नहीं काम कुछ नहीं, हमको सोनमा के पिंजरा में बंद भेजे। हाय राम ये गाना जरा सुना दीजिएगा।

0: हेलो सर।
1: जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में।
0: नमस्ते सर।
1: बताएं कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
0: जी सर, मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं समस्तीपुर से बोल रहा हूँ।
1: जी सोनू कुमार जी, कैसे हैं आप?
0: जी हम अच्छे हैं सर, आपसे पहले भी बात हो चुका है।
1: जी
0: सर आपसे बात करके अच्छा लगा, बहुत अच्छा।
1: जी, तो बताइए अपने बारे में, क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या आगे की योजना है, बताइए।
0: डर लग रहा है बोलने में।
1: डरने की क्या बात है, आप पहले भी बातचीत कर चुके हैं, बताइए क्या कर रहे हैं, कम से कम ये तो हम जान लें आपकी।
0: कुछ नहीं सर, बस ठंडी ठंडी हवा ले रहे हैं गाती में बैठे बैठे।
1: आप विद्यार्थी हैं ना, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं क्या अभी?
0: जी करते हैं ना सर।
1: अच्छा, तो पढ़ाई पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ,
0: जी सर।
1: अभी अगर आप ध्यान देते हैं तो आगे के जीवन में आपको आराम होगा। अभी अगर आप ठंडी ठंडी हवाएं और आराम के चक्कर में रहेंगे तो फिर आगे तपिश बर्दाश्त नहीं होती है बढ़ती उम्र में। अभी आप युवा हैं, हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, तो अभी का कष्ट जो है वो झेल लेना चाहिए, बल्कि कष्ट कर लेना चाहिए, ठीक
0: जी
1: है,
0: सर,
1: जो भी कष्ट हो, और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। खूब मन लगा कर पढ़िए और कुछ अपने बारे में सोचिए, है
0: जी सर,
1: ना? तो डरने की ज़रूरत नहीं है, कहा भी गया जो डर गया सो मर गया,
0: जी सर,
1: तो जब पहले ही मर जाएंगे तो फिर करेंगे क्या आगे, है ना? तो जीने की सोचिए, डर को दूर भगाइए, और दूसरी बात है कि डर के आगे जीत है।

आज के लिए बस इतना ही। यदि आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते हो तो हमें प्रत्येक बुधवार को दिन के 10 बजे से 10:30 के बीच कॉल कीजिए और अब हमारे फोन नंबर नोट कीजिए 0612-22-22-500। फोन नंबर एक बार फिर से बता रहे हैं 0612-22-22-500। और अब कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हरिंद्र आजाद के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुत है संस्कार गीत।
1: बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: शिशु के जन्म पर सबसे अधिक उपहार पाने की आशा उसकी बुआ को ही होती है, क्योंकि बच्चे को सबसे पहले आँख में काजल आंजनी की रस्म बुआ ही करती है। वैसे इस अवसर पर सभी को कुछ न कुछ मिलता है। जच्चा के नैहर से जड़ाऊदार जुगनू आया है, इस जुगनू को वह हर किसी को देना चाहती है। बच्चे के लिए देवता मंगाने हेतु सास को, रोहन औटने के लिए गोतनी को, आंख आंजने के लिए ननद को, सौरी लीपने के लिए दाई को, बच्चे के होंठ रंगने के लिए नाइन को, बच्चे की पोथी बांचने के लिए ब्राह्मण को और सोहर गाने के लिए सखियों को जुगनू देना चाहती है। पर एक जुगनू वह किस किस को दे? जुगनू वह स्वयं पहन लेती है और जुगनू लेने की उम्मीद रखने वाले सभी अपना सा मुंह लेकर रह जाते हैं। प्रस्तुत है आंख अंजाई का एक गीत।

शिशु के जन्म के छठे दिन छठी पूजन तथा बारहवें दिन विघ्न बाधा शांति के लिए बरही पूजन होता है। बच्चे की माँ बरही के दिन अपने भाई को नहीं आया देखकर अपनी सास से कहती है कि मैं बरही पूजा नहीं करूंगी। वह हर क्षण अपने भाई की बाट जोहती है और दासी को बाहर जाकर देखने को कहती है। तभी दूर कहीं से घोड़े की हिनहिनाने से पुष्करणी में हिलोर उठती है। गली में इत्र की सुगंध बिखर जाती है और उसका भाई आ जाता है। बच्चे की माँ अपने भाई के सत्कार में लग जाती है क्योंकि वह बहुत सामग्री लेकर आया है। ननद मजाक करती हुई कहती है कि भाभी, तुम्हारा भाई घर आंगन का बहारन लेकर आया है और देखने में भी बदसूरत है। बरही पूजन के अवसर पर गाया जाने वाला एक गीत इस प्रकार है।

बाल गोपाल पालने में झूल रहा है, चंदन का पालना है, उसमें रेशम की डोर लगी है। यशोदा मैया अपने कृष्ण को झुला रही हैं और नंद बाबा अपने लाल का मुख चूम रहे हैं। किस टोनिये की नजर लगी कि यशोदा का लाल रोने लगा। माता ने राई नोन से नजर उतारी तो उसका कृष्ण हंसने लगा। प्रस्तुत है पालने का एक गीत।

कुछ बड़े होने पर बच्चे के जन्म के केश उतारे जाते हैं, क्योंकि इन केशों को अशुद्ध माना जाता है। इस समय केश उतरवाने को मुंडन कहते हैं। इस क्रिया को लपरी परिचना भी कहते हैं, जिसमें बच्चे की बुआ अपने आंचल में बच्चे के कटे हुए केश लेती है, बदले में उसे नेग मिलता है। हे नाऊ, तुम मेरे बबुआ के केश काटो, हम तुम्हें अन्न धन और सोना देंगे। बाजा बजाने वाले बाजे बजा रहे हैं। हे बजनिये, तुम बच्चे को दीर्घायु होने का आशीष दो, हम तुम्हें चांदी के रुपए और रेशमी चादर देंगे। बच्चे की बुआ लपरी परिचने आई हैं। हे ननद जी, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो, हम तुम्हें कंगन और टीका देंगे। बच्चे की दादी लपरी परिचने आई हैं। हे सासू जी, बच्चे को शुभ शुभ आशीष दें, हम आपको चुनरी और पियरी पहनाएंगे। प्रस्तुत है मुंडन का ये गीत।

जब बच्चा कुछ और बड़ा होता है और पढ़ने योग्य हो जाता है, तब उसके यज्ञोपवीत की तैयारी होने लगती है। इस अवसर पर पीली मिट्टी की वेदी बनाई गई है, उस पर एक पर्दा लगा है। लोग बालक का जनेऊ संस्कार देखने को उत्सुक हैं। सभा में बच्चे के पिता प्रसन्न होकर अपना भाग्य एवं जीवन धन्य समझ रहे हैं, क्योंकि वे इस वेदी पर अपने राम का जनेऊ देख रहे हैं। मचिया पर बैठी माँ भी अपने भाग्य पर फूली नहीं समा रही हैं, और उधर अबोध बालक भूख से और नींद से परेशान है। जनेऊ होने तक बच्चे को भूखे रहना पड़ता है। अबोध बालक इस परंपरा को कैसे जान सकता है? प्रस्तुत है जनेऊ का एक गीत।

0: बिहार का लोक संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे संस्कार गीत।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर हमारे स्टेशन्स लाइव। मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घरनी।
1: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
2: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
3: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
4: घरनी सुने वाला सखी सबके अर्चना के नमस्कार। सब समाचार निमन बान हूँ, सब लोग इन निमन से रही, यह हमनी के ईश्वर से प्रार्थना रहेला। और रउआ सभे आज त ईद उल जुहा के, चाहे बकरीद जेकरा कहल जाला, ओकरा तैयारी में होखब जा। ई परब कुर्बानी के याद दियावेला। ईद जेकरा की मीठी ईद भी कहल जाला, अब बकरीद के बारे में लोग जाने ले। अब मुसलमान भाई लोग ई परब मनावेले। ई परब इस्लाम धर्म के आखिरी आ 12वां महीना जिलहिज्जा के 10वां तारीख के मनावल जाला, जेकरा में दुनिया भर के मुसलमान जानवर के कुर्बानी देवेले। कुर्बानी हजरत इब्राहिम के कहानी से जुड़ल बा, जब वो अल्लाह के आदेश पर आपन सबसे प्रिय सामान कुर्बान करे गईल रहले। अल्लाह हजरत इब्राहिम के परीक्षा लेवे खातिर उनकर सबसे प्यारा चीज के कुर्बान करे के कहले रहले, और उ अल्लाह के आदेश पर अपन बेटा हजरत इस्माइल के कुर्बानी देवे खातिर तैयार हो गए। बाकी अंतिम समय में अल्लाह उनका जगह एगो दुम्बा के रख देले रहले, आ ए रंग से उनकर परीक्षा पूरा भइल। ई घटना के याद में मुसलमान जानवर के कुर्बानी देवेले बकरीद के पर्व में। ई परब 3 दिन तक मनावे के परंपरा है, तो ए रंग से 3 दिन तक जानवर के कुर्बानी देवेले। एक तरह से ई परब कुर्बानी के है,

ईद के मतलब है खुशी, उत्सव, चाहे बेर बेर आवे वाला खुशी। ई एगो धार्मिक पर्व है, बल्कि आपसी प्रेम और इंसानियत के संदेश भी देवेला, आपसी सौहार्द भाईचारा के संदेश भी देवेला। और मुसलमान भाई मिलजुल के हंसी खुशी से मनावेला। ई पर्व त्यौहार में महिला लोगिन के काम तो देखी पड़ जाला, घर गृहस्थी के काम, रंग रंग के खाना बनाव, खियाव, घर के सजाव। बाकी महिला लोगिन के आपन ध्यान भी राखे के चाहिए। आजकल आधुनिक बने के फेरा में महिला लोगिन भी नशा करे लागल बड़े। ढेर महिला लोगिन तंबाकू के सेवन करेली, जे कि स्वास्थ्य खातिर ठीक नहीं है। शहर देहात सगरो ही देखे में आ रहल बा तंबाकू शरीर खातिर हानिकारक बा। एकरा सेवन से कैंसर जैसन गंभीर बीमारी हो रहल बा, खास करके मुंह के कैंसर। आ अगर बात कर जाओ तो गुटखा, धूम्रपान, खैनी, ई कुल शरीर खातिर तो घातक है। तंबाकू से मुंह आ गला के कैंसर, मुंह कम खुलेला जैसन गंभीर बीमारी होखेला। एकरा सेवन से फेफड़ा, पेट और लीवर के भी कैंसर हो सकेला। तंबाकू में 70 ऐसन रसायन बा जे कि कैंसर पैदा करेले। तंबाकू के सेवन से रक्तवाहिका सिकुड़ जाला, जेकरा से रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेला। एकरा प्रभाव से दिल के दौरा और स्ट्रोक के खतरा कई गुना बढ़ जाला। तंबाकू से दांत पर अस्थायी रूप से दाग पड़ जाला, मसूड़ा सिकुड़े लागेला और दांत कमजोर होकर के समय से पहले गिर जाला। सांस लेवे में तकलीफ होके लागेला, काहे कि तंबाकू के धुआं फेफड़ा के उत्तक के नष्ट कर देवेला, जेकरा से कि लगातार खांसी जैसन समस्या होखेला। दम्मा अक्रोनिक ब्रोंकाइटिस भी हो सकेला। महिला लोगिन के त खास करके और एकरा से दूर रहे के चाहिए, काहे कि महिला लोगिन में बांझपन और स्तन कैंसर के कारण तंबाकू होखेला। गर्भावस्था में अगर तंबाकू के सेवन कर रहल बानी तो गर्भ में पल रहल बच्चा के विकास रुक जाला, बच्चा शारीरिक रूप से कमजोर पैदा होखेला। तंबाकू बुझी की शरीर के दिया जैसन चाट जाला। ऐसे ई आदत से बाँची और आपन सेहत के ध्यान रखें। कोई घर परिवार में बात बा ओकरा के अगर कोई तंबाकू सेवन करिए रहल बा तो ओकरा के समझाई, ओकरा के एकर नुकसान बताई, आसपास जे भी बाड़े उनका भी समझाई कि तंबाकू छोड़ देवे के और एकर इलाज होखेला, इलाज से ई आदत छूट सकेला, तो काहे ना ई आदत के छोड़ दी। जब ई इतना घातक बा तो ई खैला से कौन फायदा बा। तो महिला लोगिन खास करके इस चीज़ पर ध्यान दी, घर परिवार में कोई बाड़े चाहे अपने भी अगर कैसू आदत लागिए गई बा तो कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके ई आदत के छोड़ दी। और आदत तो छुटिए जाला, कोशिश करला से कौन काम ना होखेला। तो चली अब कार्यक्रम के आगे बढ़ावे खातिर रोवा सभी के एगो गीत सुनवा दी। हमरा मालूम बा कि रोवा सभी भी गीत खातिर इंतजारी में होखा, तो चली हमने के सुनी जा मीना सिंह जी से ई गीत।

0: वाह, मीना सिंह जी से ई हमनी के देवी गीत सुनी जा निमिया के डाढ़ मैया, और बुझी कि कोनो काम हमनी के करी ल जा तो देवी देवता तो जरूर कोहराई ल जा। बिना उनकर आशीर्वाद के कोनो काम शुरू ना करी ल जा। तो ई गीत खातिर मीना सिंह जी के धन्यवाद, और इनका से तो आगे भी गीत सुने के। अब समय हमनी के बा एगो वार्ता के, और वार्ता वायु प्रदूषण एवं बचाव विषय बा। वार्ताकार बाड़ी शालिनी सिंह, तो सुनी जाई वार्ता।
1: प्रदूषण पर्यावरण में दूषक पदार्थों के प्रवेश के प्राकृतिक संतुलन में पैदा होने वाले दोष को कहते हैं। प्रदूषण शब्द का मतलब है पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्रवेश होना। ये पदार्थ वायु, जल और भूमि में प्रवेश करते हैं और इनसे पर्यावरण और जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। आज हम चर्चा करेंगे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय वायु प्रदूषण पर एवं इससे बचाव के उपायों पर भी रोशनी डालेंगे। यह विषय न केवल हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए भी

अत्यंत महत्वपूर्ण है। हवा विभिन्न गैसों का एक अदृश्य मिश्रण है। यह हमारे वातावरण में स्वाभाविक रूप से मौजूद है। ऑक्सीजन हवा में मौजूद विभिन्न गैसों में से एक है जिसे हम सांस में लेते हैं। वायु प्रदूषण तब होता है जब गैसें, धूल, गंदगी, कालीख, वायरस आदि हवा को दूषित करते हैं, जिससे यह अशुद्ध, अस्वास्थ्यकर और विषाक्त होता है। हवा में प्रदूषण की मात्रा मनुष्यों, जानवरों और पौधों को नुकसान के स्तर तक प्रभावित करती हैं। वायु प्रदूषण अर्थात हवा में ऐसे अवांछित गैसों, धूल के कणों आदि की उपस्थिति जो लोगों तथा प्रकृति दोनों के लिए खतरे का कारण बन जाता है। वायु का अवांछित रूप से गंदा होना वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण के कारणों में बहुत सी परिस्थितियां हमारे विकसित या यूं कहें हमारे अत्याधुनिक जीवन शैली के वजह से है। डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसें उत्सर्जित करते हैं। इतना ही नहीं, ब्रेक और टायर से निकलने वाले कण वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण मानवीय गतिविधियां हैं। औद्योगिकीकरण, वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, दहन, ऊर्जा उत्पादन, निर्माण, कृषि गतिविधियां और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी मानवीय गतिविधियां वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं। मानवीय गतिविधियों के कारण कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे प्रदूषक निकलते हैं, जिससे वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण ज्वालामुखी विस्फोट, धूल के तूफान और जंगल की आग है। हालांकि वायु प्रदूषण के प्राकृतिक कारण वहां के क्षेत्रों तक ही सीमित होते हैं और दीर्घकालीन पर्यावरणीय खतरे पैदा नहीं करते हैं। वायु प्रदूषण का एक प्रमुख और अत्यंत ही हानिकारक कार्य आम जनता के द्वारा किया जाता है, कचरे को जलाना। अक्सर लोग अपने घर के आसपास के जगहों पर कचरे के ढेर को जला देते हैं। ये बहुत ही हानिकारक गैसों का उत्सर्जन करते हैं। कृषि क्षेत्रों में पराली जलाई जाती है। फैक्ट्रियों और बिजली संयंत्रों से चलने वाले गैसें जैसे सल्फर डाइऑक्साइड और हानिकारक रसायन वातावरण को विषैला बनाते हैं। निर्माण स्थलों से उड़ती धूलें और कण भी वायु गुणवत्ता को नुकसान पहुंचाते हैं। इन प्रदूषण के कारकों की वजह से मानव स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है और प्रतिदिन स्वास्थ्य स्तर में गिरावट आ रही है। जलवायु परिवर्तन प्रदूषण के दुष्प्रभाव का ज्वलंत उदाहरण है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और असामान्य मौसम परिवर्तन होते हैं। वायु प्रदूषण का श्वसन संबंधी समस्याओं जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों के कैंसर पर सीधा सीधा असर पड़ता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 99% आबादी हानिकारक हवा में सांस ले रही है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों में नीतियां और निवेश आवश्यक है। पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों को अपनाने से वायु प्रदूषण को कम करने में काफी मदद मिल सकती है। जैसे व्यक्तिगत स्तर पर हम जब भी संभव हो कारपूलिंग, साइकिलिंग या इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। घरों में सोलर पैनल लगवाने जैसे प्रयास सराहनीय और वातावरण के हित में हैं। अपशिष्ट उत्पादन को न्यूनतम करने की कोशिश और जब भी संभव हो पुनः प्रयोज्य उत्पादों का चयन करना वायु प्रदूषण की रोकथाम में उचित प्रयास हो सकता है। कारखानों को शहरी क्षेत्र से दूर स्थापित करना चाहिए। साथ ही ऐसी तकनीक उपयोग में लानी चाहिए जिससे कि धुएं का अधिकतर भाग अवशोषित हो और अवशिष्ट पदार्थ व गैसें अधिक मात्रा में वायु में न मिल पाए। जब वायु प्रदूषण की चर्चा हो और उसके निवारण हेतु वृक्षारोपण की बात न हो तो ये अनुचित होगा।
वृक्ष एकमात्र प्राकृतिक साधन है जो वायु को शुद्ध रख पाने की

0: क्षमता रखते हैं। हमें बड़ी मात्रा में पेड़ लगाने का प्रयास करना चाहिए और यह प्रयास निरंतर एवं पीढ़ी दर पीढ़ी चले, ऐसी मानसिकता बनानी होगी। भारत सरकार भी वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रयासरत है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का उद्देश्य बड़े शहरों में वायु प्रदूषण को 20-30% तक कम करना है। स्वच्छ भारत मिशन और उज्ज्वला योजना जैसे कार्यक्रमों में स्वच्छ ऊर्जा और स्वच्छता को बढ़ावा दिया गया है तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त नियम लागू किए गए हैं। वायु प्रदूषण एक गंभीर चुनौती है जिसका समाधान केवल सरकार या वैज्ञानिकों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाएं। वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर व्यक्ति अपना योगदान दे सकता है, वायु प्रदूषण से जुड़े बचाव नियम और उपायों को अपनाकर। वायु प्रदूषण आज के समय में एक गंभीर समस्या बन गई है। इस समस्या को हल करना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह मानव जीवन और समस्त जीव जंतुओं के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। सरकार और आम जनता को मिलकर इस समस्या के समाधान जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग, प्लास्टिक और कचरे को जलाने से बचना तथा उनका पुनर्चक्रण करना, वनों की कटाई पर रोक लगाना, इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाना और लोगों को वायु प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए प्रेरित करना जरूरी है। हमें अपने भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करने का संकल्प लेना चाहिए।
1: अभी हमने कई वार्ता सुन लीजिए शालिनी सिंह जी से, वायु प्रदूषण एवं बचाव, और देखिए कि कितना फरिया फरिया के समझौली और बुझी कि एक खातिर तो सबके प्रयास जरूरी बा, खाली सरकार के कहला से ना होगी। हमने सब केहू प्रयास करब जा तो वायु प्रदूषण से बचल जा सकेला, और वायु प्रदूषण जब इतना हानिकारक बा तो ऐसे तो बचे के जरूर कोशिश करे के चाहिए। तो ये वार्ता खातिर इनका के धन्यवाद, और रवा सभी से जैसन के कहले रहें कि मीना सिंह जी से और ही गीत सुनवाई, तो चली सुनी जाए गीत उनका से।

अय्या परदेसिया सवेरे मोरा गांव रे कितना निमन झूमर रहे और मन तो एकदम खुश हो गया। और हमरा बुझा रहल बा कि रउआ सभी के भी जरूर निमन लागल होगी। तो ई गीत खातिर इनका के धन्यवाद। समय रही तो और ही गीत सुनब जाए इनका से। और अब तने काम के बाद, काम के बाद कहे के मतलब कि हमनी के महिला लोग इनके तो जाते समय घरे घरवार में रहेला, तो घरवार में बुझे कि खियाबो पियाबो। और ई गर्मी के समय में कुछ ठंडा पिए के बड़ा मन करेला, तो आज रउआ सभे के कुछ ठंडा पेय पदार्थ बता रहल बानी बनावे के। और झटपट बनाई और देखी पी करके कितना निमन लागेला, गला में तरावट भी रही। तो पहले बता रहल बानी रउआ सभे के मसाला छाछ। ई बनावे खातिर दही 2 कप, ठंडा पानी आधा कप, महीन कतरल हरियर मरचा 1 गो, चाट मसाला 1 चुटकी, कद्दूकस कैल आदि 1 चम्मच, काला नमक चुटकी भर गोलकी के बुकनी, पुदीना के पतई 4 गो, महीन कतरल धनिया के पतई 2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, भूंजल जीरा के बुकनी 1 चुटकी, आधा कप दही जीरा नमक मरचा आदि के खूब मिला के निमन से फेंट ली। बाचल दही के पानी दे के झाग उठावे तक फेंटी। मिक्सी में भी फेंट सकता नहीं, चाहे आजकल ब्लेंडर आवेला उकरो से कर सकता नहीं। और फेटला के बाद शीशा के गिलास में ढारी, धनिया के पतई अब पुदीना पतई से सजा करके पीही। अब पियाई देखी गला में कितना तरावट लागी, गर्मी से भी बचाव होला। दही तो बुझी के गर्मी खातिर बहुत निमन चीज है। दोसर रवा के पिए के बता रहल बानी पेय पदार्थ, आम के पन्ना। तो ओकरा खातिर कच्चा आम 2 गो, गुड़ आधा कप और जीरा 1/2 चम्मच, काला नमक गोलकी 1 चुटकी, पुदीना पत्ता 10 गो, ठंडा पानी चाहे बर्फ़ के टुकड़ा जे रुआ अच्छा लगे। आम के गैस पर पका ली ही और चारों तरफ उलट पुलट के निमन से पकाई ताकि चारों ओरी से पक जाए। पकला के बाद ओकरा के ठंडा होके दही, छिलका हटा के गुदा निकाल ली ही, गुड़ और आम के गुदा गोलकी नमक डाल करके मिक्सर में चाहे हैंड ब्लेंडर में ओकरा के मिला ली ही, बढ़िया से पीस ली ही। ठंडा पानी मिला करके शीशा के गिलास में डाल के पुदीना पतई से सजा करके पी और सबके पियाई। और देखी कितना निमन लागी लोग का, रवा अपने भी पिया तो लगे कि आह गर्मी में पी करके गला तर भावे। तो कहले रही रवा सभी से कि समय रही तो और गीत सुनवाई मीना सिंह जी से। तो चलत चलत एक और गीत सुन ली जा मीना सिंह जी से।

0: वाह, मीना सिंह जी से ये गीत समय के कमी के कारण पूरा ना सुन पाउनी जा, और अब घड़ी इशारा कर रहल बा चले के बेरा हो गइल बा। तो रउआ सभी के अर्चना के प्रणाम।
1: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण महिलाओं के लिए कार्यक्रम घरनी, ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता कि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पोक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सरकार ने कहा है कि देश में अभी तक इबोला वायरस के संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में इबोला के मामलों के मद्देनजर स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार युगांडा से हाल ही में लौटे

0: एक व्यक्ति को बंगलुरु के सरकारी महामारी रोग अस्पताल में जांच और चिकित्सा के लिए अलग रखा गया। जांच में उसकी रिपोर्ट नकारात्मक आई है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे घबराएं नहीं, गलत सूचना न फैलाएं और जानकारी के लिए केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यनीतिक क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल ने कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान के बीच लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से कहा कि इन मुश्किल दिनों में वे पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग भारत के प्राचीन ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और निवारक स्वास्थ्य देखभाल तथा संतुलित जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्री जाधव ने आज खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिन पहले आयोजित बैठक में भाग लेते हुए ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज दोपहर के कारोबार में 41 अंक बढ़कर 76,051 जबकि निफ्टी 21 अंक के वृद्धि के साथ 23,935 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में प्रस्तुत है भेंटवार्ता। विषय है साहित्य समाज में एकता ला सकता है। भेंटवार्ताकार हैं उर्मिला सिरिश, भेंट करता है अलका प्रियदर्शनी।
2: जी, हमारे साथ हैं जानी मानी साहित्यकार उर्मिला सिरिश जी। इनकी कहानियां काफी लोकप्रिय हुई हैं। इसके अलावा इनके द्वारा संपादित पुस्तकों में प्रभाकर श्रोत्रिय आलोचना की तीसरी परंपरा तथा सृजन यात्रा गोविंद मिश्रा की जीवनी शामिल है। न सिर्फ भाव और कथ्य के स्तर पर बल्कि सृजन के स्तर पर भी अपना नाम कमाया है। महिलाओं की कहानी हो, मजदूरों की कहानी हो या बुजुर्गों की कहानी हो, उर्मिला जी की लेखनी में ये सब जीवंत हो उठते हैं। और फिलहाल इनकी दो कृतियाँ काफ़ी चर्चा में हैं, सब खैरियत है हुजूर, और चांद गवाह है काफी चर्चित हो रही है इन दिनों।
1: बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। और बिहार से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है क्योंकि जब मैंने लिखना शुरू किया था तो यहाँ की पत्रिकाओं में मेरी कहानियाँ बहुत छपती थी और बहुत सारी चिट्ठियाँ उन कहानियों पर जाती थी। तो एक साहित्यिक और एक आत्मिक लगाव बिहार की धरती से, बिहार की भूमि से मेरा रहा है। फिर यहाँ जितने भी साहित्यकार हुए उनसे किसी ना किसी रूप में संवाद रहा है, बातचीत रही है। तो पटना आना मेरे लिए बहुत ही सुखद हमेशा से रहा है। जहाँ तक मेरे लिखने की शुरुआत है तो मुझे बचपन से बहुत ज़्यादा पढ़ने का बहुत शौक था। और आमतौर पर आप देखते हैं कि उन दिनों किताबें और पत्र पत्रिकाएं ही वो माध्यम होती थीं जो आपको जोड़ती थीं दुनिया से, संसार से, समाज से। और दूसरा, मुझे लगता है कि लिखने का कोई बीज पड़ा रहा होगा और जहां हवा, पानी और थोड़ी सी बूंदें पड़ती हैं तो उस तरह से वो अंकुरित भी हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो कुछ भी लिखूँ वो समाज से लिया हुआ हो, समाज से जुड़ा हुआ हो, समाज का चेहरा उसमें दिखाई देना चाहिए, उनके जो सरोकार हैं वो सामने आना चाहिए। तो मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि मेरे लेखन की आधारभूत जो नींव है वो वही मनुष्यता है।
2: जी, बहुत बढ़िया बात आपने कही। जो लेखन का प्राण तत्व होना चाहिए वो हमारा समाज और समाज से जुड़े हुए सरोकार होना चाहिए, और आप इसको बखूबी कर रही हैं। उर्मिला जी, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज को।

0: रास्ता दिखाता है। ऐसी बातों से हम निरंतर रूबरू होते हैं। समाज और साहित्य का जो संबंध है, इस पर आपके विचार जानना चाहूँगी।
1: हाँ, बहुत अच्छी बात अलका जी आपने कही, और ये सही है कि साहित्य समाज का दर्पण है, प्रतिबिंब है। जो कुछ भी समाज में घटित होता है, किसी भी स्तर पर घटित होता हो, उसको साहित्य में देखा जा सकता है। स्वाधीनता के पूर्व का पूरा भारतीय समाज, प्रेमचंद का नाम ले रही हूँ, लेकिन बाकी रचनाकारों में भी यदि आप देखें तो पूरे भारतीय समाज को आप उनके साहित्य में देख सकते हैं। यानी वो पूरा समाज भारतीय समाज साहित्य में आपको दिखाई दे रहा है। दुनिया का कोई भी विश्व का साहित्य उठा के देखिए, वहाँ का देश, वहाँ की जीवन शैली, वहाँ का पर्यावरण, वहाँ का जीवन, समग्र रूप से मानवीय जो जीवन है, वो सारा का सारा साहित्य में दिखाई देता है। और तभी हम जान पाते हैं कि हमारे बंगाल में का समाज कैसा था, केरल का समाज कैसा था, वहाँ की जीवन शैली कैसी थी, या दूसरे अपने भारतीय समाज को ही दे, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग माध्यम में, कोई कहानी के माध्यम से बात कहता, कोई कविता के माध्यम से, कोई उपन्यास के माध्यम से, कोई नाटकों के माध्यम से, लेकिन कुल मिलाकर बात यही होती है कि हम उस समाज के बारे में ही लिख रहे होते हैं जिस समाज की साहित्य को, साहित्यकार को ज़रूरत है। बिना उसके तो लिखा ही नहीं जा सकता। महाभारत को उठा के देख लीजिए, है ना, एक एक चीज़ कैसे सामने आती है। रामायण को उठा के आप देख लीजिए, या आज के उसको उठा के देख लीजिए कि हम, आप पटना में बैठी हैं, भोपाल के पूरे एक कहना चाहिए जीवन को, जीवन शैली को, और वहाँ की जो तहजीब है, तो जब आप वहाँ का साहित्य उठा के पढ़ेंगे जो वहाँ के रचनाकारों ने लिखा हुआ, तो आप देखेंगे भोपाल का कैसा एक स्वरूप आपके सामने आता है। या हम बिहार के रचनाकारों को जब पढ़ते हैं, इसलिए कि वो यहाँ हैं, स्थानीयता की बात है, तो एक बिहार का पूरा एक चेहरा, रेणु जी के उपन्यास आप देखिए, तो वो पूरा बिहार का एक चेहरा हमारे सामने दिखाई देता है। तो बिल्कुल साहित्य जोड़ने की कोशिश मानवीय स्तर पर करता है, संवेदना के स्तर पर करता है, मनुष्य समाज को जोड़ता है, मनुष्य जीवन को जोड़ता है, और मनुष्य की जो संवेदना है, जो भावनाएं हैं, वो तो वो किसी कोने में बैठा हो, यहाँ से पहाड़ पर बैठा हो, जंगल में बैठा हो, शहर में बैठा हो, दुकान पर बैठा हो, सब की जो भावनाएं हैं, कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन जो मानवीय भावनाएं हैं वो कहीं ना कहीं साहित्य के माध्यम से हमें दिखाई देती हैं। तो मैं तो हमेशा यही मान के चलती हूँ कि साहित्य मानवीय स्तर पर जोड़ता है। बाकी जब हम वैचारिक स्तर पर आते हैं कि कहाँ कौन सी विचारधारा काम कर रही है और किसने किस विचारधारा के साथ मुठभेड़ की है, कहाँ आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, कहाँ आप प्रतिरोध में खड़े हुए हैं, तो वहाँ लगता जरूर है हमें ऐसा कि साहित्य कुछ गलत कर रहा है, लेकिन नहीं। वो एक पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, साहित्य की राजनीति को अगर अपन अलग कर दें, तो उसको अगर आप दरकिनार कर देते हैं और शुद्ध रूप से यदि देखते हैं, तो साहित्य ने हमेशा उसकी संस्कृति के माध्यम से, उसकी सभ्यता के माध्यम से, जीवन शैली के माध्यम से, और हमारी जो सांस्कृतिक एकता है उसके माध्यम से हमेशा जोड़ने का ही काम किया है, कभी तोड़ने का काम नहीं किया। मुझे तो नहीं लगता है कि साहित्य कभी मनुष्य जीवन को या मनुष्य के बीच इस तरह की दरारें पैदा करने का काम करेगा या करता है। अब जानबूझकर कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो वो बहुत स्थायी नहीं होती, वो टिकती नहीं है वो चीज़ें, है ना, क्योंकि हम आज याद क्या करते हैं। किसी भी कृति को आप उठा के देख लीजिए, संस्कृत से लेकर या हमारे दूसरे, उसमें जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ें रहती वो हमें याद रहती, उन्हीं को समाज आगे ले जाना चाहता है। तो ये निरंतर जो बना हुआ है, ये जो सातत्य बना हुआ है कि मनुष्यता की ओर ले जाने की एक जो कामना साहित्यकार करता है, वही ज़्यादा प्रभाव डालती है, वही हम ज़्यादा आत्मसात करते हैं, उसी के साथ चलते हैं।
0: जी, बात हो रही है एक भारत श्रेष्ठ भारत की। भारत को एक करने में और भारत

0: को श्रेष्ठ करने में साहित्य की क्या भूमिका हो सकती है?
1: बहुत सुंदर भूमिका हो सकती है, बहुत ही सुंदर, क्योंकि हमारा देश हम हमेशा से सुनते आए हैं, जानते हैं कि विविधताओं से भरा देश है, अनेकता में एकता है। यहाँ की कितनी खूबसूरत संस्कृति है, आप किसी भी प्रांत में जाइए, कश्मीर में जाइए, वहाँ का एक अलग रूप आपको खूबसूरत दिखाई देगा, गुजरात का अलग दिखाई देगा, राजस्थान का अलग दिखाई देगा, लेकिन वो वेशभूषा के आधार पर, खान पान के आधार पर, उनका जो जीवन शैली उसके आधार पर, रीति रिवाज है उसके आधार पर, लेकिन कुल मिलाकर जब हम भारत की एक छवि देखते हैं तो वो छवि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। ये तो ठीक है कि इतने प्रांत हैं, इतनी वो हैं, सारी की सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब हम भारतीय होने की बात करते हैं, भारतीयता की बात जब हम करते हैं, तो भारत की सांस्कृतिक एकता और भारत के जो जीवन मूल्य हैं और भारत की जो पहचान है, वही सर्वश्रेष्ठ रूप में दिखाई देती है। तो मुझे तो लगता है कि दुनिया में भारत जाना जाता है अपनी सांस्कृतिक वैभव के लिए, अपनी मनुष्यता के लिए, अपने जीवन मूल्यों के लिए, अपनी कौटुंबिक परिवार व्यवस्था के लिए, और एक दूसरे के साथ जिस तरह से भारतीय लोग मिलकर चलते हैं, भले ही वैसे अलग वो हो, लेकिन आप देखिए, जरा भी दुख होगा, जरा भी तकलीफ होगी, सारे के सारे लोग एक उसमें इकट्ठे हो जाते हैं, गुलदस्ते की तरह खड़े हो जाते हैं। तो मैं तो हमेशा, मैंने यही देखा है, यही जिया है, और इसी की मैं अपेक्षा करती हूँ कि यही मूल्य और यही खूबसूरती हमारी पहचान है।
0: क्या साहित्यिक स्तर पर और सांस्कृतिक स्तर पर आदान प्रदान करने से राष्ट्रीय एकता को बल मिलेगा?
1: बिल्कुल, मैं तो कॉलेज में रही हूँ, नॉर्थ ईस्ट से, हिंदी भाषी क्षेत्रों से,
0: जी
1: पूर्वोत्तर भारत से, जब वो सांस्कृतिक दल आते हैं और जब कार्यक्रम नृत्य गायन और विविध कलाओं की प्रस्तुति करते हैं, तो अलका जी, ऐसा लगता है कि ये भारत की कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी खूबसूरती है। हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट उनके यहाँ जाते हैं तो कितना दिल खोल कर वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, भाषा के स्तर पर, संस्कृति के स्तर पर, साहित्य के स्तर पर। तो ये तो जोड़ने का सबसे बड़ा संबल है, आधार है, सेतु है, और ये आदान प्रदान तो हमेशा होना ही चाहिए। जब ये सिलसिला चलता है और जब हम उनकी चीज़ों को देखते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सामने से देखने में समझ में आती है। नॉर्थ ईस्ट में मैं भी बहुत गई हूँ और वहाँ के लोगों से मिली हूँ, बातचीत हुई, तो ऐसा लगता है कि ये हमारा कितना खूबसूरत देश है, कितने खूबसूरत लोग हैं, कितनी खूबसूरत प्राकृतिक छटा है, और उनके सारा जो जीवन का जो रूप है, विविधता से भरा हुआ, वो हम सबको भर देता है।
0: जी, जो विविध संस्कृतियां हैं भारत में, उन सब का समुच्चय ही मिलकर एक भारतीय संस्कृति का निर्माण करता है। उर्मिला जी, आप हिंदी की लेखिका हैं, एक विडंबना आजकल देखने में आ रही है, हालांकि इसका कारण राजनीति भी हो सकती है। गुजराती भाषी गांधी जी ने हिंदी को राष्ट्र की एकता का सूत्र बनाया था,
1: बिल्कुल,
0: बताया था,
1: हाँ,
0: किंतु आज कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि हिंदी दूसरी भाषाओं पर थोपी जा रही है। हिंदी भाषी साहित्यकार या हिंदी भाषी लोग इस अवधारणा को निर्मूल किस तरह से साबित कर सकते हैं?
1: पहली बात तो ये है कि ये जितनी भी भाषाओं की लड़ाई है ना, वो सब राजनीतिक लड़ाई है। मैंने साउथ के कई कॉलेज में मैं गई हूँ, वहां पर गई हूँ, और वो लोग, जब मैं गई थी और उससे पहले भी और आज भी, इतने अच्छे ढंग से हिंदी और हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं, विषय के रूप में भी पढ़ते हैं, यूं भी पढ़ते हैं, अनुवाद का चलन भी अब बढ़ गया है, क्योंकि वो कुछ चीज़ें रोजगार से भी है, कुछ इंटरनेट का जमाना है, कुछ अनुवाद है, आभासी दुनिया है, कि हिंदी का विस्तार अपने आप ही हो रहा है। हिंदी का जो स्वभाव है, या साहित्यकार के रूप में भी मैं कहूँ, तो उसमें कहीं भी उपनिवेशवादी उस तरह के वो नहीं है, ना वो अपने को थोपती है, वो तो एक नदी की धारा की तरह बहते बहते बहते बहते सबको अपने साथ सिंचित करने की कोशिश करती है। कोशिश ये भी है कि हम हिंदी की ताकत तब और बढ़ेगी अच्छे रूप में, जब अपनी भारतीय भाषाओं को हम

0: साथ में लेकर चलें
1: बिल्कुल
0: और उसको ग्राह्य करने की, दूसरी भाषाओं के शब्दों को उसको अपनाने की जो एक बहुत बड़ा दिल कहना चाहिए, वो हिंदी भाषा में अनुवाद होता रहा है। दूसरी भाषाओं की बहुत सारी किताबें मैंने अनुवाद के द्वारा ही पढ़ी, असमिया के या डोंगरी के जितने भी पढ़े हैं या पंजाबी अमृता प्रीतम। लेकिन अनुवाद की आवश्यकता बहुत ज़्यादा इसलिए भी है कि हिंदी का जो श्रेष्ठ है वो भारतीय भाषाओं में भी जाना चाहिए, ताकि उनको भी ये पता चले कि हिंदी में सर्वश्रेष्ठ क्या लिखा जा रहा है। हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में अनुवाद की एक शाखा होना चाहिए, वहाँ पर अनुवाद के कोर्स होना चाहिए। वो जो एक सांस्कृतिक उसका आदान प्रदान की जो बात कर रही थी, तो साहित्य भी इसी तरह से एक दूसरे भाषाओं के पास जाएगा और बहुत अच्छे से हम अपने देश का जो बहुविध समाज है उसको समझने में हमें मदद मिलेगी।
1: हमारे श्रोताओं का ज्ञानवर्धन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, साहित्य समाज में एकता ला सकता है। भेंटवार्ता करती उर्मिला सिरिश, भेंट करता अलका प्रियदर्शनी। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है देशकाल।

Thank you.

फिल्म बादल में सुनिए, अनुराधा पौडवाल, सुखविंदर सिंह, जसपिंदर नरूला और अनमोल मल्लिक को।

आकाशवाणी एट 90.90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म कुदरत में। गीतकार है मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार आर डी बर्मन।

लीजिए सुनिए किशोर कुमार को फिल्म याराना में। गीतकार हैं अनजान, संगीतकार राजेश रोशन।

लीजिए सुनिए फिल्म शान का ये गाना, आवाजें हैं मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार आर डी बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR को वैध और संवैधानिक करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने बिहार समेत अन्य राज्यों में SIR की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और उसे निष्पक्ष और शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार है। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा तकनीकी चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। श्री कुमार ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा SIR को वैध करार देने के बाद इंडी गठबंधन के नेताओं को देश की जनता से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने नालंदा जिले के एक सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन के बाद 60 छात्रों के बीमार होने की घटना की एक मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इसे मानवाधिकार उल्लंघन का गंभीर मामला मानते हुए जिलाधिकारी से 2 सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आज शाम 5 बजे पटना में बैठक होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने दाखिल खारिज ई मापी और अभियान बसेरा के लंबित मामलों का तेजी से निपटारे का निर्देश दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि 15 दिनों के बाद एक बार फिर से कार्य निष्पादन की समीक्षा होगी। श्री जायसवाल ने किसान पंजीकरण अभियान को गति देने के लिए परिमार्जन मामलों के शीघ्र निष्पादन के भी निर्देश दिए हैं। आम लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर अब राज्य के नगर निकायों में भी सहयोग शिविर की शुरुआत होगी। इसमें लोगों से प्राप्त आवेदन के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर शिविर की तैयारी का निर्देश दिया है। पंचायतों की तरह नगर निकाय क्षेत्रों में भी प्रत्येक महीने के पहले और तीसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लगेंगे। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने कहा है कि सभी कुलपति हर महीने

0: कम से कम 2 बार अंगीभूत कॉलेजों का निरीक्षण करेंगे। इस संबंध में सभी कुलपतियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। विश्वविद्यालयों को समर्थ पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए सभी प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का निर्देश दिया गया है। प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। हालांकि दक्षिण बिहार का तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया और मधेपुरा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राज्य के दक्षिण मध्य जिलों के कुछ भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इधर बारिश के दौरान मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चुआ बाग स्थित नया टोला में दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि महिला के पति गंभीर रूप से घायल हैं। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना और नियमित कॉडर की भर्ती के लिए वर्ष 2027 की ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा 1 जून से 12 जून तक आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार आधिकारिक भारतीय सेना भर्ती वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, परीक्षा संबंधी निर्देश पढ़ सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। अब आप सुनेंगे उर्दू बुलेटिन।
1: यह आकाशवाणी पटना है। अब आप इमरान सगीर से इलाकाई खबरें सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर लिस्ट की खसूसी मुनज़म नज़रसानी अमल SIR को कानूनी और आइनी करार दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की सदारत वाली बेंच ने बिहार समेत दिगर रियासतों में SIR के आइनी जवाब को चुनौती देने वाली अर्जियों पर समाअत करते हुए यह फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है और उसे मुनसिफाना और दुरुस्त वोटर लिस्ट तैयार करने का इख्तियार है। जनता दल यू के रियासती तर्जुमान नीरज कुमार ने SIR के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा कि अपोजिशन की तरफ से इंतखाब के अमल पर सवाल खड़ा करके आवाम को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। जनाब कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए SIR को कानूनी करार देने के बाद इंडी इत्तेहाद के लीडरों को मुल्क के आवाम से बिला शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए। महकमा महसूलात और असलाहत आराजी के वजीर दिलीप कुमार जायसवाल ने दाखिल खारिज ई नापी और अभियान बसेरा के जरिए इल्तवा मामलों का तेज़ी से निपटारा करने की हिदायत दी है। महकमा की जायजा मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा कि 15 दिनों के बाद एक बार फिर से कामों के निपटारे का जायजा लिया जाएगा। जनाब जायसवाल ने किसान रजिस्ट्रेशन मुहिम को रफ्तार देने के लिए परिमार्जन के मामलों को जल्द निपटाने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला सम्राट चौधरी की सदारत में आज शाम 5 बजे रियासती काबीना की मीटिंग होगी। मीटिंग में कई अहम तजावीज़ पर मुहर लगने का इम्कान है। कौमी हुकूक इंसानी कमीशन ने नालंदा ज़िले के एक सरकारी स्कूल में दोपहर का खाना खाने के बाद 60 बच्चों के बीमार होने के वाक़े का मीडिया रिपोर्ट की बुनियाद पर खुद नोटिस लिया है। कमीशन ने इसे इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी का संगीन मामला मानते हुए ज़िला मजिस्ट्रेट से 2 हफ्ते के अंदर तफसीली रिपोर्ट तलब की है। आम लोगों के मसाइल के निपटारे के लिए पंचायतों की तर्ज पर अब रियासत की बल्दियाती इकाइयों में भी सहयोग शिविर की शुरुआत होगी। इसमें लोगों से मौसूल दरख्वास्तों की बुनियाद पर उनके मसाइल का हल 30 दिनों के अंदर किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी प्रत्यय अमृत ने सभी डिविजनल कमिश्नर, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस सुपरिटेंडेंट, सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट को हिदायत जारी कर शिविर की तैयारियों की हिदायत दी है। पंचायतों की तरह बल्दियाती हलकों में भी हर महीने के पहले और तीसरे मंगल को सहयोग शिविर लगेंगे। रियासत के गवर्नर और चांसलर सैयद अता हसनैन ने कहा है कि सभी वाइस चांसलर हर महीने कम से कम 2 बार मंजूरशुदा कॉलेजों का मुआयना करेंगे। इस सिलसिले में सभी वाइस चांसलर्स को रहनुमा हिदायत जारी किए गए हैं। यूनिवर्सिटी को समर्थ पोर्टल के मौसर नफाज पर जोर देते हुए सभी इंतजामी और तालीमी सरगर्मियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने की भी हिदायत दी गई है। हिंदुस्तानी अफवाज में अग्निपथ योजना और मुस्तकिल कैडर की भर्ती के लिए साल 2027 का ऑनलाइन जनरल दाखिला इम्तहान 1 जून से 12 जून तक होगा। उम्मीदवार भारतीय सेना भर्ती वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, इम्तहान से मुतल्लिक हिदायत पढ़ सकते हैं और मॉक टेस्ट भी।

उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से कम स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनायक अनुदेशक के कुल 122 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 37 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 1 जून 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.bpssc.bihar.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

इंडियन आर्मी CSBO ग्रेड टू के कुल 190 पदों पर भर्ती हेतु योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। उम्मीदवार भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 10वें उत्तीर्ण होना चाहिए। योग्यता से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु विज्ञापन देखें। उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। आयु की गणना 31 मई 2026 के आधार पर की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदन करने

ये अंतिम तिथि 31 मई 2026 है। आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी www.indianarmy.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे रोजगार सूचना। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार अंक।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के चुनाव आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा, ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमेरिका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। उन्होंने इसराइल के प्रति पाकिस्तान के लंबे समय से चले आ रहे विरोध का हवाला दिया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम एलिमिनेटर मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला होगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी BLO 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे।
2: कमीशन की तरफ से दिल्ली में एसआईआर टाइम शेड्यूल लॉन्च हो

0: चुका है जो कि 20 जून से शुरू होगा और 7 अक्टूबर को हमारा फाइनल इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। तो इसमें जो हाउस टू हाउस विजिट है बीएलओज की वो हमारी 30 जून से शुरू होगी और 29 जुलाई तक चलेगी। इस हाउस टू हाउस शेड्यूल में बीएलओ हर इलेक्टर के यहाँ जाएंगे जो भी उनका एड्रेस इलेक्टोरल रोल में है और 2 फॉर्म लेके जाएंगे इनुमरेशन फॉर्म। एक फॉर्म में इलेक्टर ने अपनी डिटेल भरनी है और अपने पास रखना है, दूसरा फॉर्म भर के बीएलओ को दे देना है और दोनों फॉर्म पे बीएलओ काउंटर साइन करेंगे एक्नोलेजमेंट के लिए।
1: दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को भरे हुए जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन जमा करने की सुविधा भी मिलेगी। श्री कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच पड़ताल की व्यवस्था है। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: एसआईआर का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची से न छूटे और कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। मतदाताओं की भागीदारी को सुगम बनाने के लिए जागरूकता अभियान और विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे ताकि मतदाताओं को जनगणना प्रपत्र जमा करने में सहायता मिल सके। आम जनता की सुविधा के लिए दिल्ली में वर्ष 2002 में हुए अंतिम विशेष ग्रहण पुनरीक्षण की मतदाता सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इस प्रक्रिया में 1 अक्टूबर तक 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी मतदाताओं को शामिल किया जाएगा। सत्यापन प्रक्रिया के हर चरण में जांच की व्यवस्था रहेगी और राजनीतिक दलों को बूथ स्तर के एजेंटों के माध्यम से इसमें शामिल किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि ट्रांसजेंडर के अधिकारों के संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 के खिलाफ उच्च न्यायालयों में उसकी कई याचिकाएं लंबित हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख करते हुए अनुरोध किया कि स्थानांतरित की जाने वाली याचिकाओं को शुक्रवार को सूचीबद्ध किया जाए। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आसाराम बापू को आज आंशिक राहत देते हुए पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म, सामूहिक यौन उत्पीड़न और आपराधिक साजिश से संबंधित आरोपों से बरी कर दिया। हालांकि न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उसकी सजा को बरकरार रखा है। इस मामले में आसाराम की आजीवन कारावास की सजा जारी रहेगी। उच्च न्यायालय ने आसाराम को आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। वो फिलहाल अस्थायी जमानत पर है जिसे सप्ताह की शुरुआत में 7 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। उन्होंने सुझाव दिया कि जो भी प्यासा हो उसे एक गिलास पानी जरूर पिलाएं। प्रधानमंत्री ने सभी से ये भी कहा कि वे अपने परिवार और प्रियजनों के संपर्क में रहें और उनका हालचाल पूछते रहें। दोपहर की तेज धूप में बाहर निकलने से बचें और जितना हो सके आराम करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, बालकनी, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने लोगों से इन मुश्किल दिनों में पूरी संवेदनशीलता और करुणा के साथ एक दूसरे का ख्याल रखने का अनुरोध किया। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कुछ स्थानों और दिल्ली में भीषण लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कोंकण और गोवा, ओडिशा, सौराष्ट्र, कच्छ, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और कारेकाल में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच आज राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। एक रिपोर्ट।
3: झुलसाने वाली गर्मी से प्रदेश का ज्यादातर हिस्सा प्रभावित है। जयपुर, कोटा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर और दौसा सहित कई शहरों में न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मापा गया। करीब 33 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ कोटा की रात सबसे गर्म रही। भीषण गर्मी और लू को देखते हुए प्रशासन की ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव करने, आश्रय स्थल बनाने और पीने के पानी की व्यवस्था लगातार की जा रही है। है। चिकित्सा संस्थानों में भी लू और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के साथ आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाश।

0: समाचार जयपुर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम गंगटोक में होने वाले सिक्किम विश्वविद्यालय के 7वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग भी इस समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने इस मामले में अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नीट प्रश्न लीक मामले में लातूर के रहने वाले डॉक्टर मनोज शिरोडे को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई के अनुसार उन्होंने एक कोचिंग केंद्र के मालिक के बेटे सहित 3 छात्रों को आरोपी पीवी कुलकर्णी से रसायन विज्ञान के प्रश्न दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। गिरफ्तार किया गया दूसरा आरोपी तेजस हर्षद कुमार शाह है, जो पुणे स्थित एक कोचिंग सेंटर डॉक्टर अभंग प्रभु मेडिकल एकेडमी में फिजिक्स का फैकल्टी है। उसे नीट परीक्षा के लीक हुए भौतिक विज्ञान के प्रश्न के आरोपी मनीषा हवलदार से मिले थे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने केरला में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर जांच शुरू कर दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज सुबह से तिरुवनंतपुरम में पूर्व मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के आवास सहित कई स्थानों पर निरीक्षण शुरू कर दिया है। केरलम में 10 से अधिक जगहों पर तलाशी और निरीक्षण की कार्रवाई चल रही है। हालांकि ईडी की ओर से अब तक इन कार्रवाइयों के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। इस बीच केरलम हाई कोर्ट ने कल प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। यह याचिका केरलम के कोच्चि स्थित एक निजी कंपनी के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थी। ईडी की जांच उस निजी कंपनी के परिसरों में भी जारी है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा की अपनी यात्रा के दूसरे दिन टोरंटो में कनाडा के वरिष्ठ नेताओं और संस्थागत निवेशकों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को प्रगाढ़ बनाना और कार्यान्वित क्षेत्रों में निवेश तथा तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। इस यात्रा के दौरान श्री गोयल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू से मुलाकात की। मंत्रालय ने बताया कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब डॉलर तक बढ़ाने के लक्ष्य की पुष्टि की। प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत कनाडा व्यापार को मजबूत करने में कनाडा में रह रहे भारतीय प्रवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।
3: भारत और कनाडा के बीच साझेदारी की सबसे बड़ी ताकत उनकी मजबूत लोकतांत्रिक नींव है। दोनों देश इस बात पर विश्वास करते हैं कि जब सशक्त संस्थाएं कानून के शासन को मजबूती से कायम रखती है, तब दुनिया के सामने यह एक उदाहरण बनता है कि अच्छे मित्र और भरोसेमंद साझेदार किस तरह साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों देशों की सरकारों, संस्थाओं, व्यवसायों और आम लोगों के बीच जो आपसी विश्वास और सहयोग है, वही इस रिश्ते को और अधिक मजबूत बनाता है।
1: संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना होगा कि सीमा पार आतंकवाद को प्रायोजित करने के परिणाम उसे भुगतने होंगे।
4: पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ युद्ध, बिना उकसावे की आक्रामक कार्रवाइयों और लगातार सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देकर संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। हजार घाव देकर भारत को कमजोर करने की उसकी नीति आतंकवाद, धार्मिक कट्टरता और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार बढ़ावा देने की उसकी सोच को दर्शाती है।
5: Anti-India rhetoric has continued unabated since its creation.
1: पाकिस्तान का अब्राहम समझौते में शामिल होने से इनकार करने की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कड़ी आलोचना की है। रिपब्लिकन सेनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ईरान से संबंधित किसी भी कूटनीति में पाकिस्तान की भूमिका अनुचित है। आईपीएल क्रिकेट में आज मोहाली के न्यू चंडीगढ़ में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच एलिमिनेटर मैच खेला जाएगा। ये मैच शाम 7:30 बजे

0: से होगा। विजेता टीम शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस से खेलेगी। फाइनल मैच 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के फैसले को बरकरार रखा। न्यायालय ने कहा ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुरूप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बढ़ते तापमान के मद्देनजर नागरिकों से सावधानी बरतने का आग्रह। मौसम विभाग ने हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में भीषण लू की संभावना व्यक्त की। भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 50 अरब अमरीकी डॉलर तक बढ़ाने के साझा लक्ष्य की पुष्टि की। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने अमरीका ईरान वार्ता में संभावित मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार कर लीजिए, और जो स्वीकार न किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन हर हाल में खुद को खुश रखिए, क्योंकि खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है।
1: बहुत ही सुंदर विचार, आपको धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कलां दुर्ग से संजय कुमार साहू जी का।
2: ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू।
1: और पगबंधी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे।
2: भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी।
1: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल, मलखान सिंह पाल, सुधांशु पाल और हिमांशु पाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, आज एक बार फिर से हम रोचक जानकारी लेकर आए हैं दुनिया के एक और बेहद प्रसिद्ध फूल की। तो विमलेश जी, कल हमने बात की थी चेरी के फूलों की।
2: जी, तो अब ये बताइए हमारे श्रोताओं को, आज हम किस फूल की बात करेंगे?
1: विमलेश जी, आज हम बात करेंगे ट्यूलिप फूल की। ये भी दुनिया के प्रसिद्ध फूलों में से एक है।
2: वाह जी जी, भला ट्यूलिप फूलों की सुंदरता को कौन नहीं जानता।
1: बिल्कुल।
2: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न श्रोताओं की ओर से मेरा ये है, ट्यूलिप फूल मूल रूप से किस देश का है, यानी इसकी उत्पत्ति का स्थान कहाँ माना जाता है?
1: विमलेश जी, वैसे दुनिया भर में ये माना जाता है कि ट्यूलिप फूल मूल रूप से नेदरलैंड्स या हॉलैंड का है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है।
2: जी,
1: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि सच्चाई क्या है।
2: जी, श्रोताओं को बताना चाहती हूँ कि दरअसल ट्यूलिप फूल मूल रूप से मध्य एशिया के कजाकिस्तान देश का माना जाता है। यहाँ से ट्यूलिप तुर्की पहुँचा और फिर सारे यूरोप में फैल गया। तो अजीत जी, अब बात करते हैं ट्यूलिप नाम कैसे पड़ा, अब आपकी बारी।
1: जी, अब मेरी बारी। तो बता दूं कि ट्यूलिप शब्द आया है तुर्की और फारसी शब्द दुलबंद से, जिसका अर्थ होता है लंबी पगड़ी। यदि इस फूल की खुली पंखुड़ियों के मोड़ को देखें तो ये सच में मोड़दार लंबी पतली तुर्की पगड़ी जैसा ही दिखता है। 16वीं शताब्दी में जब ये फूल तुर्किस्तान के ओटोमन साम्राज्य में पहुंचा तो राजनयिक और सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित लोगों ने इसके समान दिखने वाली टोपियां बनवाई, जिसे तुलिपा कहा जाता था। बाद में ये शब्द फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषा में मिलकर ट्यूलिप बन गया।
2: जी, रंग, आकार और पंखुड़ियों के आधार पर इस फूल की 3000 से भी अधिक प्रजातियां दुनिया में पाई जाती हैं। श्रोताओं, आपको बता दें कि ट्यूलिप फूल कई रंगों के होते हैं, जैसे लाल, सफेद, गुलाबी, बैंगनी और नारंगी। लेकिन सबसे प्रसिद्ध और महंगा है काले रंग का ट्यूलिप।
1: जी,
2: ये रात में ही खिलता है, इसलिए इसे क्वीन ऑफ द नाइट कहा जाता है। हर रंग का अर्थ है।
1: जैसे
2: लाल रंग ट्यूलिप प्रेम का, पीला ट्यूलिप मित्रता का,
1: जी,
2: सफेद

0: ट्यूलिप क्षमा और शांति का और बैंगनी ट्यूलिप राजसी गरिमा का।
1: जी, इसलिए अक्सर अवसर और भावना के अनुसार ये ट्यूलिप फूल किसी को दिए या भेजे जाते हैं।
0: जी
1: विमलेश जी, एक और प्रश्न है मेरे पास जिसका उत्तर हमारे श्रोता जरूर जानना चाहेंगे, विशेषकर वे जो बागवानी में रुचि रखते हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि ट्यूलिप फूल कैसे उगाया जाता है?
0: अजीत जी, सबसे रोचक बात तो यह है कि ट्यूलिप फूल बीज से नहीं उगता था, लेकिन कंद या बल्ब से उगाया जाता है। एक स्वस्थ कंद कई वर्षों तक फूल उगा सकता है। जहां तक इन फूलों के खिलने का प्रश्न है, ये फूल मार्च से मई तक खिलते हैं।
1: जी श्रोताओ, इन फूलों की दुनिया भर में भारी मांग है। ये व्यावसायिक या कमर्शियल फूल माने जाते हैं और इनका व्यापार करोड़ों डॉलर का है।
0: अजीत जी, जब आपने कमर्शियल फूल की बात की तो मुझे एक बहुत ही रोचक घटना याद आ गई।
1: हाँ, वो क्या?
0: 17वीं सदी में नेदरलैंड्स में एक अनोखी आर्थिक घटना हुई जिसे ट्यूलिप मेनिया कहा जाता है।
1: ये घटना क्या थी?
0: उन दिनों यूरोप में ट्यूलिप फूलों की भारी मांग थी। मांग इतनी अधिक थी कि कहते हैं कि ट्यूलिप फूल के मात्र एक कंद की कीमत लगभग एक घर की कीमत के बराबर हो गई थी।
1: ये तो बड़ी रोचक जानकारी विमलेश जी। श्रोताओं, नेदरलैंड्स के रंग बिरंगे फूलों के खेत दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध हैं। मीलों तक लहराते हुए ट्यूलिप फूलों के खेतों को देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। जहां तक भारत की बात है, भारत का सबसे प्रसिद्ध ट्यूलिप गार्डन है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन।
0: तो अजीत जी, समाप्त करने से पहले एक और बड़ी रोचक बात श्रोताओं से साझा कर लेते हैं। ट्यूलिप के फूल आमतौर पर गंधहीन होते हैं। कुछ प्रजातियां ही हैं जिनमें बहुत हल्की सुगंध आती है। तापमान और रोशनी के अनुसार अपनी पंखुड़ियां खोल या बंद कर सकते हैं। ये अक्सर रात को लगभग बंद हो जाते हैं।
1: और सुबह होते ही अपनी पंखुड़ियां खोलकर सूर्य का स्वागत करते हैं, मानो कह रहे हो गुड मॉर्निंग सन।
0: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी ट्यूलिप के सुंदर फूलों की। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: तो हमारा प्रश्न है श्रोताओं कि मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: मूल रूप से ट्यूलिप फूल किस देश का है और इसका नाम ट्यूलिप क्यों पड़ा?
1: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800-44-0559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है समझदारी।
0: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि आपस में प्रेम और सहयोग की भावना के साथ रहने में ही समझदारी और सबकी भलाई है।
1: जी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है। मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?

0: 50 रुपये में से 35 रुपये घटाए तो बचे 15 रुपये।
1: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपये और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
2: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
1: मश्क।
3: होशियार,
1: समझदार।
3: पेंसिल तराश,
1: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर। सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
3: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
1: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
3: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम समझदारी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, तकनीकी निर्देशन बटी लैंग लिंगडो, वाचन स्वर शिमाइला परवेज और परवेज गौहर, ध्वनि अंकन मयंक कुमार, निर्देशन विमलेश चौधरी, निर्माण जगबंधु जाना तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है कैप्टन विक्रम बत्रा।
4: इस कार्यक्रम में कारगिल युद्ध के दौरान अपार वीरता का प्रदर्शन करने वाले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा के शौर्य का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार रणनीतिक और भौगोलिक रूप से कमजोर स्थिति में भी उन्होंने सियाचिन के टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया और अपने प्राणों की आहुति दे दी।
5: साथियों, सन 1999 में हुआ कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसमें सेना के युवा अधिकारी अग्रणी रहे। इन रणबांकुरों के साहस और शौर्य भरे कारनामों को जन जन ने पहचाना और इन रणबांकुरों की भारत की जनता से पहचान करवाई मीडिया ने। सन 1999 में मीडिया ने पूरे देश को सेना के साथ एक आत्मीय बंधन में बांध दिया। लोगों ने घर बैठे सैनिकों को मोर्चे पर लड़ते देखा।
6: साथियों, मैं हूं मेघना उपाध्याय और इस समय कारगिल की युद्ध भूमि से मैं आपसे मुखातिब हूं। जैसा कि आप इस समय देख रहे हैं, चारों ओर हमारी सेना का भारी जमावड़ा है। तो आइए बात करते हैं हमारे एक सैनिक से। तो आपने बताया कि आप छुट्टी पर जा रहे थे?
7: जी, पर हमारे लिए देश और पलटन पहले हैं, घर बाद में।
6: आप तो काफी समय से घर से दूर हैं, क्या घर की याद नहीं आती?
7: हाँ, याद तो आती है, परंतु देश की रक्षा हमारे लिए सब कुछ है। समाचारों से पता चल रहा है कि पूरा देश हमारे साथ है। जिस माँ के हम बेटे हैं उससे भी बड़ी माँ है हमारी भारत माँ। उसकी सुरक्षा को छोड़कर घर चले जाए हो नहीं सकता।
6: तो देखा साथियों, ऐसे हैं हमारे सैनिक, हमें इन पर नाज है।
8: वाह, अरे वाह, क्या बात कही है।
7: क्या बात है,
8: सुनकर ही जोश आ गया।
7: हाँ
8: भाई विक्रम, तुम तो अभी अभी छुट्टी पर आए हो और अब ये लड़ाई, शायद तुम्हें भी युद्ध में जाना पड़े। संभल कर रहना भाई।
9: युद्ध में तो जाना ही है दोस्त, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मैं या तो विजय तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।

ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के, जो कारगिल युद्ध के दौरान शेरशाह के नाम से भी मशहूर हुए। युद्ध के समय उनकी बहादुरी के किस्से सुन सुनकर लोग दंग रह गए। वे एक के बाद एक खतरनाक मिशन पर जाते रहे और देश एकजुट होकर उनकी सलामती की दुआ करता रहा। ऐसे थे 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विक्रम बत्रा। विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के छोटे से नगर पालमपुर में हुआ। हिमाचल एक ऐसा राज्य जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, ये मनोरम राज्य जांबाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां के रणबांकुरों ने संकट की घड़ी में कुर्बानियां देकर इतिहास रचा है, दुश्मनों के छक्के छुड़ाए हैं। कारगिल युद्ध में इस राज्य के लगभग 30 जांबाजों ने शहादत देकर कुर्बानियों की परंपरा को आगे बढ़ाया है। और इसी पावन भूमि पर जन्म लिया हमारे इस परमवीर विक्रम बत्रा ने। विक्रम बचपन से ही निडर और साहसी थे। सन 1994 में विक्रम ने एनसीसी के सदस्य के रूप में गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लिया और जब वहां से लौट कर आए तो वे अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुके थे और वो था भारतीय सेना में भर्ती। जुलाई 1996 में विक्रम ने भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लिया। आईएमए में ट्रेनिंग के दौरान बहुत सी चीजों ने उन्हें प्रभावित किया, जैसे वहां का अनुशासन, सैनिक प्रशिक्षण और उन पंक्तियों ने जो अकादमी की बरसों से चली आ रही परंपरा है। अपने देश की सुरक्षा, सम्मान और कल्याण हमेशा और हर बार सर्वप्रथम है। फिर है आपके सैनिकों का सम्मान, कल्याण और सुविधा। आपकी अपनी सुविधा, आराम और सुरक्षा हमेशा और हर बार आखिर में आते हैं। ये पंक्तियां विक्रम की भावनाओं, विचारों और कार्यों में रच बस गई थीं। 6 दिसंबर 1997 को उन्हें 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी में लेफ्टिनेंट के पद पर नियुक्त किया गया। युद्ध आरंभ हो गया था। एक जून 1999 को उनकी टुकड़ी कारगिल चली गई। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने कई सैनिक अभियानों में अपनी टुकड़ी का नेतृत्व किया और हर मिशन में सफलता ने उनके कदम चूमे। कारगिल युद्ध के समय उन्होंने कई मिशन में भाग लिया, कई पर्वत चोटियों यानी पॉइंट्स पर अपूर्व शौर्य दिखाते हुए उन पर कब्जा किया। मिशन वन, दिन 12 जून 1999। कारगिल में तोलोलिंग नामक स्थान पर भीषण युद्ध चल रहा था। 25,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये चोटी

0: सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण थी। इस चोटी से दुश्मन श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को लगातार निशाना बना रहा था। कैप्टन विक्रम बत्रा की यूनिट को वहां लड़ रहे सैन्य दल की सहायता के लिए भेजा गया। दो रात भयानक युद्ध चला और हमारी सेना ने कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में हम्प पर कब्जा कर लिया। वहीं से विक्रम ने अपने भाई विशाल को, जिसे वे प्यार से कुशु कहते थे, एक पत्र लिखा।
1: प्यारे कुशु, तुम रोज सुन रहे होगे कि यहां घमासान युद्ध चल रहा है। मैं 15,500 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लड़ रहा हूं। जान को पूरा खतरा है, कुछ भी हो सकता है। आज हम जीत तो गए हैं, लेकिन आज का दिन हमारी बटालियन के लिए दुख से भरा है, क्योंकि आज हमने एक अफसर को लड़ाई में खो दिया है। प्यारे कुशु, मां पिताजी को संभालना, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा भाई विक्रम।
0: ऐसा था इस युवा सैनिक अधिकारी का हृदय। विजय के उल्लास में भी अपने साथियों को खोने की कसक उनके मन में थी। मिशन टू, दिन 19 जून 1999, स्थान 5140, 15,000 फीट ऊंची ये वो चोटी थी जहां से दुश्मन हमारे दो हेलीकॉप्टर गिरा चुका था। इसे जीतना बेहद जरूरी था, क्योंकि ऊंचाई पर होने के कारण इस पॉइंट से दुश्मन हमारी सेना को भारी नुकसान पहुंचा रहा था। हमारी सेना के लिए केवल एक रात का समय था। विक्रम ने अपने सैनिकों को उस पर्वत की खड़ी ढलान पर चढ़ने का आदेश दिया। सैनिक चुपचाप पहाड़ी पर चढ़ते रहे। सुबह के 3:15 का समय था। हमारे सैनिक शत्रुओं के बंकरों के समीप थे। तभी दुश्मन की ओर से रेडियो सिग्नल आया।
2: शेरशाह, तुम क्यों आ गए बीच में? अरे तुम में से एक भी जिंदा नहीं लौटेगा।
3: एक घंटे में ही तुम्हें मालूम चल जाएगा कि ऊपर कौन रहेगा।
2: अरे देख लेंगे।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा का दुश्मनों के बीच भी इतना नाम था कि वे इन्हें उनके कूट नाम से भी जानते थे। दुश्मन को ये तो खबर थी कि भारतीय सैनिक उनकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं, पर शायद इस बात से वो बेखबर था कि हमारे सैनिक उनके इतने करीब हैं। विक्रम ने अपनी घड़ी की ओर देखा। 3:24 हो गए थे। 4:30 सूर्योदय हो जाएगा। उनके पास केवल 1 घंटे का समय था। बस फिर क्या था, उन्होंने दुश्मनों के बंकर पर धावा बोल दिया। और कुछ ही देर में विक्रम और उनके साथियों ने दुश्मन को वहां से खदेड़ दिया। 5140 पर अब हमारा कब्जा था। इस विजय के बाद एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा,
4: कैप्टन विक्रम, 5140 की विजय के बाद कैसा एहसास हो रहा है?
1: मैं और अधिक चोटियों पर कब्जा करना चाहता हूँ। ये दिल मांगे मोर।
5: क्या बात कही है?
4: ये दिल मांगे मोर। How nice, विक्रम जी।

0: सारे देश को नाज है और हमारी कामना है कि इसी तरह आपका विजय अभियान चलता रहे और चलता रहे।
1: धन्यवाद। इस प्रसारण को पूरा देश देख रहा था। लाखों दर्शकों ने उनका उत्साह भरा उत्तर सुना। ऐसे समय में जब लोगों की आंखें आंसुओं से नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे, विक्रम बत्रा

उसे नम थी और दिल डर से सहमे हुए थे। विक्रम बत्रा के इस एक जवाब ने सबके चेहरों पर एक मुस्कान छोड़ दी। देश का बच्चा बच्चा अब उन्हें जानने लगा था।

0: और अब आई बारी उस मिशन की जिसने विक्रम बत्रा को अमर बना दिया। मिशन 3 टाइगर हिल्स पिंपल पोस्ट 6 जुलाई 1999 की शाम। 13वीं जम्मू कश्मीर राइफल्स की कमान एक बार फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में थी।
1: हमें जो सूचना मिली है उसके अनुसार एक बात पक्की है कि हमें दुश्मन पर पीछे से हमला करना होगा।
2: जी
1: चलो संभल कर। अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। इशारा मिलते ही टूट पड़ना।
3: जी सर।
1: देखो तुम यही पोजीशन संभालो।
3: जी सर।
1: और तुम दाहिनी तरफ जाओ।
3: जी सर।
4: हमला करो। दुर्गा माता की जय। भारत माता की जय। चलो बच्चे भाई चलो।
0: दुश्मन उनके खूंखार हमले से घबराकर पीछे हटने लगा था। तभी विक्रम ने देखा कि उनका एक सहयोगी अफसर दुश्मनों से घिरा हुआ है। जब वो उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर दौड़े, उनके एक सूबेदार ने उन्हें रोकना चाहा।
5: साहब जी आप मत जाइए, मैं जाता हूँ।
1: नारायण तू भी बचवा रहा है, पीछे हट।
5: नहीं लेकिन साहब जी,
1: मैंने कहा ना पीछे हट जा, मैं जा रहा हूँ।
5: साहब जी
0: अभी विक्रम लेफ्टिनेंट नवीन को घसीटते हुए बंकर की ओर ले ही जा रहे थे कि दुश्मन की एक गोली उनकी छाती में आ लगी।
1: क्या हुआ तुम्हें? नहीं।
0: और तभी उन्होंने वीर गति पाई। उस दिन भारत ने पिंपल पोस्ट पर तो विजय पा ली, परंतु भारत मां का एक शेर सपूत शहीद हो गया। उनका पार्थिव शरीर पूरे सैनिक सम्मान के साथ जब उनके जन्म स्थान पालमपुर में लाया गया तो इस अमर शहीद के दर्शनों के लिए हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी।

0: आज उस शिखर का नाम कैप्टन विक्रम बत्रा शिखर है। उनके असाधारण शौर्य के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया। याद आती है एक बार फिर वही बात जो कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध में जाने से पहले अपने मित्र को कही थी।
1: मैं या तो विजयी तिरंगे को ऊंचा फहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा।
0: कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने दोनों वचन निभाए। उन्होंने दुश्मन को पराजित कर भारत के झंडे को

0.5140 पर फहराया और 0.4875 नंबर शिखर पर युद्ध में प्राण देकर बड़ी शान से तिरंगे में लिपट कर घर आए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैप्टन विक्रम बत्रा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। उमंग, उमंग,
2: उमंग। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं, मीडियम वेव के 483.1 मीटर अर्थात 621 किलो हर्ट्ज पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज रहे हैं। इसी के साथ हमारी आज की पहली सभा समाप्त होती है। हम फिर आपके लिए कार्यक्रम लेकर उपस्थित होंगे शाम के 4:30 पे। उस समय तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाले हमारे सभी सहेलियों सखियों को और सखा को दीपा माहेश्वरी
2: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
3: क्या बात है आरती, हम देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे पसीने में तरम तर हो रही हो आप और भागते भागते आ रही हो, क्या बात है। पूरी सखियों पूरी पसीने में हो रही हैं, ये ऊपर से लेके नीचे तक
2: क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है कि बता नहीं सकते। मतलब बाहर आप थोड़ी देर के लिए भी जाते हैं ना तो एकदम पसीना पसीना हो जाते हैं, इतनी गर्मी इतनी उमस हो रही है।
3: बात तो बिल्कुल सही है। और भाई देखो इसमें अपना सब है, हमारे सभी साथी बहुत ध्यान रख रहे हैं, हम सब भी ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार एक दूसरे को अगर याद दिला दिया जाए ना तो अच्छा रहता है। वो क्या कहते हैं ना, रिवीजन होते रहना चाहिए,
2: बिल्कुल होते रहना चाहिए। और गर्मी के ये जो दिन है ना इसमें पसीना जब बहता है, बहुत ज्यादा पसीना निकलता है जब हमारे शरीर से, तो बहुत ज्यादा हमें पानी की कमी अंदर हो जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम थोड़ी थोड़ी देर पर पानी पीते रहें, बहुत ज्यादा मत पिए लेकिन थोड़ा थोड़ा घूट घूट भर के पानी पीते रहें, तो शरीर में नमी बनी रहेगी।
3: और ऐसे पेय जो ठंडे होते हैं तो जैसे कि जलजीरा हो गया है या आम का पन्ना, इसका भी सेवन करते रहें, और अपना गन्ने का रस है इसका करते रहें, नारियल पानी लेते रहें, ताकि जो खनिज है मिनरल्स हमारे शरीर में पसीने के साथ साथ निकल जाते हैं उनकी कहीं पे भी किसी तरह से कोई कमी ना हो। और जरूरत ना हो तो भर दोपहरी में बिल्कुल बाहर ना निकले,
2: बिल्कुल
3: है ना। और साथ ही 11 बजे के बाद से तो ऐसा लगता है कि धूप जैसे तप रही है और हम 5 मिनट के लिए भी खड़े नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं आज तो जाना जरूरी है तो पूरे तरह से अपने आप को ढक कर जाए, हाथ पे सर पे भी हम स्टोल लगाती हैं महिलाएं, और अब तो बंडाना भी आ गए हैं जो कि हमारे सखा भाई सब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत तरह के अलग अलग आ गए हैं, तो उन सबको आप अच्छे से बिल्कुल अपने शरीर
2: बिल्कुल अपने को पूरा ढक के निकले जिससे कि धूप जो है वो बहुत ज्यादा आपको परेशान ना कर सके। और साथ ही आप जैसे खीरा है ककड़ी है इस तरीके जो पानी वाले जो फल है

0: जो सैलेड हैं वो आप ज़रूर खाएं,
1: बिल्कुल
0: और खाने से ज़्यादा आप इनका सेवन करें और पानी पिएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है
1: जी।
0: ये समय
1: और
0: अपने आप को
1: खाने में
0: बचा के
1: भी,
0: रखना।
1: जी और खाने में भी ऐसा नहीं है भाई, मन क्योंकि छुट्टियों के भी दिन चल रहे हैं ना, बच्चे
0: जी
1: भी आए हैं घर में और मेहमान भी हैं, कुछ ना कुछ तो अलग अलग तरह के व्यंजन तो बनते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि
0: जी
1: तला भुना ना हो, और अगर खाना भी पड़े तो उसको सीमित मात्रा में
0: जी
1: लें,
0: हाँ बिल्कुल।
1: और दूसरे दिन कुछ हल्का भोजन, हल्का इस तरह का रेसिपी
0: बिल्कुल,
1: बना
0: तो
1: लें
0: कोशिश करें कि हल्का फुल्का ही खाएं
1: जी।
0: जिससे कि कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इस मौसम में अगर हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं तो शरीर के ऊपर बुरा असर तो पड़ता ही है, क्योंकि हजम नहीं हो पाता ना वो चीज़,
1: जी
0: तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा हल्का खाना खाएं। अगर एक टाइम आपने भारी भोजन किया है तो आप दूसरे टाइम बिल्कुल हल्का लें,
1: हल्का हल्का
0: सैलेड
1: लें।
0: वगैरह ले
1: और
0: लीजिए।
1: बात जब इतनी व्यंजन की चल रही है तो हम ये भी बताते चलते हैं अपना श्रोताओं को, सखियों को, कि आज हम चावल के व्यंजन के बारे में
0: बिल्कुल,
1: बातचीत करेंगे।
0: तरह
1: तो
0: तरह के
1: आपके घर
0: व्यंजन,
1: में जी
0: तरह तरह के चावल के
1: तरह
0: व्यंजन
1: तरह के चावल के व्यंजन,
0: जी।
1: आपके घर में कोई स्पेशल बनता है क्या तो वो जरूर बताइएगा। वैसे संदेश आए हैं,
0: जी
1: पर हम
0: हाँ
1: चाहते हैं आपके घर में अगर चावल का कुछ ऐसा बनाना हो जाए तो आप क्या बनाएंगी, हमारी सखियां बताएं और हमारे सखा भी बताएं कि उन्हें किस
0: बिल्कुल
1: तरह का
0: बिल्कुल,
1: व्यंजन
0: क्योंकि
1: पसंद है।
0: आजकल सखा भी बनाते
1: हाँ
0: हैं
1: बिल्कुल।
0: हर घर में सखा भी इसमें भोजन बनाने में अपनी पूरी सहायता करते हैं सब कामों में, तो आप बताइए आपको कौन सी ऐसे कौन सा ऐसा व्यंजन है जो बहुत ज्यादा पसंद है, जो आप बनाते भी हैं और खिलाना आपको पसंद है।
1: बिल्कुल। और आरती, आज हमने हमारे जो भी सखी सहेली परिवार के सारे श्रोताओं को एक शब्द दिया है, आलोचना। तो शब्द यहाँ से स्टूडियो से आए हैं लेकिन आप तक पहुँचे हैं, तो आप बताइए इस
0: जी
1: शब्द आलोचना के लिए आपके क्या विचार हैं, क्या अनुभव हैं, और क्या आपको लगता है
0: बिल्कुल,
1: ये
0: आप क्या
1: काम,
0: सोचते हैं
1: क्या
0: इसके बारे
1: सोचते
0: में,
1: हैं इसके
0: क्योंकि
1: बारे
0: इसको
1: में।
0: सकारात्मक तरीके से भी समझा जा
1: बिल्कुल
0: सकता है और नकारात्मक तरीके से भी इसके पहलू हो
1: बिल्कुल।
0: सकते हैं।
1: और उसकी वजह से कई सारे जिंदगी में हम लोग ने अलग अलग तरह के अनुभव भी सब लोगों ने
0: जी हाँ
1: उसको जिया
0: बिल्कुल,
1: है ना, तो वो जरूर बताइएगा। और साथ में देखिए, बुजुर्गों में जो एक मोबाइल के प्रति प्रेम जो हम देखते आ रहे हैं, हम अपने घर के नीचे गार्डन में या कुछ ऐसा कॉमन एरिया होता है वहां देखते हैं, बड़े मतलब बच्चे तो मोबाइल की तरफ है ही आकर्षित,
0: हाँ
1: अब जो घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें भी मोबाइल देखने की आदत बढ़ती चली जा रही है।
0: बहुत ज्यादा
1: ठीक है, बढ़ रही है आदत, उसके फायदे भी हैं क्योंकि वो सीख भी रहे होते हैं कि टेक्निक क्या है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करें, अगर हम घर में अकेले हैं तो क्या क्या चीजें हमें इसके लिए जानकारी होनी चाहिए। और कुछ हमारे बड़े ऐसे भी होते हैं वो जो बहुत आसानी से
0: बहुत
1: चल फिर
0: हाँ
1: नहीं
0: बिल्कुल।
1: सकते, तो उनके लिए ये एक मनोरंजन का साधन भी हो जाता है। देखिए, इसके सकारात्मक
0: भाई
1: विचार भी हैं
0: हर
1: और
0: चीज के दो पहलू होते
1: नकारात्मक
0: हैं
1: गुण, हर
0: जी।
1: एक चीज के सिक्के के तो दो पहलू हमेशा होते हैं। तो बहुत सारी राय हमारे श्रोताओं ने तो लिख भेजी है, हम चाहते हैं आप और लिख के बताइए
0: कि
1: कि
0: इसमें
1: आपको इसमें
0: नकारात्मक पहलू क्या है
1: क्या
0: इसके
1: है।
0: और
1: जी
0: सकारात्मक क्या है, और
1: जी
0: साथ ही आज हम बात बात करेंगे साड़ियों के संसार लेकर आए हैं, तो
1: साड़ियों
0: तरह
1: के
0: तरह की
1: संसार में आज
0: साड़ियां
1: कहाँ चलने वाले हैं,
0: आज हम साड़ी लेकर आए हैं, कलमकारी साड़ी जो आंध्र
1: क्या
0: प्रदेश में
1: बात
0: बहुत
1: है,
0: की है।
1: बहुत सारी सखियों को ये प्रिय होगी साड़ी, है मुझे तो पूरा विश्वास है।
0: बिल्कुल,
1: तो बहुत सारे संदेश लिखने हमें, हमने अपने श्रोताओं को कह दिए हैं,
0: तो अभी
1: तो
0: गीत सुन लेते हैं पहले।
1: चलो चलते हैं।

0: यही तो सवाल हम आरती से कर रहे हैं कि भाई आरती आप हमारी कौन है?
1: हम आपकी सखी हैं और सभी सखियां जो हैं अब सुन रही हैं उनकी भी सखी हैं, सखाओं के
0: बिल्कुल,
1: भी। तो
0: हम
1: अब
0: सबकी हैं सखियां सहेलियां, और ये संसार है बातों का, ज्ञान का, मनोरंजन का और गीतों के सफर का, जहाँ बहुत सारी हम बातें करते हैं, बहुत सारी जानकारियां देते हैं। आज हम कलमकारी साड़ियों के बारे में बता रहे हैं।
1: बिल्कुल, साड़ियों के तो बारे में सुनने के लिए वैसे भी हमारी जो सखियां हैं, जो सखा तो इसलिए उतारू रहते हैं कि भाई चलो हम कोई गिफ्ट कर देंगे अपने
0: बिल्कुल
1: तो इस वजह से तो हम आज लेकर आए कलमकारी साड़ी। तो आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती और मसूलीपट्टनम कलमकारी साड़ियों की उत्कृष्ट डिजाइन और सुंदरता के जो जन्म स्थान, मतलब यहीं से ये साड़ियां निकली हैं। ये साड़ी कॉटन, मलमल और सिल्क जैसे फैब्रिक में आती हैं और ये पहनने में बहुत ज्यादा हल्की, आरामदायक और क्लासी लुक देती हैं, क्योंकि
0: बिल्कुल
1: हम लोग ऐसी साड़ियां ढूंढते हैं ना कि थोड़ी एकदम आरामदायक हो और बहुत ज्यादा भारी ना हो
0: बिल्कुल,
1: जो
0: क्योंकि
1: रोज।
0: अब आरती रोजमर्रा में पहनने की आदत उतनी बची नहीं है ज्यादातर महिलाओं की, तो उन्हें ऐसा लगता है कि जो बिल्कुल हल्की फुल्की हो, कंफर्टेबल हो और साथ में एक जो उनके लुक आए वो
1: हाँ,
0: बहुत
1: एक गरिमामयी
0: एलिगेंट,
1: लुक दे
0: गरिमामय
1: हमें।
0: लुक आए, तो कलमकारी साड़ियाँ कला और कहानी कहने की परंपरा का संगम है। ये हाथ से बनी होती हैं, ब्लॉक प्रिंटेड डिजाइनों के लिए ये साड़ियाँ हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। इनके अनूठे रूपांकन और जीवंत पैटर्न इन्हें पारंपरिक अवसर और आधुनिक पहनावे दोनों के लिए पसंदीदा बनाते हैं, क्योंकि उसमें जो प्रिंट होती है और हाथ से बनी होती
1: बिल्कुल
0: हैं, फूल होते हैं, कहीं पे जानवरों के डिजाइन होते
1: बिल्कुल,
0: हैं, कहीं पे ज्योग्राफिक पैटर्न होते हैं, तो बहुत
1: बहुत
0: सुंदर
1: बहुत
0: लगती है।
1: सुंदर लगती हैं।
0: जी
1: और कलमकारी शब्द फारसी शब्द कलम और करी से बना है, जो कि यानी कि कलम और कारीगरी,
0: जी
1: जिस तरह से इसमें कारीगरी करते हैं ना, जिसका अर्थ है कलम का शिल्प। ये प्राचीन कला जो शैली है वो 3,000 वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उत्पन्न कलमकारी कला में प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके जटिल हस्तचित्रण या ब्लॉक प्रिंटिंग का तकनीक अपनाई जाती है।
0: बिल्कुल, और परंपरागत रूप से अगर देखें तो इन साड़ियों में महाभारत, रामायण, पुराणों के पौराणिक दृश्यों को दर्शाया जाता है। अक्सर इनका उपयोग मंदिरों की पृष्ठभूमि के रूप में किया जाता था। उस समय समय के साथ साथ कला का यह रूप फिर धीरे धीरे विकसित भी हुआ। फिर इसमें पुष्प, पशु और जैसे हम बात कर रहे थे ना,
1: हाँ
0: ज्यामिति आकृतियों को, इनको भी सबको शामिल किया गया।
1: बिल्कुल, और इससे कलमकारी साड़ियां विभिन्न अवसरों के

0: लिए बहुत ज्यादा बहुमुखी बन गई। मतलब आप किसी भी अवसर पर इनको पहन सकते हैं। पर्यावरण के अनुकूल हैं, प्राकृतिक रंगों के उपयोग से इन साड़ियों को उनके विशिष्ट मिट्टी जैसे रंग और जीवंत रंग मिलते हैं। और कलमकारी डिजाइन आमतौर पर सूती, रेशम और यहाँ तक कि ऑर्गेन्जा जैसे कपड़ों पर तैयार किए जाते हैं, जो आरामदायक भी होते हैं और सुंदर भी दिखते हैं।
1: जी, अब एक अगर साड़ी बनानी होती है सखियों, तो उसमें कई तरह के चरण हैं, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसे पूरा करने के लिए अक्सर हफ्तों लग जाते हैं। अब इनमें जितनी जो मनमोहक कलाकृति है, उसमें कृष्ण रास लीला है, पार्वती विष्णु या महाभारत रामायण के दृश्य चित्रित होते हैं। ये दिव्य आकृतियाँ कलमकारी साड़ियों में एक आध्यात्मिक आकर्षण इसे जोड़ती है।
0: बिल्कुल, और अक्सर लोग जब मंदिर वगैरह जाते हैं तो इनको लेना पसंद करते हैं।
1: जी
0: और ये साड़ी कला के माध्यम से समृद्ध प्राचीन इतिहास को संरक्षित भी करती है। पौधों और सब्जियों से निकाले गए प्राकृतिक रंगों से इसे जीवंत रंग और अनूठी बनावट मिलती है। रंगाई और छपाई की प्रक्रिया के बीच एक निश्चित अंतराल कलमकारी साड़ियों की कारीगरी को और भी ज्यादा जटिल बना देता है।
1: बिल्कुल, और कलमकारी साड़ी बनाने में एक पीस को बनाने में आप ये समझिए कि 2 से 3 हफ्ता लग जाता है। बेहतर रंग अवशोषण के लिए कपड़ों को धोया जाता है, गोबर और दूध से उपचारित किया जाता है, गुड़ और लोहे के जंग से बने रंग का उपयोग करके वो काली रूपरेखा, जो एक उसमें बॉर्डर, हमेशा जो इसमें आकृति की
0: हाँ,
1: बॉर्डर होती है वो काले कलर की होती है, तो वो इस तरह से तैयार की जाती है। फिर जो नेचुरल यानी कि प्राकृतिक रंगों को धीरे धीरे एक एक परत दर परत फिर लगाया जाता है।
0: जी, कितना इतना अलग ही तरीके का एकदम प्रोसेस है
1: हाँ,
0: इसका।
1: और हम देखिए ना जाके दुकान पे फिर कितना बार्गेनिंग करते हैं,
0: हाँ,
1: हम जानते ही नहीं कि साड़ी, अगर आप मतलब एक प्योर कलमकारी साड़ी लेने जाते हैं तो कितना उसमें
0: बहुत
1: उसमें
0: मेहनत है।
1: कितनी मेहनत है,
0: और
1: परिश्रम है।
0: बिल्कुल, और पीले रंग के लिए हल्दी का प्रयोग होता है, लाल रंग के लिए अनार का छिलका और नीले रंग के लिए नील। प्रत्येक रंग लगाने के बाद धुलाई और सुखाने की आवश्यकता होती है। कुछ कपड़ों को रंग स्थायी रूप से लगाने के लिए उबाला जाता है। एक बार जब रंग कपड़े पर पूरी तरह से समा जाता है तो कारीगर हाथ से चित्रकारी करके या ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा डिजाइन बनाते हैं।
1: क्या बात है, और कलमकारी डिजाइनों को उत्तम फिनिशिंग और बारीकियां देने का काम केवल वर्षों के अनुभव और उत्कृष्ट कौशल वाले कारीगर ही कर सकते हैं। और डिजाइनों की रूपरेखा बनाने के लिए एक महीन नोक वाले ब्रश या स्याही से भरे लकड़ी के ब्लॉक का इसमें उपयोग किया जाता है।
0: जी, और रूपरेखा पूरी होने के बाद रंगों को भरा जाता है। फिर रंगों और प्राकृतिक बनावट को पक्का करने के लिए साड़ी को धूप में सुखाया जाता है। अच्छी तरह सूखने के बाद अतिरिक्त रंग को हटाने के लिए कपड़े को दोबारा धोया जाता है। और कलमकारी डिजाइन भारतीय पारंपरिक और कला और रचनात्मकता की चिरस्थायी विरासत का सम्मान करते हैं।
1: जी, कलमकारी साड़ियां आमतौर पर प्राकृतिक रंगों से बनाई जाती हैं, इसलिए इन्हें जब इनकी देखभाल होती है बहुत ध्यान पूर्वक करना चाहिए। इन्हें हमेशा अलग से धोइए, ठंडे पानी और हल्के डिटर्जेंट का प्रयोग करें। साड़ी को ज्यादा देर तक पानी में न भिगोएं, क्योंकि उसको अगर आपने घर में धोया भी है, ड्राई क्लीनिंग नहीं कराया, घर में धोया भी, तो बस डालना है और बाहर
0: बस,
1: निकाल लेना
0: हाँ,
1: है, और इसे छाया में ही सुखाना है, तेज धूप में कभी नहीं सुखाना है, कम आँच पर उल्टी तरफ से ही इस्त्री इसे करना है।
0: बिल्कुल, और सही देखभाल करने पर कलमकारी साड़ियां वर्षों तक चलती हैं। समय के साथ ये और भी मुलायम होती जाती हैं और इनके रंग भी बरकरार रहते हैं। क्योंकि सब कुछ हाथ से बनाया जाता है, इसलिए कोई भी दो साड़ियां पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती। मामूली अंतर ही इसकी प्रामाणिकता का सूचक होता है।
1: बिल्कुल सही कहा, और इसके जो नेचुरल रंग है, आध्यात्मिक डिजाइन, कलात्मक प्रक्रिया, समृद्ध परंपरा, संस्कृति और कला का उत्सव मनाते हैं। विकास, सद्भाव, संरक्षण और दिव्य आकर्षण का प्रतीक प्रत्येक कलमकारी साड़ी पीढ़ियों से चली आ रही एक कहानी बयां करती है। और
0: बिल्कुल,
1: ये सच में ये साड़ियां इतनी सालों तक चलती हैं कि नानी माँ को दे सकती है, माँ अपनी
0: बिल्कुल
1: बेटी को दे सकती है, तो आपके लिए एक धरोहर के रूप में ये साड़ी बनकर आती है।

0: हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है ना,
1: बिल्कुल,
0: कि साड़ियों के बिना हमारा मन ही नहीं लगता,
1: मन नहीं लगता। और अब हम आ जाते हैं अपने अगले विषय पे।
0: हाँ, वो भी तो कुछ ऐसी चीज है जिसके बिना बिल्कुल मन नहीं लगता,
1: मन नहीं लगता है
0: भाई। बात हम सिर्फ बुजुर्गों की या बड़ों की कर रहे हैं, लेकिन सबका हाल कुछ,
1: बच्चे बूढ़े जवान सबका एक ही है बिल्कुल, जिसके लिए सब लोग मतलब जिसके बिना जी नहीं सकते, वो है मोबाइल।
0: बिल्कुल। और ये स्मार्टफोन ना आरती, हमारे जीवन का जैसे एक अभिन्न अंग सा बन गया है।
1: जी,
0: जीवन को आसान बनाने के लिए हम तरह तरह के गैजेट्स पे देखो ना आजकल निर्भर होते ही चले जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, लोग अपने कामों को पूरा करने के लिए एक दूसरे पर विश्वास भी करते थे, लेकिन आज हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है वो है हमारा स्मार्टफोन।
1: जी, चाहे कॉल करना हो, चैट करना हो, खरीदारी करनी हो, पैसों का लेन देन करना हो या कुछ और, हमारा स्मार्टफोन सब कुछ संभाल लेता है। बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल का जो शौक है वो उनके लिए एक वरदान और अभिशाप दोनों ही हो सकता है। सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के जरिए बुजुर्ग अपने दूर रहने वाले बच्चों और रिश्तेदारों से आसानी से जुड़ सकते हैं। इस तरह से कह सकते हैं कि वरदान की तरह है।
0: बिल्कुल सही कहा। और ये किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या मदद की जरूरत पड़ने पर मोबाइल एक जीवन रक्षक साबित होता है। इसके अलावा मदद पहुंचाने के लिए जीपीएस से उन्हें ट्रैक करना भी आसान हो जाता है। मोबाइल पर वो अपनी पसंद के पुराने गाने हो या भजन हो, धार्मिक प्रवचन हो या समाचार, जो भी चाहे आसानी से देख सुन सकते हैं।
1: बिल्कुल, घर बैठे ऑनलाइन बिल जमा करना, दवाइयां मंगाना या बैंकिंग से जुड़े काम करने के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बस एक क्लिक पर वो सारा काम बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। कई मोबाइल फोन में स्वास्थ्य संबंधी एप्स भी होते हैं जिससे बुजुर्ग व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की निगरानी भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और साथ ही दवाओं का समय पता लगा सकते हैं, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं से जुड़ सकते हैं। मोबाइल की ई पुस्तकें भी होती है, संगीत

0: वीडियो जैसे कई मनोरंजक गतिविधियों ये हमें प्रदान करते हैं। तो बढ़ती उम्र में दिमाग को भी सक्रिय रखना पड़ता है ना, तो उस वो भी रहता है और मनोरंजन भी हमारे बड़ों को मिलता रहता है।
1: बिल्कुल। और मोबाइल फोन अब महज विलासिता के उपकरण नहीं रह गए हैं, ये जीवन रेखा की तरह बन गए हैं जो बुजुर्गों को अनेक लाभ पहुंचाते हैं। संचार और आपातकालीन सहायता से लेकर ऑनलाइन खरीदारी और बैंकिंग तक, ये उपकरण कई ऐसे फायदे प्रदान करते हैं जो वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल, सभी उपकरणों की तरह तकनीक को समझना और सही तरह से इसका उपयोग करना जरूरी है। लेकिन आज जिस तरह से युवाओं के साथ बुजुर्गों में फोन का प्रेम बढ़ रहा है, वो दूसरों से बातचीत करने के बजाय स्क्रीन देखने में, हम ऐसा देख रहे हैं कि स्क्रीन देखने में समय उनका ज्यादा बीतता है और इससे अवसाद हो सकता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि आप बहुत ज्यादा समय तक अगर इन सब चीजों में लगे रहते हैं ना, तो एक जो हमारा जो दिमाग है ना, वो उसमें लगे लगे अवसाद का शिकार होने लगता है, डिप्रेशन सा
0: बिल्कुल,
1: होने लगता है हमें।
0: क्योंकि वो बाहरी दुनिया से ऐसा लगता है
1: बिल्कुल
0: जैसे कट से गए और घंटों फोन पे गर्दन झुकाए अगर देखते रहते हैं तो एक किसी और ही दुनिया में चले जाते
1: बिल्कुल।
0: हैं, है
1: और
0: ना?
1: वो हमारे शारीरिक बनावट पे भी बुरा असर डालता है,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि एक ही तरीके के उसमें हम बैठे रहते हैं, एक ही तरीके के पोज बनाए हम बैठे होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा शारीरिक रूप से परेशान करता है। और हम
0: बिल्कुल,
1: सभी ने बाहर घूमते फिरते देखा ही है कि लोग अपने फ़ोन में इतना मगन रहते हैं कि वो अपने काम का आनंद ही नहीं ले पाते। और जब बुजुर्ग लोग परिवार के साथ समय बिताते हैं या अन्य गतिविधियों में स्क्रीन से चिपके रहते हैं, तो वो खुद को और अपने प्रियजनों को उन यादों से वंचित कर देते हैं जो जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बन सकती थी, जब वो साथ में सबके बैठ के बातें करते करें या बच्चों के साथ में खेलें या उनसे कुछ सवाल पूछें, उन्हें अपने अनुभव बताएं। तो छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जो खेलते हैं अपने दादी दादा के साथ में, तो वो जो समय है वो उनका रह जाता है।
0: बिल्कुल, वो कहीं छूटता सा चला जा
1: बिल्कुल
0: रहा है। एक रिपोर्ट भी आई आरती इसमें कि अब बच्चों की तरह बुजुर्ग में भी फैमिली टाइम के दौरान सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग के साथ साथ AI चैटबॉट से चैटिंग में लगे रहते हैं, ये इस तरह की रिपोर्ट आई
1: जी
0: है।
1: हाँ
0: और एक और रिपोर्ट आई है कि अगर स्मार्टफोन, टैबलेट और TV समेत सारे डिजिटल डिवाइसेस को मिला लिया जाए तो बुजुर्ग लोगों का स्क्रीन टाइम युवाओं से ज्यादा
1: बिल्कुल,
0: हो रहा
1: ये
0: है।
1: शोध में सामने आया है
0: जी
1: कि बुजुर्ग युवाओं से ज्यादा फोन देख रहे हैं। और बहुत ज्यादा फोन देखने की वजह से फोन से निकलने वाली जो नीली रोशनी होती है, वो जो ब्लू लाइट कहते हैं जिसे,
0: जी
1: वो जो नींद लाने वाला हार्मोन होता है वो उसको रोकती है, जिससे रात में ठीक से नींद नहीं आ पाती और सारे दिन की दिनचर्या बिगड़ जाती। जब हमारी नींद पूरी नहीं होती ना, तो सारा दिन अजीब सा रहता है, बिल्कुल सुस्ती
0: बिल्कुल,
1: छाई
0: और
1: रहती
0: हम
1: है।
0: शिकायतें करते रहते हैं आज हमारी नींद अच्छे से नहीं हुई, आज हम परेशान से हो रहे हैं। तो एक
1: बिल्कुल
0: कहीं कारण ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं देर रात तक हम फोन पे तो नहीं बैठे हुए थे।
1: बिल्कुल। और बुजुर्गों में फोन की लत डिजिटल डिमेंशिया भी, तनाव वाला भी और तनाव भी पैदा कर रही है, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम से दिमाग पर दबाव पड़ता है, वो भूलने लगते हैं हम चीजों को।
0: हाँ, ये बात तो है, बिल्कुल सही। और भूलने की आदत और चिड़चिड़ापन देखो ना बढ़ता चला जाता है। सोशल मीडिया या वर्चुअल दुनिया में समय अधिक बिताने से वो जो असल की दुनिया है उसमें अकेलापन उनका बढ़ने लग जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है फिर ये। इसके अलावा घंटों गलत तरीके से झुक कर बैठे बैठे रहना, फोन चलाने से गर्दन, रीढ़ की हड्डी, आप ये देखिए सब में उनमें दर्द की ये शिकायतें करने
1: बिल्कुल।
0: लगते हैं।
1: और फोन में उलझे रहने के कारण लोग टहलना बंद कर देते हैं, जिससे घुटनों के दर्द और मोटापे की समस्या घेर लेती है। और लगातार छोटी स्क्रीन देखते रहने से आंखों में सूखापन, जलन और धुंधलेपन की समस्या भी हो जाती है। और बहुत से बुजुर्ग अक्सर तकनीकी रूप से इतने ज्यादा बहुत ज्यादा जागरूक नहीं होते हैं, क्योंकि शहरों में, छोड़ दीजिए गाँव में या और किसी ऐसी जगहों पर जहाँ पे बहुत ज्यादा वो तकनीकी रूप से उसमें सदृढ़ नहीं हुए हैं, तो वो परेशानियों का कारण भी बन सकता है।
0: बिल्कुल, और डिजिटल साक्षरता की कमी के कारण बुजुर्ग अक्सर ऑनलाइन ठगों के जाल में भी फंस सकते हैं
1: बिल्कुल
0: और फंस भी जाते हैं। ऐसे में लॉटरी, बैंक या सस्ते सामान के जो लुभावने संदेश आते हैं ना,
1: हाँ
0: उसके चक्कर में भी आ जाते हैं। उसके बदले में वो अपनी गाड़ी, जो कमाई होती है मेहनत से कमाया हुआ पैसा, वो सब गंवा बैठते हैं। तो बड़ों के पास समय खूब तो रहता है, लेकिन ऐसे यूजर्स के लिए कंपनियां एंडलेस गेमिंग के कंटेंट को डेवलप कर रही है।
1: ऐसे गेम
0: तो
1: बना रहे हैं ना वो लोग, कि
0: जी
1: जिससे कि वो गेम में लगे रहें, फिर अगला लेवल करना है, अगला लेवल करना है, जैसे कि बच्चों में होता है वैसे ही
0: हाँ बिल्कुल,
1: बुजुर्गों के लिए भी अलग तरीके के गेम्स बनाए जा रहे हैं कि वो अगले लेवल पे जाने के लिए पैसा लगाएं, तो जिससे कि
0: तो
1: उनको
0: ये
1: फायदा
0: और
1: हो।
0: उनको लुभावना और आकर्षित करने वाली
1: जी
0: चीजें
1: हाँ
0: हो जाती है और वो फंस जाते हैं उसमें। तो अपनी पैसों को भी संभाल के रखें, वो ध्यान रखें कि हम इन सब चीजों से।
1: और सबसे बड़ी बात है दीपा कि हमको वास्तविक दुनिया से ज्यादा जुड़ना चाहिए बजाय इस तरीके की वर्चुअल दुनिया में रहने के।
0: बिल्कुल। और इसी को लेके देखो ना, कई सारे संदेश हमारे साथियों ने लिख भेजे हैं। ये एक संदेश कहता है कि बड़े बुजुर्ग

0: के हाथ में मोबाइल आने के अनेक फायदे हैं। वो अपने पुराने मित्रों से बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पर मुलाकात हो जाती है। शरीर साथ नहीं देता है मोबाइल, लेकिन तो साथ देता है, वो आपस में परिवार के साथ भी जुड़े रहते हैं। मोबाइल आने से उन्हें बहुत फायदा हुआ है।
1: बिल्कुल। और एक कविता भी एक हमारी सखी ने लिखकर भेजी है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। गुजरे हुए जमाने में घर के बड़े बुजुर्ग करते थे चिट्ठी पत्री मुलाकातों का इंतजार। जीवन सीधा सादा था, यारों का मेला भी था। तब गप्पों की नगरी में कोई नहीं अकेला था, सब सुख दुख के साथी थे, होठों पे मुस्कानें थी। जब से आई नेट की आंधी सब उसमें उड़ चले। उससे इससे सीखा उससे सीखा, ज्ञान का पान कर लिया। अब तो व्हाट्सएप चैटिंग करते करते थकते नहीं हैं उनके हाथ। वीडियो कॉल और सोशल मीडिया में खूब रंग जमाते हैं, हंसी मजाक और किस्से जमकर खूब सुनाते हैं। नींद उड़ गई उनकी, लेकिन रातों को भी बतियाते हैं। डर है इतना हमको कहीं ना हो वो बीमार, फ्रॉड कॉल्स में फंसे कभी ना हो जी का जंजाल। डॉक्टर से सब हाल बताकर मिनटों में दवा मंगाते हैं, बुजुर्ग बने हैं बड़े सयाने, दवा खोज कर खाते हैं। उस पीढ़ी से इस पीढ़ी के दौर में वो रम जाते हैं, नए जमाने के संग चलकर वे खूब मजे उड़ाते हैं। ये कविता उन्होंने भेजी है, बहुत
0: क्या बात
1: बढ़िया।
0: है, बहुत सुंदर कविता। और बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं एक अंतराल के बाद।
1: जी।

0: हम अंतराल के बाद एक संदेश सुनते हैं और फिर
1: बिल्कुल
0: बातों का सिलसिला
1: जी
0: जारी रखेंगे।
2: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
3: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
2: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
4: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
2: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
4: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
2: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: आरती, हमारे एक श्रोता ने संदेश लिखा है कि भाई देखिए, मोबाइल बड़े हो या बुजुर्ग या बड़े, सबके लिए अच्छा तो नहीं है हर वक्त इसका इस्तेमाल करना, पर घर में कुछ कुछ घर के लिए इसमें ये होता है कि क्लेश भी हो जाता है, जैसे कि पड़ोस के बुजुर्ग हमेशा मोबाइल पर भजन कीर्तन सुनते रहते हैं और वो भी थोड़ी ऊंची आवाज में, हमेशा उनका मोबाइल ऑन रहता है घर में भी, और उनके घर के भी सदस्य चिढ़ जाते हैं और इसी तरह बातों को लेकर के माहौल कुछ गर्म हो जाता है। वो ये कहती हैं कि अगर आपके पास, आप उनके पास प्यार से उनको ये कह दिया जाए कि 2 घंटे मोबाइल बंद कर दीजिए, बच्चों का पढ़ने का समय है, या 2 घंटे आप हमारे साथ बैठिए बातें कीजिए, तो उन्हें लगता है हमारे सखी को वो हमेशा मोबाइल पर नहीं बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहती हैं कि कुछ गलती उनकी भी नहीं है, या यूं कहिए कि कुछ इस तरह की समस्याएं हो जाती है, जैसे मोबाइल पर पूरा वॉल्यूम इसलिए उस पर सुनते हैं क्योंकि उन्हें कम सुनाई देता है। और साथ में कहती हैं फायदा तो मुझे यही नज़र आता है कि कुछ कुछ बातें करते रहते हैं, भजन कीर्तन सुनते रहते हैं, कभी कभी फिल्में भी देख लेते हैं, तो ठीक है, अति हर चीज़ की बुरी होती है, उसके चलते उनकी आंखों में भी प्रॉब्लम हो जाती है, उनके आंखों में ड्राइनेस आ जाता है, तो जब समय पर दवा नहीं मिलती तो उसके लिए भी वो हल्ला करते हैं, तो हर चीज़ का एक संतुलन उन्हें जरूरी है।
1: ये जो चीज़ें हैं इनकी, ऐसा नहीं कि सिर्फ बुजुर्गों के लिए, बड़े लोगों के लिए ही बुरी हैं, अगर कोई इफेक्ट होता है, अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो सभी के लिए, बच्चे हों उनकी भी आंखों पर खराब असर पड़ता है, बड़ों के लिए भी, है ना। तो कहने का मतलब बस इतना है कि आप उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझें, समझ के तब उसका उपयोग करें, ताकि आप किसी इस तरीके की चीज़ों में ना फंसें, जैसे गेम्स हैं या इस तरीके के जो विज्ञापन आते हैं, जो लॉटरी निकल आई आपके, ऐसे इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो उसमें ना फंसें, ठीक है। जैसे कि वो इतनी अपनी पूरी उम्र लगा के वो जिस पैसे को कमाते हैं वो अपनी कमाई को इस तरह गंवा ना दें, बस कहने का ये मतलब है, और बेहतर होगा इस तरीके की चीज़ों को हम समझें।
0: और एक और संदेश आया है कि बुजुर्गों में बढ़ता मोबाइल प्रेम और या फायदे, तो वैसे देखें तो मोबाइल का जो सही उपयोग करता है उसके लिए सही है, पर बड़े जो हमारे घर के बूढ़े हैं वो लोग मोबाइल चलाते हैं तो क्या बुराई है, वो कुछ देर कुछ देख लेते हैं, सीखते भी हैं कुछ दुनियादारी की बातें, उनका समय एक तरह से अच्छी तरह से गुजर जाता है, इस उम्र में कुछ बुरा तो वो शायद सीखते भी नहीं है, कुछ इस तरह से एक उन्हें लगता है कि एक तरह से अच्छा है मोबाइल फोन बड़े बुजुर्गों के लिए।
1: नहीं, बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल, ये हम कह भी ये नहीं कह रहे कि वो कोई चीज़ बुरी है, सिर्फ उन अपने शरीर का ध्यान रखते हुए चीज़ें करें, अपनी आंखों का ध्यान रखते हुए चीज़ें को करें, तो कोई चीज़ इस तरह से बुरी नहीं, बल्कि और फायदेमंद है कि वो अपना दवाइयाँ मंगा सकते हैं, अपना मनोरंजन कर सकते हैं, अपने जो रिश्तेदार हैं या जो जिनसे वो बात नहीं कर पाते, जा नहीं पाते मिलने, उनसे बातें कर सकते हैं, उन्हें देख के बातें कर सकते हैं वीडियो कॉल पर, बहुत फ़ायदे हैं। नुकसान बस इतना है कि बहुत ज़्यादा अगर उसका उपयोग करेंगे तो आंखों में या उसी पोस्चर में एक

0: के तरीके से बैठे हुए रहेंगे तो शरीर में परेशानी आ सकती है, और दूसरी चीज़ें चलना फिरना, जो आपसी बातें करते हैं वो चीज़ें छूटने लगती हैं कहीं पीछे, और वो इतना कभी कभी ऐसा लगता है कि वो उनको लगता है कि हाँ उसको मोबाइल को देखते देखते कि अगर कि हम ये चीज़ कर पाते काश हम, तो वो अवसाद में भी आने लगते हैं। बस ये चीज़ें जो बुरा असर अगर आप पे नहीं डाल लें तो वो उसका उपयोग बहुत अच्छा है,
1: बिल्कुल सही
0: जब
1: कहा।
0: तक आपके
1: और
0: ऊपर
1: जो
0: बुरा नहीं
1: अकेले
0: पड़े।
1: रहते हैं घर में, सीनियर
0: जी
1: सिटीजन,
0: जी
1: उनके बच्चे बाहर हैं या नहीं, उनके किन्हीं कारणों से उनके साथ रह पाते हैं, तो उनके लिए इसका बहुत फायदा है
0: जी बिल्कुल
1: कि वो अपने बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। यहाँ तक कि कई कई घरों में वो नई सीसीटीवी टाइप लगा दी जाती हैं,
0: हाँ
1: ताकि वो अपने आप को दिखा सकते हैं, अपने बच्चों को भी देख सकते हैं। और टेक्नोलॉजी सीखने में बुराई नहीं है,
0: बिल्कुल
1: बस
0: नहीं,
1: अगर उसका
0: सही
1: किस तरह से
0: तरीके से।
1: संयमित
0: और ये सिर्फ
1: इस्तेमाल करना है,
0: बुजुर्गों के
1: ये
0: लिए
1: हमें
0: नहीं, बच्चों के लिए भी है, हर एक हर इंसान के लिए जो भी इन सब इन गैजेट्स का उपयोग करा, सभी के लिए चीज़ें हैं।
1: जी
0: और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि थोड़ी सी सावधानी रखी जाए तो बुजुर्गों के लिए मोबाइल बहुत फायदेमंद होता है, मोबाइल के जरिए वो लोगों से जुड़ पाते हैं और कुछ काम स्वयं कर पाते हैं, जैसे बैंकिंग है, डॉक्टर से परामर्श करना है, टिकट बुक करना है। और बताती हैं कि वो, मेरे पापा भी पहले छोटा फोन चलाते थे, लेकिन कुछ वर्ष पहले जब हमने उन्हें स्मार्टफोन लेकर दिया तो उन्होंने बहुत जल्दी उसे चलाना सीख लिया। अब सुबह उठकर उसका सबसे पहले यही काम उनका रहता है कि वो वीडियो कॉल करके अपनी बहन से बात करते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। इसके अलावा वो विविध भारती भी फोन भी जो होता है उसको भी फोन पर ही सुनते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये।
1: तो चलो विविध भारती का ही कुछ एक गीत सुनते हैं।

ए बिंदिया लगाते बनी मन चली, छुप के छुपा के छुपी नजर बचा के गुप चुप चली।

0: तो अब हम कहाँ आ गए हैं?
1: अब हम दूसरे सेगमेंट पर आ गए हैं। अपने विषय है हमारा, जो हमने शब्द दिया था अपने श्रोताओं को कि आप इस पर अपने विचार लिखें, वो है आलोचना।
0: बिल्कुल, और बहुत सारे विचार आए हैं।

0: हैं, बहुत सारे उन्होंने अपने अपने अनुभव भी साझा किए हैं।
1: जी।
0: तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं। ये पहला संदेश कहता है कि अगर सकारात्मक हो तो उसे समीक्षा कहते हैं। किसी किताब, कविता, नाटक, फिल्म या कार्यक्रम की भली या बुरी विशेषताएं सहज सुंदर शब्दों में सूचित करना। आलोचना अगर जानबूझकर नकारात्मक वृत्ति से हो तो उसे कहते हैं बुराई, जिसमें ऐसे आलोचना ही ज्यादातर दिखाई देती है, जिसमें मत्सर अहंकार की गंध आती है।
1: और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि भाई आज का शब्द आलोचना है, ये एक बहुत ही अच्छा विषय है, और ऐसा देखा जाता है कि लोग वाह वाह तो सुनना चाहते हैं लेकिन आलोचना नहीं, ये लोगों की प्रियता की बात है। फिर वो है ना कि मीठा मीठा गप और तीता तीता थू, आलोचना ऐसे ही तिक्त रसयुक्त ऐसी चीज है। जो किंतु जो लोग आलोचना सुनने के प्रेमी होते हैं तो वो लोग अपने अपने में उससे कुछ सुधार भी कर लेते हैं। इस दृष्टिकोण से आलोचना एक सुधार का कार्य भी करती है।
0: क्या बात है, अच्छी उन्होंने जानकारी हमें हमारे श्रोता ने लिख भेजी। अब एक ये संदेश कहता है कि आलोचना किसी कार्य के अच्छे और बुरे दोनों पहलू को दिखाती है। ये सिर्फ एक बुराई नहीं बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है और उन्हें दूर करने के लिए मत देती है। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। बिना किसी निष्पक्षता या भेदभाव के होनी चाहिए आलोचना, रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए किसी के साथ आपके रिश्ते अगर बिगड़ जाते हैं, बल्कि मतलब रिश्ते बिगाड़ देता है ये, बल्कि इस तरीके से की जानी चाहिए कि सामने वाला इंसान उसे अपनी कमी सुधारने के लिए उसके बारे में सुनने का उसको मौका मिले और फिर वो उसे दूर करने में मददगार साबित हो।
1: बिल्कुल, एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना का सही अर्थ केवल किसी की कमी निकालना नहीं बल्कि किसी व्यक्ति विचार या कार्य को गहराई से समझकर उसके गुण और दोष को का निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। अगर आलोचना सही भावना और अच्छे उद्देश्य से की जाए तो इंसान को आगे बढ़ने और खुद को सुधारने की प्रेरणा देती है, लेकिन जब आलोचना केवल अपमान या निंदा के लिए की जाए तो मन को चोट पहुंचाती है। और हमें आलोचना से घबराने की बजाय उसे सीख की तरह से लेना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारी कमियां वही लोग बताते हैं जो हमें बेहतर बनता देखना चाहते हैं। और साथ ही हमें अपने किसी भी आलोचना करते समय अपने शब्दों पर विनम्रता और सम्मान बनाए रखना चाहिए, और सच्ची आलोचना वही है जो इंसान को तोड़े नहीं बल्कि उसे और भी बेहतर बनने की राह दिखाए। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने।
0: बिल्कुल सही कहा। और एक संदेश कहता है कि आलोचना तब अच्छी होती है जब मन में कटुता के भावना हो, सलाह हो, सुझाव हो, तब आलोचना लाभदायक मार्गदर्शक बन जाती है, सामने वाला हमेशा कृतज्ञ होता है।
1: बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि आलोचना किसी भी कार्य के अच्छे और बुरे पहलू दोनों को दिखाती है, ये सिर्फ एक बुराई नहीं है बल्कि एक ऐसी प्रतिक्रिया है जो इंसान को अपनी कमियों के प्रति जिम्मेदार बनाती है, उन्हें उनकी कमियों को बताती है, उनको दूर करने के लिए मत देती है कि आप कैसे दूर कर सकते हैं इस चीज़ को। ये सिर्फ बुराई नहीं बल्कि इंसान को सुधारने का एक तरीका है। ये बिना किसी भेदभाव के होनी चाहिए और आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए। आलोचना वैसे भी नहीं होनी चाहिए कि किसी के साथ आपके रिश्ते बिगाड़ दे, बल्कि इस तरीके से की जानी चाहिए कि वो सामने वाले को अपने कमी को सुधारने में मदद कर सके।
0: तो अब क्या करना चाहिए?
1: एक गीत सुनना चाहिए।
0: चलिए।

0: आरती, देखो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि भाई हमारे सिर्फ होश नहीं उड़े हैं, अब हमें कुछ तृप्त भी कीजिए क्योंकि हमें अब कुछ खाने की इच्छा हो रही
1: खाने
0: है।
1: की इच्छा। तो आज हम लेके आए चावल के व्यंजन, जो हमारे श्रोताओं ने खूब अच्छे से बहुत अच्छी ढेर सारी रेसिपी भेजी है, जिसको हम जाके घर पर भी बना सकते हैं। तो
0: पहली पहली रेसिपी कौन सी बताने वाली हैं आप?
1: पहली रेसिपी मैं बताने वाली हूँ गाजर और चावल की खीर।
0: क्या बात है।
1: मीठी मिठास से शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इसके लिए हमें चाहिए 400 ग्राम गाजर और 1/4 कप चावल और 1.5 लीटर दूध और आधा चम्मच इलायची पाउडर, 10 काजू भीगे हुए, 1 चम्मच घी और स्वाद अनुसार चीनी। आवश्यकता के अनुसार ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा आप वो से ले सकते हैं। और साथ ही इसकी विधि बता देते हैं। तो सबसे पहले गाजर को धोकर कद्दूकस कर लीजिए, फिर छोटे चावल को धोकर 30 मिनट तक पानी में भिगा कर रखें, काजू को भी पानी में भिगा कर रखें, फिर 2 चम्मच चावल और काजू में थोड़ा सा दूध डालकर उसको दरदरा पीस लीजिए। एक तरफ एकदम सिम पर फ्लेम पर दूध को उबलने के लिए रख दीजिए। अब एक कढ़ाई या पैन में 1 चम्मच घी डालकर गर्म कर लीजिए, फिर कद्दूकस किए हुए गाजर को 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर आप भून लीजिए। अब इसे इसमें आप दूध डाल दीजिए और तब तक पकाइए जब तक कि खीर थोड़ी गाढ़ी ना होने लगे। अब इसमें काजू का पेस्ट डालकर 2 मिनट और पकाइए, फिर इलायची का पाउडर और अपनी पसंद के जितने भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है वो आप इसको डाल दीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। यदि खीर ज्यादा गाढ़ी लग रही हो तो आप ऊपर से आधा कप दूध डालकर 1 मिनट और पकाइए और स्वाद के अनुसार आप इसमें चीनी डालिए और तैयार है आपकी खीर।
0: क्या बात है। तो देखिए ये खीर बन गई है चावल की। अब हम बता रहे हैं आपको चावल की पिन्नी। इसके लिए लेना है 2 कटोरी चावल का आटा, 1 गिलास दूध, आधा कटोरी चीनी, 5 इलायची, 15 के करीब बादाम, आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं, उसी तरह काजू लेना है, 1 सर्विंग स्पून किशमिश और 1 कटोरी देसी घी। बनाना है चावल की पिन्नी के लिए आप चावल के आटे को कोरा भून लें जिससे उसकी नमी निकल जाए, यानी थोड़ा मॉइस्चर उसका बाहर निकल जाए। अब उसमें आधा घी जितना आपने लिया है ना नाप का, उससे आधा घी डालें, 5 मिनट तक उसको भूनना है। फिर 1 गिलास जो दूध लिया है इस आटे में मिक्स करना है धीरे धीरे। अब पहले तो थोड़ा सा धीरे और उसके बाद फटाफट फटाफट चलाइएगा ताकि वो दूध उसमें एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और इसमें मावे का स्वाद आ जाएगा। और इसी समय चीनी डालें और अच्छे से मिक्स करके धीरे धीरे चीनी मेल्ट होने लगे तब तक आप उसको चलाइए। अब इसके बाद आपके पास जो पाउडर है आप वो पाउडर आप इसमें डाल सकते हैं और फिर आधा घी जो बचा है वो उसमें आप डालिए और फिर से इसमें जो भुने हुए बादाम है, काजू है जो आपने भून के रखे हुए हैं, चाहे तो भून लीजिए, ना चाहे तो आप थोड़ा दरदरा पीस के भी उसको डाल सकते हैं। और काजू किशमिश को अलग से घी में उसको थोड़ा सा भून लीजिए, वो डाल लीजिए। फिर इलायची को चीनी डालकर मिक्सी जार में पीस लें और ये पीसी हुई इलायची भी इसमें डाल दीजिए और फिर छिलके सहित इसको आप मतलब पीस लीजिए अलग से, तो खूब अच्छे से ये इलायची पाउडर बन जाती है। इसके बाद अब इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो आपने भून रखे हैं उसको डाल करके अच्छे से मिक्स कर दीजिए। ठंडा होने पर लड्डू इसके बांध लीजिए। आप देखिए कि चावल की जो चावल के आटे की पिन्नी है ये बनकर तैयार हो गई है।
1: बहुत ही बड़े लगते होंगे। और
0: हाँ बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। और अब एक

0: छोटा सा एक ले लेते हैं एक
1: चलिए।
0: रेसिपी। तो वो बताते हैं कि चावल का डोडा, इसमें बताते हैं कि बहुत ही अच्छा बनता है, जिसमें टमाटर की चटनी या दही के साथ खाया जाता है। ये सादा भी बनता है और हरी लहसुन के पत्ते, हरी धनिया के पत्ते, प्याज के पत्ते, टमाटर, आलू बारीक कटे हुए मिलाकर नमक मिर्च डालकर गूंद लेते हैं और हाथ से थपथपाकर तवे पर सेकते हैं। चाहे तो बेल कर भी बना सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है खाने में।
1: चलिए तो हम इसको भी खाकर देखेंगे, बनाकर देखेंगे,
0: जी
1: लेकिन अभी तो सुन लेते हैं हम
0: एक
1: ये
0: गीत।
1: गीत।

0: आरती, देखो ना, बातों का सिलसिला तो लगता नहीं कि कहीं खत्म हो सकता है ना, लेकिन हमारा समय की जो सुइयां
1: समय है, हमें सीमित समय दिया गया है बात करने के लिए,
0: तो आज तो हम लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि कल दो सखियां आकर के फिर ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत सारा होगा मनोरंजन। आप सभी को दीपा माहेश्वरी
1: और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।

0: आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर सुनीता दुबे को। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीता दुबे। बहुत बहुत स्वागत आपका विविध भारती के स्टूडियो में आके। कैसा लग रहा है आपको?
1: बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। और जो विविध भारती का जो पेनिट्रेशन जो रूरल में है वो शायद ही किसी भी दूसरे रेडियो चैनल का है। और चूंकि हमारे भारत के खुद गवर्नमेंट का है तो इसका जो सेल्फलेस वर्क है वो कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। और मेरे लिए गौरव की बात है कि आपने मुझे इनवाइट किया है आज।
0: क्या बात है, अपने बारे में सबसे पहले थोड़ा बताइए कि आप किस इलाके से आती हैं और मेडिकल की फील्ड में आप कैसे गईं?
1: वैसे तो मेरा इलाका पूरा भारत ही है
0: जी,
1: लेकिन ऑफ कोर्स मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप मुंबई में ही हूँ। और ऑफ कोर्स बोरीवली ही नज़दीक में है आपके स्टूडियो के पास। और क्योंकि हम लोग का नेटिव प्लेस भदोही से है,
0: बनारस के पास।
1: पहले बनारस होता था, अभी वो भदोही हो गया क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट बढ़ गया। और थोड़ी पढ़ाई मेरी वहाँ पे भी हुई है। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पे लड़कियों का एजुकेशन न के बराबर था। तो आई एम फर्स्ट चाइल्ड टू डू 12th। उसके बाद जो भी पढ़ाई हुई, चाहे वो मेडिकल की हुई या हमारी जितनी पब्लिक वर्क है, वो डेफिनेटली हर एक चीज़ में पहला ही है। लेकिन मैं पहली नहीं हूँ क्योंकि हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं वहाँ पे। हमारे दादाजी ने शुरू किया था सेवाश्रम इंटर कॉलेज, जो 1923 में बनी थी, और उसके माध्यम से। और आज एक डिग्री कॉलेज भी उस गाँव में है जहाँ पे बीएड है, आईएएस ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं। ऐसे लोग वहाँ से पढ़ के बाहर निकल रहे हैं और देश भर में नाम कमा रहे हैं और कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो जरूर मैं पहली थी लेकिन आखिरी नहीं हूँ। और जिस तरह से काम हमारी संस्था, हमारी मेडस्केप इंडिया कर रही है, उसके इंस्पिरेशन से कई लड़कियाँ हर एक फील्ड में, इवन उस कॉलेज के लड़के भी, बहुत सारे देश को डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं।
0: जी, एक ऐसे परिवार से आप आती हैं जिसका ताल्लुक एजुकेशन से है, और मेडिकल फील्ड में आने के दौरान वो क्या फोकस था कि जिंदगी में आगे मेडिकल की दुनिया में क्या करना है?
1: पहले तो पता नहीं था कि डॉक्टर बनेंगे क्योंकि डैड इतना जानकारी नहीं थी, बट उनके मन में अपने खुद के बाकी मेरे भाइयों को डॉक्टर बनाने की कल्पना रखते थे। और 12th के बाद अच्छे मार्क्स आए और वहाँ से थोड़ी ऐसी चेंज आई एक्चुअली से कि वहाँ पे एक बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज आई मेरी फैमिली में कि उन्होंने मेडिकल कराना चाहते थे और मैं पायलट बनना चाहती थी। तो डैड बोले कि आपको ड्राइवर क्यों बनना है, नीचे का ड्राइवर ऊपर का ड्राइवर। और जब मैंने बोला कि आप पूछे कि आप क्यों बनना चाहते हो, तो उस टाइम क्या होता है 12th स्टैंडर्ड में ऐसा भी होता है कि आप थोड़े से जो यूनिफॉर्म पायलट के होते हैं, जो लाइफस्टाइल होती है, वो आपको काफ़ी एज ए नो टीन एजर काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो ऑलवेज एक कल्पना थी कि हम ऐसा करें, तो वो तो नहीं हुआ। लेकिन डेफिनेटली डैड ने बोला वाइट, तो वाइट तो पता चला एप्रिन भी वाइट होता है। और इमीडिएटली मेरा मेडिकल एडमिशन भी हो गया। तो वहाँ

0: से एक नई दुनिया शुरू हुई जो मेडिकल की, जो काफ़ी सीरियस स्टडीज़ और हार्ड वर्क, आज भी वर्ल्ड की सबसे टफ स्टडी में मेडिकल ही मानी जाती है। और जो कि आई थिंक अगर मेडिकल मैंने नहीं लिया होता और आज जो भी काम कर रही हूँ उसका सारा स्वरूप जो स्टार्ट हुआ है, डेफिनेटली वही उसका एक ओरिजिन था। तो आई थिंक ईश्वर ने ज़्यादा बड़ी प्लानिंग की थी, मेरे छोटे आँखों से उस समय नहीं दिख रही थी, बट
1: जी,
0: आई एम वेरी थैंकफुल और प्राउड कि मैं मेडिकल की।
1: आप रेडियोलॉजी की एक्सपर्ट हैं, और जब आप मेडिकल कॉलेज से निकली तो क्या मिशन था आपके जहन में कि मुझे क्या करना है?
0: एक बहुत क्लियर था कि जो भी मैं करूं वो सेवा हो। ह्यूमैनिटी के ऊपर मेरा पहले से सेंसिटाइज भावनात्मक तरीके से, मुझे बचपन में ही पता था कि मैं पब्लिक के लिए काम करूंगी। मेडिकल ने वो जरूर रास्ता दिखा दिया जिसमें ये बता दिया कि आपको जो सेवा है जो आपके मेडिकल के द्वारा बहुत बड़े स्केल में हो सकता है, तो वहाँ से शुरू ही। रेडियोलॉजी की ब्यूटीफुल चीज़ ऐसी है कि हमें सब दिखता है, हम डार्क में भी देख सकते हैं। एक जो शरीर पूरी तरह से नॉर्मल दिखता है उसको स्कैन के द्वारा उसकी एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं, कैंसर है या किसी भी तरह का, पेट में पानी भरा हुआ है या बच्चा है। ऐसा ब्यूटीफुल यू नो ब्रांच हमारा जो रेडियोलॉजी, आपको विजडम और एनालिटिकल पावर देता है जो आपको देख सकते हो कि प्रॉब्लम कहाँ है। अब जब एक बार आप प्रॉब्लम आपको पता चल जाती है तो आप सॉल्यूशन पे भी उतनी गहरी से काम कर सकते हो। आई थिंक ये जो ब्रांच है वो टोटली मुझे लगता है बहुत ही ब्लेस्ड आइडेंटिफाइड है ईश्वर के द्वारा मेरे लिए, क्योंकि आज भी जो भी हम प्रॉब्लम देखते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, हमारे आसपास हो, उसमें सोचने के साथ साथ उसके सॉल्यूशन में भी काम करने की ताकत आई थिंक मुझे MBBS ने और रेडियोलॉजी ने दिया हुआ है।
1: क्या बात है, आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन यहां इस कार्यक्रम का पहला गाना हम लेना चाहते हैं, तो बताइए आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा?
0: मेरा ऑल टाइम फेवरेट है आशाएं।
1: ओ, इकबाल फिल्म का गाना है।
0: हाँ, ये मुझे बहुत पॉजिटिव फील कराता है और मुझे लगता है कि ये हर एक कॉमन पर्सन से जुड़ी हुई सॉन्ग है और
1: जी,
0: सबसे रिलेट होता है।
1: क्या बात है, सुनते हैं।

0: ये आशाओं से भरा गाना हमने अभी सुना, और मैं जानता हूं कि रेडियोलॉजी की फील्ड में काम शुरू करने के बाद आपने बहुत अलग अलग तरह की मुहिम छेड़ी, जहां आपने डॉक्टरों के भले के लिए काम किया, गर्ल चाइल्ड के लिए काम किया और फिट इंडिया के लिए भी काम किया। तो ये जो आपकी मुहिम है, ये कहाँ से आपके जहन में आया? क्योंकि जो मेडिकल का आपका अपना प्रोफेशन है, ये आपको इतना बिजी रखता है कि बाकी कुछ सोचने का वक्त कैसे मिला आपको?
1: मैं 2007 में प्रोफेसर फॉर्मर APJ कलाम को मिली थी जब प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने बोला था कि आपको, जब वो प्रेसिडेंट नहीं थे तो वो मुंबई में हम राजभवन में मिले, तब उनका कहना था कि आपको कोई भी, मतलब जो स्पेशली जो भारत में सबसे मेजर प्रॉब्लम है हेल्थ के प्रिवेंशन का, डिसीज़ प्रिवेंशन का, अगर आप रूरल हेल्थ में जाएंगे, मेरे गांव में भी जाएंगे, अगर मैं जाती हूँ 200 पेशेंट देखती हूँ तो उसमें कई पेशेंट ऐसे निकलते हैं कैंसर के लिए निकलते हैं, एस्थमा के निकलते हैं, और स्किन के प्रॉब्लम, छोटे छोटे प्रॉब्लम। तो उनका मन था कि हमने एक न्यू इंडिया का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है 14 पिलर, और मैं चाहता हूँ कि आप उसमें काम करिए। और चूंकि आप डॉक्टरों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे पहले ही 2011 में हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन मेडस्केप इंडिया है जो 21 मेडिकल बॉडी को एक साथ लाया, जिसमें हर स्पेशलिटी के लोग, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, डेंटल, आयुर्वेदा, फिजियो, ऑल केम टुगेदर।
0: इसका मकसद क्या था मेडस्केप इंडिया का?
1: ये एक ऐसा मिशन था कि सारे डॉक्टर हर ब्रांच के एक साथ आएं और होलिस्टिक जो मेडिकल है उस पे सहयोग दें और अपनी स्ट्रेंथ, जैसे मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं अपने रेडियोलॉजी का एक्सपर्टाइज करूँ, कोई कार्डियोलॉजिस्ट है हार्ट के लिए काम करे, होम्योपैथिक प्रिवेंशन में काम करे, आयुर्वेदिक, जो सब एक साथ एकजुट कर आएं और अपने विचारों को, और ऑफकोर्स एक मेरा मिशन भी था सेव द गर्ल चाइल्ड, क्योंकि डॉक्टर अपने आप में ही बहुत बिजी रहते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं कि कोई और भी सोशल वर्क करें जो उनके फील्ड के बाहर हो। तो इसके द्वारा लोगों को जोड़ा। 2008 में हमारा पहला सेव द गर्ल चाइल्ड शुरू हुआ था, क्योंकि वो फीमेल फिटिसाइड से शुरू हुआ था, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से हैं, राजस्थान हुआ या हरियाणा हुआ, ये सब जगह पे गर्ल चाइल्ड रेशियो, सेक्स रेशियो बहुत लो था 2008 में।
0: जी
1: तो उस विषय को, क्योंकि मैं खुद रेडियोलॉजिस्ट थी, लोग सोनोग्राफी के लिए आते थे, तो पहला क्वेश्चन जो ऑलरेडी मदर हैं, ऑलरेडी जिनको बेटी हैं, वो जरूर पूछती थी कि डॉक्टर मेरा बच्चा क्या है। तो डेफिनेटली वो मुझे इंटरनली, क्योंकि आप खुद लड़की हो, उत्तर भारत से हो, आपने वो लड़कियों की जिंदगी देखी हुई है,
0: जी
1: तो आपके मन में था कि आप अपने इस पर्टिकुलर नॉलेज को लोगों को एजुकेट करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। तो मेडस्केप का भी एक बड़ा रोल है कि वो डॉक्टरों को इन्वॉल्व करके पेशेंट जब आते हैं तो उनको किस तरह से उनका माइंड पॉजिटिव करें, गर्ल चाइल्ड के बेनिफिट्स बताएं, गवर्नमेंट्स के प्लान बताएं, किस तरह से उन्हें जोड़ें, ताकि वो अपनी बेटी को पैदा करने के लिए डरे नहीं। क्योंकि आज भी हम बोलें या ना बोलें, अनजाने में डाउरी है, एजुकेशन का प्रॉब्लम है, फाइनेंस का प्रॉब्लम है, आज भी एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी कम्युनिटी में चलता है, और बेटे को आज भी लोगों ने उसी लेगेसी की तरह देखा हुआ है। डेफिनेटली 2008 में आप जब बोलोगे कि क्या स्थिति थी, और आज 2026 में बोलोगे तो क्या स्थिति थी, वो बहुत, एक देखा जाए तो बहुत बड़ा ट्रांजिशन हुआ है, जो बहुत अच्छा है, क्योंकि सब इन्वॉल्व हो गए इस मिशन में। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट आया, खुद महिलाओं ने महसूस किया कि मैं लड़की होके कैसे दूसरी लड़की को नेगेटिवली सोचूं, वुमेन में थोड़ा वुमनहुड बढ़ा, महिलाओं के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, एजुकेशन आया, अवेयरनेस आया। तो डेफिनेटली आज जो लड़कियां कर रही हैं वो फ्रीडम है, आज हमारा सोशल मीडिया उन्हें हेल्प कर रहा है, तरह तरह की

0: चीज़ें अवेलेबल है जो स्पॉट पे उनको इम्पावर करती है। पहले ऐसा नहीं था, माँ बाप डरते थे कि एजुकेशन नहीं हुआ, अगर ज़्यादा एजुकेशन हुआ तो उनकी एज की लड़का मिलेगा कि हाँ मिलेगा कि नहीं, फिर मिला तो घर अच्छा है कि नहीं, तो उनके कई सारे क्वेरीज थे। बट जिस तरह से एजुकेशन ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इंडिया में, उससे एटलीस्ट पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर मेरी बेटी को परिवार नहीं मिला, एटलीस्ट वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है बिकॉज वो एजुकेटेड है, आज भी मेरा मोरल सपोर्ट रहेगा। बट
1: बिल्कुल
0: उस टाइम नहीं था, जब जो एरा में मैंने जो देखा था एज अ चाइल्डहुड, कि जो लेडीज़ थी वो ज़्यादातर आपको हाउस होल्ड वर्क की ट्रेनिंग देना चाहती थी ताकि आप अच्छे से लोगों को संभाल सको, क्योंकि उनका मानना था कि पेट के द्वारे दिल पे राज करते हैं, उनके मन में ये था। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुकिंग हाउस होल्ड वर्क को दिखाते थे। ऐसा नहीं कि हाउस होल्ड इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे लगता है कि वो इक्वली 360 डिग्री का इन्वॉल्वमेंट है, जहाँ पे हाउस होल्ड भी आपको देखना है, एटलीस्ट मैनेज करना है आपको, आपको करियर भी देखना है, आपकी फैमिली भी देखनी है, और आपका कोई मिशन है। वो तभी पॉसिबल है जब आप अपने को उस तरह से प्रिपेयर करते हो, एजुकेशन से, स्किल से, इन्वॉर्मेंट से, सपोर्ट से। तो आई थिंक दैट इज चेंज टूडे।
1: जी, इस संस्था को बनाने और लोगों को इससे जोड़ने के लिए, खासतौर पर एक्सपर्ट्स को जोड़ने के लिए, किस तरह की चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा?
0: कोई भी रास्ता है वो कभी इजी नहीं होता है। इवन हम घर पे भी अगर एक डिनर भी होस्ट करते हैं तो उसमें कई प्रिपरेशंस होते हैं, कई चैलेंजेस होते हैं, बट एंड रिजल्ट बहुत स्मूथ लगता है। तो मुझे ऐसा मानना है कि जब आप संस्था बनाए थे तो डेफिनेटली वो एजुकेशनल और मेडिकल हेल्प के लिए बनाया था, बट वो धीरे धीरे पूरे जो दायरा है मेडस्केप इंडिया का, वो पूरी मैसिवली मेजर इशू जो भी महसूस हुआ गर्ल चाइल्ड का हुआ, तो आज हम एजुकेशन पे काम करते हैं, शुरू किया था फीमेल फिटिसाइड से, स्किलिंग से, बहुत सारे हेल्थ के, बट नाउ टुडे वी आर स्पॉन्सरिंग द एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड, वो कोविड से शुरू किया है। फिर हमारे वी डॉक्टर्स कैंपेन था जो COVID-19 में काम कर रहा था, और पूरे देश के 17 स्टेट में हमारे मेडिकल के सपोर्ट चल रहे थे। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हमारा कोलैबोरेशन था, टेली ICU पूरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगे थे। 60% जो डेथ था वो रिड्यूस हुआ टेली ICU डालने के बाद। फिर हमारा फिट महाराष्ट्र गेटवे ऑफ इंडिया पे प्रोग्राम हुआ जो स्पेशली हेल्थ और फिटनेस को अवेयरनेस के लिए हुआ, और फिट महाराष्ट्र बलून फेस्टिवल भी हुआ। और ये मकसद इसलिए था कि जब हम कोविड में वो 2-3 साल जो डिप्रेशन, जो हमारे जो लॉसेस हुए, हमारे जो मेंटल स्टेटस था हमारी पूरी कम्युनिटी का ओवरऑल, उसमें ये थॉट प्रोसेस था हमारा कि अब नेगेटिविटी जा रही है, बलून रिलीज किया, सारे अपने वर्ड्स लिखे, और पॉजिटिविटी गेट ऑफ इंडिया के से आ रही। ऑफकोर्स पूरी CM से, डिप्टी CM, हेल्थ मिनिस्टर, सारे एक्टिवली सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन जो टेली ICU टेलीमेडिसिन का था उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था।
1: क्या बात है।
0: तो इसी तरह से हमारा फिट इंडिया भी प्रोग्राम है जो 2014 में शुरू हुआ, पायलट प्रोजेक्ट, और फिर उसमें 5 पिलर, ऑफकोर्स कलाम साहब को हमने एज अ मेंटोरिंग, एज अ गाइडेंस रखा, उनका इतना सिंप्लिसिटी था और देश के लिए जिस तरह से सोचते थे मुझे कहीं ना कहीं जरूर इंस्पायर किया, क्योंकि उन्होंने पहला वर्ड बोला था कि आप सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी के लिए क्यों कर रहे हो, मेडस्केप नेशनल अवार्ड लाए हो, हैंड राइटिंग कैंपेन डॉक्टर्स का कर रहे हो, इतने सारे डॉक्टरों के लिए ही आपके ज़्यादा दिख रहे हैं, तो वाई डोंट यू थिंक अबाउट 126 बिलियन पीपल, आप उनके बारे में सोचिए। तो आई थिंक वही एक फिट इंडिया का बहुत बड़ा आविष्कार हुआ हम लोगों के द्वारा, और
1: उन्होंने एक तरह से विस्तार दे दिया।
0: हाँ, उन्होंने दिया एक्चुअली मिशन, दिया एक शब्द दिए कि कभी भी आपका विजन इतना छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर कितने भी हुए बहुत बड़ी तादाद नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वही जो डॉक्टर आज के देश में है वही 140 बिलियन को केयर कर रहे हैं, उसी के सहारे पूरा देश हमारा हेल्दी है, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो प्रिवेंशन हो, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन हमारी खुद की ब्रांच हो। तो आई थिंक एक बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया कि एक विचार को उन्होंने एक पिलर बनाया, जो हमारी 5 पिलर, जैसे उन्होंने 14 पिलर बनाया, तो उनसे इंस्पायर करके हमने 5 पिलर प्रोग्राम फिट इंडिया का है।
1: जी, फिट इंडिया के बारे में और भी बात करेंगे, यहाँ आपकी पसंद का एक गाना सुनते हैं।
0: जीतेंगे जीतेंगे ये एक गाना है जो बहुत इंस्पायर्ड करता है, और उसमें हमारे देश की जो एनर्जी है और जो पॉजिटिविटी है, इस गाने में मुझे महसूस होता है। जब भी आप देखते हो अच्छा फील होता है, सुनते हो तो भी अच्छा फील होता है। इनफैक्ट हमारे डॉक्टर्स क्रिकेट लीग में वो गाना बहुत बार बार बजता रहता है।
1: अच्छा,
0: हमारे 2012 से हमारा डॉक्टर्स क्रिकेट लीग भी अक्रॉस इंडिया डॉक्टर्स उसको प्ले करते हैं।

0: तीन
1: वाह
0: से 3,500 डॉक्टर, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर, इनफैक्ट नेक्स्ट मंथ भी है, और 2 साल से तो इंटरनेशनली भी हो रहा है, नेक्स्ट हमारा मलेशिया में है, लास्ट ईयर दुबई में था, तो जीत भी रहे हैं, तो आई थिंक जीतेगा वो, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है गाना, आप
1: बिल्कुल
0: उसे प्ले
1: सुनते
0: कर
1: हैं।
0: सकते हैं।

0: 83 फिल्म का ये गाना हमने सुना जो भारत की जीत की बात करता है, और आप फिट इंडिया कैंपेन चला रही हैं और उसके अलावा ढेर सारे कैंपेन आप अलग अलग चला रही हैं, तो मुझे इसके बारे में और दूसरे कैंपेन के बारे में भी बताइए कि उनके ख्याल किस तरह से आए और कैसे आपने उस दिशा में काम करना शुरू किया, डॉक्टर सुनीता।
1: एक्चुअली अब ये होता है कि जैसे यू हैव क्लियर बहुत विजन है कि प्रॉब्लम अगर कभी दिखती है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए, जैसा कि कलाम साहब का बोलना था। तो जैसे कि CPR जो लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, और वो इंस्पिरेशन मेरा मेडिकल स्टूडेंट, मैं बॉम्बे हॉस्पिटल में थी कार्डियक डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पर मैं ऑलरेडी CPR क्रिटिकल केयर तो हम लोग देखते ही थे, तो वहाँ पे मैंने CPR तो हम लोग डेली करते थे, डीप फिब्रिलेशन ये सब करते थे। तो हमने पहला CPR मैंने गांव में किया था जहाँ पे एक लेडी कोलैप्स हो गई थी।
0: और क्या हुआ था वो, क्योंकि वो घटना थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: ऐसा था कि उनकी फैमिली में एक डेथ हो गया था और जो उनकी वाइफ थी वो जीना नहीं चाहती थी, यंग लेडी थी, एक बेटे के साथ थी, तो वो जीना नहीं चाहती थी तो कूद गई थी। और चूंकि वो कंडोलेंस का टाइम था तो वहाँ पे मैं भी पहुँची थी, और उसी टाइम उनको ऑलमोस्ट गांव वालों लोगों ने डिस्क्लेयर कर दिया कि लड़का तो गया और ये भी गई। लेकिन मैंने वहाँ पे CPR किया, उनके रिलेटिव के द्वारा माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दिया और फिर वो सर्वाइव हुई। पास के मेडिकल

0: शॉप से हमने इमरजेंसी मेडिसिन भी मंगाई, उसको दी और सरवाइव किया, और वो आज एक स्टेबल महिला है। लेकिन उसके साथ ही कई बार ऐसा हुआ कि हम ये BKC हमारे मुंबई में ही, एक बार मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो देखा कि एक कार रुकी है, भीड़ रुकी हुई है, बहुत सारे लोग एक आदमी को ज़मीन पर डाल के रोड पर भीड़ लगा के बैठे हैं, तो मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वो कोलैप्स हो गया। मैंने उनका पल्स देखा तो पता चला, CPR किया, थोड़ा स्टेबल हुआ, एम्बुलेंस आया और एम्बुलेंस एशियन हॉस्पिटल में लेके गई तो उनकी जान बच गई। ICU ने बोला आपने राइट ली, उनको CPR दिया। दो बार फ्लाइट में भी हुआ, एक इंडिगो फ्लाइट में हुआ, एक और फ्लाइट में हुआ जो दिल्ली से आ रही थी, तो एक पेशेंट कोलैप्स हो गया। तो नॉर्मली बोलते हैं डॉक्टर ऑन बोर्ड फ्लाइट में, तो जब अनाउंस किए तो उसमें मैंने जाके उनको CPR किया और स्टेबल हुए। फिर इनफैक्ट दो और पेशेंट की हालत ख़राब हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि थोड़ी पैनिक हो जाता है
1: बिल्कुल
0: ना,
1: बिल्कुल
0: फ्लाइट में थोड़ी पैनिक हो जाता है। तो सीनियर सिटीजन को हुआ था, तो वो भी एक जान बचाए। जब फ्लाइट रुकी तो उसको एम्बुलेंस आई, लेके गई। अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली बैंगलोर जा रही थी, तो वहाँ पे भी जब रनवे शुरू हुआ तभी एक पेशेंट एक लेडी के साथ थी, वो कोलैप्स हो गया, सडनली गिर गए। तो फिर वही होता है ना, डॉक्टर ऑन बोर्ड, तो डॉक्टर सुनीता दुबे गए और उनको CPR किया, स्टेबलाइज किया, और लकली क्या था, रन पे ही था तो उसको रुका गया और पेशेंट को शिफ्ट किए घाटकोपर में, ही वॉज स्टेबल लेटर ऑन। तो
1: लेकिन ये
0: अगर
1: कितनी ज़रूरी है, आपने इतनी सारी घटनाएं बताई कि किस तरह से आपने इमरजेंसी में CPR देके लोगों की जान बचाई। आम जनता के लिए ये अवेयरनेस और ये करते आना, ये सीखना कितना इम्पोर्टेंट है और इसके लिए आप क्या कर रही हैं?
0: पहले तो कि जो CPR ट्रेनिंग था हमारा, लाइफ सेविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें हम लोगों ने कई सारे बच्चों को, लिटिल डॉक्टर स्कूल में जो करते हैं बच्चे, अगर सीख लेते हैं, एक बच्चा सीखता है 20 को और सिखाता है, तो हम उसको लिटिल डॉक्टर बनाते हैं। उससे में हमारे दो फायदे होते हैं, एक तो डॉक्टर इंस्पायर्ड होता है कि हाँ मैं लिटिल डॉक्टर हूँ, और आगे भी एजुकेशन के लिए इंस्पायर्ड होते हैं, प्लस वो जान भी बचाते हैं। एक मेरा ही स्टूडेंट जो हमारी ही संस्था के द्वारा सीखा हुआ, जब उनकी प्रिंसिपल सडनली कोलैप्स हुई, इमिडिएटली वो बच्चा तुरंत CPR दिया और वो लेके गए। बाद में लोगों ने पूछा कहाँ सीखा, तो प्रिंसिपल ने कॉल किया कि आप हमारे पूरे स्कूल के लिए करिए। ऐसे होता है, आप लिफ्ट में जा रहे, सडनली कोई कोलैप्स होता है, इट्स वेरी टेक्स वेरी सेकेंड पीपल टू कोलैप्स व्हेन
1: जी जी
0: हार्ट फेल्स। तो यू नो उस टाइम जो इसका है, तो अभी हमने मिशन निकाला हुआ है कि भारत एक ऐसा देश बनना चाहिए कि वो पहला लाइफ सेवर डिक्लेयर हो वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली हमने गवर्नमेंट में भी कई चिट्ठी लिखी हुई है, आज से नहीं, 2014 से। तो अभी लास्ट फ्यू ईयर से, जैसे मनसुख मांडविया थे, उन्होंने भी एक्टिवली इस मैटर को लेकर CPR किया, हमारे पास फोटो आए। अभी करंट जो हेल्थ सेक्रेटरीज हैं उन्होंने भी CPR किया, उसके पहले डॉक्टर भारती थी, वो भी MOS की मिनिस्टर थी। तो कई लोगों ने CPR को एक्सेप्ट किया, और प्लस मेरी हर प्रोग्राम में CPR स्टेशन होता है,
1: जी जी
0: तो ये सर्टिफाइड प्रोग्राम है, हार्डली 5 मिनट लगता है उसको। एक्सप्लेनेशन के लिए आप कभी भी कार्डियोलॉजी से ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट प्रैक्टिकली करने के लिए आप इसको 5 मिनट 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है। और एक बार सीख लिए तो आप साल में एक बार और रिपीट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ में एक भी जान बचा पा रहे हैं तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट हो जाता
1: कंट्रीब्यूशन
0: है।
1: बिल्कुल
0: और अगर हमारे देश में, अगर देख, पहले 2% ही था, और हमारा टारगेट ये है कि 2030 तक 25% हमारी पॉपुलेशन को CPR आनी चाहिए,
1: जी
0: तो वो एक

मीडियम वेव 483.1 मीटर 621 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 4:30 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की दूसरी सभा। इस सभा में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी।

0: हेलो, गुड इवनिंग और वेलकम सभी लिसनर्स को।
1: आप सुन रहे हैं आपका अपना चहेता कार्यक्रम युववाणी, जहां हर आवाज में जोश है, हर बात में नई सोच और हर पल में मनोरंजन का रंग।
0: मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त स्मृति।
1: और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त अंकिता।
0: अगले कुछ समय तक हम आपके साथ आपके लिए लेकर आए हैं जानकारी, प्रेरणा, संगीत और मुस्कुराहटों से भरी एक शानदार प्रस्तुति।
1: दोस्तों, आज का हमारा ये सफर होने वाला है बेहद खास, क्योंकि कार्यक्रम में हम करेंगे कई दिलचस्प विषयों पर बात।
0: बिल्कुल, शुरुआत होगी कुछ प्रेरणादायक शब्दों यानी प्रेरक पंक्तियों के साथ, जो आपके शाम को नई ऊर्जा से भर देंगी।
1: साथ ही देंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि और याद करेंगे देश के प्रति उनके योगदान को।
0: इसके बाद हम चर्चा करेंगे रवि शास्त्री जी के बारे में।
1: और फिर आएगा हमारा खास और मजेदार सेगमेंट घूमता माइक्रोफोन, जहां हम निकल पड़ेंगे शहर की गलियों और खास जगहों की ओर, लोगों से करेंगे दिलचस्प बातें और जानेंगे उनकी राय बिल्कुल उनके अपने अंदाज में।
0: इतना ही नहीं, कार्यक्रम में होंगे कुछ हैरान कर देने वाले रोचक तथ्य और खेल प्रेमियों के लिए ताजा स्पोर्ट्स अपडेट भी।
1: और हाँ दोस्तों, इन सभी शानदार बातों के बीच हम सुनते रहेंगे आपके पसंदीदा सुरीले और धमाकेदार गाने, ताकि आपका मनोरंजन बना रहे लगातार।
0: तो कहीं जाइए मत दोस्तों, बस यहीं बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है जानकारी, प्रेरणा और मनोरंजन का खूबसूरत सफर। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये पहला प्यारा गाना।

0: अभी हम सुन रहे थे सुनिधि चौहान की आवाज में कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी गाना फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस से।
1: अब हम आपको ले चलते हैं प्रेरणा की ओर और सुनते हैं एक प्यारी कविता।
0: दोस्तों, कविताओं से एक खास दोस्ती सी हो जाती है ना, जब उस कविता को हम अपने जीवन में चल रहे सिचुएशन में जोड़ पाते हैं या फिर उन कविताओं से हम खुद को रिलेट कर पाते हैं। तो आज भी हमारे पास एक ऐसी ही कविता है, तो चलिए आपको सुनाते हैं।
1: छोटे सपनों से शुरू हुई मेहनत की एक नई कहानी, हर गली में उम्मीद जगी जब बड़ी स्वरोजगार की रवानी।
0: नन्हे हाथों की लगन से बड़ा बदलाव आता है, सूक्ष्म और लघु उद्योगों से देश आत्मनिर्भर बन जाता है।
1: किसी ने खोली छोटी दुकान, किसी ने नया हुनर अपनाया, अपने साहस और विश्वास से जीवन का दीप जलाया।
0: उद्योग केवल लाभ नहीं, रोजगार का सम्मान है, हर उद्यमी के संघर्ष में भारत का अभिमान है।
1: आओ मिलकर प्रण ये ले, हर प्रतिभा को पहचान देंगे, मेहनत करने वाले हाथों को सफलता का आसमान देंगे।
0: इन्हीं प्रेरणादायक पंक्तियों को सुनते हुए कड़ी मेहनत से अपने कार्य में अग्रसर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्यारी सी कविता आपके लिए, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो चलिए इसी के साथ आपको दूसरे गाना की ओर ले चलते हैं और सुनाते हैं आपको अगला गाना।

0: अभी हम सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज में तू ही जुनून तू ही करार गाना फिल्म धूम 3 से। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री और बच्चों के चाचा नेहरू के बारे में।
1: आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहे हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, महान स्वतंत्रता सेनानी और आधुनिक भारत के शिल्पकार जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी पुण्यतिथि पर।
0: पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1879 को इलाहाबाद में हुआ था। वे एक ऐसे दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत को नई दिशा देने का कार्य किया था।
1: महात्मा गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल भी गए। देश की आज़ादी के लिए उनका संघर्ष और

0: समर्पण भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब देश अनेक चुनौतियों से जूझ रहा था, तब नेहरू जी ने भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक और आधुनिक राष्ट्र बनाने की जिम्मेदारी संभाली। उनके प्रयासों से बड़े बड़े बांध, कारखाने, वैज्ञानिक संस्थान और शैक्षणिक संस्थान स्थापित हुए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की नींव भी उनके कार्यकाल में रखी गई ताकि भारत का युवा विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना सके।
1: नेहरू जी ने हमेशा शांति, एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। वे मानते थे कि भारत की असली शक्ति उसकी विविधता में एकता है। उन्होंने पंचशील सिद्धांतों के माध्यम से विश्व शांति और देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया।
0: और बच्चों के प्रति उनका विशेष स्नेह जग जाहिर था। वे कहते थे कि बच्चे देश का भविष्य हैं। इसी प्रेम के कारण उनका जन्मदिन 14 नवंबर आज भी पूरे भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
1: संस्कृति मन और आत्मा का विस्तार है। असफलता तभी आती है जब हम अपने आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत भूल जाते हैं। समय वर्षों के बीतने से नहीं मापा जाता, बल्कि किसी ने क्या किया, क्या महसूस किया और क्या हासिल किया, इससे मापा जाता है। उनके प्रेरणादायक विचार आज भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
0: पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जीवन त्याग, समर्पण और राष्ट्र प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने जिस आधुनिक भारत का सपना देखा था, उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आज भी सभी की है।
1: आइए उनकी पुण्यतिथि पर हम यह संकल्प लें कि देश की एकता, शिक्षा, प्रगति और मानवता के मूल्यों को हमेशा सर्वोपरि रखेंगे।
0: भारत माता के इस महान सपूत को सत सत नमन एवं निमंत श्रद्धांजलि।
1: तो दोस्तों, हमने कुछ लोगों से भी बातचीत की नेहरू जी के बारे में, तो आइए सुनते हैं उनसे की गई बातचीत।
2: शाश्वत शिवम और आज मैं नेहरू जी के बारे में अपने विचार आपसे साझा करना चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा, सोच और मेहनत से हम देश का भविष्य बदल सकते हैं। नेहरू जी का मानना था कि युवा ही राष्ट्र की असली ताकत है, इसलिए उन्होंने विज्ञान, तकनीक और शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी। उन्होंने देश को आधुनिक बनाने के लिए बड़े बड़े संस्थानों की स्थापना की और हमें एकता में शक्ति का संदेश दिया। आज के युवाओं के लिए उनकी सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें खुले विचारों वाला, जिम्मेदार और देश के प्रति समर्पित नागरिक बनना चाहिए। अगर हम अपने सपनों के साथ साथ देश के विकास के बारे में भी सोचें, तो हमारी ओर से वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी नेहरू जी को। धन्यवाद।
3: नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार ओझा है और आज मैं नेहरू जी के बारे में अपने विचार आपसे साझा करना चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने हमें सिखाया कि शिक्षा, सोच और मेहनत से हम देश का भविष्य बदल सकते हैं। नेहरू जी का मानना था कि युवा ही राष्ट्र की असली ताकत है, इसलिए उन्होंने विज्ञान, तकनीक और शिक्षा को हमेशा प्राथमिकता दी। उन्होंने देश को आधुनिक बनाने के लिए बड़े बड़े संस्थानों की स्थापना की और हमें एकता में शक्ति का संदेश दिया। आज के युवाओं के लिए उनकी सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें खुले विचारों वाला, जिम्मेदार और देश के प्रति समर्पित नागरिक बनना चाहिए। अगर हम अपने सपनों के साथ साथ देश के विकास के बारे में भी सोचें, तो हमारी ओर से वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी नेहरू जी को।
4: मेरा नाम मंजू कुमारी है। मैं नेहरू जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। नेहरू जी ने कहा था, अपना सुधार समाज की सबसे बड़ी सेवा है। उनकी इस युक्ति में मेरा पक्का विश्वास है। यदि युवा पीढ़ी, खासकर आज की युवा पीढ़ी, खुद को सही दिशा में प्रेरित कर सही सोच और सही आचरण रखे, तभी हम अपने देश के सुखी भविष्य के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। नेहरू जी का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है, बल्कि समाज के विकास में ईमानदारी से अपना योगदान देना है।
1: तो ये थी हमारी कुछ लोगों से हुई बातचीत जो आपने अभी सुनी, और अब समय हो चला है आपको एक गाना सुनाने का। तो आइए सुनते हैं ये गाना।

0: तो श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे हरिहरन जी की मधुर आवाज में भारत हमको जान से प्यारा है फिल्म रोजा से।
1: अब हम चर्चा करेंगे भारतीय क्रिकेट जगत की एक ऐसी शख्सियत की जिसकी आवाज में जोश है, व्यक्तित्व में आत्मविश्वास है और खेल के प्रति समर्पण अद्भुत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रवि शास्त्री जी की।
0: रवि शास्त्री जी का जन्म 27 मई 1962 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ था। बचपन से ही उन्हें क्रिकेट में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और लगन के बल पर भारतीय क्रिकेट टीम में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वे एक शानदार ऑलराउंडर रहे जिन्होंने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में देश को कई यादगार जीत दिलाई।
1: रवि शास्त्री जी ने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए कई महत्वपूर्ण मुकाबले खेले। वे अपनी शांत सोच, आत्मविश्वास और मजबूत रणनीति के लिए जाने जाते थे।
0: वर्ष 1985 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन ने विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उस टूर्नामेंट में उन्हें चैंपियन ऑफ द चैंपियंस का खिताब मिला और पुरस्कार स्वरूप उन्हें एक ऑडी कार भी दी गई, जो उस समय भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मानी गई।
1: रवि शास्त्री जी केवल मैदान तक ही सीमित नहीं रहे। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद उन्होंने कमेंट्री की दुनिया में अपनी धमाकेदार आवाज और उत्साहपूर्ण शैली से लोगों के दिल में जगह बनाई।
0: उनकी कमेंट्री में जो ऊर्जा और रोमांच होता है, वह क्रिकेट प्रेमियों को मैच से बांधे रखता है। उनका प्रसिद्ध अंदाज ट्रेस अ बुलेट और व्हाट अ प्लेयर आज भी क्रिकेट प्रेमियों के बीच बेहद लोकप्रिय है।
1: उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में भी कार्य किया और टीम को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने विदेशों में कई ऐतिहासिक जीत हासिल की। खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ाना और टीम में जीत का जुनून पैदा करना ही उनकी विशेषता।

0: रही। रवि शास्त्री जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि इंसान मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, तो सफलता निश्चित रूप से उसके कदम चूमती है। वे युवाओं के लिए प्रेरणा है कि सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच कितनी आवश्यक होती है।
1: बिल्कुल, तो आइए उनकी जयंती पर हम सब मिलकर इस महान क्रिकेट व्यक्तित्व को नमन करें और उनके योगदान को याद करें।

0: आइए उनकी जयंती पर हम सब मिलकर इस महान क्रिकेट व्यक्तित्व को नमन करें और उनके योगदान को याद करें।
1: खेल के मैदान से लेकर कमेंट्री बॉक्स तक रवि शास्त्री जी ने हर भूमिका को पूरे जुनून और ईमानदारी से निभाया है। तो चलिए उनको याद करते हुए सुनाते हैं आपको ये गाना।

0: मैगजीन वर्कशॉप पे रेडियो रिपोर्ट के बारे में।
1: आज बिहार सरकार और यूनिसेफ के केजीबीवी वार्डन के लिए क्षेत्रवार मासिक धर्म स्वच्छता पर प्रशिक्षण अभियान शुरू किया गया। किशोरियों के स्वास्थ्य, गरिमा और स्वच्छता संबंधी व्यवहार को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद बिहार सरकार द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से बुधवार को कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की वार्डन के लिए मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन MHM तथा जल स्वच्छता एवं स्वच्छ व्यवहार वॉश पर राज्यव्यापी उन्मुखीकरण अभियान की शुरुआत की गई। 28 मई को मनाए जाने वाले विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस से पहले 25 से 29 मई तक आयोजित किए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य बिहार के आवासीय विद्यालयों में पढ़ने वाली किशोरियों के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और सहयोगपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करना है। बिहार शिक्षा परियोजन परिषद के सिविल वर्क मैनेजर श्री भोला प्रसाद जी ने कार्यक्रम के आयोजन में यूनिसेफ के त्वरित सहयोग और सहभागीकरण की सराहना की। तो आइए सुनते हैं श्री भोला प्रसाद सिंह का ये संवाद।
2: ये जो कार्यक्रम आज आयोजित हो रहा है, ये स्वच्छता और जो माहवारी स्वच्छता है उसके ऊपर है ये कार्यक्रम। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक भारत सरकार से संपोषित एक कार्यक्रम चलाती है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसमें 7 छात्रावास का संचालन होता है। इसमें किशोरी बच्चियां रहती हैं जो 6ठे क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक में पढ़ती हैं, वही इसमें रहती हैं। उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था है और रेसिडेंशियल व्यवस्था है, सारा कुछ उसी हॉस्टल के अंदर उनके लिए इंतजाम किया गया। क्योंकि ये किशोरी बच्चियां हैं तो इनके बीच जो माहवारी स्वच्छता की बात है उसमें इनको अवेयर करने के लिए यह कार्यक्रम किया गया है, यूनिसेफ की मदद से किया गया है। यूनिसेफ ने बहुत कम दिनों में इस कार्यक्रम को मूर्त रूप दिया है। एक्चुअली हम लोग एक बिहार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार कार्यक्रम चलाते हैं, जो सारे स्कूल्स में जो स्वच्छता के इंडिकेटर्स हैं उस पर उनके रैंकिंग के लिए बेंचमार्किंग सिस्टम है। उसी के क्रम में ये बात हुई तो राज्य परियोजना निदेशक जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के हैं, उन्होंने कहा कि एक बच्चियों के बीच जो माहवारी स्वच्छता है उस पर जागरूकता लाने के लिए एक कार्यक्रम यूनिसेफ करे, जिसपे यूनिसेफ ने ये कार्यक्रम किया है। और आज का जो ये कार्यक्रम है इसमें उन्हीं चीज़ों पे बात हो रही है। इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास की वार्डन और जो संबंधित जिला के डिस्ट्रिक्ट जेंडर कोऑर्डिनेटर हैं वो प्रतिभागी हैं। हम लोगों का उद्देश्य ये है कि इनमें जो अवेयरनेस के इश्यूज हैं वो इनको बताएं और ये नीचे जा करके इनको जो बच्चियां हैं उनके बीच प्रसारित करें और बच्चियां इसका पालन करें। और दूसरी बात ये होगी कि बच्चियां यदि सीखेंगी स्वच्छता के इंडिकेटर्स को तो अपने घर में जा करके या अपने सहेलियों की भी जो आस पड़ोस की बच्चियां होंगी उनमें भी इस चीज़ को प्रसारित करेंगी। तो हमारा उद्देश्य मूल रूप से यही है कि किशोरियों के बीच जो माहवारी स्वच्छता का जो जितने इंडिकेटर्स हैं, जितने चीज़ें हैं उसकी जानकारी देना और उसका पालन करवाना। खास करके आज का दिन शुरुआत करने के लिए रखा गया इसलिए कि कल 28 मई को विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस है, उसी के आलोक में हम लोग पहला आज शुरुआत किए हैं। इस तरह का जो कार्यक्रम है वह अन्य 5 जगहों पे भी किया जाना है। पूरे बिहार के जो 647 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय छात्रावास है उनके वार्डन और पूरे 38 जिले के जनरल कोऑर्डिनेटर्स के लिए कार्यक्रम है। कुल मिलाकर के 6 लोकेशन पे होना है। पहला लोकेशन आज हम लोग दे रहे हैं, इसके अलावा 5 अन्य लोकेशन पे आने वालों दिनों में होना है जो जून के मध्य तक समाप्त हो जाएगा। थैंक यू।
0: यूनिसेफ अधिकारियों ने बिहार सरकार के साथ मिलकर मासिक धर्म स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाने तथा विद्यालयों में वॉश व्यवस्थाओं को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई ताकि प्रत्येक किशोरी के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए मासिक धर्म स्वच्छता को बढ़ावा देने की योजना लागू कर रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान PIP में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर धनराशि स्वीकृति की जाती है। योजना का प्रमुख उद्देश्य किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: तो श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे सिद्धार्थ भसरूर की आवाज में परवाह नहीं गाना फिल्म MS धोनी से। तो चलिए श्रोताओं, अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल हाई

0: जागरूकता बढ़ाना, किशोरियों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाले सैनिटरी नैपकिन तक पहुंचे और उपयोग को बढ़ाना ताकि पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सैनिटरी नैपकिन का सुरक्षित निपटान सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, DOSLE सचिव और जल शक्ति मंत्रालय के सचिव एक साथ मिलकर उस पर चर्चा की।
1: तो चलिए सुनते हैं यूनिसेफ से जुड़े वाटर सैनिटेशन और हाइजीन ऑफिसर सुधाकर रेड्डी से ये बातचीत।
2: यूनिसेफ एक विश्व संगठन है जो बच्चों के अलग अलग मुद्दों पे काम करती है। बिहार में खास करके हम लोग बच्चों का स्वास्थ्य, बच्चों के पोषण, बच्चों के संरक्षण, बच्चों के शिक्षा, इस तरह के इश्यूज़ पे बिहार सरकार के साथ अलग अलग विभाग के साथ मिलकर हम लोग काम करते हैं। और आज की जो यहाँ होटल चाणक्य में जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के वार्डन के साथ जो एक दिवसीय कार्यशाला चल रहा है वो मुख्यतः विद्यालयों में और KGBV हॉस्टल्स में पेयजल, साफ सफाई, स्वच्छता और खास करके माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर ये कार्यशाला आयोजित किया गया है। यूनिसेफ का एक मैंडेट है कि हमारे जितने भी विद्यालय हैं और हॉस्टल्स हैं वहाँ पे हमारे बच्चों के लिए एक स्वच्छ और स्वस्थ माहौल बने रहें, उसके लिए जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं खास करके पेयजल, साफ सफाई, शौचालय की व्यवस्था, यूरिनल की व्यवस्था और माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए स्कूल्स में खास करके लड़का और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो और माहवारी स्वच्छता अनुकूल की शौचालय विद्यालय में बिहार शिक्षा परियोजना के साथ मिलकर क्लोजली काम करता आ रहा है और आगे भी इसके ऊपर काम करेंगे। जब हम लोग माहवारी स्वच्छता के बारे में बात करते हैं तो 28 मई को माहवारी स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। ये 2014 में शुरू किया गया है और पूरी दुनिया में इस विषय को लेकर माहवारी स्वच्छता से संबंधित जुड़े हुए जो मिथक है, जो टैबूज है, उसको तोड़ने के लिए, वो चुप्पी तोड़ने के लिए इस 28 मई को इस दिवस मनाया जाता है। क्योंकि आज भी हमारे बिहार में और इवन इंडिया में खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे माहवारी स्वच्छता को लेकर, मेंस्ट्रुएशन को लेकर बहुत सारे मिथक फैला हुआ है, उसके साफ सफाई में बहुत सारे मिथक फैला हुआ है जिसकी वजह से किशोरियों को और महिलाओं को कहीं सारे बाधाएं होती हैं। उस चुप्पे को तोड़ने के लिए माहवारी दिवस मनाया जाता है और आज की जो कार्यशाला है विश्व माहवारी दिवस के अराउंड हम लोग शुरुआत किए हैं। और इसमें इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग अपने विद्यालयों में, अपने कस्तूरबा गांधी हॉस्टल्स में हमारे वार्डन को, हमारे शिक्षकों को, उनके माध्यम से हमारे किशोरों को, इसमें ना सिर्फ लड़कियां हैं लड़कों को भी हम लोग कैसे जागरूक करें और माहवारी के बारे में सही जानकारी उन लोगों तक हम लोग कैसे पहुंचाएं ताकि इसके अराउंड जो टैबूज है, जो मिथक फैला हुआ है, उसको हम लोग तोड़ सके और बच्चों को हम लोग अवेयर और एजुकेट कर सके सही जानकारी से ताकि इसके जो इसके अराउंड जो बाधाएं हैं किशोरियों को और महिलाओं को, वो जो है दूर कर सके। और इसका आज के आयोजन का एक महत्वपूर्ण विषय यही है कि हम लोग अपने KGBV के वार्डन के माध्यम से हम लोग सारे बच्चियों तक पहुंचे, लड़कियों तक पहुंचे, उनको सही जानकारी मिले वाटर सैनिटेशन, हाइजीन और माहवारी स्वच्छता प्रबंधन को लेकर और सारी बच्चियां इनको अच्छे से मैनेज करें। और साथ ही साथ KGBV में वार्डन्स अपना एक रोल मॉडल बने और हॉस्टल्स में सारे व्यवस्थाएं बच्चियों के लिए हम लोग प्रोवाइड कर सके ताकि बच्चों को अपने विद्या प्राप्त करने के लिए किसी भी तरह कोई बाधा ना हो।
1: अभी आपने सुना बिहार सरकार और यूनिसेफ ने KGBV वार्डन के लिए क्षेत्रवार मासिक धर्म स्वच्छता प्रशिक्षण अभियान का एक दिवसीय रेडियो रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है रजत कुमार। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गाना।

0: तो श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके मनपसंद प्रोग्राम युववाणी में। और अब वक्त हो चुका है हमारे एक बेहद खास सेगमेंट का, जिसका नाम है घूमता माइक्रोफोन, जहां हम पहुंचते हैं शहर के उन कोनों तक जो सिर्फ जगह नहीं बल्कि यादें, इमोशंस और एक्सपीरियंस बन चुके हैं।
1: आज हमारा माइक्रोफोन घूम रहा है बिहार की राजधानी पटना में, दो ऐसे शानदार डेस्टिनेशन पर जहां हिस्ट्री भी है, इंस्पिरेशन भी, और एंटरटेनमेंट का तो फुल पैकेज है।
0: लेकिन अंकिता, एक बात बताइए, ये हमारा माइक्रोफोन आज घूमते घूमते कहाँ पहुंचा है?
1: हमारा माइक्रोफोन पहुंचा है एक ऐसी जगह जो सिर्फ एक टावर नहीं बल्कि राष्ट्रपिता को दी गई एक इमोशनल ट्रिब्यूट है, बापू टावर, जहां से पटना का खूबसूरत व्यू भी दिखता है और महात्मा गांधी जी के विचारों की इंस्पिरेशन भी महसूस होती है।
0: तो श्रोताओं, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम सुनाने वाले हैं आपको कुछ लोगों से हुई बातचीत इस जगह के बारे में।
2: पटना में एक ऐसी जगह जहां आप अपने परिवार के साथ बेझिझक घूमने जा सकते हैं, वह है गर्दनीबाग स्थित बापू टावर। यह पूरा का पूरा टावर महात्मा गांधी को समर्पित है। इसमें महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी हर एक चीज आपको देखने को मिलती है। काफी बड़े एरिया में इसे बनाया गया है। अगर घूमते घूमते आपको थकान या भूख भी लगे तो एक बड़ा सा कैफेटेरिया भी बना हुआ है। काफी शांत और स्वच्छ वातावरण है यहाँ का। प्रकृति का हर जगह आपको सानिध्य मिलता है। यहाँ आकर मुझे बहुत बहुत आनंद आया।
3: ये घूमता माइक्रोफोन मेरे पास आया है तो मैं आपको बताऊंगी बापू टावर के बारे में। बापू टावर बिहार में गांधी जी की जो भी यात्रा रही, जो भी उनके संस्मरण रहे, उस सबको समेट कर गांधी जी को एक श्रद्धांजलि देने के लिए बापू टावर की स्थापना की गई है। 120 फीट ऊंची ये इमारत 6 मंजिला है।

0: है और आप जब इसमें जाएंगे तो आपको सीधे छठी मंजिल पर ले जाया जाएगा, जहाँ से आप स्पाइरल पाथवे में नीचे उतरते हुए और गांधी जी के जीवन के विभिन्न आयामों को देख सकते हैं, उनका बचपन, उनकी शादी, उनकी लंदन यात्रा और बिहार में किस तरह गांधी जी को लाया गया। ये सारी झांकियाँ कहीं कहीं वैक्स पुतलों के माध्यम से बताई गई है। वो पुतले इतने सजीव लगते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि वो जिंदा आदमी नहीं खड़ा है। और घोड़ा तो भाई लाजवाब है, वो जो ब्रिटिश अफसर है जिस बग्घी में गांधी जी जाया करते थे वो घोड़ा लाजवाब है। तो उनके जीवन की बहुत सारी झलकियाँ कटआउट्स के माध्यम से दिखाई गई हैं। सदाकत आश्रम में जो वो मीटिंग लेते थे उसकी झलकियां हैं, और जो यहाँ उससे लगा हुआ एक म्यूजियम है वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: हेलो, नमस्कार। मेरा नाम प्रीति है और आज मैं आप सभी को पटना में स्थित एक बेहद ही सुंदर, खूबसूरत, घूमने लायक जगह के बारे में बताना चाहती हूँ, जहाँ बेझिझक आप अपने पूरे परिवार के साथ जा सकते हैं और वहाँ की शांति को अनुभव कर सकते हैं। वह जगह है बापू टावर, जो कि पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध स्मारक है जो कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की याद में बनाया गया है। इसके बारे में मैं कुछ और रोचक बातें बताना चाहती हूँ, जिसे सुनकर आप लोग भी घूमने के लिए उतावले हो जाएंगे। यह टावर लगभग 120 फुट ऊंचा है और पटना के सबसे आकर्षक आधुनिक स्मारकों में गिना जाता है। इसका निर्माण गांधी जी के विचारों और उनके जीवन को नई पीढ़ी तक पहुँचाने के उद्देश्य से किया गया है। टावर के अंदर गांधी जी के जीवन से जुड़ी बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें, डिजिटल प्रदर्शनी और ऐतिहासिक जानकारी दिखाई जाती है। अगर आप यहाँ रात के समय में जाएंगे, इसकी रंग बिरंगी लाइटिंग इसे और भी सुंदर बना देती है। यहाँ से पटना शहर का अच्छा दृश्य दिखाई देता है, इसलिए यह पर्यटकों के बीच एक लोकप्रिय माना जाता है। टावर के आसपास का क्षेत्र घूमने और फोटो खींचने के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यह स्थान बिहार में आधुनिक पर्यटन स्थलों में तेजी से उभर रहा है। बापू टावर का इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह गांधी जी के सत्य और अहिंसा के संदेश का प्रतीक।
2: मेरा नाम रश्मि कुमारी है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार के पटना के गर्दनी बाग इलाके में स्थित बापू टावर के बारे में, जो महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला अनूठा स्मारक और संग्रहालय है। इसे 7 एकड़ के परिसर में लगभग 128 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसकी विशेष बनावट ही इसके मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। 120 फीट ऊंचे इस 6 मंजिला टावर का आकार उल्टे शंकु जैसा है, जो गांधीवादी विचारों और सिद्धांतों की आधुनिक दुनिया में बढ़ती प्रासंगिकता को दर्शाता है। इसके भूतल पर एक टर्न टेबल थिएटर है, जो पर्यटकों को मोहन से महात्मा तक की उनकी पूरी यात्रा दिखाता है, जहां हम ऑडियो विजुअल के माध्यमों और आकर्षक मोम की मूर्तियों के जरिए स्वतंत्रता संग्राम, चंपारण सत्याग्रह और बापू के विचारों को देख और समझ सकते हैं। सभी युवाओं और बच्चों से अनुरोध रहेगा कि वो वहाँ घूमने अवश्य जाएं और गांधी जी के संपूर्ण जीवन के सफर से जरूर अवगत हों।
3: तो अभी आप सुन रहे थे कुछ लोगों से हुई बातचीत जो हमने बापू टावर के लिए ली थी। अब आपको ले चलते हैं एक गाना सुनाने, तो आइए श्रोताओं सुनते हैं ये प्यारा सा गाना।

0: तो श्रोताओं, अभी हम सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में यूपी वाला ठुमका लगाओ फिल्म हीरो नंबर वन से। अब हम ले चलते हैं आपको रोचक तथ्यों की ओर, जहां हम कुछ खास लेकर आए हैं आपके लिए।
1: भरतनाट्यम को पहले मंदिरों में देवताओं की पूजा के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। इसे देवदासी नृत्य भी कहा जाता था।
0: और आपको बताते चलें कि कथक का नाम कथा से आया है, क्योंकि इस नृत्य में नर्तक कहानी सुनाते हैं। घुंघरू और तेज पैर इसकी पहचान है।
1: और साथ ही कथक के साथ कथकली में कलाकार 4 से 5 घंटे तक मेकअप करते हैं और सिर्फ आंखों व चेहरों के हाव भाव से पूरी कहानी दिखाते हैं।
0: वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत है। भांगड़ा मूल रूप से फसल कटाई यानी बैसाखी के समय किया जाने वाला नृत्य है, जो आज दुनिया भर में लोकप्रिय हो चुका है।
1: वहीं ओडिशा में भारत के सबसे प्राचीन नृत्य रूपों में से एक है, जिसकी मूर्तियां मंदिरों में भी देखने को मिलती हैं।
0: अब आपको ले चलते हैं कुछ फूड हैबिट्स के तरफ। दाल चावल भारत का सबसे आम

0: भोजन है जिसे लगभग हर राज्य में अलग-अलग तरीके से बनाया जाता है। यह पूर्ण प्रोटीन का अच्छा स्रोत भी माना जाता है।
1: और पता है स्मृति, आपको बिरयानी तो शायद बहुत पसंद है।
0: मेरा फेवरेट है बिरयानी।
1: तो बिरयानी के बारे में एक फन फैक्ट है कि बिरयानी के 20 से ज़्यादा प्रकार भारत में मिलते हैं, जैसे हैदराबादी, लखनवी, कोलकाता बिरयानी। हर जगह इसका स्वाद अलग-अलग होता है।
0: वाह, इतने सारे वैरायटी होते हैं बिरयानी के। वाह, अब आपको बताते हैं कि इडली एक स्टीम फूड है जो बहुत हल्का और हेल्दी माना जाता है। इसे नाश्ते में सबसे अच्छा विकल्प कहा जाता है। बिल्कुल, कि वो तो चावल से ही बनता है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे मज़ेदार चीज़, और मेरी तो बहुत मन पसंदीदा चीज़ है,
0: क्या?
1: चाय।
0: ओहो, चाय।
1: तो मसाला चाय में अदरक, इलायची, दालचीनी जैसे मसाले डाले जाते हैं, और यह सिर्फ पेय नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का हिस्सा है।
0: वही ना, हर शाम हम चाय की चुस्कियों के साथ हमारे श्रोता और हम सभी लोग युवानी कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। तो चाय सिर्फ एक, सही बात है, पेय पदार्थ नहीं है, ये तो हमारे संस्कृति का हिस्सा है भाई। थाली में, और आपको पता है श्रोताओं, अगर जब हम, जैसे कई बार होता है कि हम गेस्ट को थाली में एक साथ तरह तरह के व्यंजन बना के देते हैं, तो उसे पता है क्यों देते हैं वैसे? थाली में एक साथ कई व्यंजन परोस के इसलिए देते हैं ताकि उस थाली से भारत की अनेकता में एकता को दिखाया जा सके। यूनिटी
1: हाँ,
0: इन डाइवर्सिटी।
1: सही बात है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ स्पोर्ट्स अपडेट। आईपीएल 2026 के क्वालिफायर वन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने गुजरात टाइटंस को हराकर फाइनल में जगह बनाई। कप्तान रजत पाटीदार ने शानदार पारी खेली।
0: बैडमिंटन में पीवी सिंधु और भारतीय पुरुष युगल जोड़ी के स्तविक साई राज रॉकी रेड्डी चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन में जीत के साथ शानदार शुरुआत की।
1: मध्य प्रदेश की 16 वर्षीय खिलाड़ी स्नेहा दावड़े का एशिया कप हॉकी के लिए भारतीय टीम में चयन हुआ।
0: अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया।
1: भारत ने पहली बार वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 की घोषणा की। खेल मंत्री ने कहा कि भारत योगासन को ओलंपिक खेलों में शामिल करने का प्रयास करेगा।
0: तो चलिए श्रोताओं, वक्त हो चला है एक और मजेदार गाने का, लेकिन गाना तो हम बाद में भी सुन लेंगे श्रोताओं, लेकिन अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। तो श्रोताओं, विदा लेने से पहले हम आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं। अंकिता, आजकल देख रही हूं कि मौसम में बदलाव बहुत हो रहे हैं, गर्मी चरम सीमा पर है, और कहते हैं कि वो जो नौतपा चल रहा है ना अभी, जो 2 जून तक चलने वाला है।
1: गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और प्यास भी उतनी ही लगती है। अब ज़रूरी है कि आप बाहर निकले तो अपना प्रोटेक्शन लेके निकले, चाहे वो
0: बिल्कुल
1: छाते के रूप में हो, चाहे दुपट्टे के रूप में या सनस्क्रीन के रूप में।
0: बिल्कुल, और साथ में लेमन वाटर या खीरा वाटर भी अपने साथ रखें, उससे आप बीच बीच में पीते रहें और हाइड्रेटेड रहेंगे, धूप लगने की प्रक्रिया भी कम हो जाएगी।
1: और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बाहर निकले तो धूप से बचने का अपना प्रबंधन लेके जाएं, और नारियल पानी जितना हो सके पिए।
0: बिल्कुल, नारियल पानी तो जरूरी है, उसे तो ऐसे भी पीने से बहुत विटामिन्स और ताकत मिलती है। तो श्रोताओं, आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपको बहुत पसंद आया होगा। आप हमें अपना फीडबैक हमारे मेल पर भेज सकते हैं। हमारा पता है feedback@patna@gmail.com। तो आपसे हम मिलते रहेंगे इसी कार्यक्रम में हर दिन। तो सुनते रहिए युववाणी।
1: युवाणी।
0: धन्यवाद।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवा वाणी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं खेलों पर आधारित कार्यक्रम खेल परिक्रमा, स्वर सहयोग अल्पी कुमारी और प्रस्तुति विभूति शंकर की।

0: हमार बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।

0: नमस्कार, एक बार फिर से खेल जगत के कार्यक्रम खेल परिक्रमा में आपका स्वागत अभिनंदन। मैं हूं अल्पी और मेरे साथ हैं रेडियो दोस्त संजय किशोर। नमस्कार संजय जी।
1: नमस्कार अल्पी जी, और श्रोता आप भी स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। सबसे पहले आपको बता दें कि श्रीलंका में आयोजित कॉमनवेल्थ यूथ चेस चैंपियनशिप में बिहार के खिलाड़ी फीडे मास्टर रयान मोहम्मद ने अंडर 18 आयु वर्ग में 2 स्वर्ण तथा 1 कांस्य पदक जीतकर राज्य और देश का नाम रोशन किया है।
0: और इस उपलब्धि के लिए रयान मोहम्मद को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले खेल गतिविधियां में लेते हैं। बीते सप्ताह हुए खेलों की जानकारी, साथ ही जान लेंगे कि आगे और कौन कौन से खेल होने वाले हैं।
1: श्रोता, आज के अंक में बहुत ही खास बात कि हमारे खिलाड़ियों ने इस सप्ताह रिकॉर्ड बनाए हैं और पदक भी हासिल किए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही मुकाम रखते हैं। इनमें से एक हैं गुरिंदर वीर सिंह, जिन्होंने 100 मीटर का रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में पंजाब के रहने वाले गुरिंदर वीर सिंह ने पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ 10.09 सेकंड में पूरी कर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। गुरिंदर वीर सिंह 10.10 सेकंड से कम समय में दौड़ने वाले पहले भारतीय धावक बन गए हैं। उन्होंने एशिया में इस सत्र का दूसरा सबसे तेज समय भी दर्ज किया है। गुरिंदर वीर ने फाइनल में अपने प्रतिद्वंदी अनिमेश कुजूर को पीछे छोड़ा, जिन्होंने पिछले दिनों 10.15 सेकंड के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। फाइनल में अनिमेश दूसरे और प्रणव गुरव तीसरे स्थान पर रहे। गुरिंदर वीर ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का क्वालिफिकेशन समय भी हासिल कर लिया है। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु के 22 वर्षीय विशाल ने पुरुषों की 400 मीटर दौड़ में 44.98 सेकंड का समय निकालकर एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। बिहार के धावक विभा भास्कर कुमार ने शानदार प्रदर्शन के साथ देश का नाम रोशन किया है। पुरुष की 100 मीटर दौड़ के फाइनल मुकाबले में विभास्कर ने 10.39 सेकंड का समय निकालते हुए चौथा स्थान हासिल किया। वह कांस्य पदक से मामूली अंतर से चूक गए हैं।
0: और अब बात करेंगे राष्ट्रमंडल शतरंज प्रतियोगिता की। श्रीलंका में आयोजित कॉमनवेल्थ यूथ चेस चैंपियनशिप में बिहार के प्रतिभावान शतरंज खिलाड़ी फीडे मास्टर रयान मोहम्मद ने अंडर 18 आयु वर्ग में 2 स्वर्ण व 1 कांस्य पदक जीतकर देश और राज्य का मान बढ़ाया है। रयान को रैपिड व ब्लीड्स में स्वर्ण जबकि क्लासिकल में कांस्य पदक मिले हैं। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरण ने बताया कि रयान मोहम्मद ने कॉमनवेल्थ रैपिड और ब्लीड्स स्पर्धा में स्वर्ण तथा क्लासिकल में कांस्य पदक जीतकर अन्य खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया है।
1: और अब बात करेंगे बैडमिंटन की। स्टार भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के साथ ही सात्विक साईराज रंका रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी सिंगापुर ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय और मालविका बंसोड़ भी अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। 5वीं वरीय पुत्री कुसुमा वरदानी को लगातार गेम में हराकर महिला एकल के दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। 2 बार की ओलंपियन विजेता 30 वर्षीय सिंधु ने पहले दौर में इंडोनेशियाई खिलाड़ी को 21-17, 21-18 से हराया।
0: और अब जान लेते हैं हॉकी का हाल। भारतीय महिला हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलियाई दौरे पे 4 मैचों की मैत्री सीरीज के पहले मुकाबले में बढ़त के बावजूद यहाँ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। बीते दिनों नवनीत कौर ने पहले क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर टीम को बढ़त दिलाई। ऑस्ट्रेलिया की एबी विल्सन ने पेनल्टी कॉर्नर पर तीसरे और चौथे क्वार्टर में 1-1 गोल दागा और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल कर ली।
1: और अब बात करते हैं स्क्वैश की। भारत के उभरते हुए युवा स्क्वैश खिलाड़ी आर्यवीर दीवान ने पिछले दिनों एक नया इतिहास बनाया। वह 7 साल में अंडर

0: 19 एशियाई चैंपियनशिप में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। चीन के पांजुआ में 23वीं एशियाई जूनियर व्यक्तिगत स्क्वाश चैंपियनशिप में पिछले दिनों खेले गए खिताबी भिड़ंत में उन्होंने दक्षिण कोरिया के जोंग हुक ली को करीब एक घंटे चले मुकाबले में 11-2, 11-7, 11-9 से शिकस्त दी। इसके अलावा 17 वर्षीय आर्यवीर एशियाई लड़कों के अंडर 19 चैंपियनशिप बनने वाले सिर्फ चौथे भारतीय भी बन गए हैं। इस सूची में रवि दीक्षित 2011 में, वेलवन सेंथिल कुमार 2016 में और वीर चोट रानी 2019 में शामिल रहे हैं। दिल्ली के रहने वाले आर्यवीर ने पिछले साल इसी प्रतियोगिता में लड़कों का अंडर 17 खिताब भी जीता था। इस प्रतियोगिता में भारत ने टूर्नामेंट में कुल 1 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक अपने नाम किए हैं।
1: और अब जिमनास्टिक की बारी। भारतीय जिमनास्ट प्रणिति नायक ने ताशकंद में FIG वर्ल्ड चैलेंज कप 2026 में महिला वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। 3 बार एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीत चुकी ओडिशा की 31 वर्षीय प्रणिति ने बीते दिनों फाइनल में 2 वॉल्ट में क्रमशः 12.950 और 12.700 अंक बनाकर कुल 13.025 के स्कोर के साथ रजत पदक जीती। वियतनाम की विवन न्यू गुएन ने 13.375 के स्कोर के साथ स्वर्ण जीता, जबकि उज्बेकिस्तान की शाखीना बोनू यूसुफोवा ने 12.950 के स्कोर के साथ कांस्य पदक हासिल किया।
0: और अब स्थानीय खेल खबरें। खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने पिछले दिनों रग्बी खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए खेल सामग्री प्रदान की। खिलाड़ियों को रग्बी खेल के अनुरूप विशेष किट दी गई। सम्मानित सभी खिलाड़ी सक्षम छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी हैं, जिसके अंतर्गत प्रत्येक खिलाड़ी को खेल संबंधी आवश्यकताओं तथा प्रशिक्षण सहयोग के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। खेल मंत्री ने कहा कि विभाग की सभी योजनाओं और सुविधाओं की जानकारी हर खिलाड़ी तक पहुंचनी चाहिए, ताकि वे उपलब्ध अवसरों का अधिकतम लाभ उठा सकें।
1: पटना ने बेगूसराय को 23 रनों से हराकर BCA मेंस T20 ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता जीत ली। मोइनुल हक स्टेडियम में खेले गए रोमांचक फाइनल मैच में पटना ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 8 विकेट पे 190 रन बनाए। टीम के लिए पीयूष कुमार सिंह ने 52 गेंदों पर 8 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 92 रनों की पारी खेली। आशीष कुमार ने 27 गेंदों पर 38 और सूरज कश्यप ने 9 गेंदों पर 18 रनों की तेज पारी खेलकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। बेगूसराय के आयुष कुमार, सुमित कुमार और सुधांशु कुमार ने 2-2 विकेट चटकाए। जवाब में बेगूसराय की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट पे 167 रन ही बना सकी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेगूसराय को शुरुआती ओवर में झटके लगे, लेकिन बीच के ओवरों में बेगूसराय की टीम मैच में बनी हुई दिखी। कप्तान दानिश आलम 11 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद मुरारी कुमार ने 49 गेंदों पर 7 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 63 रन की पारी खेली। इसके अलावा पृथ्वीराज ने 26 रन, जबकि सुधांशु कुमार ने 24 रन की तेज पारी खेलकर टीम को मुकाबले में बनाए रखने का प्रयास किया। शिवम राज 18 रन बनाकर नाबाद रहे। पटना के पवन कुमार ने 3 और शमीम राठौड़ ने 2 विकेट लिए। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन ने विजेता और उप विजेता टीम के खिलाड़ियों को बधाई दी।
0: पटना के साइंस कॉलेज के छात्र अनुराग पासवान ने अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसका आयोजन 23 से 24 मई को नेपाल में हुआ। पटना यूनिवर्सिटी के खेल सचिव डॉक्टर दीप नारायण कुमार ने बताया कि अनुराग ने विगत वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इस वर्ष उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए पटना विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया है। इस उपलब्धि पर पटना यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बोर्ड के अध्यक्ष प्रोफेसर सुहेली मेहता, कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार सिंह सहित अन्य लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं और बधाई दी है।
1: यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग एशियाई ग्रैपलिंग चैंपियनशिप का आयोजन 4 से 6 जून 2026 तक वियतनाम में होगा, जिसमें बिहार से चयनित खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस प्रतियोगिता में पटना जिले के 2 युवा खिलाड़ी गोलू कुमार 69 किलोग्राम वर्ग में और आयुष कुमार 59 किलोग्राम वर्ग में भाग लेंगे। इसके साथ ही बिहार के भारतीय ग्रैपलिंग संघ के महासचिव सुबोध यादव का चयन अंतर्राष्ट्रीय रेफरी के रूप में किया गया है। वे भारत की ओर से मैच संचालन एवं तकनीकी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। इस उपलब्धि को लेकर पूरे बिहार में खेल प्रेमियों, प्रशिक्षकों एवं खेल संगठनों में खुशी का माहौल है। खेल जगत की जानकारियों के बाद सुनते हैं डॉक्टर रूमा गोस्वामी से की गई बातचीत। विषय है पीरियड्स के दौरान खिलाड़ियों के लिए सुझाव एवं सलाह। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूमा गोस्वामी। आप शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। आप

0: आपका कार्यक्रम खेल परिक्रमा में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन।
1: धन्यवाद।
0: आज हमारी चर्चा का विषय है पीरियड्स के दौरान खिलाड़ियों के लिए सुझाव एवं सलाह। पीरियड्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, या यूं कहें कि महिलाओं के लिए हर महीने के वो 4, 5 या 6 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। तो आज हम जानेंगे कि हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं, वो इन विशेष दिनों में किन किन तरह की समस्याओं से जूझती हैं, क्या क्या उन्हें सावधानियां रखने की आवश्यकता है और किस तरह से वो अपने आप को सुरक्षित और स्वस्थ रख सकती हैं। तो डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं कि पीरियड्स के दिनों में खासकर खिलाड़ियों को विशेष क्या ध्यान रखने की आवश्यकता होती है।
1: सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी सभी खिलाड़ियों से कि सबसे पहले आप ये समझिए कि पीरियड्स जो है वो कोई बीमारी नहीं होती है, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रक्रिया जिससे कि हर महिला हर मंथ गुजरती है। तो सबसे पहले दिमाग में ये लेके चलना होगा कि पीरियड्स है जो कि नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। दूसरी बात, पीरियड्स के दौरान क्या होता है कि उस समय बॉडी के अंदर कई तरह के हार्मोन्स बनते हैं, जिसकी वजह से जो है, जिसका एक एक उद्देश्य होता है, बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स पैदा होते हैं उनका एक उद्देश्य होता है कि बच्चेदानी को सिकोड़ कर उसके अंदर के ब्लड को वो बाहर करते हैं। इस वजह से आपको क्रैम्प्स महसूस होता है। तो बॉडी के अंदर कुछ सिग्नल्स होते हैं जिसको कि आपको पहचानने की जरूरत है। अगर उस दौरान आपको इन हार्मोन्स की वजह से थोड़ी वीकनेस, डलनेस इस टाइप की महसूस होती, कमजोरी महसूस होती है, तो आपको अपने बॉडी के सिग्नल्स को पहचानना है कि हाँ, मुझे आज दर्द हो रहा है, थोड़ी मुझे चक्कर आ रही है या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। तो उस दिन आप अपने एक्सरसाइज के जो ये को लेवल को थोड़ा कम कर दें ताकि आपको कुछ आराम उन दिनों मिल सके। और जो भी समस्या हो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो आप थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं, और बॉडी को बिल्कुल हाइड्रेटेड रखना है ताकि आपको वीकनेस, क्योंकि खेल के दौरान बहुत पसीना बहने से जो है आपको कमजोरी भी महसूस होगी, और साथ में आपको पीरियड्स हो रहा है, बॉडी से ब्लड बाहर जाता है, आयरन बाहर जाता है, तो आपको वीकनेस महसूस होती है। तो आपको अपने बॉडी को हमेशा हाइड्रेटेड रखना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, अच्छे खान पान की ज़रूरत होती है पीरियड्स के समय।
0: आपने खान पान की बात कही, क्या कुछ ऐसे विशेष चीजें हैं जो हमें अपने आहार में शामिल करना चाहिए, विशेष रूप से उन खास दिनों में?
1: बिल्कुल, ज्यादातर देखा जाता है कि हमारे पॉपुलेशन में जो इंडियन गर्ल्स होती हैं वो ज्यादातर एनीमिक होती है, यानी खून की कमी उनके अंदर होती है। इसलिए आपको बहुत जरूरी है, जब आप उस तरह की एक्सरसाइज करते हैं, हेवी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो अपने न्यूट्रिशन का भी ख्याल रखना चाहिए, खान पान में भी बदलाव करना चाहिए। आपको प्रोटीन की मात्रा लेनी चाहिए अच्छे से, कैलोरी की कमी नहीं होनी चाहिए आपको, और आयरन की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी किसी को ब्लीडिंग थोड़ी ज़्यादा होती है तो उनमें चांसेस है कि और भी खून की कमी हो सकती है। तो आपको अपने खाने में इस तरह की चीज़ें शामिल करना चाहिए जिससे कि खून बनने में सहायता हो, जैसे कि अभी पालक मिल रहे हैं, चुकंदर हो गया, लाल चना हुआ, गुड़ हुआ, छुहारा हो गया, इस तरह की चीज़ें आप अपने डाइट में शामिल कीजिए जिससे कि खून बनने में मदद मिले।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे घरों में उपलब्ध होती हैं और हम उन पे कई बार ध्यान नहीं देते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि पीरियड्स में जब ब्लीडिंग होती है तो बॉडी के कई सिम्टम्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, कमजोरी हो जाती है या अत्यधिक खून का निकलना भी होता है, तो कई बार खिलाड़ियों को उनके पीरियड्स के दौरान, अगर इवेंट कोई आ गया या कोई टूर्नामेंट है, कोई मैच है, तो वो मेडिसिन लेती हैं जिससे कि उनके पीरियड्स के डेट आगे या पीछे हो सके। तो ये मेडिसिन कितने सुरक्षित हैं ये बताएं।
1: देखिए, ऐसे तो ये मेडिसिन सुरक्षित हैं इसलिए कि ये मेडिसिन एक हार्मोन, सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं जो आपके बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, इन्हीं को हम बाहर, बॉडी के बाहर सिंथेटिक तरीके से बनाते हैं और इसे टैबलेट फॉर्म में देते हैं। तो एक्चुअली ये जो दवा है वो आपके साइकिल को रेगुलेट करने की दवा है। तो अगर आपको लेना ही है तो आपको किसी डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार आप लेते हैं और आपको पता नहीं रहता दवा जो ले रहे हैं वो कैसे लेना है, कितनी मात्रा में लेना है, कब तक लिया जा सकता है और कितने फ्रिक्वेंटली लिया जा सकता है।

0: लगता है या इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसकी जानकारी नहीं होती और आप लेते हैं, उसके बाद आप परेशानी में फंसते हैं और आपको समझ नहीं आता कि मुझे हो क्या रहा है, या आप घबराने लगते हैं मुझे कोई सीरियस बीमारी तो नहीं हो गई। तो इसीलिए अगर आपको अगर ये लेना है, सुरक्षित है, बट आप ऐसे ही काउंटर से खरीद के वैसे नहीं खा सकते इस दवा को, इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह की जरूरत होती है। तो अगर आपको लेना है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और उनसे अपनी बात को कहें और कैसे लेना है इसकी जानकारी लेके और कौन सी दवा लेनी है इसकी भी जानकारी लेके तभी आप लेंगे।
1: बिल्कुल, जब भी आप इस तरह की दवाओं का इस्तेमाल करें तो किसी चिकित्सक से सलाह लेकर सुरक्षित तरीके से आप इसे लें, ताकि आपके शरीर पे किसी भी तरह का दुष्प्रभाव ना पड़े। पीरियड्स के दौरान लोग इस्तेमाल करते हैं पैड्स का, मेंस्ट्रुअल कप्स का, टेम्पोन्स का, तो ये कितना सुरक्षित है?
0: देखिए, ये काफी सुरक्षित और असरदार भी है। पीरियड्स के समय बहुत लोग बहुत तरह के चीजें यूज करते हैं, कई लोग घर के कपड़े भी यूज कर सकते हैं, करते हैं। कपड़े आप यूज कर सकते हैं बगैर आपका जो आपने जो कपड़ा लेना है वो साफ सुथरा अच्छे से धूप में सुखाया हुआ और बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। और नहीं तो मार्केट में जो पैड बना हुआ आता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कई लोग कंफर्टेबल होते हैं, टेम्पून्स जो मार्केट में मिलता है उसको अंदर डाला जाता है और वो ब्लड को सोक कर लेता है, वो भी यूज करते हैं। लेकिन आपको सब में अपने हाइजीन का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। इसके अलावा आजकल मेंस्ट्रुअल कप्स आ गए हैं, बहुत लोग इसे यूज करते हैं और उनको काफी कंफर्टेबल लगता है इसको यूज करने में। ये एक तरह का प्लास्टिक का बना कप होता है जिसको कि आप अपने बॉडी के अंदर डालते हैं, सीखते हैं डॉक्टर से कैसे डालना है और डालते हैं और वो ब्लड उसके अंदर कलेक्ट होता है, बाहर नहीं आता है। और इसे आप कुछ घंटों के बाद चेंज करते हैं, आप उसको निकाल के फिर से साफ करके और क्लीन हाथों से साफ से फिर से वापस डाल सकते हैं। तो बहुत लोगों को ये अच्छा भी महसूस होता है, इसको यूज करने में ज्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं वो।
1: ये तो हमने जाना कि किस तरह से आप उन विशेष दिनों में अपना ख्याल रख सकते हैं, किन चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके खान पान में किस तरह की चीजें शामिल होनी चाहिए। अब हम जानना चाहेंगे कि उन खास दिनों में और किस तरह की समस्याएं सामने आती हैं।
0: कई बारी जो है ना, खिलाड़ियों में देखा गया है कि पीरियड्स को लेकर बहुत तरह की समस्या आती है, जैसे कि पीरियड्स टाइम पे नहीं आना, कई कई महीने तक पीरियड्स का बंद हो जाना, खास करके उन खिलाड़ियों में जो दुबली पतली हैं या बहुत विगरस एक्सरसाइज करती, बहुत ही मेहनत वाला एक्सरसाइज या खेल खेलती हैं, उनके अंदर हार्मोन के चेंजेस की वजह से कई बार ये होता है कि पीरियड्स बिल्कुल ही आना बंद हो जाता है। तो ऐसे में आप घबराए नहीं, एक नॉर्मल प्रक्रिया है खास करके एथलीट्स के लिए। लेकिन अगर पीरियड आपका 3 महीने से ज्यादा दिन हो गए और नहीं आ रहा है, तो ऐसे में उसको बिल्कुल ये सोच के नहीं छोड़ देना है कि अच्छा ये होता है, आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और कोई और कारण ना हो इस पर ध्यान देने की जरूरत है और उसे खोज के निकालने की जरूरत है। कई बार किन्हीं को पीरियड्स में पेन होता है और वो बहुत ज्यादा भी होने लगता है, ये जानने की आपको जरूरत है कि पीरियड्स में हर किसी को पेन होता है, थोड़ा बहुत, कम ज्यादा। लेकिन अगर वो ऐसा दर्द है जो कि आपका बढ़ता ही जा रहा हो, हर बार ज्यादा पेन हो रहा है आपको, पीरियड्स के आने के पहले भी पेन हो रहा है, पीरियड्स ओवर हो जाने के बाद भी पेन रह रहा है, तो ऐसे में आपको इसको इग्नोर नहीं करना है, फिर आपको अपने डॉक्टर से मिलके अपनी पूरी चेकअप करानी चाहिए।
1: जी, तो आज के इस एपिसोड को जो भी हमारी खिलाड़ी देख रही हैं उनको काफी कुछ जानने को मिला होगा कि पीरियड्स के दौरान किस तरह से अपना ध्यान रखें, किन चीजों का इस्तेमाल करें, हाइजीन का विशेष ध्यान रखें और खान पान में किस तरह की चीजों को शामिल करें। तो समय का अभाव हमारे साथ बना हुआ है, लेकिन चलने से पहले जानना चाहूंगी कि हमने हाइजीन की बात की, तो हाइजीन में किन किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से हम अपने आप को बेहतर तरीके से साफ सुथरा रख सकते हैं।
0: बिल्कुल, खिलाड़ियों को कई जगह जाना पड़ता है और हर जगह जरूरी नहीं कि आपके हिसाब से ही सब रहने की जगह और बाथरूम की फैसिलिटी मिले। कई बार उनको कई कई देर तक बात अपने पेशाब भी रोक के रखना पड़ता है। तो पीरियड्स के दौरान मैं कहूंगी कि आपको अपने हाइजीन का ख्याल ज्यादा रखने की जरूरत है, क्योंकि उस उन दिनों में इन्फेक्शंस ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपको अब पैड को, अपना जो पैड यूज कर रहे हैं तो उसे फ्रिक्वेंटली चेंज करने की जरूरत है। गर्मी के दिन है, बहुत पसीना वगैरह आ रहा है, तो पीरियड्स में आपको अपने पैड्स को जल्दी चेंज करने की जरूरत है और अपने प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन रखने की जरूरत है और अपना ख्याल रखने की जरूरत है।
1: कार्यक्रम को

0: जो हमारी बहनें, जो हमारी बच्चियां, खासकर खिलाड़ी जो सुन रही हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा?
1: बिल्कुल, मैं सारी एथलीट्स को तो पहले ये बधाई देना चाहूँगी कि इन्होंने इस फील्ड को चुना और हमारे देश के नाम को रोशन करने के लिए ये इतनी मेहनत कर रही हैं। तो पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप पीरियड्स को एज अ चैलेंज नहीं लेना है आपको, ये पीरियड्स को ये नहीं समझना है आपको कि ये कोई बीमारी है। आप पीरियड्स के दौरान भी अगर सही अपना रख रखाव करे, अपने खान पान पर ध्यान दे और अपने डॉक्टर की सलाह से, कुछ दवा की मदद से, आप पीरियड्स के दौरान भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती हैं और पीरियड्स आपके सक्सेस में बाधा बिल्कुल भी नहीं बनेगा।
0: आपसे बातचीत हुई, विषय था पीरियड्स के दौरान खिलाड़ियों के लिए सुझाव एवं सलाह। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी इतनी उपयोगी बातें करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: आज रोचक तथ्य में हम जानेंगे, 10.09 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी कर नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले गुरिंदर वीर सिंह के बारे में।
2: आज हम जानेंगे 10.09 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी कर नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले गुरिंदर वीर सिंह के बारे में। 25 साल के गुरिंदर वीर सिंह पंजाब के जालंधर जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने 6वीं कक्षा से ही एथलेटिक्स की शुरुआत कर दी थी और आज ये 100 मीटर की रेस में भारत के सबसे तेज एथलीट बन चुके हैं। हाल ही में रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में हुए फेडरेशन कप में गुरिंदर वीर सिंह ने यह कारनामा कर दिखाया है। 100 मीटर रेस का रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले गुरिंदर वीर वर्ल्ड रिकॉर्ड के मामले में उसैन बोल्ट से मात्र 0.51 सेकंड पीछे रह गए हैं। इस रेस को पूरा करने के बाद हाथ से लिखा एक मैसेज उन्होंने दिखाया, जिसमें लिखा था, टास्क इज नॉट फिनिश्ड येट, वेट, आई एम स्टिल स्टैंडिंग, यानी काम अभी पूरा नहीं हुआ है, इंतजार करो, मैं अभी भी खड़ा हूं। गुरिंदर वीर अपनी सफलता का श्रेय उनके पिता कमलजीत सिंह को देते हैं।
0: अब खेल प्रश्नोत्तरी, जिसमें हर बार हम आपसे पूछते हैं 2 सवाल और बताते हैं पिछले अंक में पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब। तो आज के 2 सवाल पूछने से पहले हम आपको पिछले अंक के प्रश्नों के जवाब बता रहे हैं, ध्यान से सुने। हमारा पहला प्रश्न था, फुटबॉल मैच सामान्य तौर पर कितने समय यानी कितनी देर का खेला जाता है?
2: सही जवाब है, फुटबॉल मैच सामान्य तौर पर 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का खेल है जो 45-45 मिनट का होता है।
0: दूसरा प्रश्न था, खो खो के खेल में एक टीम में मैदान पर एक बार में कितने खिलाड़ी होते हैं?
2: सही जवाब है, खो खो के खेल में एक टीम में एक समय में मैदान पर कुल 9 खिलाड़ी होते हैं।
0: इन दोनों प्रश्नों के सही जवाब हमारे पास जिन श्रोताओं ने भेजे, आप हैं गुड़की मंडी गायघाट से प्रकाश कुमार, गौरव जी ने पता नहीं लिखा है, अंकिता शर्मा है सैदपुर पटना से और रोहित और आस्ती कुमारी हैं राजेंद्र नगर पटना से। आप सभी श्रोताओं का आभार, धन्यवाद। इसी तरह बने रहें कार्यक्रम से और भेजते रहें पूछे गए प्रश्नों के सही जवाब, साथ ही अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं। तो अब फटाफट लिखें आज के 2 सवाल। पहला प्रश्न, अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ यूथ चेस चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 18 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है?
2: अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ यूथ चेस चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने अंडर 18 आयु वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है?
0: आज का दूसरा प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत के सबसे तेज एथलीट होने का गौरव किस खिलाड़ी ने हासिल किया है?
2: सवाल एक बार फिर से सुनिए, अभी हाल ही में भारत के सबसे तेज एथलीट होने का गौरव किस खिलाड़ी ने हासिल किया है?
0: इन दोनों सवालों के सही जवाब देने के लिए आपके पास 1 सप्ताह का समय है, यानी अगले मंगलवार की शाम तक। तो बिना देर किए आप चाहें तो पत्राचार के माध्यम से या फिर ईमेल के माध्यम से हम तक अपने जवाब लिख भेज सकते हैं। नोट करें हमारा पत्राचार का पता,
2: कार्यक्रम खेल परिक्रमा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी पटना 800001।
0: हमारा ईमेल पता है kp.airpatna@gmail.com। और अब आपकी फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

0: और इसी के साथ इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ हम आपसे विदा लेंगे इस हिदायत के साथ कि गर्मी के प्रकोप में अपना बचाव जरूर करें, शरीर की तरलता बनाए रखें और हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहें। प्रस्तुतकर्ता विभूति शंकर के साथ मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त संजय किशोर
1: और एलपी को
0: आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: परिक्रमा।

अभी आप सुन रहे थे खेलों पर आधारित कार्यक्रम खेल परिक्रमा। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आपको इस सभा में आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी दे दें। छह बजकर 5 मिनट पर आप सुनेंगे भोजपुरी बुलेटिन। छह बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। छह बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, ईद उल जोहा, बकरीद, सुनेंगे वार्ता, जलवायु परिवर्तन का मानव पर प्रभाव। वार्ताकार होंगे डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा, साथ ही आनंद ले सकेंगे पारंपरिक लोकगीतों का। कलाकार होंगे वासिनी चौधरी। सात बजे का वक्त होगा किसान भाइयों के कार्यक्रम खेती गृहस्थी का। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे चर्चा, कृषि रसायन का सुरक्षित प्रयोग, सुनेंगे लोकगीत वासिनी चौधरी के स्वर में।

7:52 पर आप सुनेंगे समाचार ध्वनि। श्रोताओं 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। आठ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। इस कार्यक्रम के तहत आप सुन सकेंगे गजल, कलाकार होंगे नई। नौ बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित करें। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत। ग्यारह बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। श्रोताओं ये थी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं भोजपुरी बुलेटिन।

आकाशवाणी पटना ह और रउआ सभे लोग कुमार सुंदरम से भोजपुरी में समाचार सुनी। सुप्रीम कोर्ट वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया SIR के वैध और संवैधानिक मान ले बा। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के अध्यक्षता वाली बेंच बिहार समेत दूसरा राज्यन में SIR के संवैधानिकता के चुनौती देवे वाली याचिका पर सुनवाई करत ई फैसला सुनौ ले बिया। बेंच कहलस कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और ही ओकरा निष्पक्ष और ही साफ सुथरा वोटर लिस्ट तैयार करे के पूरा अधिकार बा। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसला पर अपन बात रखत कहलन कि विपक्ष तकनीकी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा के जनता के भरमावे के कोशिश करत रहे। श्री कुमार कहलन कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा SIR के सही

0: आयोग के बाद अब इंडी गठबंधन के नेता लोग के देश के जनता से बिना कोनो शर्त के माफी मांग लेवे के चाही। भारतीय सेना में अग्निपथ योजना और नियमित काडर के भर्ती खातिर साल 2027 के ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा 1 जून से 12 जून तक आयोजित कैल जाय। उम्मीदवार आधिकारिक भारतीय सेना भर्ती वेबसाइट से अपन एडमिट कार्ड डाउनलोड करके परीक्षा से जुड़ल सब जानकारी लिखल जा सकता। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कहले बाड़न कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लैकन के आगू बढ़ावे खातिर सरकार पूरी तरह से काम करत बिया। मुख्यमंत्री आज पटना में जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के तहत छात्रवृत्ति पावे लैकन के साथे बातचीत करत रहलन। उ बतौलन कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग 1,04,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रन के फायदा मिलल बा। वही जा प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति से ए साल 1,41,000 अनुसूचित जनजाति के लइकन के लाभ पहुँचल बा। ए मौका पर श्री चौधरी जनजातीय इलाका में पर्यटन घूमे फिरे के बढ़ावा देवे खातिर होम स्टे विकसित करे के ऐलान कैलन। राज्यपाल सह कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन कहले बाड़न कि सब कुलपति हर महीना कम से कम 2 बेर अंगीभूत कॉलेजन के जांच करी हैं। इस संबंध में सब कुलपति लोग के दिशा निर्देश दिहल गइल बा। विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल के बढ़िया से लागू करे और पढ़ाई लिखाई के काम सबके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आवे के निर्देश दिहल गइल बा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नालंदा जिला के एगो सरकारी स्कूल में मिड डे मील खैला के बाद 60 लइकन के बीमार होके के घटना के मीडिया रिपोर्ट पर खुद संज्ञान ले बा। आयोग एकरा के मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर मामला मानता। जिलाधिकारी से 2 हफ्ता के भीतर पूरा विवरण मंगले बा। राजस्व औरी भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल दाखिल खारिज ई मापी और अभियान बसेरा के रुकल मामला सब के तेजी से निपटावे के हुकुम देले बाड़न। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उ कहलन कि 15 दिन के बाद एक बार फिर से काम के जांच कैल जाय। श्री जायसवाल किसान पंजीकरण अभियान के तेज करे खातिर परिमार्जन के मामला सब के भी जल्दी से निपटावे के आदेश देले बाड़न। आम लोगन के परेशानी के निपटारा खातिर अब पंचायतन के तर्ज पर राज्य के नगर निकायन में भी सहयोग शिविर के शुरुआत कैल जाय। एमे लोगन से मिले वाले आवेदन के आधार पर उन्हन के समस्या के समाधान 30 दिन के भीतर कैल जाय। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सब प्रमंडलीय आयुक्त जिला पदाधिकारी वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक लोग के निर्देश जारी करके शिविर के तैयारी करे के कहले बाड़न। पंचायते नियर नगर निकाय क्षेत्र में भी हर महीना के पहला और तीसरा मंगर के सहयोग शिविर लगावल जाय। प्रदेश के और दक्षिण पूर्व हिस्सा में लगातार हो रहल बरखा के कारण तापमान में गिरावट आयल बा। एकरा साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित भोजपुरी समाचार के ई अंक एही जा समाप्त भइल।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भोजपुरी बुलेटिन। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत की आवाज में यस बॉस फिल्म का ये गीत। शब्द है जावेद अख्तर के और संगीत जतिन ललित का।

श्रोताओं, दर्शन रावल की आवाज़ में आइए सुनते हैं तेरा सुरूर फिल्म का ये गीत। समीर अंजान की लिखी इस रचना को तर्ज दिया है महेश रेशमिया ने।

0: दर्शन रावल की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम एम 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं संस्कृत समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिन शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। सर्वकारेण सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणार्थं 500+25,000 कोटि रूप्यकाणां केन्द्रीय परिव्ययेन सह सार्थक PDS योजनायाः विस्ताराय स्वीकृतिः प्रदत्ता। सर्वोच्च न्यायालयेन मतदातृसूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षणाय निर्वाचनायोगस्य अधिकारः न्यायोचितम् अंगीकृतम्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानं अवलोक्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रियपात्रता सह प्रवेशपरीक्षायाः प्रश्नपत्र गोपनभंग प्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अपि च IPL क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चण्डीगढ़ क्रीडाङ्गणे सनराइजर्स हैदराबाद

0: दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। आर्थिक प्रकरण मंत्रिमंडल समित्या अद्य षोडश वित्तायोगस्य पुरस्कार चक्रावधौ सार्थक पीडीएस इति अम्ब्रेला योजनायाः निरंतरतायै त्रिंशदधिक पंचशतोत्तर पंचविंशति सहस्र कोटि रूप्यकाणां केन्द्रीय विनियोगः करिष्यते। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संबोधयन् सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना राज्य संस्थाभ्यः राज्यान्तर्गत खाद्यान्न परिवहनाय साहाय्यं प्रदास्यति। सहैव उचित मूल्यापणानां सुदृढीकरणं करिष्यति तथा च सार्वजनिक वितरण प्रणाल्याः आधुनिकीकरणेपि सहयोगं करिष्यति।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् अस्यां योजनायां कृत्रिममेधायाम् आधारिताः निर्मल आशा सक्षमाख्याः त्रयः घटकाः भविष्यन्ति। तेन स्पष्टीकृतं यत् निर्मलिति कृत्रिममेधाचालितः वास्तविकसमय पीडीएस लाभार्थी पञ्जीकरणमञ्चः अस्ति। सहैव आशा इति बहुभाषीय कृत्रिममेधा आधारिता जनपरिदेवना निवारण प्रणाली तथा च नागरिकसंवादमञ्चः वर्तते। एवं च सक्षमः इति कृत्रिम मेधायुक्तम् आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तंत्रमस्ति। अनेन सहैव आर्थिक प्रकरण मंत्रिमंडल समित्या राज्यांतर्गत खाद्यान्न परिवहन व्ययस्य तथा उचित मूल्यापण विक्रेतृणां लाभांश सीमायाः पूर्तये केन्द्रीय सहायता नियमेषु संशोधनस्य तथा च पूर्ववत वित्तपोषण प्रारूपस्य निरन्तरतायाः अपि दृढ़ निर्णयः कृतः। सर्वोच्च न्यायालयेन अद्य भारत निर्वाचन आयोगेन प्रदत्त मतदातृसूच्याः विशेष गहन पुनरीक्षणस्य वैधता प्रमाणीकृता। तेनोक्तं यत् एतादृशं विशेष पुनरीक्षणं निष्पक्ष स्वतंत्र निर्वाचनानां संवैधानिक अनिवार्यतां संवर्धयति। न्यायालयेन प्रतिपादितं यत् जनप्रतिनिधित्व अधिनियमः पञ्चाशदुत्तर एकोनविंशतितमः चतुर्विंशत्यधिकत्रिशतम् अनुच्छेदस्य नियमानुसारं निर्वाचनायोगस्य पार्श्वे विशेषगहन पुनरीक्षणस्य पूर्णा शक्तिः वर्तते। मुख्यन्यायाधीशस्य सूर्यकान्तस्य तथा च न्यायाधीशस्य जयमाल्य बागचीत्यनयोः पीठेन एतत् निर्णयवचनं तासां याचिकानां सन्दर्भे प्रख्यापितम्, यासु गतवर्षे जून मासे निर्वाचनायोगेन बिहार राज्ये विशेष गहन पुनरीक्षणार्थं प्रसारिता अधिसूचना समाहूता आसीत्। मुख्य न्यायाधीशेन सूर्यकान्तेन प्रख्यापिते निर्णयपत्रे स्पष्टीकृतं यत् यदा स्वयमेव विधिः कारणानि अभिलेख्य केनापि प्रकारेण कस्मिन्नपि समये विशेष पुनरीक्षणाय आयोगम् अधिकरोति तदा इयं विशिष्टा प्रक्रिया केवलं तस्मात् कारणात् अवैधतां न प्राप्नोति यदेषा सामान्य पुनरीक्षणस्य पारंपरिक प्रक्रियाणां सर्वथा अनुरूपा नासीत्। देशस्य विविधेषु भागेषु वर्धमानं तापमानम् अवलोक्य प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नागरिकान् यथाशक्यं सावधानान् भवितुं साग्रहं प्रबोधितवान्। एकस्मिन् सामाजिक संजालीय संदेशे श्रीमोदी सर्वान् आद्रीकरणं रक्षितुं गृहात् बहिः गमनावसरे च जलं स्थापितुं परामर्शं प्रदत्तवान्। दैनिक जीवने उष्णताप जनित कष्टानां विषये चिन्तां प्रकटयन् प्रधानमंत्री अवोचत् यत् एतादृशायां ऋतौ संवेदनशीलता एव महत्तरः आधारः भवति। तेन पिपासितेभ्यः चषक परिमितं जलं प्रदातुं परामर्शो प्रदत्तः। सः सर्वान् स्वपरिजनैः आत्मीयैः च सह निरन्तरं सम्पर्कं स्थापयितुं तेषां कुशलवार्तां प्रष्टुं भूरि जलं पातुं मध्याह्ने प्रचण्डे आतपे बहिर्गमनं वर्जयितुं तथा च यथाशक्यं विश्रामं कर्तुं स्मारितवान्। तेन पशुपक्षिणां कृतेऽपि करुणां प्रदर्श्य गृहात् बहिः अलिन्देषु छदिषु आपणेषु तथा कार्यालयेषु जलपूरितं लघुपात्रं स्थापयितुं निर्देशो विहितः। श्रीमोदिना तेषां प्रयासानां भूरि प्रशंसा कृता ये पिपासितजनकल्याणाय स्वगृहाणाम् आपणानां च बहिः मृत्तिकाघटेषु शीतलं जलं स्थापयन्ति। प्रधानमंत्री सर्वानेतेषु कष्टकरदिनेषु परस्परं करुणाप्रदर्शनार्थं

0: पुरुषार्थं साग्रहं प्रार्थितवान्। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन राष्ट्रियपात्रता सह प्रवेशपरीक्षा प्रश्नपत्रगोपनभङ्गप्रकरणे अपरौ द्वौ अभियुक्तौ निगडितौ। अनेन तावत् केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन अस्मिन् प्रकरणे दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर, अहिल्यानगरेभ्यः एतावता 13 आरोपिणः निगृहीताः। अस्मिन्नेव क्रमे लातूर वास्तव्यः कश्चन चिकित्सकः डॉक्टर मनोज शिरूरे इत्येषः नीट प्रश्नपत्रभेदप्रकरणे निगडितः। अन्वेषणाभिकरणानुसारं कोचिंग संस्थापकस्य पुत्रेण सह त्रयाणां छात्राणां कृते अभियुक्त पीवी कुलकर्णी इत्यमुना रसायनशास्त्रस्य प्रश्नान् प्रापयितुं मुख्यभूमिका निर्व्यूढा। अपरः निगृहीतः अभियुक्तः तेजसः हर्षदकुमारशाहः वर्तते, यः पुणेनगरस्य डॉक्टर अभङ्गप्रभु मेडिकल अकादमी इति कोचिंग संस्थायां भौतिकशास्त्रस्य प्राध्यापकः अस्ति। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन एतावता देशस्य 49 स्थानेषु सहसान्वेषणं विहितम्, यत्र अनेके आपत्तिजनकाभिलेखाः, अङ्कीयसङ्गणकाः, दूरभाषयन्त्राणि च स्वायत्तीकृतानि। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः सबलं प्रोक्तवती यत् देशस्य विकासाय पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य विकासः सर्वथा अनिवार्यः वर्तते। अद्य गंगटोकनगरे सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्तसमारोहं सम्बोधयन्ती राष्ट्रपति मुर्मुः छात्रान् स्वकीयविचारैः, नवोन्मेषेण, परस्परविश्वासेन च राष्ट्रनिर्माणे योगदानं विधातुं परामर्शं प्रदत्तवती। मुर्मू महोदया अवदत् यत् शिक्षा एव सशक्तिकरणस्य परम मार्गः अस्ति।
1: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: कनाडा यात्रायाः द्वितीय दिवसे भारतस्य वाणिज्योद्योग मंत्री पीयूष गोयलः कनाडा देशस्य टोरंटो नगरे वरिष्ठ व्यापारिक नेतृभिः, संस्थागत निवेशकैः च सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विहितवान्। यात्रा प्रसंगे श्री गोयलः कनाडा देशस्य अन्ताराष्ट्रिय व्यापार मंत्रिणा मनिंदर सिद्धू इत्यमुना सह साक्षात्कृत्य भारत कनाडा देशयोः वर्धमान पूरकताम् अधिकृत्य चर्चां कृतवान्, तथा च सुदृढ़ सर्वकारोद्योग सहयोगेन चालितस्य अधिक सशक्तस्य पूर्वानुमान योग्यस्य च व्यापार पारिस्थितिकी तंत्रस्य आवश्यकतायामपि बलं प्रदत्तवान्। आईपीएल क्रिकेट प्रतिस्पर्धायाम् अद्य सायं मोहाली नगरस्य न्यू चंडीगढ़ क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन सह प्रतिस्पर्धिष्यति। एषा स्पर्धा सायं 7:30 समारप्स्यते। इतः पूर्वं गतरात्रौ धर्मशाला नगरे आयोजिते द्वन्द्वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 92 पराजितम् इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं किसान भाइयों का ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी।

0: नमस्ते दिव्या बहन।
1: नमस्कार विनीता बहन, कहथिन का हाल समाचार है?
0: हाल समाचार है?
1: अरे अपने के तो एकदम हरियर हरियर सूट,
0: हाँ
1: मतलब लगे थे
0: का
1: कि
0: हरियर हरियर सूट प्रकृति के निशानी होला कि हरियरी छाइल रहो,
1: नो
0: खूब

0: सही जोन कहल जाला कि एकदम प्रकृति में खुशहाली बनल रह।
1: तो हमरा तो लगल कि बकरीद उकरीद के चलते का पहनले ह।
0: ना ना बकरीद के चलते हम नहीं पहनले भाई, और बकरीद खाली आजे नहीं के दीपे बहन।
1: हाँ
0: बकरीद काल हो मनावल जाता, ढेर आदमी के मुंह से सुननी कि बकरीद काल बा।
1: ओ अच्छा, तो देखिन बकरीद जेकरा ईद उल जुहा भी कहल जा है, इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहार में से एगो है। ई त्योहार त्याग बलिदान और अल्लाह के प्रति अटूट आस्था के प्रतीक है।
0: एकदम सही कहने रुआ, ई त्योहार में सभी जोन हमने इनके मुसलमान भाई लोग होले वो एकरा के बकरीद कहले गेल बा, तो बकरी के बलि देके एकर पर्व के मनावल जाला।
1: हाँ।
0: इहे चलते जन तनी जाई लनु तो रास्ता में एगो बकरी बाजार बा त ना होई जे जाम लागल रहतन हूं।
1: हां
0: मेला लागल बा बकरी।
1: ओ
0: तो अभी बकरी पर्व के अवसर पर खूब बकरी बेचात।
1: आ देखिन एगो और जरूरी है भाई बात।
0: हां कौन बात,
1: ई चाहे भाई हिंदू के रहे चाहे मुस्लिम के रहे, चाहे ई हर मतलब कि धर्म के
0: मतलब
1: हां महिला सब के भाई बात है।
0: एमे धर्म ना है, एमे पूरा महिला समाज
1: की बात है। लेकिन महावारी के
0: हाँ।
1: तो महावारी हर किशोरी और महिला के जीवन में एगो स्वाभाविक जैविक प्रक्रिया है।
0: हाँ।
1: मगर भारत में आज भी ई विषय चुप्पी और रूढ़ी से घिरल है।
0: अच्छा।
1: जे लड़कियन और महिला में शर्म चाहे झिझक के कारण बन है। ई सामाजिकता और बाधा के अपन जरूरत के खुल के कहे से रोक है।
0: बिल्कुल सही कहने रहो।
1: और देखिन मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन MHM के परिवार के स्कूल में और समुदाय में अनदेखा कैल जा है, तो जानकारी के कमी और सामाजिक संकोच के चलते एकरा महावारी के अक्सर ज्यादातर छुपावे के चीज समझल जा है।
0: बिल्कुल सही।
1: तो जेकरा से किशोरी बिना मतलब मार्गदर्शक के अपना ऐसी भाई रह थी भाई, उनका कोई समझावे वाला बतावे वाला न रहे तो ऐसी रह जाते।
0: एकदम सही कहने दिव्या बहन कि मार्गदर्शन के बिना वो लोग जानकारी के कमी हो जाला। अब मासिक धर्म स्वास्थ्य स्वच्छता के खाली एगो स्वास्थ्य के मसला ना, गरिमा शिक्षा असमानता के भी एकरा में सवाल उठेला। जागरूकता के कमी कहीं, पुरान रूढ़ी कहीं, स्वच्छ उत्पाद तक सीमित पहुंच आ अपर्याप्त शौचालय सुविधा के वजह से खराब MHM लड़की के स्कूल हाजिरी भ गई, सेहत भ गई, सामाजिक भागीदारी पर बुरा असर पड़ेला।
1: हाँ।
0: आ किशोरियन के सही जानकारी या सुरक्षित तरीका अगर मिल जाए तो उनका आत्मविश्वास और पढ़ाई दोनों बेहतर हो जाला।
1: एकदम।
0: साथ ही परिवार आ समुदाय खासकर लड़का और पुरुष के शामिल करे से चुप्पी टूटेला और नुकसानदेह सोच के बदलल जा सकेला।
1: सही कहल थीन। देखिन भारत के किशोरी पहले महावारी के समय सबसे ज्यादा कमजोर होब हथिन। उनका सुरक्षित माहौल, सहयोगी परिवार और संवेदनशील स्कूल के जरूरत होब है, जेकरा से कि आत्मविश्वास के साथ महावारी के संभव कर सकथिन। तो MHM के खाली स्कूल तक सीमित नहीं रखना काफी है, एकरा लेल पूरा समाज के सौंसे समाज के मिलके काम करे पड़ते। समुदाय परिवार और संस्थान के मिलके महावारी पर खुलल बातचीत के सामान्य बनावे पड़ते।
0: एकदम सही कहने खुल के बातचीत कई हाँ, जरूरी हो जाए।
1: देखते स्वच्छ उत्पाद और सुविधा तक पहुंचना सुनिश्चित करे पड़ते और एगो ऐसा माहौल बनवे पड़ते जहाँ लड़कियन और महिला आगे बढ़ सकथिन। अच्छा मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता सेहत शिक्षा और गरिमा के लिए जरूरी है, एगो समावेशी और समान समाज के निर्माण के लगे भी।
0: बिल्कुल सही कहत अनिरुआ। देखी दिव्या बहन अगर बात कर जाओ रूढ़ी या सामाजिक संकोच के।
1: हाँ।
0: तो महामारी गांव और शहर दोनों जगह एगो वर्जित विषय बनल बा, जे सामाजिक संस्कृति मान्यता भ्रांति में जड़ जमवले बा। बहुत लोग के मुंह से अपवित्रता के पुरान सोच के वजह से लड़की या महिला के खाना बनावे पर, पलंग पर सोए, बाहर जाए या धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होवे से रोकल जाला। लेकिन देखल जाओ तो महामारी कोनो बीमारी नहीं है, बल्कि एगो स्वाभाविक स्वस्थ जैविक प्रक्रिया है। सही जानकारी के अभाव में महिला और लड़की सामाजिक आर्थिक बाधा से जूझत रहले। ऐसे महामारी के सामान्य बनावे या एक जैविक महत्व के समझावे खातिर सार्वजनिक चर्चा बेहद जरूरी बा।
1: हाँ और देखिन तंत्र और एकरा में गंदा अस्वच्छ उत्पाद और लंबा समय तक उपयोग करे और साफ सफाई के कमी से प्रजनन तंत्र और मूत्र मार्ग में संक्रमण हो सका है। तो सामाजिक रूढ़ी लड़की और महिला के डॉक्टर से मिले से भी रोकल जा सकले है, जेकरा से स्वास्थ्य समस्या और भी बढ़ सका है। तो महावारी के दौरान खान पीन पर लगावल गेल पाबंदी, खून के कमी और पोषण संबंधी कमी के खतरा बढ़ा है।

0: स्कूल में MHM सुविधा के कमी लड़कियन के क्लास छोड़े पर मजबूर कर रहे, जेकर सीधा असर उनका हाजिरी और पढ़ाई पर पड़ रहे। महावारी के संभाले के लेल गोपनीयता और सुरक्षा अक्सर देखते ज्यादातर उपलब्ध नहीं होबा है।
1: ये तो एकदम सही कहने हुआ, लेकिन बात कर जाओ अगर संस्थागत कमी पर, तो स्कूल कॉलेज कार्यस्थल आ स्वास्थ्य सुविधा में सैनिटरी पैड भ गई, अलग शौचालय आ बदलाव खातिर सुरक्षित जगह होके के चाहिए।
0: हाँ, बिल्कुल।
1: लेकिन इस सुविधा जोन बा वो अभी भी बहुते कम बा। ऐसे MHM जागरूकता केवल स्वच्छता आ उत्पाद वितरण तक सीमित ना होके के चाहिए। ये एगो व्यवहार संबंधी मसला बा, जेकरा में लड़कियन लड़का माता पिता आ समुदाय सबन के शामिल होकल जरूरी बा। तो ई रहे हमने इनके जौन बात कही जा महावारी धर्म स्वच्छता प्रबंधन पर।
0: हाँ, तो देखिए एकरा में एगो और खास बात है।
1: हाँ, बताएं, बताएं।
0: रेड डॉट चैलेंज के, तो रेड डॉट अभियान के मकसद महावारी के इंसानी नजरिया से देखे के है और मासिक धर्म स्वास्थ्य के आसपास के चुप्पी तोड़े के है, और एकरा करना बहुते आसान है।
1: कैसे भाई?
0: तो देखिन अपन हथेली पर एगो लाल बिंदु लगाथिन, सेल्फी लेथिन और रूढ़ी के चुनौती देवत तोड़थिन, तो एकरा ले सेल्फी लेके अपन परिवार के समुदाय के और सरकार के त्वरित और सार्थक कदम उठावे के मांग करते हुए एकरा शेयर करथिन पोस्ट पर #RedDotChallenge और #MHD2026 जरूर लिखथिन।
1: अच्छा।
0: चाहे @UNICEF India के टैग करके और दोस्त के भी जोड़थिन।
1: अच्छा।
0: ई अभियान, हाँ देखथिन, तो ई अभियान महिला और लड़कियन और सभ्य हितधारक के मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता के खुल के बात करेंगे और हौसला देव है जे 28 मई विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर सभ्य से आग्रह करे कि व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम समेत सभ्य सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म पर महावारी स्वच्छता और गरिमा के समर्थन करते हुए सेल्फी लेथिन अभी पोस्ट करथिन।
1: एकदम सही कहने रुआ, ये बहुत
0: साथ में जितना महिला मित्र हथिन है ना, पुरुष मित्र भी उनका भी भाई ऐड करथिन ओकरा में टैग करथिन।
1: एकदम सही कहने रुआ। तो ये तो रुआ निमन निमन बात हमने इनके अपन सुनिहार लोगन के बतानी।
0: हाँ,
1: लेकिन यही के साथ ही बहुत जरूरी हो जाला कि उनका मन लगावे खातिर कुछ नीक नीक गीत नाद दे।
0: हाँ बिल्कुल।
1: तब आज का सुनाई मरुआ,
0: तब वासनी चौधरी से सुनवाथिन ही लोकगीत
1: सुनी सभी।

0: निमन लोग भजन
1: बहुत
0: लागल है
1: बढ़िया।
0: इनके।
1: हाँ अब देखते ना आजकल ना हमनी सब जे पेड़ उतना काटले चल जा रही है
0: हाँ
1: ओकरा चलते भाई पानी कहियो कहिया पड़े के तो कहिया पड़ जाए पते न चल है कि
0: बिल्कुल
1: ना।
0: एकदम सही
1: खेती पर
0: तरीके
1: भी एकरा बहुत असर पड़ल है हमनी के
0: आ
1: जीवन
0: साथे
1: में भी।
0: साथे। हाँ
1: हाँ क्या
0: मानव
1: भाई
0: के जीवन
1: ओकर
0: तो
1: जे
0: देखा नहीं खाली
1: मौसम
0: उतने ना बरसात के तरुआ बात के गर्मी के देखे का
1: तब
0: स्थिति भइल बा। समय से पहले गर्मी पड़े लगा था जब देखा तब बिना मतलब के बिना सीजन के अब बरसात होके लगा था
1: हाँ
0: तो कहीं ना कहीं मानव जीवन तो हलकान होकबे करेला ये सब
1: तब
0: चीज से। तो जलवायु परिवर्तन जो होला वो बहुत बड़ समस्या है आज के समय के दिव्या भाई
1: अच्छा तो एक पर कुछ वार्ता उर्ता लेती ना का।
0: एकदम कहे ना जानकारी भरल बात जब तक हो ही ना वार्ता में
1: हाँ
0: तब तक आखिर हमने के सुनिहार जनी है कैसे। तो
1: हाँ
0: यही चलते चलिए हमने इनके अभी सुनी जाए वो वार्ता जिकर विषय बा जलवायु परिवर्तन के मानव पर प्रभाव। अब
1: अच्छा
0: वार्ताकार बारे डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा जी
1: सुनल जाए।
0: सुनी सब है इनका सही वार्ता।
2: ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि के कारण जलवायु परिवर्तन देखा जा रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जिसमें गैसें पृथ्वी को एक कंबल की तरह घेर लेती हैं और इसके तापमान को इस तरह नियंत्रित करती हैं कि पृथ्वी जीवित प्राणियों के लिए एक अनुकूल स्थान बनी रहे। लेकिन जीवाश्म ईंधन यानी कोयले या पेट्रोल के बहुत अधिक उत्सर्जन और पेड़ों की अधिक कटाई के कारण पृथ्वी के तापमान का असंतुलन हो गया है और तापमान में यह वृद्धि पृथ्वी पर तबाही ला रही है। जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर उच्च तीव्रता और अप्रत्याशित रूप से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा, भूस्खलन आदि होते रहते हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 50 वर्षों में वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक आपदा में 5 गुना वृद्धि हुई है और यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण ही हो रही है। क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा जाना जाने वाला ग्रीन हाउस गैस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस और दूसरे अन्य फ्लोरिनेटेड गैस होते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यू

ईपी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पूरे विश्व भर में 55.3 गीगाटन के बराबर हुआ था। ये गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर का ये एक मापने का मानक है। आप ये जानें कि इस 55.3 गीगाटन पूरे ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जित हुआ धरती में, इसमें से केवल कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान 37.5 गीगाटन के बराबर था। यानी हम समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन यह सबसे बड़ी समस्या है। यह उत्सर्जन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन है, यह मुख्य रूप से ईंधन यानी कि कोयले, पेट्रोल और दूसरे औद्योगिक गतिविधि के उपयोग के कारण होता रहा है। ग्रीन हाउस गैस का एक और दूसरा उत्सर्जन मीथेन गैस है, और यह हम सभी जानते हैं कि यह नगर पालिका कचरे के अनुचित प्रबंधन के कारण हो रहा है। सेंटर ऑफ रिसर्च ऑन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ डिस्चार्जेस के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के कुल 315 बड़े मामले सामने आए थे, जो मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन से ही संबंधित थे। इसमें सूखे के 16 मामले, अत्यधिक तापमान के 26 मामले, बाढ़ के 127 मामले, भूस्खलन के 13 मामले, तूफान के 95 मामले और जंगल की आग के 10 मामले शामिल हैं। वर्ष 2018 में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों की कुल संख्या पूरे विश्व भर में 68.5 मिलियन यानी 6.85 करोड़ थी, और यह आंकड़ा वर्ष 2008 में घटित हुए पूरे आपदा की जो घटना थी उसकी 94% होती है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हमारे जीवन में बहुत ही बुरी तरह से हमें प्रभावित कर रहा है। कुछ गतिविधियों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जलवायु परिवर्तन से हम जोड़ सकते हैं। ये जो गतिविधियां हैं वो हैं खनन, औद्योगिक कचरे को छोड़ना, अयस्क को गलाना, जीवाश्म ईंधन का उपयोग विशेष रूप से कोयला और पेट्रोल, प्रदूषण, बढ़ती हुई प्रदूषण, शहरीकरण, पेड़ों की अधिक कटाई, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का अधिक उपयोग आदि इसके अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी का औसत सामान्य तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, यानी कि जीवन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी का तापमान हमें 15 डिग्री ये मेंटेन करके रखना होगा। रिपोर्ट कहती है कि औद्योगीकरण के बाद यानी 1870 के बाद से आज तक पृथ्वी के तापमान में औसत 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है, और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2050 तक पृथ्वी के तापमान में औसत वृद्धि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड होने की संभावना है। यह वृद्धि समुद्र के पानी के स्तर को बढ़ाएगी और इससे कई एक शहरों का जीवन नष्ट हो जाएगा। जो वैसे शहर जो समुद्र तल से कम ऊंचाई पर हैं, वो उनका नष्ट होने का, समुद्र में समाने का बहुत ही ज्यादा संभावना है। अर्थ सिस्टम एंड एनवायरमेंट नामक पत्रिका के अगस्त 2021 अंक में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के कई एक महत्वपूर्ण शहर और दुनिया के अन्य स्थान जलमग्न हो सकते हैं। यह भविष्यवाणी की गई है कि 2030 तक समुद्र का पानी कोलकाता शहर को डुबो सकता है और 2050 तक मुंबई, कोच्चि, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम और त्रिवेंद्रम जैसे शहर प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन में कोई विराम अगर नहीं होता है तो ये सारे शहर नष्ट हो जा सकते हैं। यदि हम लोग आज की तरह ही पृथ्वी को प्रदूषित करते रहेंगे तो पूरी पृथ्वी जलमग्न हो सकती है, पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रह सकता है। अब हम जानें कि कैसे इसको हम रोकथाम कर सकते हैं। तो विशेषज्ञों के मुताबिक तीन मुख्य जलवायु परिवर्तन रोकने के उपाय बताए गए हैं, जिसे इन तीनों उपायों को विश्व समुदाय को ईमानदारी से लागू करने की आज बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। पहला उपाय जो है वो पारंपरिक समन प्रयास, कहने का अर्थ है कि जो हमारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और दूसरे जो पारंपरिक एनर्जी स्रोत हैं
उनको उपयोग करने की

0: हो सकता है। दूसरा उपाय बताया गया है कि डीकार्बोनाइजेशन टेक्नोलॉजी, डीकार्बोनाइजेशन तकनीक, इसका ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी और दूसरे जगहों में इसे उपयोग करने की आवश्यकता है। और दूसरे जो भी उपलब्ध तकनीक हैं उनको भी आज अपनाने की आवश्यकता है, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड उस उत्सर्जन को कम किया जा सके। जैसा कि मैंने अभी बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ही साथ आज के डेट में बहुत सारी ऐसी ऑटोमेटिक सिस्टम आ गई है, जिसको कि हम ऑटोमेटिक इनर्जी स्विचिंग सिस्टम कहते हैं। इसके द्वारा भी हम इनर्जी को बचा सकते हैं। साथ ही परमाणु ऊर्जा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बन कैप्चर स्टोरेज, इन सारे तकनीकों का उपयोग आज बहुत ही आवश्यक है कि हम हर क्षेत्र में जहाँ तक संभव हो करें। इनमें से अधिकांश टेक्नोलॉजी अच्छी तरह से स्थापित हैं और जोखिम प्रबंधन ये भी स्वीकार्य है, इसकी स्तर अच्छी है, जोखिम का भी बहुत ही कम संभावना रहता है। हम सौर ऊर्जा, औद्योगिकी ऊर्जा या अन्य हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम कर सकते हैं। ऐसी प्रौद्योगिकियां, टेक्नोलॉजी मौजूद हैं जिनका उपयोग नगर पालिका के कचरे को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के उत्पादन के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसे लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने की आज आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, इसे लोगों के बीच हम प्रचलित करें, इसकी बहुत आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के नैनो कार्बन पाउडर या हीरे के आकार के कार्बन टेक्नोलॉजी में रूपांतरण का उपयोग समस्या को कम करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ यह उद्यमिता के अवसर को भी बढ़ावा दे सकता है। इसमें हमारे नौजवान आगे बढ़ के इस कार्य को कर सकते हैं। एक व्यक्तिगत नागरिक के रूप में हमें भी जलवायु परिवर्तन की आपात स्थिति को समझना चाहिए और इसे नियंत्रित करने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमें भोजन पकाने में कोयले या लकड़ी का बिल्कुल ही प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें यह समझना चाहिए कि प्लास्टिक का उपयोग एक बड़ी समस्या है, और एक नागरिक के रूप में हम इसे आगे कभी उपयोग नहीं करने की शपथ लेकर एक बदलाव ला सकते हैं। बिहार राज्य में 1 अप्रैल 2022 से प्लास्टिक के पैकेट और बोतली के इस्तेमाल पर 100% बैन लगा दिया गया है। खुले में प्लास्टिक या कोयला जलाते हुए पकड़े जाने पर ₹25,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है। एक नागरिक के रूप में हमें बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड BPCB के प्राधिकरण को सूचित करना चाहिए यदि कोई कोयला जला रहा है या हवा, पानी या मिट्टी को प्रदूषित करने वाली कोई गतिविधि चल रही हो, तो इसकी सूचना हमें अवश्य देनी चाहिए। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सार्वजनिक या निजी स्थानों पर प्रदूषण गतिविधि को जानकारी देने के लिए एक टोल फ्री टेलीफोन नंबर भी जारी की है। शिकायत का टेलीफोन नंबर आप नोट कर सकते हैं, यह है 0612226176। मैं इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यह टेलीफोन नंबर, इस पर शिकायत किया जा सकता है। वो नंबर है 0612, यानी कि ये पटना का कोड हुआ, 2261776। और ईमेल आईडी भी उपलब्ध है, ईमेल आईडी भी आप नोट कर लें, msbspcs-bih@gov.in। मैं फिर से ईमेल आईडी को रिपीट कर रहा हूँ, msbspcs-bih@gov.in। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपके नाम का खुलासा नहीं करता है और वे तुरंत कार्रवाई करते हैं।
1: दिव्या बहिन, तो कैसन लागल ई जलवायु परिवर्तन पर जो
2: बहुत भाई, हाँ जानकारी के बात मिलल
1: हाँ।
2: है कि ना?
1: तब इतना जब जानकारी भरल बात हमने इनके बतौले, तो डॉक्टर संजय कुमार सिन्हा के सबसे पहले तो धन्यवाद दिल जाओ।
2: एगो साथ है साथ
1: हाँ,
2: नचारी सुन लेवल जाए वासनी चौधरी से
1: सुनी सब है।

0: विनीता बहन देखिन, वासनी चौधरी से सुन रही है लवी नचारी, एक साथ साथ चौपाल के समय ओरिया रहा है। अब हमने बात करम खेती गृहस्थी में।
1: बिल्कुल, खेती गृहस्थी में बात करत करत हम कह दी कि लगले हमने इनके प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल पारस है के समय हो गई।
0: सुनल जाए
1: तो सुनी सब है, पारा मेडिकल है पारस।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से आप सबों के घर आंगन में आज बुधवार का दिन है और लेकर आ गया पैरा मेडिकल है पारस। जी हां, पैरा मेडिकल है पारस में हम बातें करते हैं हेल्थ सेक्टर में पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद रोजगार की भी, स्वरोजगार की भी। अगर जो रोजगार है तो सरकारी क्षेत्र के रोजगार और निजी क्षेत्र के रोजगार की भी बात करते हैं। कहते हैं कि कोविड के बाद से इतना वाइब्रेंट हो चुका है हेल्थ सेक्टर कि पढ़ते पढ़ते ही रोजगार मिल जाता है या कमाना शुरू कर दिया जाता है। पैरामेडिकल है पारस हम लेकर आते हैं राज्य की एक विशिष्ट संस्था है पैरामेडिकल की, श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, जो पटना के जक्कनपुर पुलिस स्टेशन के ठीक सामने है।

0: की तरफ से। उनका मानना है कि बिहार के अंतिम युवा तक बातें पहुंच जानी चाहिए कि अगर वो हेल्थ सेक्टर की पढ़ाई करते हैं तो उनके लिए रोजगार ले लेना बहुत कठिन कार्य नहीं है। हम नंबर बताते हैं, इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद आप चाहे तो डायल कर सकते हैं, नंबर नोट करें 9155558888 और दूसरा नंबर है 9162413233। ये नंबर है, इस पर आप बातें कर सकते हैं। और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी, तो चलिए इनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। किस मुद्दे पर बात होगी, हम हाँ जोड़ते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बात करना चाहिएगा पैरामेडिकल के बारे में, बताइए।
1: देखिए राजेश जी, बहुत अच्छे अच्छे जो बैचलर का कोर्स आ गए हैं, हाँ। बच्चे लोग के पास अभी तक जानकारी का अभाव है और नहीं कर पाता है,
0: जानकारियों का ही अभाव है।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और बहुत सारे बच्चे लोग को ये ऐसा पता भी नहीं कि ऐसा भी कोर्स होता है।
0: जी
1: जैसे हुआ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब जो कोर्स हैं ये बहुत ही उपयोगी कोर्स है। और इस बच्चे ये सब कर करके बच्चे निश्चित रूप से अपने जो सपना देखा है उसके तरफ बढ़ जाता है।
0: जी।
1: तो ऐसे ऐसे जो कोर्स को ऑप्ट करना चाहिए, सिर्फ आईएससी बायोलॉजी और बीएससी करने से उसके जो टेक्निकल कोर्स अगर नहीं करेगा तो आज के समय में उसका बहुत महत्व नहीं रह गई।
0: जी।
1: तो निश्चित रूप से किसी भी बच्चे को अगर डॉक्टर नहीं बन पाया है या डॉक्टर की चाह नहीं है, उतना उसके सामर्थ्य नहीं है, उतना मार्क्स नहीं ला पाता है, उतने पैसे का जुगाड़ नहीं हो सकता है, तो निश्चित रूप से उसको सेकंड ऑप्शन चुनना चाहिए पैरामेडिकल का कोर्स। और पैरामेडिकल में देखिए दो तरह से होते हैं, एक डिप्लोमा कोर्स होता है, एक डिग्री कोर्स होता है।
0: जी।
1: तो डिग्री कोर्स जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है, आसपास होता है। तो ऐसे बच्चे को निश्चित रूप से वह कोर्स चुनना चाहिए और उसमें पढ़ाई कर करके अपने करियर को बनाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: जिसमें से मैंने पहले भी बताया कि बीपीटी हुआ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हुआ, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ, ये भी बैचलर का कोर्स है, और उसके बाद बीएचएम हुआ, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट हुआ। तो इस तरह से ये जो कोर्सेज है जो बहुत ही वाइब्रेंट कोर्स है और लगातार बहुत मांग हो रही है इसकी, और ऐसे ऐसे जो कोर्स है वो आगे और भी मांग होते जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है।
0: जी, एक बात बताइए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी तो हमेशा से बहुत वाइब्रेंट रहा है ना, इसकी मांग इधर कुछ कम हुई है क्या?
1: बिल्कुल नहीं, इसकी मांग कभी कम भी नहीं होगी।
0: मार्केट में इस तरीके से क्यों बातें फैल रही हैं कि फिजियोथेरेपी के कोर्स की यूटिलिटी नहीं रह गई?
1: बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, फिजियोथेरेपी की यूटिलिटी कभी कम नहीं हो सकती है, जिस तरह से मेडिकल की यूटिलिटी कम नहीं हो सकती है और जिस तरह से नर्सिंग की यूटिलिटी नहीं कम हो सकती है, उसी तरह से फिजियोथेरेपी की भी यूटिलिटी कम नहीं होगा, और जहां तक और बढ़ ही रही है। मोटापा बढ़ रहा है, घुटने का ये सब जितने भी बीमारियां हैं सब बढ़ रही है, तो उसकी उसको ठीक करने वाले को कम कैसे माना जा सकता है?
0: नहीं माना जा सकता है, लेकिन लोग कह रहे हैं इसलिए हमने पूछ लिया।
1: नहीं तो उसको जानकारी का अभाव है इसलिए ऐसा कह रहे हैं।
0: तो जानकारी दीजिए युवा साथियों को, थोड़ा डिस्करेज कर रहे हैं।
1: निश्चित रूप से बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट, ये सब कोर्स जो है अभी और वाइब्रेंट होगा और ज्यादा होगा, यहाँ तक कि डिप्लोमा छोड़ करके लोग डिग्री में कर रहे हैं।
0: जी।
1: और डिप्लोमा पहले चलता था, अब डिग्री आई है तो डिग्री सब लोग कर रहे हैं, डिप्लोमा तो किए हुए हैं ही, डिग्री लोग करना चाहते हैं। जो बच्चे आता है कि कहता है कि नहीं तो अगर हमारा 2 साल बर्बाद होगा ही, 2 साल करने का मतलब लगेगा ही, तो 2 साल और कर करके डिग्री कर लेते हैं।
0: हाँ।
1: और डिग्री करने से वो जो होता है राष्ट्र स्तर पर वो अपने आप को बिखेर लेता है, और उस तरह से वो जहाँ चाहे जिस विधा में चाहे वो जा कर करके आगे बढ़ सकता है।
0: तो फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एक बार थोड़ा फिर से दे दीजिए, जैसे जनरल कोर्स में जर्नलिज्म को लोग बर्बाद कर रहा है, बदनाम कर रहा है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसी तरीके से फिजियोथेरेपी की भी चर्चा हो रही है, तो उसके बारे में एक बार फिर से विस्तृत जानकारी।
1: मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए हर समय हमेशा रहा के गुरुकुल शिक्षा का भी ले लीजिए या कोई भी शिक्षा का ले लीजिए, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको सभी जगह मांग है।
0: जी।
1: और जनरल एस्पेक्ट में कहिए तो अगर आप उसको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे लेते हैं और निश्चित रूप से आप पढ़ लेते हैं तो आपकी मांग कभी घटेगी नहीं। और हेल्थ प्रोफेशनल तो एक ऐसा कोर्स है कि नौकरियां आपके पीछे पीछे चलती है, बाकी सब

0: उसको बुलाया जाता है, लेकिन ये हेल्थ प्रोफेशनल है कि आपके पीछे आपकी नौकरियां चलती है। अगर आप अच्छा करते हैं तो यू वेलकम टू एवरी हॉस्पिटल, अगर आप अच्छा नहीं करते हैं तो यू एक्सिट फ्रॉम एवरी हॉस्पिटल। ये तो निश्चित रूप से है कि अगर आप अच्छा नहीं करेंगे अपने अपने प्रोफेशन में तो आपको कहीं मांगे नहीं होगी। अगर आप बेहतर अच्छा करेंगे, जितना और अच्छा करते जाएंगे उतना और मांग बढ़ते जाएगी
1: जी।
0: तो ये तो निश्चित रूप से ये परंपरा रही है और हेल्थ का। और जहां तक रही बात की टोटल की बात है, तो टोटल देखिए कि लगातार जो ये हमारा जो खान पान आहार विहार पर्यावरण ये सब जो है लगातार दूषित होते जा रहा है, तो इससे बीमारियां भी तरह तरह की बढ़ रही है, तो इसको देख रेख करने वाले भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अगर देख रेख करने वाले लगातार बढ़ रहे हैं तो आप कम कहां से होंगे।
1: सही।
0: अब फिजियोथेरेपी का इतना एस्पेक्ट बढ़ गया है, जैसे आप खेलों में भी जा सकते हैं, सेना में जा सकते हैं, सभी जगह कोई ऐसा बताइए कि जहां पर फिजियोथेरेपी की जब आवश्यकता नहीं है। अनुमंडल अस्पताल में, सदर अस्पताल में, खेल के कोई भी क्षेत्र में अब लगातार खेल की भी संख्या कितनी बढ़ गई है, अब उसमें हर में एक फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है। अगर इसी प्रकार से देख लीजिए तो लगता है कि हजारों हजार की संख्या आ जाती है।
1: सही सही बात।
0: इतने अनुमंडल अस्पताल है, इतने रेफरल अस्पताल है, इतने सदर हॉस्पिटल है, उसके बाद इतने मेडिकल कॉलेज है, इतना एक पूरा विभाग ही है। तो जिस तरह से ऑर्थोपेडिक का नहीं हटेगा, जिस तरह से गायनेकोलॉजी का नहीं हटेगा, जिस तरह से मेडिसिन नहीं हटेगा, उस तरह से ये ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी कैसे हटेगा।
1: सही बात है।
0: और इसकी महत्ता बढ़ते ही जाएगी, तो इसलिए बिल्कुल अगर कोई कहता है तो ये बेकार बातें हैं, उसको पढ़ने की जरूरत है और अच्छा से पढ़ने की जरूरत है। मैं आग्रह यही करता हूँ, मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूँ सभी बच्चों को कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आपकी नौकरी आपकी रखी हुई है। कोई भी विषय विषय जैसे अगर हम लोग मैट्रिक का ही उठा लेते हैं तो मैट्रिक में 120 बच्चे होते हैं, तो सबका मार्क्स एक समान तो नहीं आता है राजेश जी,
1: बिल्कुल नहीं।
0: लेकिन जो अच्छा से पढ़ता है निश्चित रूप से उसका मार्क्स अच्छा रहता है, और वो उसी में से कुछ लोग और अच्छे कर जाते हैं। तो मैं ध्यान यही केंद्रित करना चाहता हूँ बच्चों को कि आओ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो और कुछ नहीं, और तुम्हारा भविष्य यहीं से निर्णायक हो जाएगा और तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम अपने मुकाम पर पहुंच जाओगे। जो तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे परिवार ने तुमको सपना देखा, जो सोसाइटी ने तुम्हारे लिए सपना देखा है, उसको साकार करो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और आगे बढ़ जाओ।
1: पैरामेडिकल है पारस, ये कार्यक्रम चल रहा है, मैं हूँ आपका अपना राजेश, और डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जो है ना इस कार्यक्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम लेकर आते हैं श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से। कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को सुनकर ऑप्ट किया प्रोफेशनल कोर्स, चाहे वो पैरामेडिकल के कोर्सेज हो, नर्सिंग के कोर्सेज हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हो, और आज अपने लिए एक अच्छा करियर चुन लिया है। आज भी लोग कर रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चों आपको हम ये बताना चाहते हैं जिनको करियर निर्माण करना है 1-2-3 साल के अंदर, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत ही उम्दा साबित होगा। नोट करें, अगर अभी से ही आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी से बात करके उसे दूर करें। नंबर नोट करें 9155558888, 9155558888, और दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233। और अब डॉक्टर प्रियदर्शी, फिजियोथेरेपी में 3 साल का डिप्लोमा कोर्स, 4 साल का डिग्री कोर्स, यही है ना
0: जी?
1: इसी में आपको 4 साल तक मेहनत करनी है। श्री राज नर्सिंग में ये है क्या फिजियोथेरेपी उच्च स्तर का
0: 2023 से?
1: पढ़ाई लिखाई के बारे
0: जी,
1: में
0: जी, जी।
1: पढ़ाई लिखाई के बारे में
0: बिल्कुल, मैं तो पहले ही इसके पहले भी एपिसोड में मैंने बताया था कि जो आपने चर्चा किया था तो कि पढ़ाई का क्या स्तर रहता, हमने पहले ही बताया था कि हम पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कब डेवलप करते हैं। जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है तभी हम कोई कोर्स को लॉन्च करते हैं, और लोगों और जगह से हम बेहतर रिजल्ट देंगे। ये हमेशा लगातार 10 साल से हमारा ये कीर्तिमान रहा है और आगे भी कीर्तिमान रहेगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ।
1: एंड जॉब अपॉर्चुनिटी फिजियोथेरेपी करके नौकरी या फिर स्व व्यवसाय,
0: उसकी इच्छा उसकी इच्छा, अगर वो नौकरी में जाना चाहे तो नौकरी में जाए, उसको स्व व्यवसाय करना है तो स्व व्यवसाय करे, मल्टीनेशनल में जाना चाहे तो मल्टीनेशनल जाए, एब्रॉड जाना चाहता है तो एब्रॉड जाए,
1: कहीं
0: उसकी इच्छा, कहीं भी नौकरियां सभी जगह है,
1: नौकरियां सही जगह है, डॉक्टर साहब ने कहा। इसीलिए ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लोग मार्केट में क्या

0: कह रहे हैं। डॉक्टर साहब ने कहा जिस तरीके से डॉक्टर्स की कभी मांग कम नहीं होगी, नर्सिंग की कभी मांग कम नहीं होगी, उसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्ट की मांग कभी भी कम नहीं होगी। इस बात को सोचने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में क्या है पहले ये बताइए और फिर आगे चर्चा करेंगे।
1: देखिए, ऑक्यूपेशनल थेरेपी को सीधे शब्दों में समझिए तो ये फिजियोथेरेपी का अपना भाई है, अपना भाई है, दोनों का बंटवारा हो गया।
0: क्या पढ़ाई होती है?
1: दोनों में सब कुछ सामान्य है। हाँ। सब कुछ समान है। हाँ। उसमें से बस यही डिफरेंट है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो तो करते ही हैं, जितने भी विधा है, हाइड्रोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, सारे देते ही हैं। उसमें ऐड क्या हो गया इसको समझिए। ऐड हो गया मतलब जो जिस लाइक का है उसके लाइक का कुछ रोजगार के बारे में बता देना उसको।
0: अच्छा,
1: ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी हुआ कि ऑक्यूपेशन बना देना,
0: ऑक्यूपेशन व्यवसाय
1: उसके लाइक बना देना। जैसे मान लिया कि कोई पढ़ा लिखा अगर हो गया है, अपंग हो गया है, तो उसको कुछ कंप्यूटर चलाने, कुछ और भी काम जो जिसमें उसकी रुचि है,
0: जॉब ओरिएंटेशन,
1: जिसमें उसकी रुचि है उसके लाइक उसको बना देना।
0: अच्छा,
1: अगर मान पैर कट गया तो वो दौड़ तो नहीं सकता है, जा नहीं सकता है, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसको और क्या क्या ऑक्यूपेशन है जिसको वो समझाता और बताता और इस पर उसको आगे बढ़ा देता है, तो यही ऑक्यूपेशन थेरेपी है। और ये आजकल आज जो है, आज चूंकि हम लोग के नजरों में नहीं आता है, लेकिन एक जगह कलेक्टिवली अगर देखते हैं तो रोज इस भागदौड़ की जिंदगी में कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं, कितने अपंग हो जाते हैं, कितने क्या हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से उसको जिस लाइक है उस लाइक को बनाने का काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है।
0: यही काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी का है, बिल्कुल। ये फिजियोथेरेपी, हाँ, जो है ना, उसका सगा भाई है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और उससे कुछ कदम आगे है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आज वक्त नहीं है, आज हमने फिजियोथेरेपी के बारे में जो भ्रांतियां फैली थी कि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, नीचे की ओर जा रहा है, पढ़ाई करना मुश्किल है, ये सारी चीजें आपने दूर की कि ये सारी चीजें गलत है, इस पर कहीं से विचार करने की जरूरत नहीं है, जमकर पढ़ाई कीजिए, आगे सोचिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में आगे हम बातचीत करेंगे अगले आने वाले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, लगातार हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर बहुत ही उम्दा है, आप इसमें अपना करियर आजमा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगे तो नंबर नोट कर लें, एक बार फिर से बता रहे हैं, 9155558888, 9155558888, ये पहला नंबर। दूसरा नंबर है 9162413233, 9162413233, ये नंबर है, इस पर बात कर लीजिए। और इसे कहीं से विज्ञापन नहीं समझिए, ये सहूलियत है आप युवाओं के लिए। फिलहाल चलने का वक्त हो गया, राजेश आज निकलता है, अगले बुधवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री राज नर्सिंग ट्रेनिंग एंड पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट।
3: अभी हमने सब सुन रही है प्रायोजित कार्यक्रम पारा मेडिकल है पारस।
4: हाँ, यही के साथ साथ हमने इनकी खेती गृहस्थी कार्यक्रम में अपन किसान भाई लोग इनका थे। हाँ। नीवन बात की जानकारी लेके आई ला दिव्य,
3: बिल्कुल। लेकिन तक हमने अब बात करम कृषि रसायन के सुरक्षित प्रयोग के, तो कृषि रसायन के सुरक्षित प्रयोग नहीं खाली अपने के सेहत के लिए जरूरी है, बल्कि ये मिट्टी के उर्वरता और पर्यावरण के लिए भी सुरक्षित रखा है। एक बहुते कुछ बतावा है ना विनीता बहन।
4: बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल देखिए, हमने सबन खेत में फसल के कीड़ा मकोड़ा से बचावे खातिर तरह तरह के दवाई, कृषि रसायन जरा कहा था निरुआ, वगैरह छिड़काव कर जाता।
3: हाँ।
4: फसल की तरह रक्षा हो जाला, बाकी दवाई हमने इनके सेहत और माटी दोनों के भारी नुकसान पहुँचा।
3: हाँ।
4: ऐसे बहुत जरूरी हो जाला दवाई खरीदत घड़ी कुछ नियम के पालन कर।
3: हाँ।
4: जैसे बिना सील वाला जोन बा जेकर मियाद पूरा हो गई हो, वो दवाई मत खरीदी। दवाई के डिब्बा पे एगो रंगीन तिकोन बनल होला जेकरा में लाल रंग सबसे बेसी जहरीला, पीला हो से कम, नीला ओकरो से कम, हरा सबसे सामान्य हो खेल।
3: ओ, अच्छा।
4: एकरा के देखिए कि हमेशा दवाई खरीदी।
3: हाँ, सही कहलथिन। हम पहले सोचा ली ना कि नीले में जहर है भाई, पीला ओकरा से कम है, तो देखथिन छिड़काव के समय सुरक्षा लगी दवा में मिलावित रहथिन, तो देखथिन दवा में मिलावित चाहे छिड़कैत खेवा कुछो भी नहीं रखाथिन पीथिन और नहीं नशा पानी करथिन, सुनिश्चित करथिन कि स्प्रे चाहे नोजल में कोई लीकेज नहीं हो।

0: अगर नोजल बंद हो जाए तो ओकरा मुंह से फूंक मार के साफ करे के गलती कबहियो नहीं करथिन। हमेशा कृषि विशेषज्ञ द्वारा सुझाल गेल मात्रा के ही प्रयोग करथिन। जरूरत से ज्यादा रसायन फसल के नुकसान पहुंचा सक है।
1: आ देखी दिव्या बहन की छिड़काव के दौरान हाँ? एक एकदम नीमन से ढक लेवे के चाहिए।
0: अच्छा,
1: जैसे रबर के दस्ताना हो गए, मास्क हाँ, हो गए,
0: हाँ,
1: चश्मा के प्रयोग जरूर करी।
0: हाँ?
1: आ जब बहुते तेज घामा होके चाहे पछुआ हवा बहुत होके तो छिड़काव ना करे के चाहिए।
0: हाँ, आ देखिए अगर छिड़काव के दौरान चक्कर आ जाए, चाहे जी मिचलाए, चाहे आंख में जलन हो, तो तुरंत छिड़काव के रोक देथिन और ताजा हवा में जाथिन। आंख में दवाई गेला पर उसाफ पानी से 10 से 15 मिनट तक धोथिन और तुरंत नजदीकी डॉक्टरी सलाह लेथिन। डॉक्टर के पास भाई जरूरे जाथिन
1: एकदम से।
0: और देखिए खास सुझाव में रसायन पर निर्भरता कम करे के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन और जैविक खाद के उपयोग के बढ़ावा देवल भविष्य के लिए एगो बेहतर विकल्प है।
1: छिड़काव खत्म हो गला के बाद हम कहम दिव्या बहन,
0: हाँ?
1: साबुन से खूब निमन से नहाए के चाहिए।
0: हाँ?
1: कपड़ा अलग से धोवे के चाहिए।
0: हाँ?
1: आ रसायन के जोन खाली डिब्बा हो गला ओकरा के घरेलू उपयोग में एकदम भूल के बिना।
0: हाँ भाई, ना कि ओकरा भाई रगड़ के अथी ओकरा से चावल नापे लगली चाहे ओकरा में कुछ सामान रखे लगली, ई सब काम नहीं करे
1: के कुछ के तोड़ दी या जमीन में दबा दी।
0: हाँ,
1: आ एक बात पर और ध्यान देवे के चाहिए कि ओकर भंडारण हमेशा लैकन पशुअन आ खाद्य पदार्थ के पहुंच से दूर
0: दूर रखे के चाहिए।
1: बिल्कुल, काहे की सतर्कता ही सुरक्षा बा। आ सुरक्षित खेती करें या खुशहाल रहे।
0: हाँ,
1: आ एक साथ साथ खुशहाल होके खातिर और का जरूरी होला।
0: अरे हमरा लग रहा है कि अपने के गीत सुने के मन है वासनी चौधरी से, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, जरूर
0: सुनथिन निर्गुण
1: सुनी सुने।

0: कुछ टाइम पहले जो था वो ठीक थी, बट अब आरबीआई ने कुछ रेगुलेशंस लाए हैं बैंकर्स के लिए, जैसे सैटरडे हमारा
1: देखिन हावी हमने सब सुन रही वासनी चौधरी से ई लोकगीत त इतना नीमन नीमन गीत सुनावेला। वासनी
2: खूब
1: चौधरी के
2: धन्यवाद
1: बहुत एक
2: बाबा
1: धन्यवाद।
2: एकदम। आ देखिए दिव्या बहिन,
1: हाँ
2: जात जात हमने इनके अपन किसान भाई लोगिन के ई जरूर बता दही कि
1: हाँ
2: इतना गर्मी के समय बा तो अपना देखभाल के साथे साथे अपन जो पशुन
1: मवेशी
2: लोग
1: हथिन। हाँ भाई बहुते जरूरी है
2: एकदम,
1: क्या कि हमनिये पर ने निर्भर हथिन भाई,
2: एकदम बात
1: है ना।
2: वो अनबोलता धन होला तो बता नहीं के सकता अपन कष्ट
1: हाँ
2: के, तो हमनिये के समझे के जरूरत है।
1: बिल्कुल देखते तो ओकरा छाया वाला जगह में अपना बांधथिन।
2: हाँ
1: सुबह शाम के सैर जरूर करवाथिन, हरा चारा खिलाना, पानी उचित मात्रा में देना है ना।
2: बिल्कुल
1: जादे भाई
2: बिल्कुल
1: की अब्बासिया तेवासिया भाई महकल का खनवा भी न देथिन गर्मी में
2: एकदम ना। हाँ कभी कभी बाज गईला पर खट्टो खट्टा लोग दे देला।
1: हाँ
2: तो इसे
1: इस
2: ना
1: सब
2: करे
1: भाई गलत
2: के
1: बात
2: हाँ।
1: है।
2: काहे कि गाय के रूबा ठीक बा बढ़िया बात बा, लेकिन
1: हाँ
2: उससे ओकरो तबियत बिगड़ सके।
1: हाँ आने के देखती ना कितना लोग भोज भात के चीज बचल भी दे दहथिन
2: हाँ
1: गाय भैंस के ज्यादा, चाहे
2: हाँ
1: रसगुल्ला के रस उस ओकरो से भाई ओकरा तबियत गड़बड़ा
2: बिगड़
1: जाए।
2: सकेला एकदम सही कहने बा
1: मवेशी हथिन हमनिये नियर ना।
2: बिल्कुल। आ साथे साथे अगर देखल जाए तो बात गर्मी के सुरक्षा से गर्मी से बा,
1: हाँ
2: तो जो बोरा होला ओकरा के भींगा के अगर ओकर जो दरवाजा बा चाहे खिड़की
1: हाँ
2: बा ओकर मवेशी के कमरा में तो लगा देवल जाए तो कुछ देर तक रूम में ठंडक बनल रहेगा।
1: बिल्कुल। और साफ सफाई के भाई कोई भी एकदम ध्यान रखती
2: हाँ
1: हमारे बिनी
2: स्वच्छता
1: के
2: तो
1: भाई
2: हर केहू
1: नियर
2: खातिर जरूरी
1: है
2: बा,
1: कि
2: बात
1: ना।
2: एकदम सही कहानी लोग कि स्वच्छता सभी खातिर जरूरी बा, वो
1: हाँ
2: चाहे मवेशी हो के चाहे इंसान
1: स्वच्छता भी जरूरी है, समय से काम भी जरूरी है,
2: एकदम सही
1: समय के भी
2: कहानिया
1: ध्यान रखल जाए
2: बिल्कुल।
1: है
2: राहुल
1: ना।
2: सारा हमरा
1: कि
2: बुझाता
1: हाँ
2: कि
1: हमने
2: हमने
1: के
2: तो
1: भाई
2: बा
1: समय ओरिया रहल है।
2: हाँ तो इस समय ओरिया रहल बा तो चलिए अब चले के बेरा हो गई।
1: हाँ
2: नमस्ते
1: नमस्कार
2: दिव्या बहन।
1: नमस्कार विनीता बहन।
0: फिर से एक और सवाल, वैसे टाइम हमारा खत्म होने जा रहा है।

0: अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल और खेती गृहस्थी। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पल में हम सुनते हैं प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: इधर आइए, इधर।
4: इधर?
3: हाँ, विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना आइए और बिहार और झारखंड के किसी भी आकाशवाणी केंद्र से अपना विज्ञापन बुक कराइए।
5: देश के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क पर बिल्कुल किफायती दर पर आप अपने

0: उत्पाद का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
1: अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर इधर उधर क्यों भटकना, अपनी आकाशवाणी में अपनापन भी तो है।
0: बिहार और झारखंड के आकाशवाणी केंद्रों से विज्ञापन प्रसारण हेतु संपर्क करें।
1: विज्ञापन प्रसारण सेवा आकाशवाणी पटना, हमारा मोबाइल नंबर है 9431021294। हमारा लैंडलाइन नंबर है 0612-222-5042। हमारा ईमेल एड्रेस है patnacbs@gmail.com।
0: शुभ वाणी,
1: लाभवाणी,
2: आकाशवाणी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्थक पीडीएस को जारी रखने को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 27 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार रैयती भूमि क्रय नीति को मिली स्वीकृति। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। चुनाव आयोग के अधिकारों को बताया संवैधानिक। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने पूर्णिया और मधेपुरा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की मंजूरी दी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में मीडिया को यह जानकारी दी।

0: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज, राज्य में जो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया को वैध करार दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के संवैधानिक अनिवार्यताओं की प्रक्रिया है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय मालिया बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष द्वारा एसआईआर पर सवाल उठाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। श्री कुमार पटना में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
3: चाहे बिहार में एसआईआर हो या पश्चिम बंगाल, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मुहर लगा दी। अब विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों को अपना नजरिया साफ करना चाहिए। जनता में जो आप भ्रम पैदा कर रहे थे, चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा कर रहे थे, अब नजरिया साफ करिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध कहा है, माफी मांगिए इस देश की जनता से।
1: इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार में शुरू किए गए एसआईआर के निर्णय को बरकरार रखने के फैसले को सही ठहराया है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष ने एसआईआर को लेकर लोगों के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास किया था।
4: एसआईआर अधिकार है चुनाव आयोग का। ये लोग क्या चाहते थे? डबल डिजिट रहे, मृतक का नाम रहे, रोहिंग्या बांग्लादेशी का नाम रहे, घुसपैठिए का नाम रहे, परमानेंट शिफ्टेड का नाम रहे। एक माहौल बनाने का प्रयास किया गया था बिहार में, और राहुल गांधी और विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया जनता ने। और अधिकार है, उच्चतम न्यायालय ने यही कहा है कि चुनाव आयोग का अधिकार है ऐसा, यार अब वो कर रही है।
1: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सड़क परियोजनाओं, रोजगार, स्वास्थ्य और न्यायिक ढांचे से जुड़े कुल 27 एजेंडों को स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार ने लोकहित की परियोजनाओं के लिए नई भूमि नीति के तहत बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 को स्वीकृति मिली है। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने पर अब लोकहित परियोजनाओं के लिए रैयती भूमि आपसी सहमति से खरीदी जाएगी।
5: बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 की स्वीकृति दी गई। इसके अंतर्गत रैयत से सीधे भी भूमि खरीदी जा सकती है एक्विजिशन प्रक्रिया में गए बगैर, और इसमें जो सामान्यतः प्राप्त होता है उसे 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया। यह अपेक्षा है कि इससे भूमि विभिन्न उद्योगों तथा विकास कार्यों के लिए प्राप्त करने में सहूलियत होगी।
1: बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए राज्यकर्मियों, पेंशनधारियों और जनप्रतिनिधियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही पीएमसीएच के हड्डी रोग विभाग में 39 नए पदों के साथ एक स्वतंत्र स्पाइन सब स्पेशलिटी यूनिट स्थापित की जाएगी। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए श्रम संसाधन विभाग का नाम अब युवा रोजगार कौशल विभाग कर दिया गया है।

0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री आज पटना में जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत बिरसा लिव्स इन न्यू भारत थीम्स के तहत छात्रवृत्ति लाभुकों के साथ संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत लगभग 1,04,000 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभ मिला है। वहीं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति से इस वर्ष 1,41,000 अनुसूचित जनजाति के छात्र लाभान्वित हुए हैं।
1: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जो है इस प्रदेश में लगभग चाहे वो एससी एसटी वर्ग के छात्र हैं 1,04,000 छात्रों को हम लोगों ने दिया, जिसमें से 4,155 जनजाति हमारे छात्र हैं उनको इससे देने का काम किया गया। उसी तरह प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति लगभग 20,00,000 छात्रों को दिया जा रहा है, उसमें से 1,41,000 सिर्फ जनजाति छात्र छात्राएं हैं जिनको इसके माध्यम से देने का काम किया जाए।
0: राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने दाखिल खारिज, ई मापी और अभियान बसेरा के लंबित मामलों का तेजी से निपटारे का निर्देश दिया है। विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि 15 दिनों के बाद एक बार फिर से कार्य निष्पादन की समीक्षा होगी। श्री जायसवाल ने किसान पंजीकरण अभियान को गति देने के लिए परिमार्जन मामलों के शीघ्र निष्पादन का भी निर्देश दिया। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक सैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। कुर्बानी का त्योहार बकरीद कल मनाया जाएगा। बकरीद के त्योहार को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाने के लिए सभी जरूरी निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को असामाजिक तत्वों पर नजर रखने, सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में पर्व संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। डीजीपी विनय कुमार ने कहा है कि दंगा नियंत्रण वाहन संवेदनशील क्षेत्रों में गश्ती करेंगे। एसटीएफ के पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने कहा है कि कल सुबह 4 बजे से पुलिस अधिकारी फ्लैग मार्च कर शांति व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेंगे। सुपौल के सांसद दिलेश्वर कामैत ने आज जिले के ललित ग्राम में रेलवे वाशिंग पिट के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 80 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले वाशिंग पिट के निर्माण से सुपौल सहित कोसी क्षेत्र में रेल सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। रोहतास जिले के नौहट्टा थाना क्षेत्र में भिंडी तोड़ने के विवाद में महिला की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बनवरिया पंचायत के मढ़िया गांव में जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। इस घटना में एक एसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पटना जिले के कदमकुआं थाना क्षेत्र के नाला रोड स्थित एक 2 मंजिला मकान से युवक ने छलांग लगा दी। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के जानीपुर ढाला स्थित पेट्रोल पंप के पास ट्रैक्टर की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ते तापमान को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने लोगों से कहा कि वे भरपूर पानी पिएं और घर से बाहर निकलते समय अपने साथ पानी जरूर रखें। प्रधानमंत्री ने सभी से आग्रह किया कि जानवरों और पक्षियों के लिए घरों, छतों, दुकानों या दफ्तरों के बाहर पानी से भरा एक छोटा बर्तन जरूर रखें। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का सितम जारी है। राज्य का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। गर्मी से बचने के लिए राज्य सरकार

0: की ओर से जागरूकता अभियान के साथ विभिन्न जगहों पर पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बढ़ती गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से विभिन्न जिलों में शीतल पेयजल की व्यवस्था की गई है। गर्मी से बचने के लिए सरकार की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को बिना काम दोपहर बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों से अपील की गई है कि गर्मी में बच्चों पर विशेष ध्यान दें। गर्मी को देखते हुए सरकार ने राज्य के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में वर्ग 8 तक की कक्षा के संचालन पर रोक लगा दी है, जबकि वर्ग 9 से 10 तक की कक्षाओं का संचालन सुबह 11 बजे तक ही किया जा रहा है। समाचार कक्ष से सत्यम कुमार।
0: प्रदेश के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्सों में लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है। हालांकि दक्षिण बिहार का तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्णिया और मधेपुरा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं राज्य के दक्षिण मध्य जिलों के कुछ भागों में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। इधर 43.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ आज कैमूर का भभुआ प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा। वहीं राजधानी पटना का अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर बारिश के दौरान मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चुआ बाग स्थित नया टोला में दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। सुपौल जिले के बीरपुर स्थित हृदय नगर में एक व्यक्ति की वज्रपात से मौत हो गई। आंधी बारिश और ओलावृष्टि के कारण विभिन्न जिलों में पेड़ और बिजली के पोल गिरने से जनजीवन प्रभावित हुआ है, फसलों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इधर तेज आंधी तूफान से आकाशवाणी भागलपुर का मीडियम वेव टावर गिरकर क्षतिग्रस्त हो गया, इससे प्रसारण प्रभावित हुआ है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती ने बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 2025 का परिणाम घोषित कर दिया है। 19,838 सिपाही पदों के लिए हुई परीक्षा में 12,509 पुरुष, 7,312 महिलाएं और 17 ट्रांसजेंडर शामिल हैं। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2026 की परीक्षा तिथि जारी कर दी है। जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार यह परीक्षा 11 जून को आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग 7 से 10 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली सार्थक पीडीएस को जारी रखने को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 27 एजेंडों पर लगी मुहर। बिहार रैयती भूमि क्रय नीति को मिली स्वीकृति। सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर प्रक्रिया को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। चुनाव आयोग के अधिकारों को बताया संवैधानिक। और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने पूर्णिया और मधेपुरा में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बांका जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता विदु शेखर।
1: नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत अक्टूबर दिसंबर 2025 की त्रैमासिक डेल्टा रैंकिंग में बांका जिले ने देश भर में दूसरा स्थान हासिल किया है। वहीं जिले ने आधारभूत संरचना सेक्टर में देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। जिले की यह सफलता स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास तथा बुनियादी सुविधाओं में किए गए सतत प्रयासों का परिणाम मानी जा रही है। जिला प्रशासन ने इसका श्रेय सभी विभागीय अधिकारियों, कर्मियों, आकांक्षी प्रखंड फेलो और NIC बांका की टीम को दिया है। इधर जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला के निर्देश पर जिले में घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति को सुचारू और पारदर्शी बनाए रखने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि सभी गैस एजेंसियों और प्रमुख स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 10 गैस एजेंसियों और 34 महत्वपूर्ण स्थलों की जांच की जा चुकी है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए समरणालय में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। बीते दिनों आए चक्रवाती आंधी तूफान से जिले के लोग परेशान दिखे। रजौन में तेज हवा के कारण एक दर्जन से अधिक पेड़ टूटकर गिर गए, जबकि 13 बिजली के पोल क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके कारण कई गांवों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह ठप रही। बिजली आपूर्ति बाधित होने से पेयजल संकट भी गहरा गया है। दूसरी ओर धोरैया प्रखंड क्षेत्र में तेज आंधी ने कई परिवारों की मुश्किल बढ़ा दी। जिले में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यह अभियान 2 मई से शुरू हुआ है, जो आगामी 31 मई तक जारी रहेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में मकान सूचीकरण का कार्य लगातार प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि जनगणना के तहत नियुक्त प्रगणक घर घर जाकर मकानों से संबंधित आवश्यक जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की कि जब प्रगणक उनके घर पहुंचे तो उन्हें सही और पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं, ताकि जनगणना कार्य को सफलतापूर्वक एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जा सके। जनजातीय कार्य मंत्रालय के राष्ट्र व्यापी अभियान जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले के तहत बांका जिले के 6 प्रखंडों में 21 से 23 मई तक 64 आदि सेवा केंद्रों पर विशेष जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करना तथा लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना था। शिविर में ग्रामीणों का भारी उत्साह देखने को मिला और विभिन्न काउंटरों पर लगी लोगों की भीड़ उमड़ी रही। शिविर के दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं सहित अन्य योजनाओं से संबंधित कुल 3,392 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 2,848 का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने 1,807 स्किल सेल एनीमिया जांच, 297 टीवी जांच, टीकाकरण तथा 213 आयुष्मान भारत कार्ड आवेदनों का त्वरित निष्पादन भी किया। जिले में महिला और बाल विकास निगम द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बाल विवाह रोकथाम और निषेध विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बांका सदर प्रखंड अंतर्गत दक्षिणी कटेली पंचायत के ग्राम दुधिया तरी स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। बिहार सरकार के 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत बांका जिले में नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला की अध्यक्षता में समरणालय स्थित मिनी सभागार में आम जनों की समस्याओं की सुनवाई की जा रही है।
0: अभी आप

0: सुन रहे थे बांका जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे थे हमारे संवाददाता विदु शेखर। आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के संक में उन्नीसवां रोजगार मेला, जानेंगे प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के बारे में, और होगी एक रिपोर्ट पटना की चर्चित अम्मा की रसोई पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने को उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय आज देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईकॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया।
1: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
0: गया में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार शामिल हुए। श्री मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को पूरा करने का यह प्रयास है।
2: हर साल हम 2 करोड़ लोगों को नियोजन देंगे, नौकरी देंगे और उसी के तहत हर साल मेला लगाई जा रही है। आज कई एक जगहों में मेला लगी है, हजारों लोगों को आज नियुक्ति पत्र बटे हैं। गया का सौभाग्य है कि दूसरा बार हम लोग यहाँ इस भवन में उपस्थित हैं और यहाँ पर लगभग 74 लोगों को हम लोगों ने नियुक्ति पत्र बांटा।
0: प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर ऊर्जा क्रांति को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए तेजी से काम चल रहा है। बिहार सरकार ने 10 लाख पीपीएल परिवारों को योजना में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। आइए जानते हैं योजना की अब तक हुई प्रगति के बारे में।
3: बिजली कभी एक जरूरत तो कभी हर महीने की चिंता, लेकिन अब ये तस्वीर तेजी से बदल रही है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भारत के ऊर्जा भविष्य को नई दिशा दे रही है। आज करीब 35 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब घर सिर्फ बिजली के उपभोक्ता नहीं है बल्कि जरूरत से ज्यादा बिजली बनाकर आय का जरिया भी बन रहे हैं। सरकार अब तक करीब 19,480 करोड़ रुपए की सब्सिडी सीधे लोगों तक पहुंचा चुकी है। इसका असर साफ दिख रहा है। बिजली के बिल घट रहे हैं और कई घरों में बिल लगभग शून्य हो चुका है। एक साधारण सी छत अब ऊर्जा का नया केंद्र बन रही है और यही बदलाव भारत को ले जा रहा है एक ऐसे भविष्य की ओर जहां ऊर्जा सस्ती भी है, भरोसेमंद भी और आत्मनिर्भर भी। पीएम सूर्यघर, अब हर घर की अपनी बिजली।
0: कहते हैं माँ के हाथ के स्वाद और उसकी ममता का कोई मोल नहीं होता है। पटना की एक साधारण रसोई से निकली ऐसी ही एक कहानी आज हजारों लोगों के लिए भरोसे और अपनापन का स्वाद बन चुकी है। महज 20 रुपए के टिफिन से शुरू हुआ अम्मा किचन

0: आज न सिर्फ एक सफल कारोबार है बल्कि संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक की प्रेरक मिसाल भी है। एक रिपोर्ट।
1: पटना की व्यस्त गलियों के बीच एक ऐसा किचन भी है जहां सिर्फ खाना नहीं बनता बल्कि हर थाली में मेहनत, अपनापन और संघर्ष की कहानी परोसी जाती है। ये कहानी है देवनी देवी की, जिन्हें लोग प्यार से अम्मा कहकर बुलाते हैं। करीब 20 साल पहले अम्मा ने छात्रों और नौकरी पेशा लोगों के लिए घर जैसा खाना बनाकर टिफिन सेवा

जी आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं हिट स्टोरी 2 फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में, गीतकार और संगीतकार मिथुन।

0: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
1: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
2: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
3: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।

0: Akashwani at 90.
1: श्रोताओं आइए सुनते हैं 8x10 तस्वीर फिल्म का ये गीत मोहित चौहान और तुलसी कुमार की आवाज़ में। इरफान सिद्दीकी की लिखी इस रचना को दर्ज दिया है सलीम सुलेमान ने।

आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं द स्काई इज पिंक फिल्म का ये गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में। गीत लिखा है गुलजार ने और इसे संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

KIR at 90. श्रोताओं आइए सुनते हैं पति पत्नी और वो फिल्म का ये गीत रोचक कोहली, अरिजीत सिंह और नेहा कक्कर की आवाज़ में। गीत लिखा है कुमार ने और इसे संगीत दिया है रोचक कोहली ने।

श्रोताओं, अरिजीत सिंह की आवाज़ में आइए सुनते हैं मरजावा फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है रश्मि विराग ने और इसे संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं मोहित चौहान की आवाज़ में वो तीन दिन फिल्म का ये गीत। शब्द है प्रार्थना गिलोटे की और इसे संगीत दिया है मोहित चौहान।

श्रोताओ, मोहित चौहान की आवाज में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में लीजिए पेश है गजल, कलाकार है नईम अली।

0: सुगम संगीत कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गजल नईम अली की आवाज में। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, यूसीसी लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, राज्य सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार

0: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने SIR को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में SIR की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
2: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।

0: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
1: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
2: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
1: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का 1 डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का 1 शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upssconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गांगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी

0: उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिख में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9। The headlines. Center approves extension of Sarthak PDS scheme to modernize public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heat wave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Narendra Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. And India to host 2027 Asian Relays and 2028 Asian Indoor Championships. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, today approved the continuation of the scheme to modernize the public distribution system, PDS, including ration transport, dealer support and technology upgrades till March 2031. The umbrella scheme, called Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling Income with Automation in PDS, Sarthak PDS, has been cleared in the 16th Finance Commission cycle award period with an outlay of 25,530 crore rupees as central share. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav made the announcement regarding the cabinet's decision while briefing media in New Delhi.
2: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं।
3: थ्री मेजर रिफॉर्म्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोग्राम टुडे। फर्स्ट, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर्ड इन मूविंग फूड ग्रेन्स फ्रॉम लार्ज FCI वेयर हाउसेस इन द स्टेट्स टू फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स। सेकंड, देयर वाज अ नीड टू इंक्रीज द रेम्युनरेशन ऑफ फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एंड ए डिसीजन हैज बीन टेकन इन दिस रिगार्ड एज वेल। थर्ड, एफर्ट्स विल बी मेड टू मॉडर्नाइज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं?
1: द मिनिस्टर सेड द स्कीम विल वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट।

0: were attacked in Thiruvananthapuram while they were returning after carrying out searches, and their vehicles were allegedly vandalized. BJP State President Rajiv Chandrasekhar condemned the attack, while State Home Minister Ramesh Chennithala assured strict action against those involved. The CPM, however, termed the raids politically motivated. Indian shooter Isha Singh today broke the world record in the women's 25-meter pistol event at the ISSF World Cup in Munich. 21-year-old Isha earned 43 points from a possible 50 in the final to surpass the previous record of 42 points held by South Korea's Kim Ye-ji and claimed the gold medal. India has been awarded the hosting rights for the 2027 Asian Relays and the 2028 Asian Indoor Championships. The decision was taken at the Executive Council meeting of the Asian Athletics Association held in Hong Kong ahead of the Asian Under-20 Championships beginning tomorrow. World Athletics Vice President Adil Sumariwala said the 2027 Asian Relays will be held in Chandigarh, while Bhubaneswar will host the 2028 Asian Indoor Championships. In IPL cricket, Rajasthan Royals were 234 for 6 in 18.1 overs against Sunrisers Hyderabad in the eliminator match in New Chandigarh when reports last came in. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Centre approves extension of Sarthak BDS scheme to modernise public distribution system with outlay of over 25,500 crore rupees. Severe heatwave conditions to continue over central and northwest India during next 2 to 3 days. Prime Minister Modi urges citizens to take care of vulnerable people amid soaring mercury. Supreme Court upholds legality of Election Commission's SIR drive, says exercise advances free and fair elections. Assam Assembly passes Uniform Civil Code Bill, becoming third state in the country to adopt the legislation. Indian shooter Isha Singh breaks world record in women's 25-meter pistol event, clinching gold at ISSF World Cup in Munich. That is all in the news at 9. Good night.
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं तनवीर फरीद। पहले खबरों की सुर्खियां। मरकज ने अवामी निजामे तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक पीडीएस स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की एसआईआर मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद और शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। आसाम असेंबली ने यकसा सिविल कोड बिल को मंजूर कर दिया है और इस कानून को पास करने वाली मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के आईएसएसएफ आलमी कप में तलाई तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने मरकजी काबीना की जानिब से सार्थक पीडीएस के दूसरे मरहले के लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दिए जाने को सराहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि सरकार गरीबी दूर करने की स्कीमों को टेक्नोलॉजी से लैस कर रही है ताकि उन्हें और ज्यादा शफाफ और आसान बनाया जा सके। वजीर दाखला ने मजीद कहा कि एआई की मदद से मुस्तफीद होने वाले अफराद का अंदराज जीपीएस के जरिए ट्रैकिंग और क्यूआर कोड जैसे आला टेक्नोलॉजी निजाम के जरिए गरीबों को स्कीमों के 100% फायदे मुहैया किए जा सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रियासतों की बढ़ती हुई लॉजिस्टिक लागत के लिए इक्तिसादी मदद की भी गुंजाइश रखी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने के लिए अहदबंद है कि मुल्क में अवामी निजाम तकसीम पीडीएस के जरिए हर जरूरतमंद फर्द को वक्त पर अनाज फराहम हो। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि इस सम्त में पीडीएस को ज्यादा जदीद और मुअस्सर बनाने के लिए फैसला किया जा रहा है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि ये इकदाम पीडीएस के तहत फराहमी لاجسٹک اور نقل و حمل کے انتظامات کو مزید شفاف اور مؤثر بنائے گا جس کے

0: साथ साथ ये शिकायतों को हल करने में तेजी भी लाएगा। इक्तिसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी CCEA ने आज PDS में खुदकारी के साथ राशन ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग इनकम में इमदाद के लिए स्कीम सार्थक PDS को एक जामे स्कीम के तौर पर जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इस स्कीम को 16वें मालियाती कमीशन अवार्ड मुद्दत में मंजूरी दी गई है, जिसमें मरकज के हिस्से के तौर पर 25,530 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए इतलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये स्कीम अनाज के एक रियासत से दूसरी रियासत में नकलो हमल के लिए रियासती एजेंसियों, राशन की दुकानों और अवामी निज़ाम में तकसीम की जदीदकारी में मदद फराहम करेगी।
1: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: जनाब वैष्णव ने कहा कि इस स्कीम में तीन बड़े AI पर मबनी मॉड्यूल होंगे, जिनके नाम हैं निर्मल, आशा और सक्षम। उन्होंने कहा कि निर्मल एक AI की क्यादत वाली रियल टाइम PDS मुस्तफेदीन का निज़ाम है, आशा एक कसीर लेसानी मस्नूई ज़हानत का शिकायतों के इजाले और शहरियों को मुंसलिक करने का प्लेटफॉर्म है, जबकि सक्षम AI पर मबनी सप्लाई चेन प्लेटफॉर्म है जिसमें गाड़ियों की ट्रैकिंग भी होगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि यह स्कीम खुराक के तहफ्फुज के कौमी कानून के तहत अहाता किए गए 81,35,00,000 अफराद के लिए हुकूमत के अहद को पूरा करने की जानिब काम करेगी। उन्होंने कहा कि यह स्कीम मौजूदा PDS स्कीम की जगह नहीं लेगी।
1: ये सुधार है PDS के सिस्टम में, पूरे डिलीवरी सिस्टम में, लॉजिस्टिक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, मटेरियल हैंडलिंग में और PDS के बेनिफिशरीज की ग्रीवेंस के रिड्रेसल के लिए बहुत बड़ा ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है। और PDS एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर ही सारा काम करते हैं। दूर दराज के क्षेत्र हो, महिलाएं हो, वंचित हो, सबको कवर किया जाता है।
0: मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शहरियों पर जोर दिया है कि वो जितना मुमकिन हो ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब मोदी ने सबको मशवरा दिया कि वो अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और जब कभी घर से बाहर जाएं तो पानी के बोतल के साथ जाएं। गर्मी के बाद रोजमर्रा की जिंदगी में बढ़ती हुई परेशानियों के बारे में जोर देते हुए जनाब मोदी ने कहा कि इस तरह के मौसम में हसासियत मदद का एक बड़ा जरिया बन जाती है। उन्होंने सलाह दी कि अगर कोई प्यासा हो तो उसे पानी का एक गिलास पेश करें। उन्होंने हर किसी पर यह जोर भी दिया कि वो अपने कुनबा के अफराद और अजीजो अकरबा के रास्ते में रहें और उनकी सेहत के बारे में मालूम करते रहें। उन्होंने ज्यादा मिकदार में पानी पीने की याद दहानी कराएं, उन्हें तीसरे पहर सख्त धूप में बाहर निकलने से गुरेज करने और ज्यादा से ज्यादा आराम करने के लिए कहें। उन्होंने मजीद कहा कि जानवरों और परिंदों को जहन में रखते हुए घरों के बाहर बालकनियों में, छतों पर, दुकानों पर या दफातर में छोटे बर्तन में पानी भरकर रखें। वजीर आजम ने हर किसी पर जोर दिया कि वो इन मुश्किल अय्याम में मुकम्मल हसासियत और जज्बे के साथ एक दूसरे का ख्याल रखें। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की, किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
2: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम के शहर गैंगटॉक में

0: सिटी रनर अमा दीदी बाहिनी नामी ख्वातीन मरकूज सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस को आज झंडी दिखाकर रवाना किया। सिर्फ ख्वातीन के लिए ये बस सर्विस पूरे तौर पर ख्वातीन अमले के जरिए ऑपरेट की जाएगी, जिसका मकसद ख्वातीन मुसाफिरों को महफूज, आरामदेह और सस्ता ट्रांसपोर्ट फराहम करना है। बाद में दिन में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने गैंगटॉक में सिक्किम यूनिवर्सिटी की 7वें तकसीम असनाद की तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की मजमू तरक्की के लिए शुमाल मशरक की तरक्की इंतहाई अहम है।
1: नॉर्थ ईस्ट का विकास देश की समग्र विकास के लिए अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों का विकास और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य आपस में जुड़े हुए हैं। यहाँ के युवाओं में असीम प्रतिभा है। सिक्किम सहित अन्य राज्यों से आए हुए विद्यार्थियों से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि आप सब एक दूसरे के संपर्क में रहे और मिलजुल कर राष्ट्रीय विकास में योगदान देने का भावना में आगे बढ़े।
0: सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी जाम नजरसानी की इंतखाबी कमीशन की कार्रवाई को कानूनी एतबार से जायज करार दिया है और ये भी कहा है कि आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए आईन में इस तरह की नजरसानी के लिए कहा गया है। अदालत आलिया ने कहा कि चुनाव कमीशन को आवामी नुमाइंदगी से मुतालिक कानून मजरिया 1950 की दफा 324 और इसके तहत बनाए गए जाब्तों के मुताबिक चुनाव फहरिस्तों पर खुसूसी नजरसानी करने का इख्तियार हासिल है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोयमाला बागची पर मुश्तमिल बेंच ने रिट दरखास्तों पर फैसला सुनाते हुए ये बात कही। इन दरखास्तों में गुज़श्ता साल जून में बिहार में वोटर फहरिस्तों पर खुसूसी जाम नजरसानी करने के इंतखाबी कमीशन के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया था। अदालत ने कहा कि SIR का अमल आज़ाद और शफाफ इंतखाब करने के मकसद को हासिल करना रहा है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से सुनाए गए इस फैसले में ये भी कहा गया है कि जब खुद कानून में इंतखाबी कमीशन को किसी भी वक्त खुसूसी नजरसानी कराने को कहा गया है तो इस सूरत में कमीशन के नजरसानी के अमल को महज इस बुनियाद पर नाजायज करार नहीं दिया जा सकता कि मौजूद तरीक़ाकार माजी में कराई गई नजरसानी से मुताबिकत नहीं रखता। लिहाजा ये नहीं कहा जा सकता कि इंतखाबी कमीशन ने अपने कानूनी इख्तियारात से तजावुज किया है। अदालत ने मजीद कहा कि चुनाव कमीशन ने जो वजूहात रिकॉर्ड की हैं उनका वाज़े मकसद इसकी बुनियादी सियासत को बरकरार रखना है। इनमें 4 दहाइयों से ज्यादा मुद्दत पहले खुसूसी नजरसानी कराना, पिछले बरसों में बड़े पैमाने पर राय दहिंदगान का इजाफा होना और हजफ करना, नीज तेजी के साथ बढ़ते हुए शहरी इलाके और नकल मकानी के मामलात शामिल हैं, जिनकी वजह से चुनाव फहरिस्तों में मुसन्ना साजी और अदम दुरुस्तगी का इम्कान हो सकता है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। असम कानून साज असेंबली ने आज यकसा सिविल कोड बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद असम इस तरह के बिल को मंजूरी देने वाली शुमाल मशरक में पहली और मुल्क में तीसरी रियासत बन गई है। यकसा सिविल कोड असम बिल 2026 को पीर के रोज 16वीं असम लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले इजलास के दौरान पेश किया गया था, जिसे ऐवान ने आज इजलास के आखिरी दिन मंजूरी दे दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासती असेंबली में यकसा सिविल कोड मंजूर किए जाने पर असम के लोगों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब शाह ने कहा कि यकसा सिविल कोड उस वक्त से बीजेपी का अज़्म रहा है जब से इसका क़याम अमल में आया है। अकलियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने आज तमाम हाजियों को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में जनाब रिजिजू ने कहा कि हुकूमत ने इस साल हज के दौरान भारतीय आजमीन हज को सहूलत फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC ने पहली बार सिविल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के लिए आरजी आंसर की जारी की है। एक बयान में कमीशन ने कहा है कि जो उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुए हैं वो 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर दस्तयाब ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल पर अपना रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। एक बड़ी छापेमारी में गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी के स्क्वाड और भारतीय साहिली मुहाफिजों ने आज गुजरात में कुछ जिले के साहिल के पास 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की मुश्तबा

मनुष्यात के 115 पैकेट जब्त किए। ये मनुष्यात एक कश्ती से बरामद की गई जो कच्छ मुंद्रा बंदरगाह की जानिब जा रही थी। म्यूनिख में मुनक्किदा ISSF वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की निशानेबाज ईशा ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग मुकाबले में शानदार कारकिर्दगी का मुजाहिरा किया है। उन्होंने मुमकिना 50 पॉइंट में 43 पॉइंट्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। इससे कबल ये रिकॉर्ड 42 पॉइंट्स के साथ जनूबी कोरिया की किम येजी के नाम था। भारत के शहर चंडीगढ़ और भुवनेश्वर को आइंदा बरस मुनक्किदा होने वाले एशियाई रिले और साल 2028 की एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के हकूक दिए गए हैं। इस बात का ऐलान हांगकांग में मुनक्किद होने वाली एग्जीक्यूटिव मीटिंग के दौरान बर्रेआजम एथलेटिक्स की गवर्निंग बॉडी ने किया। एशियन एथलेटिक्स काउंसिल की मीटिंग एशियाई U20 चैंपियनशिप से कबल मुनक्किद हुई जो 28 से 31 मई तक जारी रहेगी। आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकज ने अवामी निजामे तकसीम को जदीद बनाने के मकसद से सार्थक PDS स्कीम की तौसी को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में आइंदा 2 से 3 दिन के दौरान शदीद गर्मी की लहर जारी रहेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बढ़ते हुए दर्जे हरारत के दौरान कमजोर अफराद का ध्यान रखने के लिए शहरियों पर जोर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव कमीशन की SIR मुहिम की कानूनी हैसियत को बरकरार रखा है। उसने कहा है कि ये मशक आजाद शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करेगी। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ख्वातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में आलमी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने म्यूनिख के ISSF आलमी कप में इंतलाई तमगा हासिल किया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: चर्चा का विषय है।
1: सीमाएं सिर्फ नक्शों पर खींची गई रेखाएं नहीं होती, ये किसी देश की पहचान होती हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी संस्कृति और उसके भविष्य की सबसे मजबूत दीवार होती हैं। लेकिन जब इन्हीं सीमाओं को पार कर अवैध घुसपैठ देश के भीतर प्रवेश करती है तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं रह जाता, सवाल उठता है जनसंख्या संतुलन का, सामाजिक ढांचे का, रोजगार, संसाधनों और राष्ट्रीय पहचान का। क्या बदलती जनसंख्या तस्वीर भारत के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को प्रभावित कर रही है? क्या सीमाओं से शुरू होने वाली ये चुनौती अब शहरों और गांवों तक पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वर्षों में ये भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिरता के लिए गंभीर संकट भी बन सकती है? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है में। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। हमारा आज का विषय है जनसंख्या परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक ढांचे पर प्रभाव। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और सीमा सुरक्षा की चुनौतियों को बेहद करीब से देखने वाले पूर्व बीएसएफ प्रमुख और असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है
2: जी। नमस्कार।
3: नमस्कार
1: प्रकाश जी। आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय भारत के सामने है वो दूसरे देशों से आए लोग हैं। दो तरह के लोग हैं, एक शरणार्थी हैं और दूसरे घुसपैठिए हैं। इसको लेकर जो हमारे बॉर्डर स्टेट हैं वहां पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, क्या लगता है? चूंकि आप खुद बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्रमुख रह चुके हैं, असम एक ऐसे राज्य के आप डीजीपी थे जहां पर इस तरह की बहुत बड़ी समस्या है, कैसे देखते हैं आप इसे भारत के नजरिए से?
3: देखिए, भारत के नजरिए से तो बहुत साफ है और अलग अलग समय पे बड़े बड़े हस्तियों ने इस विषय पे रोशनी डाली है कि ये देश की सामाजिक ढांचे के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और देश की सुरक्षा के लिए, तीनों ही दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। घुसपैठिए जो है आज से नहीं, ये स्वतंत्रता के बाद से, इंडिपेंडेंस के बाद से ही शुरू हो गया था। पर यह है कि इसकी प्रक्रिया अगर हम 1971 के बाद देखें, 1971 में बांग्लादेश बन गया तो उसके पहले जो कुछ उत्पीड़न हुआ था पाकिस्तान आर्मी द्वारा, उस समय आप जानते हैं लाखों की तादाद में बांग्लादेशी आए थे और यहाँ पे उन्होंने शरण ली थी। बाद में बहुतों को वापस भेजा गया, कुछ गए, शायद कुछ नहीं भी गए होंगे। परंतु 1971 के बाद भी ये समस्या ऐसा नहीं है कि इसका समाधान हो गया। हम लोग ये समझते थे कि अब बांग्लादेश इंडिपेंडेंट

0: हो गया और भारत के सहयोग से हुआ है, तो वो अब हिंदू वहां पे सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे, मुस्लिम तो वहां पे रहेंगे, परंतु बहुत सारे कारण ऐसे हुए जिसकी वजह से ये घुसपैठ की समस्या बराबर बनी रही। सबसे बड़ा कारण जो था आर्थिक था, वो बांग्लादेश तो बन गया पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी जनसंख्या को सबको एम्प्लॉयमेंट दे सके, सबको रोजी रोटी की व्यवस्था हो सके। नतीजा ये हुआ कि आर्थिक कारणों से बहुत भारी संख्या में 1971 में बांग्लादेश के बनने के बाद भी यहाँ पलायन होता रहा, लोग आते रहे सीमा पार से और जितने बॉर्डरिंग स्टेट से वहां पे बढ़ते गए। इस समस्या से सारी सरकारें अवगत थी। आपको याद होगा कारगिल युद्ध के बाद 4 टास्क फोर्सेस बनी थी बॉर्डर की समस्या देखने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी की, डिफेंस की, इंटेलिजेंस की, और चारों टास्क फोर्स बड़े हाई पावर्ड बॉडीज थी। इसमें एक बॉर्डर मैनेजमेंट वाली जो बॉडी थी वो माधव गोड बोले उसका नेतृत्व कर रहे थे, जो भारत सरकार के गृह सचिव थे और बड़े योग्य आईएएस अधिकारी थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो अगस्त 2000 में प्रस्तुत की और उस रिपोर्ट में ये लिखा कि हर वर्ष करीब 3 लाख बांग्लादेशी भारत में घुसपैठ कर रहे हैं और इस समय वर्तमान में 2000 में उनकी संख्या 1 करोड़ 50 लाख है। ये 2000 की बात है, उसके बाद भी बढ़ता ही रहा होगा। आज की तारीख में 3 करोड़ हो गया हो, 3.5 करोड़ हो गया, कुछ कहा नहीं जा सकता। अलग अलग समय पर भारत सरकार ने इसका अलग अलग एस्टिमेट दिया है। 2001 में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने चारों टास्क फोर्सेस के रिपोर्ट को इवेल्युएट किया था, उसका आकलन किया था, और इन्होंने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा था कि इतनी बड़ी संख्या में घुसपैठियों को होना देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। फिर बाद में आ जाइए 2005 में सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, सोनोवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस था एक 2005 में। उसमें उन्होंने कहा था कि दिस इज ए डेमोग्राफिक एग्रेशन, और एक्सटर्नल एग्रेशन में इसको उन्होंने क्लासिफाई किया था कि एक्सटर्नल एग्रेशन है ऑन इंडिया, और कहा था इसके लिए भारत की संप्रभुता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो ये समस्या आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और अगर आप और पहले जाना चाहें तो 1998 में जब जनरल सिन्हा आसाम के राज्यपाल थे, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 8 नवंबर 1998 में एक रिपोर्ट भेजी थी जिसमें लिखा था कि असम में जो घुसपैठ हो रही उससे जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हो सकता है कि कालांतर में, मतलब बहुत कुछ वर्षों बाद, बांग्लादेश ये मांग करे कि असम के जो सीमावर्ती मुस्लिम बाहुल्य प्रदेश हैं इन्हें बांग्लादेश में मिला दिया जाए क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो ये तो स्थिति है, ये आज से नहीं, कम से कम 1998 से बराबर चेतावनी हमको मिल रही है। अब 26-27 साल हो गए हैं, वर्तमान सरकार को इस बात का श्रेय तो हम देंगे कि इन्होंने इस समस्या की नोटिस ली है, और मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में कहा है कि एक डेमोग्राफिक कमीशन बनाएंगे तो इस समस्या को गंभीरता से उसको स्टडी करके अपने रिकमेंडेशन देगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई अवसरों पर कहा है कि घुसपैठिए राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है।
2: जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है, देश की एकता, अखंडता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है, और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है। तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है, उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें, उनके सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित, सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: जी हाँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को उच्च स्तरीय जनसांख्यिकी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और अब न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवेलकर सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष होंगे। जनगणना आयुक्त के अतिरिक्त 3 विशिष्ट विशेषज्ञ श्री दुर्गा शंकर मिश्रा सेवानिवृत्त IAS, श्री बालाजी श्रीवास्तव सेवानिवृत्त IPS और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे, और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव भी समिति के सदस्य सचिव होंगे। ये समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। आवश्यकता पड़ने पर गृह मंत्रालय समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 15 अगस्त 2025 को घोषणा की थी उच्च स्तरीय कमेटी की, अब उसका गठन हो गया है और घुसपैठियों के बुरे दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
3: भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अपू

0: कृत्रिम बदलाव नहीं होने ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए।
1: प्रफुल्ल जी, आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि सीमावर्ती जिलों और देश के कुछ चुनिंदा महानगरों में अचानक आई इस जनसांख्यिकी बदलाव के संकेत जो मिल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को ये प्रभावित कर रहा है?
2: जी निश्चित, वैसे तो ये अचानक नहीं आया है लेकिन समस्या के रूप में अचानक उसको अभी देखा जा रहा है। जैसे हमने हाल ही में देखा नोएडा में अचानक से एक इरप्शन हुआ मूवमेंट के रूप में, और बहुत सारे सोसाइटीज में क्रिमिनल एक्टिविटीज में जब भी नाम आता था तो शुरू में इसके बारे में चर्चा जरूर होती थी लेकिन कोई एक्शन नहीं होता था। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए, अभी IMGT एक्ट 1983 में बना, उस एक्ट का नाम ही था इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्रिब्यूनल। इसका मतलब पहली बार तो समस्या उस समय से शुरू कम से कम मानी गई कि इलीगल माइग्रेंट्स है। अब इसमें दो तरीके के अलग अलग थे, एक जो 1971 से पहले या 1971 के बाद, फिर 1990 के दशक में भी 92 के बाद खास करके अयोध्या के आंदोलन के रिएक्शन में वहां पे जो मंदिर गिरा गया, और केवल हिंदू ही नहीं हिंदू बुद्धिस्ट वहां की सो कॉल्ड जिनको हम माइनॉरिटीज बांग्लादेश के संदर्भ में कह सकते हैं, ऐसे लोग भारत में उनको शरण लेनी पड़ी जिनके लिए ये जैसा प्रावधान करना पड़ा। लेकिन दूसरा एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसने इलीगल इमिग्रेंट्स की या इलीगल माइग्रेशन की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी इसके आधार पर खड़ी कर दी। प्रकाश सिंह जी ने जैसे बताया कुछ कारण तो पर्यावरणीय कुछ कारण आर्थिक भी रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं आप यदि इंटरनेशनल इंडेक्स निकाल लो तो बहुत सारे पैरामीटर्स में असम के सीमावर्ती जिले या बंगाल के सीमावर्ती जिले उनकी तुलना में बांग्लादेश की इकोनॉमी उस समय बहुत अच्छा कर रही थी, तो ऐसे में उनको क्या माइग्रेट होने की जरूरत पड़ी? मुझे लगता है कि इसके पीछे आर्थिक और पर्यावरणीय एनवायरमेंटल कारणों की वजह से, क्योंकि कुछ हिस्से ऐसे हैं बांग्लादेश के जहां पे बाढ़ की स्थिति आती है और वहां से माइग्रेशन होता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे एक सोची समझी राजनीति थी, एक सोची समझी रणनीति भी थी। काउंटरफिट करेंसी का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, जब कालियाचक की पुलिस चौकी को जलाया गया था बंगाल में तो उस समय उजागर हुआ था, ये साफ साफ दिखाता है, या इलीगल जो आर्म्स का ट्रेडिंग है उसका एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है, ड्रग ट्रैफिकिंग का ये एक इम्पोर्टेंट रूट रहा है। यही रास्ता है जहां म्यांमार से बांग्लादेश में गए हुए रोहिंग्या रेफ्यूजीज भी सीधे आकर उसी रूट से कोई जम्मू कश्मीर तक कोई हैदराबाद तक पहुंच गया, वो यदि रेफ्यूजी थे तो वो वहीं पे शरण ले सकते थे, उनको जम्मू कश्मीर तक जाने की क्या जरूरत थी, किसने पहुंचने के लिए उनको मदद की? उनके कार्ड भी बन जाते थे वहां, बॉर्डर क्रॉस करने से पहले उनको सारे आधार कार्ड और डॉक्यूमेंट्स बनाने की प्रक्रिया एक चलाने का प्रयास शुरू हुआ, और उसके बहुत सारे नेटवर्क भी भारत के अन्य शहरों से एक्सपोज हुए। क्या हुआ दुर्भाग्य से 1980 के बाद, मुझे याद है उस समय ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट पार्लियामेंट में था 2005 में शायद, और उस समय वो लेफ्ट गवर्नमेंट को और बुद्धदेव भट्टाचार्य को घेर रही थी, और उस समय वो पूछ रही थी कि कब तक इन इलीगल माइग्रेंट्स को वोट बैंक बनाकर अपने लिए पोसोगे। दुर्भाग्य से वही ममता बनर्जी बाद में वही नीति आगे बढ़ाने लगी, तो सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है, वहां की सांस्कृतिक स्थिति खराब होती है, वहां के रिसोर्सेस पर अतिरिक्त भार पैदा होता है और ये इलीगल एक्टिविटीज को बढ़ावा भी मिलता है। तो एक समग्र दृष्टि से आंकड़े अलग अलग होंगे, क्वेश्चन ये है कि पहली बात किस कारण से इसको बढ़ावा मिला, दूसरा उसको रोकने की, तीसरा जो भारत में आ गए है उनको आइडेंटिफाई करने की। तो डिटेक्शन इज द फर्स्ट स्टेज, एक्सेप्टेंस एंड डिटेंशन जब तक डिटेक्ट नहीं होंगे उसके बाद तो बाकी सारी प्रोसेस आएंगी कि उनको वोटर्स लिस्ट से डिलीट करना है या डिपोर्ट करना है, ये तो बाद की स्टेज है। उनको वर्क परमिट भी दिए जा सकते हैं लेकिन कम से कम आइडेंटिफाइड हो कि विदेशी मूल का नागरिक है, बिना पासपोर्ट के आया है और हमारे पास उसका एक ठोस डेटा है, और पूरे विश्व भर में ये होता है, उसमें भारत को अलग से कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। हमने यदि बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दो अलग अलग बॉर्डर पार्टीशन के बाद एक्सेप्ट किए हैं तो वैश्विक नियमों के अनुसार उनको भारत में आना है तो वीजा लेकर ही आना चाहिए, लीगल तरीके से ही आना चाहिए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन उसका रास्ता नहीं हो सकता। तो इसके नेटवर्क को

0: डिसमेंटल करना, ये राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक आधार पर भी एक महत्वपूर्ण विषय है। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो समिति बनी है वो उस दिशा में एक साल के अंदर समग्र रिपोर्ट भी देगी और इसके आधार पर नीति भी बनेगी।
1: जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि शरणार्थी और घुसपैठियों को अलग अलग तरह से देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के साथ अलग तरह की चुनौतियां हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: शरणार्थी और घुसपैठिया दोनों को एक पेज पर रखकर नहीं सोचना चाहिए। जो हमारे संविधान को जानते हैं, जो हमारे इतिहास को जानते हैं, हमारे देश की राजनीतिक इतिहास को जानते हैं, उन्होंने कम से कम ये गलती नहीं करनी चाहिए। हमारा संविधान बहुत स्पष्ट है, घुसपैठ कर आते हो, अलग अलग उद्देश्यों से आते हो तो आपको जरूर घुसपैठी का लेबल लगेगा और वो लगाना चाहिए शासन में। फिर कुछ लोग दलील करते हैं कि अगर वो भारत में ही रहना चाहते हैं तो हम क्यों सीमित करते हैं, कुछ सीमित नहीं करते हैं। इसके लिए भी कानून है, किसी भी धर्म का व्यक्ति एप्लीकेशन करे और एप्लीकेशन करके वैध तरीके से पासपोर्ट लेकर वीजा लेकर आए, हम उनके क्रेडेंशियल देखकर उनको नागरिकता देंगे, ये रास्ता खुला ही है। मगर आप अवैध तरीके से घुसपैठ करोगे तो सीमाएं पोरस नहीं हो सकती, सीमाओं से घुसपैठ नहीं होनी चाहिए और उनको संभालना भी चाहिए।
1: प्रकाश जी, चूंकि इन चुनौतियों को आपने काफी करीब से देखा है और अक्सर देखा जाता है कि सीमा पार करने के बाद जो घुसपैठिए हैं वो स्थानीय आबादी में घुल मिल जाते हैं, सुरक्षा बलों और स्थानीय राज्य पुलिस या खुफिया एजेंसियों के बीच जो तालमेल है उसको आप कैसे देखते हैं इस समस्या के निराकरण में?
3: देखिए, तालमेल तो बहुत जरूरी है, पर मेरा अपना अनुभव यह है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज है अगर वो डिटरमिंड है तो इसका बहुत तरह से उपाय है। मैंने एज IGBSF पंजाब कुछ ऐसा काम किया है, इसको 25 साल तक तो उसको गोपनीय रखा मैंने, उसके बाद उसकी किताब में मैंने खोल के रख दिया। बहुत सारे भारी बांग्लादेशी जो थे, भारी मुसलमान बांग्लादेश से चलते थे और वो पंजाब में आ जाते थे और पंजाब में गुरुद्वारों में लंगर खाते थे, फिर जब उनको मौका मिला तो बॉर्डर पार करते थे। अब मेरे जाने के पहले BSF क्या करती थी, उसको बॉर्डर पे रोकती थी, उनको पंजाब पुलिस को हैंडओवर करती थी, पंजाब पुलिस दो चार दिन रखते थे, उसके बाद कहते थे हम आतंकवाद से लड़ें कि इनको कलकत्ते पहुंचाएं, ये छोड़ दो इनको, फिर थोड़े दिन बाद फिर वो वापस जा रहे हैं। तो मैंने अपने जिम्मेदारी पे बिना किसी होम मिनिस्ट्री के सैंक्शन के चिदम्बरम साहब से जब मैंने पूछा तो उनका यू विल बी डूइंग दिस एट योर ओन रिस्क, आई कैन नॉट परमिट दैट ऑफिशियली। मैंने अपने कहा जितने लोग हैं इनको अपने BSF के कैंप्स में रात भर रखो और जब अंधेरी रात हो तो इनको सीमा पार से इनको पाकिस्तान भेज दो। मैंने कम से कम 25-30 हजार आदमी तो भेज दिए। इसका उपाय हर आदमी अपने लेवल पे काम कर सकता है। मैंने पर इसका ढिंढोरा नहीं पीटा, कोई इनाम नहीं मांगा, इसका ढोल नहीं बजाया, चुपचाप ये काम हो गया। फिर 25 साल बाद मैंने कहा कि मैंने इस तरह का काम मैंने किया था। पर यह है कि अभी भी इस समस्या का देखिए कुछ निदान हमें ढूंढना पड़ेगा। कुछ सुझाव तो गोडबोले साहब ने अपने कमेटी की रिपोर्ट में दे रखा है, मैं कहूंगा कि उस रिपोर्ट को फिर से अध्ययन किया जाए सरकार द्वारा, और जिन समस्याओं के लिए डेमोग्राफी कमीशन बन रहा है उन समस्याओं पे गोडबोले साहब ने बहुत गहन चिंतन किया है। इसके अलावा देखिए अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने कहा उनको हमें डिटेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको डिपोर्ट करना है। अब डिपोर्टेशन में दिक्कत आ सकती है, बांग्लादेश उसको नहीं मानेगा तो उसका क्या करना होगा ये हमें बाद में देखेंगे। पर अगर मान लीजिए एक संख्या कोई आपने रखी है जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए हैं, उनको कहिए कि भाई अगर तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हम तुम्हें रहने देंगे, पर तुम्हें अपना सिटीजनशिप कार्ड या आधार कार्ड तो सरेंडर करना पड़ेगा और तुम्हें एक बांग्लादेश का एक कार्ड दिया जाएगा कि तुम बांग्लादेश के नागरिक हो, इस देश में तुम्हें 2 साल रहने की और काम करने की इजाजत दी जाती है, 2 साल बाद फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कि तुम्हारा क्या किया जाए। और पर इन आदमियों को जिनको ये बांग्लादेश का कार्ड दिया जाता है ये हमारे आई कार्ड से रंग में फर्क होना चाहिए, केवल कार्ड को देख कर ही मालूम हो जाए कि ये बांग्लादेश का ये आदमी, और इस आदमी को 2 कंडीशन होनी चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रह सकते हो और अपनी जीविका उपार्जन कर सकते हो परंतु तुम वोट नहीं दे सकते और कोई अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते। ये 2 कंडीशन उस पर इम्पोज की जाए और उसको सख्ती से लागू किया जाए कि मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीदोगे और तुम्हारा नाम इलेक्ट्रल लिस्ट में नहीं होगा। तो इस पे हमें थोड़ा ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन पे रखना पड़ेगा और कालांतर में मैं कहता हूँ कि इस पे हमें बांग्लादेश से सख्ती से कहना पड़ेगा, देखिए आपके अभी भी हमारे पास 2.5 करोड़ 2 करोड़ जितना भारत सरकार का आंकलन हो इतने आदमी है, या तो आप इन्हें वापस लीजिए या इसके बदले में हमें जमीन दीजिए। और वो जमीन हम मांगे ठीक चिकन नेक के अगल बगल रंगपुर डिवीजन में मांगे, हमारा चिकन नेक की समस्या भी हल हो जाएगी और इन आदमियों को हम वहां बसाएं या जहां भी बसाएं, पर हम कहीं इतने आदमियों को रहने के लिए इतने वर्ग फुट हमें जमीन चाहिए, इतनी जमीन आपको देना पड़ेगा, बस सख्ती तो करनी पड़ेगी या तो इनको वापस लो। तो एक स्ट्रिक्ट लाइन ऑफ एक्शन लेना पड़ेगा हमें और उसकी भी शायद नौबत कालांतर में आएगी। पर यह है कि इस समस्या का हमें निदान ढूंढना है वरना ये तो हमारे ऊपर बोझ है आज की तारीख में।
1: जी प्रफुल्ल सर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जो अवैध रूप से जो लोग यहां पे रह रहे हैं

0: जब स्थानीय श्रम बाजार यानी लेबर मार्केट में शामिल होते हैं तो रोजगार, सब्सिडी, राशन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सीमित सरकारी संसाधनों पर इसका जो असर पड़ रहा है वो एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए चुनौती है और वो कितनी गंभीर समस्या बनते जा रही है भारत जैसे देश में जहां की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है।
1: देखिए, आज की भाषा में जैसे कहा जाता है कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, और डेमोग्राफी इज डेस्टिनी ये मोर रिलेवेंट हो जाता है जब आपकी डेमोक्रेसी, क्योंकि उस डेमोक्रेसी में आपको सरकार चुनने का भी अधिकार मिल जाता है और उस सरकार से दिए हुए योजनाओं का लाभ लेने का भी। मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले और एक बिंदु मैं श्रोताओं के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं।
0: जी,
1: 1983 में जो IMDT एक्ट बना, जनरल सिन्हा की रिपोर्ट ने उस पर बहुत डिटेल में ये दिया था, और वेंकैया नायडू उस समय मंत्री थे, मुझे स्मरण है, शायद ठीक बता रहा हूं, तो उन्होंने पार्लियामेंट में उसको लेकर स्टेटमेंट भी दिया था, गोडबोले कमेटी ने भी उसका रेफरेंस लिया था। IMDT एक्ट ने एक बहुत बड़ा लूपहोल था। IMDT एक्ट में जो इलीगल व्यक्ति जो आया है वहां से, उसको अपनी नागरिकता प्रूव करने का कोई भी बंधन नहीं था। जो कंप्लेंट उसके विरोध में करेगा कि ये बाहर से आया हुआ है और ये भारत का नागरिक नहीं है, उस पर ओनस था कि वो ये प्रूव करे कि ये भारत का नहीं है। और ऐसे में भारत में स्वाभाविक रूप से मानसिकता होती है, और इसने भारत में एक कॉम्पिटिटिव वोट बैंक पॉलिटिक्स को जन्म दिया। शायद मुझे पता नहीं है जानबूझकर रखा गया था उस समय का, उसका क्या लॉजिक था, क्या कारण थे, लेकिन इसने इस समस्या को बढ़ाया। अब आपने जो पूछा कि सरकार की योजनाएं हो, चाहे वो खाद्यान्न से जुड़ी हुई हो या अन्य योजनाओं का लाभ हो, इन सबके लिए अल्टीमेटली बेनिफिशियरी कौन होता है, जिसका हक ये मारते हैं? भारत का जो गरीब तबका है, उसके अधिकारों का, उनके रिसोर्सेस का एक तरीके से ये इलीगल माइग्रेंट जो है, जो रोजगार के नाम पर या अन्य किसी नाम पर आते हैं, मैं नहीं मानता रोजगार पर, भारत के लोग नहीं जाते क्या रोजगार के लिए बाहर? लेकिन क्या वो इलीगल बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं? बाउंड्री क्रॉस करके जाते हैं तो भी भारत उनको स्वीकार करता है। ऐसी कुछ घटनाएं बाहर के देशों में हुई तो हमने कहा कि भाई हम उनको, कोई भारत बढ़ावा नहीं देता है। तो हमको वही नीति हमारे पड़ोसी देशों के बारे में, या भारत और नेपाल के बीच में बहुत सारे लोग आते जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है, कायकाज दिखाकर वो आते हैं, वर्क परमिट के नाते यहाँ पे रहते भी है। तो मुझे लगता है इसका जो परिणाम होता है वो स्थानिक संसाधनों पर होता है, सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के कारण होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर होता है, और खास करके असम में जो समस्या आई, स्थानिक संस्कृति, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे जंगलों के, और अभी पूर्वोत्तर के बहुत राज्यों में ही आ रहा है, जहां पे भारत के सामान्य व्यक्ति को भी जाने के लिए एक परमिट लेना पड़ता है, इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहां पर आकर बैठ गए हैं, वहां के जंगल संसाधनों का नुकसान कर रहे हैं। तो ये हमारा मल्टीपल रिसोर्सेस का एक तरीके से एक्सप्लॉयटेशन भी है, उन पर स्ट्रेन भी है। तो मुझे लगता है कि ये भी डायमेंशन हमको, जब हम रिलीजियस इंबैलेंस तो है ही, वो इंबैलेंस क्रिएट होता है जिसके कारण समाज में एक तनाव पैदा होता है, लेकिन सांस्कृतिक और आर्थिक साधनों के आधार पर भी ये घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्र में बनी हुई है, जिसके कारण इस समिति का गठन करना पड़ा है।
0: असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने भी कहा है कि बाहर से आए हुए लोग देश की समस्या के साथ साथ असम के लिए भी एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: आई थिंक चैलेंज हैज बिकम मोर ग्रेव, दैट डेमोग्राफिक पैटर्न इज चेंजिंग फास्ट। टुडे ऑलमोस्ट 40% ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम दोज हु हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। लीगेलिटीज अपार्ट, टुडे असमीज इज मार्जिनलाइज्ड इन आवर ओन लैंड, आवर कल्चर इज मार्जिनलाइज इन आवर ओन लैंड, इकोनॉमी इज फास्ट शिफ्टिंग टू दोज पीपल हु वेर नेवर एसोसिएटेड विथ आवर कल्चर एंड विथ आवर हिस्ट्री। सो द चैलेंज कंटिन्यू, बट वन गुड थिंग इज दैट देयर इज अ कलेक्टिव स्पिरिट टुडे टू फेस द चैलेंज, एंड आई एम श्योर दैट आवर न्यू जनरेशन विल फाइट, विल कीप ऑन फाइटिंग, एंड गॉड विल ब्लेस अस, विल सर्वाइव।
0: प्रफुल्ल जी, आप बहुत समय से भारत के अलग अलग विषयों पर पैनी नजर रखते हैं। ये जो समिति बनी है और प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की थी, क्या लगता है कि इस समिति के बनने से क्या कुछ बदलने वाला है निकट भविष्य में?
1: देखिए मुझे इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लग रहा है बंगाल के चुनाव के बाद, मुझे लगता है एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन से भी

0: ज्यादा इसमें अलग अलग स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन की बड़ी समस्या रहती थी। बांग्लादेश से एंटर कर रहा है, असम में जा रहे हैं, असम से एंटर कर रहे हैं, बिहार तक पहुंच रहे हैं या झारखंड तक पहुंच रहे हैं, और ऐसे में फिर एक राज्य दूसरे राज्य पर ये चीज धकेल देता था कि ये तो हमारी समस्या नहीं है, ये तो आपको रोकना है, और फिर ये वहां का राज्य ये केंद्र पर कि ये तो आपको बीएसएफ के लेवल पर हैंडल करना चाहिए, लेकिन बॉर्डर की जो लैंड है वो पोरस रखेंगे, उसको ट्रांसफर नहीं करेंगे बीएसएफ को। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स सिनारियो था। आज अभी राजनीतिक स्तर पर मुझे लगता है प्रधानमंत्री ये निर्णय ले पाए, उसमें एक महत्वपूर्ण कारण आज ये है कि इस सीमावर्ती क्षेत्र में झारखंड छोड़कर लगभग सारे हिस्सों में सत्ताधारी दल एक ही है, और या वो एनडीए का हिस्सा है या भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में ये समन्वय ऐसे ही हुआ था। नक्सलवादी समस्या के बारे में तुरंत बॉर्डर क्रॉस करके चले जाते थे, और फिर छत्तीसगढ़ का ये कहता था नहीं मध्य प्रदेश की समस्या है, मध्य प्रदेश वाला कहता था तो उसने क्राइम तो हमारे यहाँ पे नहीं किया है, वो तो महाराष्ट्र भाग गया है। तो ऐसे में पहली मीटिंग जब की थी गृहमंत्री, मुझे याद है चारों राज्यों के गृहमंत्री और डीजीपी को लेकर मीटिंग की थी। अब ये समन्वय संभव हो पाएगा, केंद्र सरकार ने जब ये समिति बनाई है तो मुझे लगता है समिति एक तो इसका समग्रता से अध्ययन करेगी, पिछले रिपोर्ट्स के आधार पर इसका एक जिसको हम कह सकते हैं क्लियर पिक्चर इसके कारण सामने आएगा। दूसरा मुझे लगता है कि इसके समस्या के निराकरण के लिए भी नीतिगत सीधा सीधा एक मुझे लगता है कि क्लियर कट पिक्चर सरकार के सामने भी आएगा कि नीतिगत विषय में इसको आगे कैसे बढ़ाना है, और समन्वय के नाते कौन कौन सी एजेंसी की क्या क्या भूमिका रहेगी, ये भी स्पष्टता इस समिति के गठन के कारण आने की संभावना है। तो आने वाले जैसे शब्द थीम चले डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि कम से कम डिटेक्शन और आने वाले कालखंड में इसको फिर से और आगे ना बढ़े, ये इलीगल माइग्रेशन ना बढ़े, जो है उनको डिटेक्ट करके क्या करना है वो तो है ही, लेकिन वो ना बढ़े इसके लिए क्या हो, इसके लिए निश्चित रूप से हमको एक नीतिगत दिशा मिलने की संभावना इस समिति से बनेगी, यह मेरा विश्वास है।
1: जी हाँ बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल अगर होगा तो इस चुनौती से पार पाया जा सकता है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
2: सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा कर हम देश की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते, हमने क्षेत्रीय सुरक्षा का राज्य सरकारों के साथ रहकर चिंता भी करना पड़ेगा और वो जिम्मेदारी का निर्वहन भी करना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि सीमा से नजदीक 50 किलोमीटर के किसी भी गांव में कोई अवैध निर्माण होता है तो हम सिविल प्रशासन को सूचित कर, कलेक्टर को सूचित करें, एसपी को सूचित करें। हमारी जिम्मेदारी है कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर तक के सभी गांवों में जनसांख्यिकी का परिवर्तन हो रहा है, कृत्रिम परिवर्तन हो रहा है, तो उसके प्रति सजग रहकर राज्य सरकार को आगाह करें।
1: प्रकाश जी, एक और सवाल आपसे समझना चाहेंगे कि 2014 के बाद इस समस्या को लेकर वर्तमान केंद्र सरकार ने बहुत सारी कोशिशें की हैं और उसी दिशा में इस समिति का गठन भी है, कैसे देखते हैं पिछले 12 वर्षों के मौजूदा सरकार के प्रयासों को घुसपैठियों और ये जो डेमोग्राफिकल चेंज है इससे पार पाने की दिशा में?
3: देखिए, समस्या की गंभीरता को समझा गया है, उसको स्वीकारा गया है और उसके निदान के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं, ये तो यहाँ तक तो सार्थक है। अब हमें अपनी लॉ एनफोर्समेंट मशीनरी से ये काम लेना पड़ेगा और ये काम मतलब वर्तमान सरकार लेने में सक्षम है। उन्होंने नक्सलियों को कहा कि हम मार्च 2026 तक खत्म कर दें, उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस समस्या के लिए भी उनको कुछ टारगेट रखना पड़ेगा और इसकी मंथली ईयरली या क्वार्टरली कुछ चीज की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। हम पहले ये एस्टिमेट बनाए कि हर स्टेट में कितने कितने बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उसके बाद हर स्टेट पे कहें कि इस महीने में आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई की, इनको कितने को डिटेक्ट किया, कितने होल्डिंग सेंटर में है, किनको डिपोर्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की, इसका रेगुलर मॉनिटरिंग होनी पड़ेगी। इसमें सख्ती बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ कि वर्तमान सरकार करने में सक्षम है, नक्सल समस्या पे विजय पा ली है तो इस समस्या का भी ये समाधान प्रभावी ढंग से ढूंढ सकते हैं, इसके लिए सख्ती करनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ कि सरकार ये सख्ती कर सकती है।
1: प्रफुल्ल जी, कार्यक्रम के अंत में एक और सवाल बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि आज के दौर में जब सोशल मीडिया का जमाना है तो सोशल मीडिया और फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क, आपको क्या लगता है ये घुसपैठ को बढ़ाने में कितनी भूमिका निभा रहे हैं?
0: देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि इसके जुड़ी हुई एक इकोनॉमी है, ये केवल फेक डॉक्यूमेंट नेटवर्क नहीं है, ये फेक करेंसी नेटवर्क है, ये ड्रग ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है, इसमें आर्म्स के ट्रैफिकिंग का नेटवर्क है और एक क्रिमिनल सिंडिकेट के रूप में ये काम करता है। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से जिम्मेदार है और आज के जमाने में सोशल मीडिया इसको एम्प्लीफाई

0: करता है ह्यूमैनिटेरियन के नाम पर। जैसे ही ऐसी कुछ केसेस होती है, डिपोर्टेशन के लिए कुछ बात बढ़ती है, तो सोशल मीडिया में एक्टिविज्म चलता है, राजनीतिक कारणों से भी चलता है, कुछ धार्मिक कारणों से भी चलता है, कुछ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरसीज के द्वारा भी चलता है। तो ऐसे में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी देश के लिए किसी भी इलीगल माइग्रेंट्स के विरोध में सख्त कदम लेना। और आज जब टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग एक अच्छा उपयोग हो सकता है गवर्नेंस में आइडेंटिफाई करने के लिए, चाहे सीसीटीवी कैमरेज के रूप में, चाहे सेंसर्स के रूप में, हम बहुत सारी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये सिंडिकेट्स डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो मुझे लगता है कि जब अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचा जाएगा तो इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, मीडिया एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र

0: एक्टिविज्म के एस्पेक्ट्स और अन्य जो इससे जुड़े हुए सिंडिकेट और क्रिमिनल एस्पेक्ट्स है, इस पर भी मुझे लगता है ये समिति सोचेगी भी और उस पर कुछ उपाय योजना भी सरकार को बताएगी।
1: सीमाओं की सुरक्षा सिर्फ जवानों की जिम्मेदारी नहीं होती, ये पूरे राष्ट्र की सामूहिक चेतना का विषय है। जनसंख्या परिवर्तन और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दे केवल आंकड़ों की बहस नहीं है, इनका सीधा संबंध देश की सामाजिक स्थिरता, आर्थिक संसाधनों और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से है। आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया है कि चुनौती केवल सीमा पार से आने वालों की नहीं, बल्कि उस सोच की भी है जो राष्ट्रीय हित से ऊपर व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ को रख देती है। जरूरत है सजग नीति की, मजबूत सीमा प्रबंधन की और सबसे बढ़कर जागरूक समाज की। प्रफुल्ल केतकर जी आपका, प्रकाश सिंह जी आपका, आकाशवाणी के इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है। मीडिया वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में कामचोर फिल्म का ये गीत। इंदिवर की लिखी इस रचना को तर्ज दिया है राजेश रोशन ने।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी एट 90, 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक, नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: श्रोताओं, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में आइए सुनते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत। समीर के लिखे इस गीत को संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा

0: कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।

AIR@90. श्रोताओं, आइए सुनते हैं वीरचारा फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और रूप कुमार राठौर की आवाज़ में। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और इसे संगीतबद्ध किया है संजीव कोहली और मदन मोहन ने।

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है मुकद्दर का, सिकंदर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द हैं अनजान के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: पास तुम रहते हो।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी के पटना केंद्र से। कुछ और मधुर गीतों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे अंतराल के बाद।
2: अरे हमार बाबूजी के कहना बा, बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी।
3: और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री बस 30 रुपए में।
4: आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक।
5: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशंस लाइव मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक

0: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक, हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: PIR at 90.
1: श्रोताओं, कुछ और मधुर गीतों के साथ आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज़ में तस्वीर फिल्म का ये गीत। डी एन मोदक के लिखे इस गीत को संगीत दिया है सी रामचंद्र ने।

प्यार का मौसम फिल्म का ये गीत सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और इसे संगीत से सजाया है राहुल देव परमर ने।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं अभिमान फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और अनु दास की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और संगीतकार है एस डी वर्मन।

श्रोताओं, आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में आनंद फिल्म का ये गीत। शब्द हैं योगेश के और संगीत सलील चौधरी का।

0: श्रोताओं, वक्त की कमी के कारण हम ये गीत आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, इसका हमें खेद है। लता मंगेशकर की आवाज़ में गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का पटना केंद्र है, मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में आज 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं जैसे कचरा प्रसंस्करण और गोवर्धन संयंत्रों को तेजी से पूरा करने को कहा। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत SIR कराने का अधिकार रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में इस निर्णय को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया को पूर्णतः संविधान सम्मत स्वीकार कर दिया है। राजनीतिक पराजय के बाद अब यह विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी की संवैधानिक धरातल पर भी यह पराजय हुई है।
1: असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है। इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने NEET UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का तीसरा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है। राष्ट्रपति ने ईद उल जुहा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्र

पति ने कहा कि यह पर्व समर्पण, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर जरूरतमंद वरिष्ठजन और बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।